एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें, ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता मन, निकल पाना बड़ा कठिन होता। गुरु दर्पण है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले, लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आ जा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए घुटने बराबर पानी मानकर, पूछो क्या होगा। क्यों आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा। वो सपने जरूर दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो।

0: लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो दो कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। तुमने कभी देखा दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता जो होता है। गुरु मुखी होने से बेहतर है, मन मुखी होने से बेहतर है गुरु मुखी हो। और मेरे पागलो, एक बात और हम कहेंगे, जब आप मन मुखी से गुरु मुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगे। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरु मुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा, सेम टू यू, बोल दे चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते हैं, और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, पर यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में। जिस पर गुरु कृपा हो जाती वो तो सब सहने की क्षमता रखता। हमारा मानना है एक सच्चा और अच्छा गुरु जिसको प्राप्त होता वो रंग को भी राजा बना देता है। और मेरे पागल, गुरु की सानिध्यता मनोरंजन नहीं लाती, गुरु की सानिध्यता मनोभंजन लाती है। मन का भंजन होता मनोरंजन नहीं होता, मन का भंजन होता। तीसरी बात, गुरु आपको यह सीख देता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे जीना है। महात्मा बुद्ध की एक कथा है, एक आदमी उनको रोज गाली देता था, रोज गाली देता था, सुबह भी देता था, शाम को भी देता था, दोपहर भी देता। जब जब महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ते थे रोज गाली देता था, वो सामने पड़ोस नहीं रहता था, रहा होगा जकार्ता, रोज गाली देता था बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे, चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है सबके जीवन में, यही होता है कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। पर उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है, काहे की महात्मा, जो इतने अपने क्रोध को न जीत पाए वो कैसे महात्मा। कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है, ऐसा साधु तो देखे ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, और मैं ना लू तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा, बोले यही हमने किया। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु होता है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है। और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जलती हुई लिए हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें दिखा देंगे इस रास्ते पर जाओ, ऐसा होगा पा जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता। व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे शास्त्रों में बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई, इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरुमुखी हो जाए। दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ, पर मनुष्य देह पाकर के सबसे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग में बैठना, क्योंकि प्रायः इस मन की प्रवृत्ति चंचल है। मन बंदर की तरह कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर जाता है, ऐसे ये मन है बंदर की भांति, इसको एक जगह टिका के बैठना बड़ा कठिन। इसलिए हमारे महापुरुष संत कहते हैं कि तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, मार्केट, बाजार मीन्स मार्केट, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तो मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, दुर्लभम मानुषम देह। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ, मनुष्य तन के बाद बड़े भाग्य मानस तन पावा, पर उसके बाद बोले उससे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग का मिलना कठिन। और तुम्हें सात समुंदर पार इंडोनेशिया में जकार्ता में सत्संग मिले, समझना तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो पृथ्वी। और सत्संग तो होता रहता है, पर उस सत्संग में तुम हो ये बात थोड़ी बड़ी बात है। ये सत्संग तो होता रहता है, दो लोग भी सत्संग करते रहते हैं, पर उस सत्संग में तुम हो समझ जाना भगवान तुम पर स्पेशल कृपा बरसा। तो कहते ना स्पेशल प्रेयर कर दीजिए आप, स्पेशल ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो यदि आप उस सत्संग में हैं तो आप पर स्पेशल कृपा है, ये तो पक्का है। 6 मार्च को फिर से कन्या विवाह है बागेश्वर धाम पर, इस बार हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। हम कह रहे थे वो दिन याद करके कि जब हमारी बहन का विवाह हुआ था तब 20,000 रुपया उधार भी मिला था, 20,000। हमारी बहन का विवाह जैसे हुआ था, दुनिया के शायद हम सबसे अभागे भाई होंगे, ना कोई सजावट ना कुछ, बहुत साधारण, ऐसे ही नहीं। हम ये बात बता के सिर्फ इतना कहना चाह रहे, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे भगवान तुम्हारी बाय पकड़ेगा, वो कभी तुमको नीचा नहीं देखने देगा। आज जो तुम पर हंस रहे हैं कल उनके मुंह पर तमाचा लगेगा यदि तुम भगवान के भरोसे जियोगे। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं यदि तुम भगवान के प्रति समर्पित रहोगे तो कल वो तुमको मिलने के लिए तरसे, पक्का भगवान के घर देर है। लेकिन एक बात हम प्रार्थना करें, देखो बुरा ना मानना, हम लोग विदेश में बैठे हैं तो यहां से भारत की वास्तविक स्थिति नहीं समझ सकते, पर जो जानते हैं वो जानते हैं। कभी आप गांव में जाके देखना भारत क्या स्थिति है, भारत की अभी भी हमारा भारत बहुत पिछड़ा है, अभी बढ़ रहा, निरंतर उन्नति भारत कर रहा, भारत का स्वाभिमान निरंतर बढ़ रहा, भारत हर रास्ते से विरोध कर रहा है,
1: लेकिन अभी भी लाखों ऐसे अनाथ है जो एक वक्त की रोटी के लिए त्रस्त।
0: पुत्र तो एक वंश का नाम रोशन करता,
1: बेटियां दो दो वंश का नाम रोशन करती,
0: दो दो वंश का। और दुनिया में बहुत दान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है, द्रव्य दान है, रक्तदान है, अंगदान है,
1: पर सबसे बड़ा कन्यादान।
0: इसको बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं। भगवान जिसको मौका दे, समझना भगवान ने तुम पर विशेष कृपा की, तुम्हारे घर बेटियां हैं,
1: समझना भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है।
0: क्योंकि बेटी ममत्व का स्वरूप होती है, मात्र स्वरूपा होती, शक्ति स्वरूपा होती है। एक बार हमने ये बात कई बार बोली है, पर हमें वो बात बहुत याद आ जाती है कि दो मित्र बैठे हुए थे, तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा था कि हम पर तो भगवान की बहुत कृपा है, बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं। दूसरे के पास बेटा नहीं था, केवल बेटियां थी। तो वो बेचारा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक छोटी सी 6 साल की बच्ची उसी की खड़ी थी, वो बेटी। उसने कहा, अंकल अंकल, गरीबों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती हैं, जिसका दिल अमीर होता है उसके घर बेटियां। जो दान देने की क्षमता रखता है, कन्या दान करने की क्षमता रखता,
1: ऐसे अमीर के घर पर बेटी पैदा होती है, गरीबों के घर पर नहीं होती।
0: बेटियां हो तो बोझ मत समझना, भगवान का वरदान समझना, क्योंकि वो तो दो कुलों का नाम रोशन करती है, दो कुलों का नाम रोशन करती। भारत में आज भी ऐसे बहुत घर हैं, बहुत बेटियां हैं। हम जकार्ता इंडोनेशिया में बैठे समस्त भारतीयों और सनातनियों से, इंडोनेशिया के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप हमें दान दो या ना दो, मंदिरों को दो या ना दो, पर हो सके किसी गरीब की मदद जरूर करें।
2: हम लोग दो तरफ हैं, संसार की तरफ और भगवान की तरफ, जगत की तरफ और जगदीश की तरफ। होना ये चाहिए कि एक तरफ। अब आप कहोगे कि आप बाबा बनाना चाहते,
0: यही थी ना?
2: नहीं, बाबा नहीं, हम एक उपाय देना चाहते आपको,
0: मेरे पागलों जो घर बैठकर के लाइव देख रहे हैं, अथवा आप,
2: हम आपसे प्रार्थना करें,
0: हमको आपको बाबा नहीं बनाना, हम चाहते हैं आप बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ।
2: हाँ, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ,
0: बीच के बीच रहो,
2: मध्य मार्ग, जो पहले दिन का सूत्र, मध्य मार्ग, बीच के बीच। जीवन बहुत अच्छे से गुजरे तो भगवान के काम के भी रहोगे और समाज के भी काम के रहोगे। यदि केवल भगवान के हो जाओगे तो समाज वाले कहेंगे है पागल, और केवल समाज के हो जाओगे संसार के, तो परमात्मा की नजर में कुछ नहीं रहोगे। तो इसका उपाय क्या, जो तुम कर रहे हो उसे अपना कर्म मत मानो,
0: भगवान की पूजा मानो।
2: भगवान की सेवा है, क्या सेवा है, बजा रहे हैं भगवान की सेवा है। जिंदगी है, आप जिस दृष्टि से देखोगे उसी दृष्टि से जीवन दिखाई पड़ेगा। एक बिल्डिंग बना, मंदिर में 4 लोग मजदूर होते हैं, चारों की सोच अलग अलग होती है। एक आदमी गया, पूछा क्या बना रहे हो, दूसरा बोला मजदूरी कर रहे हैं, बना थोड़ी है, मजदूरी कर रहे हैं। तीसरा दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, दिन काट रहे हैं। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। चौथे से पूछा क्या कर रहे हैं,
0: भगवान का घर बना रहे हैं।
2: मंदिर एक है पर देखने की दृष्टि अलग अलग है, ऐसे ही जीवन एक जैसा सबका है पर जीने का तरीका सबका अलग है। कोई थोड़े से में ही आनंदित हो जाता, कोई बहुत में भी आनंदित नहीं होता है। कुछ लोग भगवान ने जो दिया उसी में वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया है, कि कम से कम मनुष्य तन तो दिया, कहीं गाय भैंस बने होते फिर क्या होता, भगवान का शुक्रिया है। और कुछ लोग ये पाकर के भी शिकायत ही करते, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। इसलिए दो तरफा मत रहो, एक तरफा, या तो भगवान की तरफ रहो या संसार की। एक बहुत सिद्ध संत श्री नागरी बाबा हुए, वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध थे नागरी बाबा। नागरी बाबा के जीवन में यही घटना हुई कि वो किसी राज्य के मंत्री थे, और एक दिन भक्ति जगी तो वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तो उस राज्य में कोई विपदा आई तो वहां के लोग मिलने आए कि आपको राजा ने बुलाया है कि आप दो दिन के लिए केवल आ जाइए, बड़ी विपदा आ गई है और आपके अलावा उस विपदा को कोई सुलझा नहीं सकता। नागरी बाबा ने कहा यदि ऐसी बात है तो कल चलेंगे, आज बरसाने जाएंगे। बरसाने में गए दर्शन करने, नीचे सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, उतरते उतरते जो झाड़ू लगाने वाली झाड़ूदारनी होती है बोली, ए बाबा जानती तो थी कि पहुंचे महात्मा है पर वहां के ब्रजवासियों का तो अलग ठाट बाट रहता है, ए बाबा एक तरफ हो। तो नीचे उतरते ही मंत्रियों, जो राजा के मंत्री आए थे, उनसे बोले, भैया आज तो हमको झाड़ू लगाने वाली गुरु मिल गई। बोले क्यों? बोले वही हमसे कह रही थी दो तरफ मत हो, एक तरफ हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो। अब भैया अब नहीं हम जाएंगे, अब इसी तरफ हो गए, अब उस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ के हो गए, भगवान के हो गए, आहा एक तरफ के हो जाए, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए।
3: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
5: After multiple assassination attempts, they can't even get...
6: They're reliable.
7: Always when I need them.
4: To live sports action.
8: One-hand jam by LeBron on the break!
9: That's another three, Steph Curry!
4: And your favorite music.
10: Well, the dawn begins to crack.
4: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app, or ask your device to play TuneIn.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे,
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली है मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: पुरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ, भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव, सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में आस्था और उत्साह से जारी चारधाम यात्रा, सुहाने मौसम के बीच बद्रीनाथ धाम में बड़े तीर्थयात्री, मंदिर का किया गया अलौकिक श्रृंगार। मुंबई के पास पालघर में प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार, केलवा माहिम खाड़ी, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल।

आपके साथ गीतिका पंत और गुड न्यूज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत पावन दिन है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि है आज, और अहमदाबाद से पुरी तक भगवान जगन्नाथ की भव्य दिव्य रथ यात्रा निकल रही है, जिसकी शानदार तस्वीरें हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के प्रमुख धाम पुरी में तो 12वीं से 13वीं सदी से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जबकि अहमदाबाद

है जिसकी भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रथ भगवान के ननिहाल सरसपुर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम करीब 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है और माना ये जाता है कि वहीं पर भगवान का प्राकट्य भी हुआ था। पुरी में रथ यात्रा पहले से निकाली जा रही है, जबकि पुरी की तर्ज पर अहमदाबाद में 149वां साल पहले 1878 में इसकी शुरुआत हुई। वहीं उदयपुर और दूसरे शहरों में भी आज के दिन रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पुरी और अहमदाबाद में रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पुरी में रात भर तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालु रथ यात्रा मार्ग पर डटे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद और पुरी में रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जगन्नाथ की, जहां श्रद्धालु जो हैं वो लाखों की तादाद में पहुंचे हुए हैं और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, शुभारंभ हो गया है।

0: तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अहमदाबाद से और पुरी के जगन्नाथ से, जहां भगवान नगर भ्रमण पर निकले हैं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। तो अहमदाबाद के जमालपुर मंदिर में मौजूद हमारे संवाददाता बृजेश दोषी ने रथ यात्रा के शुभारंभ का जायजा लिया, आप भी देखिए।
1: परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पूरे दिन ये रथ यात्रा चलती है। शाम रात 8 बजे भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों के रथ जो है वापस मंदिर आते हैं। तो ये पूरे दिन की रथ यात्रा में 16 किलोमीटर का रूट है यहाँ से सरसपुर और उसके बाद वापस 16 किलोमीटर, कुल 32 किलोमीटर की ये नगर यात्रा होती है, जिसमें ये एक दिन होता है कि भगवान खुद भक्तों के पास पहुँचते हैं और भक्तों के पास पहुँचकर दर्शन देते हैं। बाकी सारे दिनों में हमेशा भक्तों को मंदिर आना होता है। ये एक दिन है आषाढ़ी बीज का, जिस दिन आषाढ़ी तृतीया जो माना जाता है कि इसी दिन भगवान जो हैं वो दर्शन देने खुद मंदिर से बाहर निकलकर लोगों भक्तों के घर तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इस रथ यात्रा का महत्व है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा देश में सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा मानी जाती है। इस रथ यात्रा में अखाड़े, उसके साथ साथ टैबलो होते हैं जिसमें काफ़ी झांकियाँ होती है, 100 से ज़्यादा टैबलो होते हैं, भजन मंडलियाँ होती हैं और साथ ही अखाड़ों के कर्तव्य होते हैं, 18 गजराज भी जो हैं हाथी उसके अंदर शामिल रहते हैं। तो ये पूरी रथ यात्रा का आकर्षण रहता है और ये जो सारी तस्वीरें हैं वो सीधी तस्वीरें गुजरात के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस रथ यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं हर्ष संघवी, दोनों जो हैं वो पहन करके इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाई है। आज पूरे दिन ये रथ यात्रा जो है अहमदाबाद में घूमेगी और भक्तों को खुद जगत के नाथ जो है वो दर्शन देने पहुंचेंगे। तो इसका एक अलग ही महत्व है और इसीलिए बेसब्री से भक्त इस दिन का जो है इंतज़ार करते हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि भगवान जो है वो उनके यहाँ दर्शन देने के लिए पहुँचे और ये जो है रथ यात्रा में वो शामिल हो। और इसीलिए इसका इंतज़ार पूरे साल भक्तों को रहता है। आज ही का वो दिन है कि जब भगवान उनके घर आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। आज पूरे दिन अहमदाबाद में भक्ति में माहौल रहेगा और भक्त जो है लाखों की संख्या में रास्तों पर उतर के भगवान के दर्शन करेंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ बृजेश दोषी।
0: तो नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वो नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं, नाथों के नाथ इन्हें कहा जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बृजेश जुड़ रहे हैं। बृजेश, किस तरह का माहौल

0: है, कितने भक्त जो है वो सुबह से प्रभु के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल है, जरा तस्वीरें बताइए।
1: बिल्कुल, देखिए ये एक दिन होता है जिसका भक्त जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान अपने भाई और बहन के साथ पूरे नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, अब जो है इंतजार किया जा रहा है टेबलों का, जो ट्रक है और अखाड़े जो इस रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण रहते हैं। हाथी जो है वो पहले ही रूट पे आगे निकल चुके हैं और उसके साथ जो है अब भजन मंडलियां, अखाड़े और 100 से ज्यादा ट्रक हैं वो निकलेंगे। मंदिर के बाहर का ये दृश्य है जहाँ पे रोड की दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं, भक्त जुटे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से जो है वो ट्रक निकले और जो झांकियां हैं वो देखने को मिले, क्योंकि झांकियों में अलग अलग थीम होती है, भारतीय संस्कृति से लेकर जो है भारतीय सेनाओं तक की झांकियां उसमें होती हैं। पूरी तरह से ये लोगों के द्वारा ट्रक तैयार किए जाते हैं, झांकियां तैयार की जाती हैं, ये कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है पर खुद लोग इसमें जुड़ते हैं और इसीलिए रथ यात्रा जो है वो बेहद खास हो जाती है। और इसी दिन का इंतजार अहमदाबाद के लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु हमेशा करते हैं। अहमदाबाद के बाहर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे बाहर के राज्यों के लोग भी जो हैं वो इस रथ यात्रा में जुड़ते हैं। तो यही वजह है कि ये रथ यात्रा क्यों बेहद अहम मानी जाती है और जगन्नाथपुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद की है कि जो 16 किलोमीटर का रूट होता है, यहाँ पे एक ही दिन की होती है, पूरी में 7 दिन होता है, पर यहाँ पे ये आज का एक दिन जो है आषाढ़ी बीज का, उस दिन जो है ये रथ यात्रा होती है और भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई के साथ जो है वो निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। 16 किलोमीटर वहां पे उनके जो है सरसपुर पहुंचने के और वहां से मंदिर लौटने के, रात 8 बजे ये रथ यात्रा का जो है, जब भगवान अपने मंदिर में लौट जाएंगे तब रात को 8 बजे इस रथ यात्रा का समापन होगा।
0: ब्रिजेश, सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल हुए और उसके बाद जो एक प्रथा है कि मुख्यमंत्री जो है वो रथ के आगे सोने की झाड़ू जो है वो लगाते हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये सोने की झाड़ू से झाड़ू क्यों लगाई जाती है।
1: देखिए, ये रथ यात्रा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो रथ यात्रा के पहले एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद एक विशेष प्रसाद भेजते हैं और सालों से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने ये परंपरा निभाई है। उनका भगवान जगन्नाथ और ये मंदिर के साथ जो पुराना नाता रहा है तो वो हर साल जो है वो प्रसाद बेचते हैं, सीजन के अनुरूप उसमें फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और साथ ही जो है वो मूंग और जामुन होते हैं। तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ को जो है वो ये जो परंपरा के तौर पे ये प्रसाद भेजा जाता है, तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है विशेष प्रसाद भेजते हैं और जिस दिन रथ यात्रा निकलनी होती है उस दिन सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो परिवार के साथ मंगला आरती करने पहुंचते हैं। जब वो गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री नहीं थे या गुजरात के भी गृहमंत्री नहीं थे तब से वो परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों नेताओं का पुराना नाता इस मंदिर के साथ रहा है और इसीलिए जो है दोनों नेता इस रथ यात्रा में इस तरह जो है शामिल होते हैं। खुद केंद्रीय गृहमंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री प्रसाद भेजकर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जो बात आपने कही सोने की झाड़ू लगाने की, तो वो पहले से एक परंपरा है, जब से रथ यात्रा शुरू हुई तो जो राज्य का मुखिया है या शहर का जो मुखिया है वो सोने की झाड़ू से रथ के आगे रास्ते की सफाई करता है और उस रास्ते पे जो है भगवान के रथ निकलते हैं, तो वो सफाई की जो विधि है कि अब जो है रास्ता साफ हो चुका है और अब यहाँ से भगवान के रथ निकल सकते हैं, तो वो एक जो विधि है उसको पहिंद विधि कहा जाता है और जो राज्य का मुखिया होता है वो विधि करवाता है। इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ये विधि की है। इससे पहले जो पहिंद विधि का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है वो 13 साल नरेंद्र मोदी का रहा है, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो उनके नाम रहा है पहिंद विधि का, सबसे लंबे तौर पे जो है वो पहिंद विधि करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पे रहा है और जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी जो है वो इस मंदिर के साथ उन्होंने अपना लगाव और नाता रखा हुआ है, प्रसाद भेजकर भगवान को जो है वो परोक्ष रूप से भी इस रथ यात्रा में प्रधानमंत्री हमेशा शामिल होते हैं।
0: जी ब्रिजेश, जैसा कि आपने बताया है कि अहमदाबाद में ये जो रथ यात्रा है सिर्फ एक दिन की होती है लेकिन पुरी में ये रथ यात्रा कई दिन चलती है, तो क्या पुरी की ही तरह जब भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं, नगर भ्रमण पर निकलते हैं, वो कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करते हैं, तो क्या सेम ऐसा ही अहमदाबाद में भी होता है, भगवान जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या वो कहीं रुकते हैं, क्या विश्राम करते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए भगवान जो है वो जमालपुर से निकल के सरसपुर जो उनका ननिहाल कहा जाता है वहां पे जो है वो रुकते हैं। दोपहर में भोजन वहां पे होता है, दोपहर का प्रसाद उनको वहां चढ़ाया जाता है और रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, जो रथ खींचने वाले जो खलासी हैं उनके साथ जो भी भक्त हैं, करीब 2 से 4 लाख भक्त जो हैं वहां पे भोजन लेते हैं सरसपुर में। तो वहां पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का विश्राम होता है और उसके बाद दोपहर में जो है वो रथ यात्रा मंदिर की तरफ लौटती है। तो कुल 16 किलोमीटर मंदिर से सरसपुर तक का, सरसपुर में विश्राम और उसके बाद वापस सरसपुर से मंदिर तक का कुल 32 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो जो है निकलती है। और ये रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पूरे रास्ते में जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की अगर आप लंबाई की भी बात करें तो 3 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है। पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है वो अखाड़े, फिर भजन मंडली और फिर आखिर में 100 टेबलों और उसके बाद फिर भगवान के रथ होते हैं 3। तो 3 किलोमीटर की जो है ये पूरी लंबी रथ यात्रा जो है पूरे रूट पे चलती है। तो लोग दर्शन के लिए निकलते हैं तो हाथी से शुरुआत होती है और आखिरी में जो है भगवान के रथ होते हैं। तो इस तरह से भी पूरा जो है वो रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल। इसी तरह लगभग 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं, कहीं पर भी सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। टेक्नोलॉजी का भी अद्यतन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है, ड्रोन सर्वेलेंस से लेकर हर चीज का ध्यान रखा जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि जो हाथी थे वो बेकाबू हो गए थे डीजे की वजह से, तो इस बार उनके लिए भी एक एंटी जो है वो सिस्टम लगाया गया है कि ताकि एंटी नॉइज सिस्टम, ताकि हाथी जो है वो वहां पे भड़के नहीं और पिछली तरह जो पिछली बार जो भगदड़ हुई थी वो भगदड़ ना हो, उसका भी इस बार पूरा ध्यान रखा गया है।
0: जी ब्रजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ जगन्नाथ से जुड़ी हर श्रद्धा हर आस्था की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, क्या है सूर्य के राशि परिवर्तन का विधान और सूर्य देव किस राशि को देंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
2: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
1: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
3: Williams keeps it. First down. Touchdown.
1: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य की कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश विशेष मायने रखता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में जाते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, ध्यान किया जाता है, और इसके परिणाम काफी शुभ होते हैं। तो सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव अब मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय। सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हैं। इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जल की राशि में हो रहा है, बृहस्पति भी वहां विद्यमान है, इस वजह से जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां इस समय गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। और इस समय लोगों को, सामान्य आदमी को, अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, जल से संबंधित दिक्कतें पूरी दुनिया में फैलेंगी, भूकंप जैसी स्थिति भी बन रही है। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। इस समय जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सरदर्द और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों में दर्द और सरदर्द की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा और जोखिम लेने से बचाव करिएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से फिलहाल बचना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके तमाम रुके हुए काम इस एक महीने में पूरे हो जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो भी जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी और साथ में तुला वालों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि, इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का और परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें, लेकिन परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखिएगा। धनु राशि, इस समय दुर्घटनाओं से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मकर राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके व्यापार में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे का फायदा भी आपको होगा। मीन राशि, इस समय करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। करियर में कोई जोखिम लेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। देखिए, साल भर में कुल मिला के 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, लेकिन दो संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति जो लगभग जनवरी के मध्य में आती है, और एक कर्क संक्रांति जो लगभग जुलाई के मध्य में आती है, वो सबसे ज्यादा पवित्र अवसर माना जाता है। तो 16 तारीख को, 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य देव के कर्क संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करें, अन्न का, वस्त्र का, जूते छाते का दान करें, और जितना संभव हो मंत्र जप करें, ध्यान करें, साधना करें, तो इसके परिणाम बड़े बेहतर होंगे। जिस तरह मकर संक्रांति पर दान करना बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी तरह कर्क संक्रांति पर दान करना भी बहुत शुभ होता है। अगर वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर धारण करें तो काफी बेहतर होगा। आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा अगले एक महीने तक आप करें, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: पूरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ। भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के पन्ना में शुरू हुआ ऐतिहासिक जुगल किशोर सरकार महोत्सव, निकाली गई भव्य कलश यात्रा, देश भर के संत कार्यक्रम होंगे शामिल। मुंबई के पास पालघर में प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार, केलवा माहिम खाड़ी, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल। अर्जेंटीना की जीत के बाद देश में मना जबरदस्त जश्न, की गई जबरदस्त आतिशबाजी, मेसी की विशाल प्रतिमा के साथ लोगों ने ली सेल्फी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है तो इसी के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इससे देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर धारण करें तो काफी बेहतर होगा।
4: और आइए जान लेते हैं 16 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 8:52 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र शाम के 7:52 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि क्या होती है संक्रांति और क्या है कर्क संक्रांति।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य की कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश विशेष मायने रखता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में जाते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, ध्यान किया जाता है, और इसके परिणाम काफी शुभ होते हैं।
4: और आइए अब जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और अब जानेंगे कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: तो सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव अब मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हैं। इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जल की राशि में हो रहा है, बृहस्पति भी वहां विद्यमान है, इस वजह से जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां इस समय गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। और इस समय लोगों को, सामान्य आदमी को, अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, जल से संबंधित दिक्कतें पूरी दुनिया में फैलेंगी, भूकंप जैसी स्थिति भी बन रही है।
4: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी इस समय, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल का जवाब वो किसका देने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न शीतल दत्त भरणे जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं। 7 जून 1993 का जन्म है, 12:05 मध्य रात्रि में हैदराबाद तेलंगाना। ये कह रही हैं कि 2025 में मेरा विवाह हुआ है, वैवाहिक जीवन मेरा ठीक नहीं चल रहा है, क्या ये विवाह मेरा चल सकेगा? शीतल, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है। साल 2027 में आपसी सुलह समझौते से ये विवाह भंग होगा, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है, और आगे चल करके आप दूसरा विवाह करेंगी जो आपके लिए बेहतर होगा। इस विवाह से निकल सकें और आगे भविष्य आपका बेहतर हो उसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10 से 12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब पंडित जी द्वारा दिया जाए तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न सूरज कुमार ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 30 नवंबर 1996 का जन्म है, 6:22 प्रातः गिरिडीह झारखंड। ये कह रहे हैं कि मैं माइनिंग इंजीनियर हूं और नौकरी के लिए करियर के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो आने वाले समय में मेरा भविष्य और मेरा जीवन कैसा रहेगा? सूरज जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा राहु की शुरू हुई है। ज्योतिष के हिसाब से इस समय आपको कोई प्राइवेट नौकरी मिलेगी जो आप लगभग 6-8 महीने कर पाएंगे, उसके बाद आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के, सरकारी सेवा में जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो आप माइनिंग के सेक्टर में ही भविष्य में गवर्नमेंट की किसी संस्था में जाएंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। एक मोती बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन से उसका अलग अलग राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में।
0: देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। इस समय जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सर दर्द और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों में दर्द और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा और जोखिम लेने से बचाव करिएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से फिलहाल बचना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके तमाम रुके हुए काम इस 1 महीने में पूरे हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: तो पहली 6 राशियों के बारे में तो हमने जान लिया, बाकी बची हुई 6 राशियों का सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा, आइए जान लेते हैं।
0: तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब वो भी जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी, और साथ में तुला वालों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि, इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का और परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें, लेकिन परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखिएगा। धनु राशि, इस समय दुर्घटनाओं से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मकर राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके व्यापार में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, स्वास्थ्य में

0: है, लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके साथ बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा प्रश्न, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न तिथि दत्ता ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, 24 अक्टूबर 2002 का जन्म है, 12:55 दोपहर में, कल्याणी नदिया पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे किस तरह के करियर में मुझे जाना चाहिए। तिथि आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई क्लेरिकल नौकरी आपको मिलेगी, ये संभावना बनती है साल 2028 में। मकर लग्न और वृषभ राशि है आपकी, अपने बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक नीलम बनवा करके पहनिए, 5-6 रत्ती का नीलम चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को नीलम धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विराट सिंह ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 28 जून 2022, 9:05 प्रातः, फरीदाबाद हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, लेकिन बोलने में उसको दिक्कत होती है, बोलने में कठिनाई होती है, उसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है,

0: लेकिन बहुत लाभ नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करूं जिससे मेरे बेटे का जीवन बेहतर हो और वो अच्छी तरह से बोल सके। देखिए विराट जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है। अक्टूबर 2027 के बाद आपके बेटे के जीवन में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप दो तीन उपाय करिए। एक तो इस कुंडली में अमावस दोष है, इसीलिए अपने पुत्र के अमावस दोष की शांति करवाइए। एक पन्ना बनवा लीजिए 6-7 रत्ती का, चांदी के लॉकेट में काले धागे में डाल करके बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइएगा। और आप इनके पिता हैं, आप या इनकी माता, इसमें से कोई भी व्यक्ति इनके लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 16 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रोजगार में परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद सफलता मिलेगी, कर्ज की और आर्थिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि क्या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए? देखिए, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। सामान्यतः इस दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन नहीं करना चाहिए। पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना ज्यादा उत्तम होता है।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो आइए जानते हैं 16 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में फायदा होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुडलक राशि वो हमें कौन सी बताने वाले हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है वृषभ राशि। इनको नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर ये ऐसा करें तो जीवन की तमाम बाधाएं कम होती चली जाएंगी।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा। हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा अगले 1 महीने तक आप करें, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: भक्ति की तस्वीर आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा से, तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यात्रा का आज 13वां दिन है, बीते 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के ऐतिहासिक दर्शन किए, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़ी बात यह है कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन इससे तीर्थयात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी यात्रा खत्म होने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा।
8: बाबा बर्फानी के दर्शन को निकला श्रद्धालुओं का ये कारवां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं, और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। अब तक 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार पे हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
9: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
8: खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता और पल पल बदलता मौसम, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं। बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह ऐसी है कि थोड़ी बहुत अगर परेशानी है भी तो रास्तों का फूल भर गई है। बस एक भाव है जो आंखों में नमी बनकर तैर जाता है, उत्साह है जो जयकारे में बदल जाता है।
10: अच्छा लग रहा है। अब इस बार हम फर्स्ट बार आ रहे हैं अमरनाथ, लेकिन बहुत बीएसएफ सबका बहुत हम पुलिस का शुक्रिया करते हैं कि हमको साथ में लेकर आए। बहुत अच्छा लगा,
11: बहुत बहुत बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छे आनंद में है सब।
12: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
8: कोई गुजरात से आया है तो कोई जौनपुर से, कोई पंजाब से तो कोई देश के किसी और कोने से। सुरक्षा और प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्तों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिससे जैसे बर पड़ रहा है बाबा अमरनाथ के दरबार पहुंच रहा है। बस एक ही धुन है कि बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगानी है।
13: बहुत ही बढ़िया सिस्टम किया आया थे, बहुत ही वधिया अरेंजमेंट है, बहुत ही वधिया सिक्योरिटी परपस है, मतलब बहुत वधिया लग गया आगे सानू। फर्स्ट टाइम इतने
14: पहलगाम में आए तो इतना ऊर्जा मिली हमको कि पूछो मत।
8: श्रद्धालुओं का ये जोश ही आस्था की इस यात्रा को ऐतिहासिक बना रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर खुशी जताई है और तीर्थ यात्रियों से लेकर यात्रा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मनोज सिन्हा ने एक्सपर पोस्ट में कहा है, श्री अमरनाथ जी यात्रा ने सिर्फ 12 दिनों में 3 लाख का आंकड़ा पार कर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। मैं सभी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और स्वयं सेवकों की सराहना करता हूं। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने बाबा बर्फानी के हर भक्त के लिए इस पवित्र यात्रा को सुगम और यादगार बना दिया है। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, यानी अब भी यात्रा में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के और कितने रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। पहलगाम से आरिफ बलोच और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सिर्फ मैदान तक नहीं है, भारत में भी फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं धोती पर ब्राजील, अर्जेंटीना और पुर्तगाल के रंग चढ़ गए हैं तो कहीं मिठाई भी मेसी को ही दर्शाती नजर आ रही है। यानी धोती से लेकर मिठाई की दुकान तक मिठाई पर लियो नल मेसी की ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं फुटबॉल के रंग में रंगी ये खास तस्वीरें।

0: रहा वर्ल्ड कप का खुमार सिर्फ मैदान तक नहीं है, भारत में भी फुटबॉल का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी ही कुछ रौनक केरलम के बाजारों में दिखाई दे रही है। केरलम की पहचान यहाँ की खास धोती भी फुटबॉल के रंग में रंग गई है। बाजारों में ऐसी धोतियाँ खूब बिक रही है जिन पर ब्राजील का पीला और हरा रंग है, अर्जेंटीना की आसमानी सफेद धारियां हैं और पुर्तगाल का लाल हरा अंदाज भी। यानी अब सिर्फ जर्सी नहीं, धोती पहनकर भी लोग अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन कर रहे हैं। दुकान के बाहर लगे पुतलों पर भी जर्सी और रंग बिरंगी धोती पहनाई गई है। जो भी वहां से गुजरता है एक बार रुककर जरूर देखता है। मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे या नेमार, यहां फैंस अपनी पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी की जर्सी पहने आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इस बार जर्सी के साथ साथ इन खास धोतियों की भी जबरदस्त मांग है। यही वजह है कि वर्ल्ड कप का रंग भी केरलम स्टाइल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां हर त्योहार, हर जश्न और फुटबॉल का उत्सव भी अपनी परंपरा के साथ मनाया जाता है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, जहां फुटबॉल का प्यार मिठास में बदल गया है। यहां एक मिठाई कारोबारी और मेसी के बड़े प्रशंसक देवाशीष घोष ने मिठाई से लियोनेल मेसी की एक शानदार प्रतिमा बना दी है। करीब 1.5 किलो खोया, खीर, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और फूड कलर से बनी इस प्रतिमा में मेसी के चेहरे के भाव, दाढ़ी, बाल और जर्सी तक को बड़ी ही बारीकी से बनाया गया है। पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाए, क्योंकि ये मूर्ति नहीं बल्कि पूरी तरह खाने वाली मिठाई है। दुकान पर लोगों की भीड़ लगी है, हर कोई इस क्यूट और स्वीट मेसी के साथ तस्वीर लेना चाहता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि दिल से जिया जाता है। दुर्गापुर से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें देखकर आप जरूर कहेंगे कि ये माँ सर आइज़क न्यूटन से कम नहीं है, क्योंकि बच्चे को भरपूर प्रोटीन खिलाने के लिए माँ ने जो तरकीब घड़ाई है, ऐसा प्रयोग तो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। माँ ने बच्चे को लुभाने के लिए धागे से एक चॉकलेट का टुकड़ा बांध दिया और उसे प्रोटीन मिक्स मटेरियल के कटोरे में डाल दिया। बच्चे को चम्मच में खाने वाले पदार्थ के साथ चॉकलेट का टुकड़ा दिखता है, वो मुंह खोलता है और तभी धागे से बंधा वो टुकड़ा फिर कटोरी में गिरा दिया जाता है और इस तरह बच्चा उस टुकड़े के लालच में पूरा खाना खा जाता है। यूजर्स वीडियो को देखकर माँ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन माओं को सलाह दे रहे हैं जिनके बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं और ये तस्वीरें देखकर वो इससे सीख ले सकते हैं। शैतान कौए की कारस्तानी की तस्वीरें देखिए जरा। कौआ सफेद बिल्ली की पूंछ में चोंच मारता नजर आ रहा है। बिल्ली ने सोचा कि दूसरी काली बिल्ली ने शरारत की है, बस फिर क्या था, दोनों लड़ पड़ती हैं। इधर कौआ फिर आकर चोंच मार देता है, लेकिन तभी एक सफेद कुत्ते की एंट्री होती है और उसके बीच में पड़ने पर कौआ तो उड़न छू हो जाता है और बाकी दोनों बिल्लियां अपने रास्ते भाग लेती हैं। यूजर्स इन तस्वीरों को देखकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। फुटबॉल की क्रेज के बीच ये वायरल तस्वीरें देखिए और फैसला करिए कि आपकी नजर में ये गोल हुआ है या नहीं। यकीनन आप कहेंगे कि गोल तो हुआ है, क्योंकि गोल करने वाला खिलाड़ी कैसे गोलकीपर को कंफ्यूज करता है और आसानी से गोल दाग देता है कि गोलकीपर हक्का बक्का रह जाता है ना कमाल की तस्वीरें। अब यूजर्स गोलकीपर का चेहरा देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादी माँ और पोते की तस्वीरें लोगों को खूब भा रही है। जरा देखिए कि कैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग उम्र के लोग आमने सामने बैठे हैं। एक दादी माँ है और एक 4-5 महीने का बच्चा, दोनों दांत विहीन एक दूसरे के साथ जिस तरह से आनंद ले रहे हैं, यूजर्स उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime. and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: पुरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ। भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु।
15: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उत्साह में झूमते हुए नजर आए भक्त कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। प्रयागराज में भी लगाई जा रही है आस्था की डुबकी।
1: अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह।
15: मध्य प्रदेश के पन्ना में शुरू हुआ ऐतिहासिक जुगल किशोर सरकार महोत्सव, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। देश भर के संत कार्यक्रम होंगे शामिल।
1: फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल।
15: अर्जेंटीना की जीत के बाद देश में मना जबरदस्त जश्न की गई जबरदस्त आतिशबाजी। मेसी की विशाल प्रतिमा के साथ लोगों ने सेल्फी ली।

0: Taste Me Best Everest.
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
3: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: शुभ समाचार की शुरुआत जगन्नाथ यात्रा के साथ आज होगी। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत हो गई है। भव्य दिव्य नगरी में हजारों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा है। ये दिव्य धाम हर भक्त को भक्ति, सेवा और समर्पण का संदेश दे रहा है, तो वहां की तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने।
2: और साथ ही आपको अहमदाबाद भी लिए चलेंगे, जहां पर आस्था और भक्ति की ऐसी ही भव्य तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई है। आज 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव चल रहा है। सुबह 4 बजे से जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। और अब यहां पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु पूरे श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ रथ को खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है, तो वहां के रंग भी जल्द ही आपके सामने होंगे।
1: तो इधर अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है। वहां की भी तस्वीरें थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे।
2: और अब बात करेंगे रेल यात्रियों को मिली सौगात की भी। आपको बता दें, IRCTC की वेबसाइट का एक नया वर्जन जारी किया गया है। IRCTC ने इस वर्जन में 4 बड़े सुधार किए हैं। इसमें भी अलग अलग क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं और साथ ही यहां अब आसानी से टिकट बुक की जा सकेगी, तो इसके बारे में भी आगे बात होगी।
1: तो इसके अलावा आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग भी दिखाएंगे। अटलांटा में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने आखिरी 7 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और अब 19 जुलाई को न्यूजर्सी में उसका मुकाबला स्पेन से होगा। वैसे इस जीत के बाद कैसे अर्जेंटीना के फैंस ने बनाया जश्न, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
2: ओडिशा की पुरी में आस्था, विश्वास और उत्साह से भरी भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस पावन मौके पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। वो लम्हा बस आने ही वाला है जब जगत के नाथ भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। गाजे बाजे और पूरे विधि विधान के साथ इस यात्रा का शुभारंभ होगा।
1: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव में अहमदाबाद भी रंगा नजर आया। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा में गृहमंत्री अमित शाह, सीएम उपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा रूट पर AI टेक्निक से भी सुरक्षा पर नजर होगी। कंट्रोल रूम में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगातार निगरानी में जुटा है।
2: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों से जारी हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 500 CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं। वहीं ड्रोन कैमरास से भी भक्तों की निगरानी की जाने वाली है।
1: गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पारंपरिक 13 पर्व की धूम है। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत माने जाने वाले इस पर्व का खेती और प्रकृति से गहरा संबंध है। इस पर्व के तहत वागदेव की पूजा के साथ धान की रोपाई का शुभारंभ होता है।
2: रेलवे ने यात्रियों की टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है और इस नए वर्जन को आम लोगों के लिए टेस्टिंग के तौर पर जारी किया जा रहा है, ताकि यूजर्स इसका इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक दे सकें। रेलवे का यह कहना है कि लोगों के फीडबैक के बाद इसमें और सुधार किए जाएंगे और बाद में यही नया पोर्टल सभी यूजर्स के लिए लॉन्च होगा।
1: श्रीनगर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ खासकर डल झील के पास बड़ी तादाद में पर्यटक नजर आ रहे हैं, जो यहाँ के सुहाने मौसम और शांत वातावरण के बीच शिकारा की सवारी का पूरा लुत्फ उठाते नजर आए। देश विदेश से पहुंचे पर्यटक हाउस बोट में ठहरने का आनंद भी ले रहे हैं।
2: आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे तीन चरणों में बांट दिया है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें शामिल होंगी, जिन्हें सुपर सीरीज और सुपर सेवन जैसे नए राउंड से गुजरना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में सबसे कम रैंकिंग वाली तीन क्वालिफाइड टीमों के बीच एक सुपर सीरीज होगी।
1: लगातार दूसरी बार लियोनल मेसी की अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में ये पहुंची है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना ने अंतिम लम्हों में जीत लिया। वहीं अर्जेंटीना की जीत पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। यहां लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 2-1 से ये मैच जीता। फाइनल में अब अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
2: फिल्म तेरा यार हूँ मैं का नया और वाइब्रेंट डांस गाना रिलीज किया गया है। फिल्म की लीड जोड़ी अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा पर फिल्म आई गई इस मैंने दिल तुझको दिया गाने को नकाश अजीज ने गाया है। फिल्म में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर और मृणाल कुलकर्णी के साथ कई और एक्टर्स मौजूद हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज के साथ करेंगे। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। देश के कोने कोने में आस्था और विश्वास के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। सबसे ज्यादा भव्य और दिव्य नजारा जगन्नाथ पुरी का है।
1: आपको बता दें यहाँ के कण कण में प्रभु श्री जगन्नाथ का वास है। यहाँ की पावन रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम है। हजारों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा है। ये दिव्य धाम हर भक्त को भक्ति, सेवा और समर्पण का संदेश दे रहा है।
0: तो आस्था और भक्ति की ऐसी ही भव्य तस्वीरें अहमदाबाद से भी सामने आई है, जहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ रथ को खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है।
1: आपको बता दें ये दिव्य आयोजन भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और अटूट आस्था का अनुपम प्रतीक बनकर हर श्रद्धालु के हृदय को भाव विभोर कर रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें पुरी में भव्य यात्रा और दूसरी ओर अहमदाबाद जहां पर दूसरी सबसे बड़ी यात्रा होती है रथ यात्रा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शानदार तरीके से सजावट की गई है और देश भर के अलग अलग कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए।
0: तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक पुरी के जगन्नाथ यात्रा की है तो दूसरी अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा की है, जिसकी शुरुआत आज सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ हुई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ मंगला आरती की और उसके बाद शुभ यात्रा का शुभारंभ हुआ। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अहमदाबाद से भी और पुरी से भी, जहां जगन्नाथ यात्रा की आज से शुरुआत हुई और पुरी में ये यात्रा लगभग 9 दिन तक चलेगी, यानी कि 28 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी और उस दिन इसका समापन होगा। लेकिन अहमदाबाद में यात्रा एक दिन की होती है और आज यात्रा की शुरुआत सुबह 4 बजे की मंगला आरती से की गई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे परिवार के साथ आरती की।
1: तो भगवान जगन्नाथ मंदिर से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलने वाली इस यात्रा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि साल के इस दिन भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के पास जाकर दर्शन देते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा जमालपुर स्थित मंदिर से निकलकर सरसपुर पहुंचती है और वहीं से वापस मंदिर लौटती है।
0: तो इस दौरान एक तरफ के 16 किलोमीटर के रथ यात्रा रूट के दौरान हजारों श्रद्धालु और 30,000 से ज्यादा पुलिस समेत सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। रथ यात्रा में गुजरात पुलिस ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधारित अनेक पहले और सोशल पुलिसिंग के जरिए सभी आनुषंगिक तैयारियां सुनिश्चित की हैं।
1: आपको बता दें इस रथ यात्रा का ना सिर्फ हिंदू लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में अलग अलग पॉइंट पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, किस तरह से रथ यात्रा निकाली गई है उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये भव्य तस्वीरें देखने के लिए और यहाँ पर दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आपको बता दें अहमदाबाद वो शहर जहाँ पर पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये भव्य तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, कलाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर की किस तरह से सजावट की गई है वो तस्वीरें भी आप देखिए।
0: तो अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत से पहले झाड़ू लगाया गया, झाड़ू लगाकर रथ मार्ग को साफ किया गया और उस परंपरा का विशेष महत्व भी है। तो देखिए तस्वीरें अहमदाबाद की, जहां रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया और जब रथ यात्रा होती है उससे पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं वो वहां रथ यात्रा का जो मार्ग होता है उस पर झाड़ू लगाते हैं और ये झाड़ू जो होती है वो सोने की झाड़ू होती है। इसकी भी अपनी एक मान्यता है कि रथ यात्रा निकलने से पहले वहां के राज्य के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो इस रथ यात्रा से पहले सोने की झाड़ू से मार्ग को साफ करते हैं ताकि प्रभु की यात्रा जो है वो वहां से गुजरे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां मुख्यमंत्री जो है वो रथ यात्रा से पहले झाड़ू लगाते हुए नजर आए।
1: तो अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले महाप्रभु की मंगला आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और महाप्रभु जगन्नाथ की आरती करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, सनातन के पर्व के तौर पर इसे मनाया जाता है और हर साल ये रथ यात्रा निकाली जाती है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके लिए भी खास सुविधाओं यहाँ पर सुविधाओं से लैस किया जाता है। किस तरह से गृह मंत्री ने यहाँ पर पूजन किया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। मंगला आरती के साथ आज से रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अपने गृह क्षेत्र में मौजूद थे। अहमदाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर रथ यात्रा शुरू हो चुकी है।

तो अहमदाबाद में आस्था और भक्ति के रंग जगह जगह बिखरे हुए हैं। रथ यात्रा को लेकर कई झांकियां हैं जो अपनी कला के जरिए प्रभु की आराधना कर रही हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल को लेकर भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं।

0: जगन्नाथ भगवान की 149वीं रथ यात्रा है, तो भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करे, सबके दुख दूर करे और सबके जीवन में उन्नति करे। द्वारिका नो नाथ मारो राधा ऋण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी। द्वारिका नो नाथ मारो राधा ऋण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी।
1: उत्साह कैसा है, श्रद्धा सबूरी और विश्वास है। दर्शन हुए और दर्शन करने से इतना एनर्जी मिलता है ना कि पूरा ईयर का एनर्जी बैटरी चार्ज हो जाती है।
2: तो रथ यात्रा की शुभ घड़ी आ गई है। देश भर में आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। शहर शहर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और जगन्नाथ नगरी पुरी तक भक्ति भाव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कहीं हजारों श्रद्धालु प्रभु का रथ खींच रहे हैं तो कहीं जय जगन्नाथ के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भव्य दिव्य अलौकिक रथ यात्रा भारत की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संदेश देने का काम करती है। वहीं पुरी में रथ यात्रा से पहले सभी पारंपरिक पूजा पाठ किया जा रहा है और अब से कुछ घंटों के बाद पुरी नगरी में रथ यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर किस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से यहाँ पर सजावट है, किस तरह की तैयारियां हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, मंगला आरती के साथ उन्होंने शुरुआत की। तो वहीं पुरी में भी भव्य तैयारियों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। ये वार्षिक रथ यात्रा है जो आज शुरू हो चुकी है। तो रथ यात्रा की तैयारी जगन्नाथपुरी में हो चुकी है। रथ भगवान को सचकर तैयार हैं। अभी रथ के नगर भ्रमण से निकलने से पहले की परंपराएं निभाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी से, जहां रथ यात्रा से पहले की तस्वीरें, किस तरह से पूजा पाठ कर लिया गया है और थोड़ी ही देर में रथ यात्रा जो है वो निकलेगी। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए उड़ीसा के पुरी से, जहाँ तीनों रथ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और बारिश भी लगातार वहां हो रही है, लेकिन आस्था और श्रद्धा जो है भक्तों की वो इन सबसे ऊपर है। भले ही बारिश हो रही हो लेकिन हजारों की लाखों की संख्या में भक्त जो है वो देश से ही नहीं विदेश से भी इस यात्रा में मौजूद होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और देश भर से लोग यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। हर साल ये यात्रा इसी तरह दिव्य और भव्य होती है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्त काफी उत्साहित नजर आए हैं। आपको बता दें आस्था के रंग में हर कोई सराबोर है, जगन्नाथ रथ यात्रा के रंग दिखा रहे हैं। पुरी से हमारे संवाददाता अजय नाथ, देखिए।
3: जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथ को देखने के लिए भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है, पूरा विश्व आज इंतजार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे, भगवान आगे जाएंगे, रथ में बैठ करके रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे। जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर, उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं। ये हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ओडिसी डांसर जी। क्या नाम है आपका?
4: जय जगन्नाथ। पूरी से संदीप कुमार सर मेरा नाम।
3: संदीप जी, क्या बोलना चाहेंगे भगवान के सामने? आपको ये नाचना गाना कितना खुशी दे रही है?
4: बोलने के लिए तो हमके पास मतलब वर्डलेस, वहाँ से मतलब वो जो क्या हमारा जो डांस स्टेज है ना, ये संसार में एक ही है, वो पुरी में, और कहाँ से नहीं मिलेगा। जितने भी स्टेज है ना वहाँ से हमें गाना से डांस करते हैं, वहाँ से गाना कुछ नहीं है, बस भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम से हम लोग डांस करते हैं। हम लोग इतना भाग्यशाली है कि उनका सामने हम डांस करते हैं। बस एक साल में एक बार आएगा वहाँ से, सब कितना सारा डांसर आएगा महाप्रभु को खुश करने के लिए, डांस करने के लिए। वहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम और भक्ति चाहिए बस।
3: आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ ये ओडिसी डांस वाले भी जुड़ रहे थे जो यहाँ भगवान को नचा, भगवान के सामने नाच रहे हैं। हमारे साथ शिवजी वेश लेके हमारे साथ आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है, मैं ब्रह्मपुर से आए हैं। मेरा बड़ा वाला मंदिर पुजारी है, राधा कृष्ण गोकुल धाम का ब्रह्मपुर का पुजारी है। रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है तो शिव भी आती है कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जो जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का महादेवता है, तो इसलिए महादेव भी भगवान कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधारे हैं।
2: तो नाथों के नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज से प्रभु नगर भ्रमण पर निकले हैं और हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए हमारे दो संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं नोएडा से, और हमारे साथ ब्रजेश जो है वो जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं जहां रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो ब्रजेश, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, कितने भक्त हैं जो अब रथ यात्रा से जुड़ चुके हैं अभी तक?
6: देखिए, रथ यात्रा का जो रूट है 16 किलोमीटर का, उसके अंदर कुल जो है लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। मंदिर के बाहर की तस्वीरें, जो अखाड़े हैं वो अब इस रूट पे निकले हैं। अखाड़ों के बाद भजन मंडलियां जुड़ेंगी और उसके बाद रथ जो है आखिरी में होते हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये रथ यात्रा का जो है, जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है 100 ट्रक होते हैं जिसमें विविध झांकियां बनाई जाती हैं, टैबलो होते हैं, उसके बाद अखाड़े और अखाड़े के बाद भजन मंडली और उसके बाद भगवान के रथ। तो कुल 3 किलोमीटर का ये लंबा रथ यात्रा होती है। जो रूट है वो 16 किलोमीटर का है। लाखों श्रद्धालु रोड की दोनों तरफ भगवान के दर्शन के लिए खड़े होते हैं और ये कर्तव्य जो है यही आकर्षण है कि लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, हर साल इंतजार करते हैं कि आषाढ़ी दूज का ये दिन जब आए, तब खुद भगवान उनके घर पे दर्शन देने के लिए आए। ये दिन का महत्व तो इसीलिए अहमदाबाद में है और देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा ये मानी जाती है, इसमें लाखों लोग जुड़ते हैं। ये रथ यात्रा जब सरसपुर पहुंचेगी दोपहर में, तो वहां पे लाखों लोग एक साथ भोजन लेंगे, प्रसाद महाप्रसाद उनको दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा और उसके बाद सरसपुर से ये लौटेगी रात को 8 बजे तक मंदिर वापस। तो ये पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा और इसमें जिस तरह से ये कर्तव्य होते हैं, अखाड़े होते हैं, भजन मंडलियां होती है, इनका आकर्षण हमेशा लोगों में रहता है, तो इसकी ये महत्व है। साथ ही प्रधानमंत्री की जो है वो आस्था जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने विशेष प्रसाद यहाँ पे भेजा हुआ है मंदिर में, रथ यात्रा से एक दिन पहले वो प्रसाद भेजते हैं। इस बार भी उन्होंने वो परंपरा अपनी चालू रखी है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री इसकी मंगला आरती में शामिल होते हैं। तो इसी तरह जो है देश के दो बड़े नेता जब इस रथ यात्रा से जुड़े हुए हो, तब आपको पता चलता है कि कितनी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, किस तरह से लोग भक्त बड़ी तादाद में श्रद्धा के साथ इस रथ यात्रा में जुड़ते हैं और रथ यात्रा का जो है भगवान के दर्शन रोड पे खड़े होकर करते हैं।
2: बिल्कुल ब्रजेश, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई। इसी बीच हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जुड़े हुए हैं। मनीष, अहमदाबाद की तस्वीरें तो हमने देख ली, नोएडा से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहां पर जोश कैसा है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है?
7: बिल्कुल, जय जगन्नाथ के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं जगन्नाथ की और

0: जगन्नाथ जी का रथ यात्रा 3 बजे चालू हो जाएगा। मान्य गणमान्य व्यक्ति 2:45 में आ जाएंगे और आज भव्य 30 से 40 हजार लोग आज जगन्नाथ
1: भव्य होगा कार्यक्रम। और जिस तरह से पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, जो नियम कानून, जो रीति रिवाज वहाँ पर रथ यात्रा में फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं रीति रिवाज उन्हीं पूरे नियम कानून के साथ शब्दशा यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। अभी आप मंदिर में तमाम दर्शक देख पा रहे हैं कि वो दर्शक हैं और वो श्रद्धालु हैं ये जिनको ऑफिस जाना होता है, इसलिए सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से ऑफिस जाएंगे। और फिर सबसे यही इच्छा है कि वो रथ यात्रा के टाइम पर इधर फिर से मंदिर में उपस्थित हो जाए। तमाम तैयारियाँ यहाँ अभी भी चालू हैं, रथ बनकर तैयार हो चुका है, जो श्रद्धालु है जो उड़ीसा के रहने वाले।
2: मनीष, बहुत सुंदर तस्वीरें नोएडा के जगन्नाथ मंदिर की आप हमें दिखा रहे हैं और लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
8: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
9: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: पुरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ, भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु।
8: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उत्साह में झूमते हुए नजर आए भक्त, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, प्रयागराज में भी लगाई जा रही आस्था की डुबकी।
7: अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव, सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह।
8: मध्य प्रदेश के पन्ना में शुरू हुआ ऐतिहासिक जुगल किशोर सरकार महोत्सव, निकाली गई भव्य कलश यात्रा, देश भर के संत कार्यक्रम में होंगे शामिल।
7: फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल।
8: अर्जेंटीना की जीत के बाद देश में मना जबरदस्त जश्न, की गई जबरदस्त आतिशबाजी, मेसी की विशाल प्रतिमा के साथ लोगों ने सेल्फी ली।

0: तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका शुभ समाचार में। आपको बता दें, देश भर में आस्था और भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। शहर शहर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और जगन्नाथ नगरी पुरी तक भक्ति भाव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
1: तो वहीं हजारों श्रद्धालु प्रभु का रथ खींच रहे हैं, तो कहीं जय जगन्नाथ की जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भव्य दिव्य और अलौकिक रथ यात्रा भारत की सनातन परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संदेश दे रही है। वहीं पुरी में रथ यात्रा से पहले सभी पारंपरिक पूजा पाठ किए जा रहे हैं।
0: आपको बता दें, अब से कुछ घंटों के बाद पुरी नगरी में रथ यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। सुबह मंगला आरती के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें, 9 दिनों की ये रथ यात्रा होती है जो पुरी में की जाती है। पुरी में होने वाली सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है और इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और 3 किलोमीटर दूर जो कि गुंडिचा मंदिर है, जिसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है, वहां पर पहुंचते हैं। 9 दिनों तक वहां पर रहते हैं और उसके बाद बहुला यात्रा होती है, यानी कि प्रस्थान करते हैं और वापस मुख्य मंदिर पहुँचते हैं।
1: तो पुरी में कृष्ण की नगरी वृंदावन से भी कलाकार पहुंच रहे हैं। सभी ने अपनी नृत्य कला से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और आप इनकी कला देखिए कि इनकी कला से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंत्रमुग्ध हो गए और ये लोक नृत्य पेश करते हुए और ये श्री कृष्ण की नगरी से यहाँ पहुंचे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। और सुबह से ही जगन्नाथ की हर एक तस्वीर आपको लगातार दिखाई जा रही है गुड न्यूज टुडे पर। और ये अलग अलग कलाकृतियां देखिए, किस तरह से रंग बिरंगी वेशभूषा धारण करके जो कलाकार हैं वो जगन्नाथ पुरी में अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।
0: तो देखिए, आज पूरा दिन अनुष्ठान जारी रहने वाले हैं। 4 बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी और उससे पहले यहाँ पर किस तरह से कला की प्रस्तुति की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए महिलाएं नृत्य करते हुए, बच्चियां नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है और खासा उत्साह सभी के बीच देखने को मिल रहा है। लोक नृत्य इस पर्व का अहम हिस्सा है। ओडिशा में लोक कलाकारों ने राज्य का नृत्य कर इस यात्रा में 4 चांद लगा दिए हैं।
1: तो देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन से टुकड़ी पहुंची है और इनकी कला देखिए, आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे अपनी कला से, किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में ये नृत्य कर रहे हैं। और छोटी बच्चियां भी इसमें शामिल हैं कि किस तरह से ये डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और देखिए, श्री कृष्ण का वेश धारण किए हुए ये कलाकार बेहद खूबसूरत इन्होंने नृत्य किया। और ये छोटे छोटे बच्चे हनुमान के किरदार में आपको देखेंगे। तो ये सारी तस्वीरें पुरी से हम आपको दिखा रहे हैं, जब जगन्नाथ यात्रा की जो शुरुआत है वो आज होने जा रही है और 9 दिन तक ये यात्रा जो है चलेगी और 28 जुलाई को इस यात्रा का समापन होगा। तो शाम 4 बजे ये यात्रा जो है वो शुरू होगी। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार गुड न्यूज टुडे पे। देखिए किस तरह से पुरी में जो भगवान जगन्नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं, वो नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। चारों तरफ इस वक्त जो माहौल है वो जगन्नाथ के जय घोष से गूंज रहा है। तमाम तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और उसके बाद पुरी की ये यात्रा जो 4 बजे शाम को शुरू होने वाली है। और महोत्सव की रौनक देखिए, तमाम कलाकार जो हैं वो अपनी कला के जरिए सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तो ये टुकड़ियां जो हैं वृंदावन से पहुंची हैं, श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से ये जो टुकड़ी है वो पहुंची है। और तमाम तस्वीरें, तमाम रंग हम आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं।
0: तो देखिए पुरी में एक ओर जहां जगन्नाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, भव्य तैयारियां की गई हैं, वहीं दूसरी ओर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नोएडा में भी इसकी तैयारी है और इस पर्व को मनाया जा रहा है। नोएडा से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा तस्वीरें दिखाइए और तैयारियों के बारे में बताइए, आज पूरा दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं ये भी बताइए।
2: देखिए फिलहाल भक्तों का तांता लगातार मंदिर के अंदर बना हुआ है, तमाम सारे भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक मंडली यहाँ बैठी हुई है जो लगातार ढोल और ताशे पर उनके भजन हैं वो गा रहे हैं। और किस तरह से आज दिनभर का कार्यक्रम रहने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 8:30 बजे सुबह मंगला आरती हो चुकी है, खिचड़ी भोग का अभी होना बाकी है, उसके बाद 56 भोग लगाया जाएगा और फिर उसके बाद 3 बजे का वक्त दिया गया है रथ यात्रा के लिए, यानी कि 3 बजे से यहाँ पर 3:30 के बीच रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। 2.5 किलोमीटर की रथ यात्रा ये होगी और लगभग 1.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले जो तमाम लोग हैं वो दूर दूर से अपने ऑफिस के बीच से ब्रेक लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं या फिर ऑफिस लेट हुआ आ जाएंगे, लेकिन उस बीच उनकी जो श्रद्धा है उसमें कोई कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सुबह मंगला आरती हो गई, अब दिन भर क्या होगा,

0: बलभद्र सुभद्राभ्या श्री जगन्नाथाय ते नमो नमः। अभी सुबह का जो पूजा होता था वो हो चुका है, अभी महाप्रभु का पौंड्य होगा, उसका लगभग 12-1 बजे पौंड्य होगा। पौंड्य के बाद रथ का ऊपर जो पूजा होता है, महाराजा जो आएंगे उसका बाद जो पूजा होगा, आरती होगा, छेरा पेरा इसको बोलते हैं, रजा करेंगे सेवा, उसका बाद 3 बजे रथ खींचेंगे। ये है पूजा का विधि।
1: खिचड़ी भोग लगता है, 56 भोग लगता है, वो सब हो गया या होना है?
0: अभी खिचड़ी का भोग लग चुका है, 56 भोग जो है वो लगभग 12 बजे भोग आरती होगा से 11:30 बजे, वो भोग का बाद पौंडी महाप्रभु पौंडी करेंगे।
1: सुन रहे हैं, खिचड़ी का भोग हो चुका है, 56 भोग अभी बाकी है और 12:30 के आसपास जब आरती होगी उसके बाद उन्हें 56 भोग लगाया जाएगा। तस्वीरें इतनी भव्य, इतनी सुंदर हैं कि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारी है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। दर्शन भी आपको मैं लगातार करा रहा हूँ, जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के और सुभद्रा जी के। लेकिन जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम जानने और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए आज के दिन यहाँ पहुँचना कितना जरूरी होता है और वो किस तरह से आज की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई जगह जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें आज ऑफ नहीं दिया गया है, छुट्टी नहीं है, ऐसे में वो लोग कैसे अपना दिन मैनेज करेंगे, कैसे यहाँ पहुँचेंगे, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका?
2: आशिता।
1: आज आप यहाँ पहुँची हुई हैं, कितना जरूरी है आपके लिए आज यहाँ?
2: ये बहुत बहुत जरूरी है, हमने ऐसे कोई भगवान देखे आज तक जो इतने भाव में खुद ही बाहर आ जाए हमसे मिलने के लिए। ऐसा दिन बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलता है जब हम भगवान को इस रूप में देख सके, और 15 दिन के इंतजार के बाद तो ये और बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। सो थैंक यू सो मच।
1: आपका ऑफिस वगैरह होता है, आप आज दिन कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं जो ऑफिस गोवर्स हैं?
2: आप देखिए, अगर आपका बर्थडे होता है तो आप छुट्टी लेते हैं ना, तो ये तो उससे बहुत बहुत बड़ा दिन है। सो ऐसा दिन हमारी जिंदगी में आ पाया, हम भगवान को पहचान पाए, ये बहुत हमारा सौभाग्य है, और इससे बड़ा दिन होगा नहीं, तो आप अपने बर्थडे पे मत छुट्टी लीजिएगा, इस दिन छुट्टी लीजिए।
3: जी, तो हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सर से हम इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको पुरी लिए चलते हैं जहां से अजय हमसे जुड़ रहे हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम पुरी से देख रहे हैं जगन्नाथ यात्रा की, जहां शुभारंभ हो चुका है, लेकिन यात्रा जो है वो 4 बजे के करीब यहां से शुरू होगी, इसका शुभारंभ होगा। तो किस तरह की रौनक है, किस तरह का माहौल है, जरा अजय बताइए।
4: देखिए, ये भव्य रथ यात्रा के लिए अब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए भक्तों का भीड़ अब से इतना बढ़ गया है कि अब कंट्रोल करना एक चैलेंज हो रहा है पुलिस के लिए। हालांकि यहाँ बारिश हो रहा है, फिर भी भक्तों का भीड़ एक बड़ा चैलेंज हो रहा है प्रशासन और पुलिस के लिए। आप देख सकते हैं अब भगवान मंदिर से आ रहे हैं, पहले चक्रराज सुदर्शन आके पधार गए हैं रथ के ऊपर, और इसके साथ अब भगवान बलभद्र आएंगे, फिर देवी सुभद्रा आएंगे, और बाद में अंत में जगन्नाथ जी आएंगे। जो जगन्नाथ को देखने के लिए लाखों अब पूरे बड़गंड में इस भारी बारिश में कोई छाता पकड़ा है, कोई सर में कपड़ा डाल के खड़ा है, तो कोई पानी में कल रात से भीग रहा है। सब यहाँ इंतजार में भगवान मंदिर से आ रहे हैं, एक के बाद एक आएंगे। अब चक्ररथ दर्शन जा चुके हैं रथ के ऊपर, रथ प्रतीक्षा हुआ था, रथ प्रतीक्षा होने के बाद अब चक्ररथ दर्शन गए हैं, और चक्ररथ दर्शन के बाद अब बलभद्र जी आ रहे हैं। बलभद्र जी को पहंडी तय किया जा रहा है, पहंडी के समय ये घंटा बज रहा है, यहाँ भक्तों का भीड़ और पंडित लोगों का मंत्र, ये मंत्र के साथ भगवान आ रहे हैं मंदिर से आगे, धीरे धीरे अब रथ के ऊपर विराजमान होंगे
3: जी।
4: तो भगवान देखने के लिए लोगों का मन में जो भक्ति, जो आव, जो प्रेम, जो श्रद्धा था, वो श्रद्धा अब 1000 गुना बढ़ गया है, और उसी श्रद्धा के साथ लोगों को ये बारिश का पानी, ये मौसम, ये खराब मौसम कुछ फर्क नहीं पड़ता
3: जी। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से आपने कहा लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल भी चुनौती नहीं है, लोगों की आस्था उस पर लगातार भारी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी बीच हमारे सहयोगी, हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लोगों की जो आस्था है यहाँ पर किस तरह से देखने को मिल रही है, जोश देखने को मिल रहा है और इससे जुड़ी जो मान्यता है उसके बारे में बताइए। किस तरह से भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र के साथ निकलते हैं, 9 दिनों का प्रवास करते हैं, इससे जुड़ी मान्यता क्या है?
5: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों की तो भगवान में आस्था है लेकिन भगवान की भक्तों में आस्था ज्यादा है। ये इसलिए कि भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए श्री मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर आने के लिए उनको पहले वो चूंकि नीम के काष्ठ की मूर्तियां हैं जिसको दारू कहते हैं तो रोज उनको प्रतिदिन स्नान नहीं कराया जाता। साल में एक बार जब वो ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो उनको 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है और स्नान करने के बाद फिर हर साल भगवान को बुखार हो जाता है। तो जैसे हम भक्तों को होता है वैसे भगवान को भी होता है। भगवान कोई खास नहीं है, भक्त भगवान से मिलने आते हैं तो भगवान भी भक्त से मिलने बाहर निकलते हैं और जब 10-15 दिन वो अंदर रहते हैं पूर्णिमा से लेके और द्वितीया तक तो उस समय उनके पट बंद रहते हैं, किसी को दर्शन की इजाजत नहीं होती है और उनको सिर्फ फलों के रस और औषधियों के काढ़े का भोग लगाया जाता है। जब वो बुखार से ठीक होते हैं तो वो फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं अपनी बहन के साथ, तो बड़े भाई और बहन के साथ वो निकलते हैं और उस समय ये ऐसा होता है कि रास्ते में एक जगह ऐसी है जहां एक मुस्लिम भक्त की समाधि है और भगवान का रथ थोड़ी देर को वहां रुकता है। ये उस समय की परंपरा है जब वो दर्शन करने वृंदावन से वहां पहुंच रहे थे लेकिन बड़दंडों के पास ही जो महामार्ग है जिस पर रथ यात्रा होती है वहां उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उसके बाद जो रथ यात्रा निकली तो रथ अपने आप वहां अटका। बस उस समय लोगों ने तय कर लिया कि भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए अटके हैं, उसे दर्शन देने के लिए अटके हैं, लिहाजा तब से सैकड़ों साल बीत गए हैं तब से वहां पर रथ यात्रा रुकती है। और सिर्फ ये नहीं, भगवान को रथ पर बिठाने के लिए निकालने के लिए पुजारियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, भगवान को बहुत ताने देने पड़ते हैं और ताने देने के बाद फिर वो हिलाते डुलाते झुलाते हिलाते ऐसे वो भगवान को लेकर आते हैं जिसको पहंडी कहते हैं। और इसके बाद रथ यात्रा पर जब ये निकलते हैं तो रथ जितनी दूर तक जाएगा सूर्यास्त होने तक वहीं पर रथ रुक जाता है। तो इस बार चूंकि रथ यात्रा सुबह जल्दी शुरू हो गई है, कई बार दोपहर को शुभ मुहूर्त में शुरू होती है तो उस समय रथ कई बार रास्ते में अटक जाता है, जहां रथ अटक जाता है वहीं पर। और जैसे ही भगवान रथ में विराजमान होते हैं वैसे ही वहां के जो कोल भील हैं वो सारे लोग भगवान की सेवा पूजा अपने हाथों में उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और वही फलों का भोग लगाते हैं। अगर रथ शाम तक गुंडीचा मंदिर तक पहुंच गया तो भगवान वहां विराजमान होते हैं। और इस बीच ये होता है कि भगवती लक्ष्मी को जब ये पता चलता है कि मुझे छोड़कर दोनों भाई अपनी बहन के साथ रथ यात्रा पर निकल गए हैं तो वो नाराज होती हैं और वो तीसरे दिन जाकर रथ को तोड़ कर आती हैं। तो पुजारी, मंदिर के पुजारी इस परंपरा को निभाते हैं और वहां जाते हैं, वहां जाकर रथ में थोड़ा सा वो उसको तोड़ते हैं, एक मतलब प्रतीकात्मक होता है और उसके बाद वापस आते हैं। और जब जगन्नाथ जी 10 दिन की यात्रा के बाद वापस लौटते हैं तो उनकी हवा खराब होती है कि लक्ष्मी जी से सामना कैसे करेंगे। और जब वो दरवाजे पर आते हैं तो लक्ष्मी जी की ओर से पुजारी उनको बहुत सारी गालियां देते हैं, बहुत सारे ताने सुनाते हैं। भगवान फिर रसगुल्ले की मटकी साथ लाते हैं, वो रसगुल्ले की मटकी देते हैं और देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पण करते हैं और उसके बाद भगवान अपने श्री मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और उससे पहले जब दरवाजे पर आते हैं तो सोना बेस होता है जिसमें सैकड़ों किलो सोने के आभूषण से भगवान सुसज्जित होते हैं और अपने भक्तों को सोना वेश में, स्वर्ण वेश में दर्शन देते हैं और इसके बाद फिर भगवान अपने श्री मंदिर में विराजमान होते हैं। इस तरह से रथ यात्रा ये पूरी होती है।
3: सर ये तो मान्यता की बात हुई, आपने जगन्नाथ की मान्यता के बारे में बताया। आपसे एक और बहुत जरूरी जो कहानी मैं तो नहीं कहूंगी इसे लेकिन वो भी मान्यता ही है कि जब भगवान नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो रथ यात्रा से पहले जो वहां के मुखिया होते हैं वो सोने की झाड़ू से मार्ग साफ करते हैं, तो ये कौन सी प्रथा है और ये क्यों सदियों से चली आ रही है?
5: ये पुरी के राजा होते हैं गजपति, जो वहां पर उसको छेरा पहरा बोलते हैं, छेरा पहंडा, जिसमें वो सोने के झाड़ू से भगवान का रथ बुहारते हैं। यानी ये बताने को कि सबसे पूरे 3 लोक के राजा जगन्नाथ जी हैं, हम तो सिर्फ उनके सेवक हैं, हम सिर्फ उनके कस्टोडियन हैं इस पूरे पुरी के। और ये बताने को कि भगवान के सामने क्या राजा क्या प्रजा सभी एक बराबर हैं, जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, यानी हे जगन्नाथ जी आप हमारे नयनों से हमारे हृदय तक उतरिए, नयन पथ से गमन कीजिए, हमारा हमारे नयनों का पथ हृदय तक का मंदिर आपके लिए है, आप उस पर अपनी रथ यात्रा दौड़ाइए।
3: तो देखिए संजय जी, बहुत सारी चीजें हैं जो इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई हैं, जो हमें जानने की इच्छा है, जानने की जरूरत भी है। इसी से जुड़ी हुई चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो विशाल रथ तैयार किया जाता है जिस पर भगवान बैठकर सवार होकर वहां से निकलते हैं, उस रथ की विशेषता क्या है?
5: इस रथ की विशेषता ये है कि सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ जी का होता है, जिसकी ऊंचाई 62 से 63 फीट तक की होती है, और इसके बाद उससे थोड़ा छोटा रथ बलभद्र जी का होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट के करीब होती है, और सबसे छोटा रथ ऊंचाई में देवी सुभद्रा जी का होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 58 फीट होती है, और तीनों के रंग भी अलग अलग होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ पीला और हरा, इन दो रंगों से मिलाकर बनाया जाता है, वहीं बलभद्र जी के रथ में लाल और नीला रंग या काला रंग होता है, और सुभद्रा जी के रथ में हरा और पीला रंग होता है। तो ये अलग अलग तरह के रथ होंगे, तीनों रथों के नाम भी हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ का नाम, जो देवी सुभद्रा जी हैं उनके रथ का नाम देव दलन है, और भगवान के रथ का भी नाम है, और बलभद्र जी के रथ का भी नाम है। तो तीनों रथों के नाम है, तीनों रथों में 16 पहिए भगवान जगन्नाथ जी के रथ में लगे होते हैं, और बलभद्र जी के रथ में 14 पहिए होते हैं, और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं। इन रथों की खासियत ये होती है कि इन्हें एक ही परिवार के लोग पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं, सदियों से बनाते आ रहे हैं, और इस रथ में ना तो कोई कील लगती है, ना कोई धातु का तार लगता है, इसमें जो भी चीजें हैं वो लकड़ी की खूंटियों से, खूंटियां लगा लगा कर, बल्लियां लगा लगा कर रथों का निर्माण होता है। हर साल नए रथ बनते हैं, फिर बाद में वो रथों के जो अवशेष होते हैं वो लोग अपने श्रद्धा से अपने अपने यहाँ लेकर जाते हैं, और इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो पुरी की रथ यात्रा अपने आप में अनोखी अनूठी है, यही वजह है कि लाखों लोग उस रथ यात्रा के साक्षी बनने के लिए बड़े दंड के दोनों ओर इकट्ठा होते हैं, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां बारिश हो रही है, लोग आनंद की बारिश में भीग रहे हैं, और हर साल अमूमन हर साल ऐसा होता है कि रथ यात्रा के दिन बारिश अवश्य होती है।
3: बिल्कुल सर, इंद्रदेव खुद प्रसन्न होके जो है ये भगवान की जो है वो वर्षा जो है भगवान के लिए करते हैं, ताकि उनका जलाभिषेक किया जा सके, और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।

0: सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, क्या है देश दुनिया और राशियों पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
11: पुरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ। भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उत्साह में झूमते हुए नजर आए भक्त। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। प्रयागराज में भी लगाई जा रही है आस्था की डुबकी।

बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। देश की पहली हाइड्रोजन रेल को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी ट्रेन, इको फ्रेंडली यातायात की दिशा में भारतीय रेल की शुभ पहल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल। अर्जेंटीना की जीत के बाद देश में मना जबरदस्त जश्न, की गई जबरदस्त आतिशबाजी। मेसी की विशाल प्रतिमा के साथ लोगों ने सेल्फी ली।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं और आज हम बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 8:52 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। कर्क संक्रांति क्या होती है? देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। परंतु 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य की कर्क संक्रांति 16 जुलाई को है। सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश विशेष मायने रखता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में जाते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, ध्यान किया जाता है और इसके परिणाम काफी शुभ होते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी इस समय, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सूर्य देव 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव अब मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बृहस्पति पंचम भाव में विद्यमान हैं। इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चूंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जल की राशि में हो रहा है, बृहस्पति भी वहां विद्यमान हैं, इस वजह से जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां इस समय गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। और इस समय लोगों को, सामान्य आदमी को, अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं लाएगा, जल से संबंधित दिक्कतें पूरी दुनिया में फैलेंगी, भूकंप जैसी स्थिति भी बन रही है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। इस समय जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, सर दर्द और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं, हड्डियों में दर्द और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि, कोई भी बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा और जोखिम लेने से बचाव करिएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से फिलहाल बचना आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके तमाम रुके हुए काम इस एक महीने में पूरे हो जाएंगे। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके साथ बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब वो भी जानते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, करियर की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। और साथ में तुला वालों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि, इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का और परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुद अपना भी ध्यान रखें, लेकिन परिवार जनों के स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखिएगा। धनु राशि, इस समय दुर्घटनाओं से बचें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, चोट चपेट या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मकर राशि, अपने कारोबार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपके व्यापार में, आपकी फैमिली लाइफ में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, पैसे का फायदा भी आपको होगा। मीन राशि, इस समय करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर में कोई जोखिम लेंगे या कोई रिस्क लेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। देखिए, साल भर में कुल मिला के 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, लेकिन दो संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति जो लगभग जनवरी के मध्य में आती है और एक कर्क संक्रांति जो लगभग जुलाई के मध्य में आती है, वो सबसे ज्यादा पवित्र अवसर माना जाता है। तो 16 तारीख को, 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य देव के कर्क संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करें, अन्न का, वस्त्र का, जूते छाते का दान करें और जितना संभव हो मंत्र जप करें, ध्यान करें, साधना करें, तो इसके परिणाम बड़े बेहतर होंगे। जिस तरह मकर संक्रांति पर दान करना बड़ा पवित्र माना जाता है, उसी तरह कर्क संक्रांति पर दान करना भी बहुत शुभ होता है। अगर वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, एक पीतल का या सोने का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर धारण करें तो काफी बेहतर होगा। आज हमने बात की सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करिएगा, हर रविवार को गुड़ का या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा अगले एक महीने तक आप करें, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: No.
4: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh, my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
8: Why do these girls forgive him?
9: She has a soft spot for troubled men.
7: Boo bloody who?
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें। ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता मन, निकल पाना बड़ा कठिन होता। गुरु दर्पण है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले, लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आजा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए घुटने बराबर पानी मानकर, पूछो क्या होगा? क्यों आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा। वो सपने जरूर दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो। लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो दो कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। हमने कभी देखा दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता जो होता है। गुरु मुखी होने से बेहतर है, मन मुखी होने से बेहतर है गुरु मुखी हो। और मेरे पागलों, एक बात और हम कहने, जब आप मन मुखी से गुरु मुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगे। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरुमुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा, सेम टू यू, बोल दे चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते हो, और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, पर यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में हैं।

0: चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है, सबके जीवन में यही होता है, कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। और उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है, काय की महात्मा, जो इतने अपने क्रोध को ना जीत पाए वो कैसे महात्मा। कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है, ऐसा साधु तो देखे ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, मैं ना लूं तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा। बोले यही हमने किया। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है, और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जल ऐसा होगा आ जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता, व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई, इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरु मुखी हो जाए। दुर्लभम मानुषम देहे, मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ, पर मनुष्य देह पाकर के सबसे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग में बैठना, क्योंकि प्रायः इस मन की प्रवृत्ति चंचल है, मन बंदर की तरह कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर जाता है, ऐसे ये मन है बंदर की भांति, इसको एक जगह टिका के बैठना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे महापुरुष संत कहते हैं कि तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, मार्केट, बाजार मीन्स मार्केट, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तो मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, दुर्लभम मानुषम देह। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ, मनुष्य तन के बाद बड़े भाग्य मानस तन पावा, पर उसके बाद बोले उससे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग का मिलना कठिन। और तुम्हें सात समुंदर पार इंडोनेशिया में जकार्ता में सत्संग मिले, समझना तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो पृथ्वी। और सत्संग तो होता रहता है, पर उस सत्संग में तुम हो ये बात थोड़ी बड़ी बात है। सत्संग तो होता रहता है, दो लोग भी सत्संग करते रहते हैं, पर उस सत्संग में तुम हो, समझ जाना भगवान तुम पर स्पेशल कृपा बरसा। तो कहते ना स्पेशल प्रेयर कर दीजिए आप, स्पेशल ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो यदि आप उस सत्संग में हैं तो आप पर स्पेशल कृपा है, ये तो पक्का है। 6 मार्च को फिर से कन्या विवाह है बागेश्वर धाम पर,
1: इस बार हम 3,000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे।

0: वो दिन याद करके कि जब हमारी बहन का विवाह हुआ था तब 20,000 रुपया उधार भी मिला था। 20,000। हमारी बहन का विवाह जैसे हुआ था दुनिया के शायद हम सबसे अभागे भाई होंगे। न कोई सजावट न कुछ, बहुत साधारण ऐसे ही नहीं था। हम ये बात बता के सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, यदि तुम भगवान के भरोसे रहोगे भगवान तुम्हारी बाएं पकड़ लेगा,
1: वो कभी तुमको नीचा नहीं देखने देगा। आज जो तुम पर हंस रहे हैं कल उनके मुंह पर तमाचा लगेगा यदि तुम भगवान के भरोसे जियोगे। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं यदि तुम भगवान के प्रति समर्पित रहोगे तो कल वो तुमको मिलने के लिए दर्शन पक्का। भगवान के घर देर है, लेकिन एक बात हम प्रार्थना करें,
0: देखो बुरा ना मानना, हम लोग विदेश में बैठे हैं तो यहां से भारत की वास्तविक स्थिति नहीं समझ सकते, पर जो जानते हैं वो जानते हैं। कभी आप गांव में जाके देखना भारत क्या स्थिति है भारत की। अभी भी हमारा भारत बहुत पिछड़ा है, अभी बढ़ रहा, निरंतर उन्नति भारत कर रहा, भारत का स्वाभिमान निरंतर बढ़ रहा, भारत हर रास्ते से ग्रोथ कर रहा, लेकिन अभी भी लाखों ऐसे अनाथ है जो एक वक्त की रोटी के लिए त्रस्त।
1: पुत्र तो एक वंश का नाम रोशन करता,
0: बेटियां दो दो वंश का नाम रोशन करती, दो दो वंश का।
1: और दुनिया में बहुत दान है, अन्नदान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, रक्त दान है, अंग दान है, पर सबसे बड़ा कन्यादान। इससे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं। भगवान जिसको मौका दे, समझना भगवान ने तुम पर विशेष कृपा की, तुम्हारे घर बेटियां हैं,
0: समझना भगवान तुमसे बहुत प्यार करता,
1: क्योंकि बेटी ममत्व का स्वरूप होती है, मात्र स्वरूपा होती, शक्ति स्वरूपा होती है। एक बार हमने ये बात कई बार बोली है और हमें वो बात बहुत याद आ जाती है कि दो मित्र बैठे हुए थे तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कह रहा था कि हम पर तो भगवान की बहुत कृपा है, बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं।
0: दूसरे के पास बेटा नहीं था, केवल बेटियां थी,
1: तो वो बेचारा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक छोटी सी 6 साल की बच्ची उसी की खड़ी थी, वो बेटी। उसने कहा, अंकल अंकल,
0: गरीबों के घर पर बेटियां पैदा नहीं होती हैं, जिसका दिल अमीर होता है उसके घर बेटियां।
1: जो दान देने की क्षमता रखता है, कन्या दान करने की क्षमता रखता,
0: ऐसे अमीर के घर पर बेटी पैदा होती है, गरीबों के घर पर नहीं होती।
1: बेटियां हो तो बोझ मत समझना, भगवान का वरदान समझना, क्योंकि वो तो दो कुलों का नाम रोशन करती है, दो कुलों का नाम रोशन करती। भारत में आज भी ऐसे बहुत घर हैं, बहुत बेटियां हैं। हम जकार्ता इंडोनेशिया में बैठे समस्त भारतीयों और सनातनियों से, इंडोनेशिया के लोगों से प्रार्थना करें, आप हमें दान दो या ना दो, मंदिरों को दो या ना दो, पर हो सके किसी गरीब की मदद जरूर करें। हम लोग दो तरफ हैं, संसार की तरफ और भगवान की तरफ, जगत की तरफ और जगदीश की तरफ। होना ये चाहिए कि एक तरफ। अब आप कहोगे कि आप बाबा बनाना चाहते,
0: यही थी ना,
1: नहीं बाबा नहीं, हम एक उपाय देना चाहते आपको
0: मेरे पागलों जो घर बैठकर के लाइव देख रहे हैं, अथवा आप,
1: हम आपसे प्रार्थना करेंगे,
0: हमको आपको बाबा नहीं बनाना, हम चाहते हैं आप बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ।
1: हाँ, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ, बीच के बीच रहो, मध्य मार्ग, जो पहले दिन का सूत्र है, मध्य मार्ग, बीच के बीच जीवन बहुत अच्छे से गुजरे तो भगवान के काम के भी रहोगे और समाज के भी काम के रहोगे। यदि केवल भगवान के हो जाओगे तो समाज वाले कहेंगे है पागल, और केवल समाज के हो जाओगे संसार के तो परमात्मा की नजर में कुछ नहीं रहोगे। तो इसका उपाय क्या, जो तुम कर रहे हो उसे अपना कर्म मत मानो,
0: भगवान की पूजा मानो।
1: भगवान की सेवा है, क्या सेवा है, बजा रहे हैं भगवान की सेवा है। जिंदगी है, आप जिस दृष्टि से देखोगे उसी दृष्टि से जीवन दिखाई पड़ेगा। एक बिल्डिंग बना, मंदिर में चार लोग मजदूर होते हैं, चारों की सोच अलग अलग होती है। एक आदमी गया, पूछा क्या बना रहे हो, दूसरा बोला मजदूरी कर रहे हैं, बना धोरी है, मजदूरी कर रहे हैं। तीसरा दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, दिन काट रहे हैं। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। चौथे से पूछा क्या कर रहे हैं,
0: भगवान का घर बना रहे हैं।
1: मंदिर एक है पर देखने की दृष्टि अलग अलग है, ऐसे ही जीवन एक जैसा सबका है पर जीने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई थोड़े से में ही आनंदित हो जाता, कोई बहुत में भी आनंदित नहीं होता है। कुछ लोग भगवान ने जो दिया उसी में वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया कि कम से कम मनुष्य तन तो दिया, कहीं गाय भैंस बने होते फिर क्या होता, भगवान का शुक्रिया है। और कुछ लोग ये पाकर के भी शिकायत ही करते, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। इसलिए दो तरफा मत रहो, एक तरफा, या तो भगवान की तरफ रहो या संसार की। एक बहुत सिद्ध संत श्री नागरी बाबा हुए, वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध थे नागरी बाबा। नागरी बाबा के जीवन में यही घटना हुई कि वो किसी राज्य के मंत्री थे और एक दिन भक्ति जगी तो वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तो उस राज्य में कोई विपदा आई तो वहां के लोग मिलने आए कि आपको राजा ने बुलाया है कि आप दो दिन के लिए केवल आ जाइए, बड़ी विपदा आ गई है और आपके अलावा उस विपदा को कोई सुलझा नहीं सकता। नागरी बाबा ने कहा यदि ऐसी बात है तो कल चलेंगे, आज बरसाने जाएंगे। बरसाने में गए दर्शन करने, नीचे सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, उतरते उतरते जो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू दारनी होती है बोली ए बाबा, जानती तो थी कि पहुंचे महात्मा है पर वहां के ब्रजवासियों का तो अलग ठाट बाट रहता है, ए बाबा एक तरफ हो। तो नीचे उतरते ही मंत्रियों, जो राजा के मंत्री आए थे उनसे बोले भैया आज तो हमको झाड़ू लगाने वाली गुरु मिल गई। बोले क्यों, बोले वही हमसे कह रही थी दो तरफ मत हो एक तरफ हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो। अब भैया अब नहीं हम जाएंगे, अब इसी तरफ हो गए, अब उस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ के हो गए, भगवान के हो गए। आहा, एक तरफ के हो जाए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
2: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
5: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
6: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
9: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
5: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
11: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
5: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
12: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
5: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
13: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
13: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
9: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
16: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
17: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है, तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
5: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
5: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है, और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
19: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
5: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
20: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
7: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
21: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
21: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
5: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
23: जाती है। Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
24: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
25: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
27: पुरी धाम में मंगला आरती के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का शुभारंभ, भव्य रथों पर सवार भगवान के दर्शन के लिए लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उत्साह में झूमते नजर आए भक्त, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, प्रयागराज में भी लगाई जा रही है आस्था की डुबकी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर पूरी शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, ओडिशा पुलिस के साथ साथ NDRF और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। देश की पहली हाइड्रोजन रेल को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जींद सोनीपत रेल खंड पर चलेगी ट्रेन, इको फ्रेंडली यातायात की दिशा में भारतीय रेल की शुभ पहल। दो एक से से इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। आतिशबाजी के साथ मनाया गया जबरदस्त जश्न। अब 19 जुलाई को स्पेन के साथ होगा फाइनल मुकाबला।

0: प्रभात, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आखिरकार वो घड़ी आ गई है, वो शुभ पहर आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। यानी आज से जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और ओडिशा के पुरी में भव्य दिव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसकी तमाम तस्वीरें GNT पर हम सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से, अपने गर्भगृह से निकलकर स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और देखिए, भगवान जगन्नाथ का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो इन दोनों के साथ ही गुंडीचा मंदिर निकलते हैं, जहां वो अपनी मौसी के घर पर प्रस्थान करते हैं, वहां पर व्यंजनों का आनंद उठाते हैं और फिर वापस प्रस्थान करते हैं अपने गर्भगृह। हमारे तमाम संवाददाता पल पल के अपडेट दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भव्य दिव्य जगन्नाथ यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
1: जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथ को देखने के लिए भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है, पूरा विश्व आज इंतजार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे, भगवान आगे जाएंगे, रथ में बैठ करके रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर, उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे। और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं। ये हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ओडिसी डांसर जी। क्या नाम है आपका?
2: जय जगन्नाथ। पूरी से संदीप कुमार सर मेरा नाम।
1: संदीप जी, क्या बोलना चाहेंगे भगवान के सामने? आपको ये नाचना गाना कितना खुशी दे रही है?
2: बोलने के लिए तो हम उनके पास मतलब वर्डलेस, वहाँ से मतलब वो जो क्या हमारा जो डांस स्टेज है ना, ये संसार में एक ही है और पुरी में, और कहाँ से नहीं मिलेगा। जितने भी स्टेज है ना, वहाँ से हमें गाना से डांस करते हैं, वहाँ से गाना कुछ नहीं है, बस भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम से हम लोग डांस करते हैं। हम लोग इतना भाग्यशाली है कि उनका सामने हम डांस करते हैं। बस एक साल में एक बार आएगा, वहाँ से सब कितना सारा डांसर आएगा महाप्रभु को खुश करने के लिए, डांस करने के लिए। वहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम और भक्ति चाहिए बस।
1: आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ ये ओडिसी डांस वाले भी जुड़ रहे थे जो यहाँ भगवान को नचा, भगवान के सामने नाच रहे हैं। हमारे साथ शिवजी वेश लेके हमारे साथ आ रहे हैं जी। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है, मैं ब्रह्मपुर से आए हैं। मेरा बड़ा वाला मंदिर पुजारी है, राधा कृष्ण गोकुल धाम का ब्रह्मपुर का पुजारी है। रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है तो शिव भी आती है कृष्ण को दर्शन करने के लिए, जो जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का महादेवता है, तो इसलिए महादेव भी भगवान कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधारे हैं।
1: आपको कितनी खुशी हो रही है ये वेश में, ये रूप में?
3: बहुत ये खुशी का ज़्यादा बड़ा माहौल है, क्योंकि ये लाख लाख भक्तों के अंदर महाप्रभु के सामने नृत्य करने बहुत आनंद मिलते हैं हमको।
1: भक्त और भगवान आज दोनों खुश हैं, उस तरफ रथ और इस तरफ भगवान, बीच में आप देख रहे हैं नाचना गाना, खुशी, प्रेम, श्रद्धा, आपको हर चीजें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ भारी मात्रा में पुलिस की तैनातगी किया गया है ताकि कुछ ऐसे सुरक्षा में कुछ चूक ना हो, सुरक्षा में कैसे ये रथ यात्रा को कैसे सेफली किया जाएगा, इसलिए हर तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की पहरा आप देख सकते हैं। रथ अब पूरा बनकर तैयार हो चुकी है और रथ में भगवान अब पधार रहे हैं। मैम, कैसे मतलब खुशी कैसे बयान करेंगे, एक तरफ बारिश और एक तरफ आपका ड्यूटी?
4: हाँ, बहुत खुशी मतलब महसूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं और जो मतलब हमारे जगन्नाथ जी के लिए जो प्यार है भगवान के लिए, जो वो तो मतलब दिख रहा है। इतना बारिश में भी लोग इतने दूर दूर से आए हैं सिर्फ उनका एक झलक देखने के लिए। हम मतलब देख रहे हैं, सब श्रद्धालु बहुत खुशी से मतलब इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे और हम सबको मतलब मिलेंगे।
5: आपको दिन भर ड्यूटी एकदम ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर के फिर थोड़ा ड्यूटी करना पड़ता है पेन?
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखिए जो है उनके लिए है और उनके सेवा में मतलब हम लोग नसीब वाले हैं, उनके सेवा करने के लिए हमको सुजग मिला है और हमको मतलब जो भी है हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सी मतलब हमको अच्छा लग रहा है, जैसे हम एक सेवा में नियुक्त है और हम कर रहे हैं सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आप देख रहे थे हमारे साथ सरकारी अधिकारी जुड़ रहे थे, बोल रहे थे कितनी खुशी हो रही है भगवान का ये सेवा करके, कितनी खुशी मिल रही है और दिन भर ये सेवा करेंगे, पूरा दिन भर भगवान के लिए काम करेंगे, आज भगवान के लिए सब समर्पित हैं, पुलिस बल आर्म फोर्सेस बोलिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रशासन सरकार यहाँ सब आज तैयार हैं, भगवान से मिलेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, भगवान के लिए आज पूरा दिन समर्पण है और भगवान के लिए जान समर्पण है, इसलिए आज भगवान के पास आए हैं और भगवान के लिए काम करने का ये मौका मिला है, इस अवसर को वो हाथ से छूटने नहीं देंगे, इसको काम में लगाएंगे और इसमें ही इन लोगों का मुख्य प्राप्ति होगा ये भी विश्वास है। पूरी अजय कुमार, गुड न्यूज़ टुडे।
6: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो हैं वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है, पूरे दिन ये रथ यात्रा चलती है। शाम रात 8 बजे भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों के रथ जो है वापस मंदिर आते हैं। तो ये पूरे दिन की रथ यात्रा में 16 किलोमीटर का रूट है यहाँ से सरसपुर और उसके बाद वापस 16 किलोमीटर, कुल 32 किलोमीटर की ये नगर यात्रा होती है जिसमें ये एक दिन होता है कि भगवान खुद भक्तों के पास पहुँचते हैं और भक्तों के पास पहुँचकर दर्शन देते हैं। बाकी सारे दिनों में हमेशा भक्तों को मंदिर आना होता है। ये एक दिन है आषाढ़ी बीज का, जिस दिन आषाढ़ी तृतीया जो माना जाता है कि इसी दिन भगवान जो हैं वो दर्शन देने खुद मंदिर से बाहर निकलकर लोगों भक्तों के घर तक पहुंचते हैं। तो इस

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।

0: chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: आज का आईना होगी खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: मंगला आरती के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का हुआ शुभारंभ, दर्शन के लिए देशी और विदेशी श्रद्धालुओं का लगा तांता, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। जगन्नाथ यात्रा को लेकर पूरी शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, ओडिशा पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, राजकोट में कला और संस्कृति के रंगों के साथ

धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने भेंट की 137 ग्राम शुद्ध सोने की मुरली, 20 लाख रुपए है इसकी कीमत। देश की पहली हाइड्रोजन रेल को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी ये ट्रेन, इको फ्रेंडली यातायात की दिशा में भारतीय रेल की शुभ पहल। महिला सुरक्षा के लिए बागपत डीएम की नई पहल, अलार्म डिवाइस से होगी सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला कर्मियों को वितरित की डिवाइस।

सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। और देखिए, आज काफी पावन दिन है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि है और अहमदाबाद से पुरी तक शहर शहर भगवान जगन्नाथ की भव्य दिव्य रथ यात्रा निकल रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के प्रमुख धाम पुरी में तो 12वीं-13वीं सदी से रथ यात्रा निकाली जा रही है। जबकि बात अगर अहमदाबाद की करें तो अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 149वां साल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सुबह से ही सामने आ रही हैं। GNT इस पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं और आप तक इस रथ यात्रा की भव्य दिव्य तस्वीरें पहुंचा रहा है। देखिए, रथ यात्रा का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इसके जरिए भगवान आम लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। आज के दिन परंपरा के अनुसार पहले अहमदाबाद में जमालपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर से 16 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू हुई है। वहीं बात अगर ओडिशा के पुरी की करें तो पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराने के बाद कई और अनुष्ठान हो रहे हैं और फिर शाम 4 बजे गुंडीचा मंदिर के लिए महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के रथों की 3 किलोमीटर की यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। लाखों श्रद्धालु रथों को खींचकर पुण्य कमाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली, उदयपुर और दूसरे शहरों में भी आज रथ यात्रा के उत्सव का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालुओं में इसका उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। रथ यात्रा की परंपरा तो देखिए सदियों पुरानी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि महाप्रभु जगन्नाथ का प्राकट्य कैसे हुआ था, रथ यात्रा की परंपरा आखिरकार कैसे शुरू हुई और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं, ये सब आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे। और आज अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी महाप्रभु जगन्नाथ जी की। पुरी में भगवान जगन्नाथ का पावन धाम है, जहां विराजते हैं महाप्रभु। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म स्कंद पुराण के मुताबिक यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वही कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सदियों की एक रात में, जब उज्जैन के राजा इंद्रमुन को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का बैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप, नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारू ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
2: रानी ने परेशान होकर महाराज ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखे तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले, वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था, लेकिन हाथ पांव नहीं था।
1: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
2: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलयुग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं, हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
1: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है, लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचाबाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरु 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांति है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर जैसा वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भगवान यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है और पुरी की पवित्र धरती पर भक्तों का उत्साह देखने लायक है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि ऐसा दुर्लभ अवसर है जब भगवान अपने मंदिर से निकलकर जन जन के द्वार पहुंचते हैं। पर भक्तों के लिए भगवान का रथ और उसकी रस्सियां भी बहुत धार्मिक महत्व रखती हैं। देखिए रथ की रस्सियों की क्या खासियत है, इनसे जुड़े क्या संदेश है और रथों पर प्रतीक के तौर पर घोड़े आखिरकार क्यों बने हुए हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।
4: ये डोर नहीं साधारण, साक्षात नाग का रूप, छुए जो प्रभु की रस्सी को मिटे जन्म के कूप। लकड़ी के तीनों दिव्य रथ पूरी भव्यता के साथ सजकर तैयार हैं और वो पवित्र रस्सियां भी जिनके सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को नगर भ्रमण कराएंगे। ये वही अवसर है जिसका इंतजार केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान का रथ खींचना सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ही सही लेकिन रथ के इस रस्सी को थामने या छूने की इच्छा रखता है। इस तरह रथ खींचना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। ये रस्सी केवल मोटे नारियल रेशों से बनी साधारण डोर नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच जुड़ने वाले विश्वास का प्रतीक मानी जाती है।
5: बहुत अति सुंदर, हम लोग पहले आ गए दर्शन करने, मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
6: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
5: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
6: अच्छा,
5: फर्स्ट टाइम आए।
6: कैसे लग रहा है ये भीड़?
5: बहुत अति सुंदर
7: लग रहा है। हमको यहाँ आकर ऐसा लगा कि बहुत भगवान साक्षात यहाँ दर्शन दे रहे हैं।
4: जो रस्सी भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी है वो शंखचूड़ कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम के असुर ने भगवान के हरण का प्रयास किया था, बाद में उसे मोक्ष मिला और प्रभु की सेवा का वरदान प्राप्त हुआ। उसी स्मृति में भगवान के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ रखा गया। मान्यता है कि इस रस्सी का स्पर्श शुभ फल देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसी तरह दूसरे यानी भगवान बलभद्र के रथ से जुड़ी रस्सी का भी महत्व है। मान्यता है कि वासुकी नाग ने अपने बड़े भाई शेषनाग से सेवा करने की इच्छा जताई थी, तब उन्हें भविष्य में भगवान बलभद्र की सेवा का अवसर मिलने का आशीर्वाद मिला, इसलिए बलभद्र के रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। तीसरे यानी देवी सुभद्रा के रथ से जुड़ी रस्सी भी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वर्ण चूड़ कहलाती है और संसार के मोह, कर्म और आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का संदेश देती है। श्रद्धालु इसे जीवन में सदगति और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक मानते हैं। रस्सियों के साथ रथ पर लगे घोड़े भी धार्मिक महत्व रखते हैं। सभी रथों पर चार चार प्रतीकात्मक घोड़े लगाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के सफेद घोड़े सत्य, शांति, शुभता और ऊर्जा का संदेश देते हैं। बलभद्र के काले घोड़े समय, परिश्रम, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि देवी सुभद्रा के रथ की चार घोड़ियां नारी शक्ति, विजय, आनंद, मोक्ष और अधिक साहस का संदेश देती हैं। यानी इस यात्रा का हर हिस्सा केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश भी है। पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। यहाँ रथ आगे बढ़ते हैं तो साथ चलता है विश्वास। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे पीले और लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसे लाल और काले वस्त्रों से सजाया जाता है। इन तीन रथों की ऊंचाई, पहियों की संख्या और सजावट भी अलग अलग होती है। यही विविधता इस परंपरा को और भी अनूठा बनाती है। हर साल तीनों रथ नई लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इस निर्माण में परंपरा का पूरी तरह पालन किया जाता है। बिना किसी लोहे के ढांचे के विशेष विधि से विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि साल में एक बार भगवान और भक्त का निकट से मिलन होता है। इस यात्रा में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। शायद यही वजह है कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है।
3: फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ की कहानी में श्री मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य।

पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जितना अद्भुत मंदिर का ध्वज है उतना ही बड़ा रहस्य है मंदिर के अंदर लहरों की आवाज का ना सुनाई देना। मंदिर की अधूरी मूर्तियों से जुड़ी कहानी भी भक्तों को हमेशा हैरान करती आई है। इसके साथ ही यहाँ समय समय पर होने वाले अनुष्ठान भी काफी खास है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही अनुष्ठानों के बारे में आज विस्तार से बताते हैं।

0: महाप्रभु जगन्नाथ का ये पावन धाम मंदिर की वास्तुकला जितनी अद्भुत है उतनी ही हैरान करने वाली है यहाँ की सदियों पुरानी गुप्त रस्में। आमतौर पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर या धातु की होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी यानी काष्ठ से बनी है। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र धाम में समय समय पर मूर्तियों को बदलने और उनके श्रृंगार की बेहद अनूठी परंपराएं निभाई जाती है। नवकलेवर यानी जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा। उड़िया भाषा में इसका अर्थ है नया शरीर धारण करना। ये रस्म हर 12 से 15 साल के बीच तब निभाई जाती है जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में अधिक मास यानी 2 आषाढ़ पड़ते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय और गोपनीय हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि ये ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। जब मुख्य पुजारी इस गुप्त रस्म को अंजाम देते हैं, तब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है, साथ ही मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है ताकि कोई भी इस दिव्य ऊर्जा को साक्षात ना देख सके। मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जगन्नाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही है। बनकलगी दिव्य श्रृंगार। नवकलेवर की तरह ही मंदिर में कुछ दिनों के अंतराल पर एक और बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त रस्म निभाई जाती है, जिसे बनकलगी या श्री मुख श्रृंगार कहा जाता है। इस रस्म के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस अनुष्ठान में कुदरत के रंगों का जादू ऐसा बरसता है कि इसके बाद देव प्रतिमाओं का मुख मंडल कस्तूरी केसर सा जगमगाता है, जिसे देख आस्थावानों को लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी रंगत तीनों देवों के मुख पर उतर आई हो। जगन्नाथ धाम में सदियों से हर वर्ष बेहद गोपनीयता और श्रद्धा के साथ दिव्य नवकलेवर और बनकलगी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ आज हो चुका है और मेगा कवरेज जीएनटी पर, पल पल की अपडेट जीएनटी पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ, दर्शन के लिए देसी और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति।

0: एनडीआरएफ और पैरा मिलिट्री के जवान भी तैनात।
1: अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। राजकोट में कला और संस्कृति के रंगों के साथ धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा।
0: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने भेंट की 137 ग्राम शुद्ध सोने की मुरली, 20 लाख रुपए की कीमत।
1: देश के पहले हाइड्रोजन रेल को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलेगी ये ट्रेन, इको फ्रेंडली यातायात की दिशा में भारतीय रेल की शुभ पहल।
0: महिला सुरक्षा के लिए बागपत डीएम की नई पहल, अलार्म डिवाइस से होगी सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला कार्मिकों को वितरित की डिवाइस।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो सुबह से जो तस्वीरें आप लगातार गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को हम इस शो में भी आगे बढ़ाएंगे। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, वही तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, राजकोट तक की तस्वीर भी, और साथ ही हर जगह, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो वो पूरी खबर डिटेल से आपको देंगे।
0: बिल्कुल, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, अभी वहां इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पुरी में पावन रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम माना जाता है। हजारों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हैं और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ गुंजायमान है।
1: ये दिव्य धाम हर भक्त को भक्ति, सेवा, समर्पण का संदेश दे रहा है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही भव्य तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई है, जहां पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु पूरे श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ रथ को खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है और ये दिव्य आयोजन भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और अटूट आस्था का भी अनुपम प्रतीक बनकर हर श्रद्धालु के हृदय को भाव विभोर कर रहा है।
0: चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओडिशा के पुरी में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से भी रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है, वो भी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर हम लगातार दिखा रहे हैं। इस दिन पुरी की बड़दाहा पर सजे विशाल रथ लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां पर जय जगन्नाथ की धूम है। हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां अब से चंद घंटों बाद शाम को निकलेगी। शाम 4 बजे रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है, भगवान रथ पर विराजमान हो चुके हैं।
0: देखिए, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर, बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगी।
1: देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से ये मुख्य मंदिर लौटेंगे। इसके बाद भगवान 2 दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे। रथ यात्रा कुल 9 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा। तो जय भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे।
2: जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथ को देखने के लिए भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है। पूरा विश्व आज इंतजार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे, भगवान आगे जाएंगे। रथ में बैठ करके रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे, जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर, उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे। और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं। ये हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ओडिसी डांसर जी। क्या नाम है आपका?
3: जय जगन्नाथ। पूरी से संदीप कुमार सर मेरा नाम।
2: संदीप जी, क्या बोलना चाहेंगे भगवान के सामने? आपको ये नाचना गाना कितना खुशी दे रही है?
3: बोलने के लिए तो हम उनके पास मतलब वर्डलेस वहाँ से मतलब वो जो क्या हमारा जो डांस स्टेज है ना, ये संसार में एक ही है, और पुरी में, और कहाँ से नहीं मिलेगा। जितने भी स्टेज है ना वहाँ से हमें गाना से डांस करते हैं, वहाँ से गाना कुछ नहीं है, बस भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम से हम लोग डांस करते हैं। हम लोग इतना

0: भाग्यशाली है कि उनका सामने हम डांस करते हैं, बस एक साल में एक बार आएगा, वहाँ से सब कितना सारा डांसर आएगा महाप्रभु को खुश करने के लिए, डांस करने के लिए। वहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम और भक्ति चाहिए बस।
1: आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ ये ओडिसी डांस वाले भी जुड़ रहे थे जो यहाँ भगवान को भगवान के सामने नाच रहे हैं। हमारे साथ शिवजी वेश लेके हमारे साथ आ रहे हैं जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है, मैं ब्रह्मपुर से आए हैं। मेरा बड़ा वाला मंदिर पुजारी है, राधा कृष्ण गोकुल धाम का ब्रह्मपुर का पुजारी है। रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है तो शिव भी आती है कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जो जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का महादेवता है, तो इसलिए महादेव भी भगवान कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं।
1: आपको कितनी खुशी हो रही है ये वेश में, ये रूप में?
2: बहुत ये खुशी का ज़्यादा बड़ा महल है, क्योंकि ये लाख लाख भक्तों के अंदर महाप्रभु के सामने नृत्य करने बहुत आनंद मिलते हैं हमको।
1: भक्त और भगवान आज दोनों खुश हैं, उस तरफ रथ और इस तरफ भगवान, बीच में आप देख रहे हैं नाचना गाना, खुशी प्रेम श्रद्धा आपको हर चीजें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ भारी मात्रा में पुलिस की तैनातगी किया गया है ताकि कुछ ऐसे सुरक्षा में कुछ चूक ना हो, सुरक्षा में कैसे ये रथ यात्रा को कैसे सेफली किया जाएगा, इसलिए हर तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की पहरा आप देख सकते हैं। रथ अब पूरा बनकर तैयार हो चुकी है और रथ में भगवान अब पधार रहे हैं। मैम कैसे मतलब खुशी कैसे बयान करेंगे, एक तरफ बारिश और एक तरफ आपका ड्यूटी?
3: हाँ बहुत खुशी मतलब महसूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं और जो मतलब हमारे जगन्नाथ जी के लिए जो प्यार है भगवान के लिए जो, वो तो मतलब दिख रहा है। इतना बारिश में भी लोग इतने दूर दूर से आए हैं सिर्फ उनका एक झलक देखने के लिए। हम मतलब देख रहे हैं, सब श्रद्धालु बहुत खुशी से मतलब इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे और हम सबको मतलब मिलेंगे।
1: आपको दिन भर ड्यूटी एकदम ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर के थोड़ा ड्यूटी करना पड़ता है पेन?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखिए जो है उनके लिए है और उनके सेवा में मतलब हम लोग नसीब वाले हैं, उनके सेवा करने के लिए हमको सुजग मिला है और हमको मतलब जो भी है हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सी मतलब हमको अच्छा लग रहा है, जैसे हम एक सेवा में नियुक्त है और हम कर रहे हैं सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आप देख रहे थे हमारे साथ सरकारी अधिकारी जुड़ रहे थे, बोल रहे थे कितनी खुशी हो रही है भगवान का ये सेवा करके, कितनी खुशी मिल रही है और दिन भर ये सेवा करेंगे, पूरा दिन भर भगवान के लिए काम करेंगे, आज भगवान के लिए सब समर्पित हैं। पुलिस बल, आर्म फोर्सेस बोलिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रशासन, सरकार, यहाँ सब आज तैयार हैं, भगवान से मिलेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, भगवान के लिए आज पूरा दिन समर्पण है और भगवान के लिए जान समर्पण है, इसलिए आज भगवान के पास आए हैं और भगवान के लिए काम करने का ये मौका मिला है, इस अवसर को वो हाथ से छूटने नहीं देंगे, इसको काम में लगाएंगे और इसमें ही इन लोगों का मुख्य प्राप्ति होगा, ये भी विश्वास है। पूरी अजय कुमार, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए ये तस्वीरें तो आपने देख ली, अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमसे बातचीत करेंगे। राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, और मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिर्बान कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले नोएडा से मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एक बार तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए मनीष, वैसे तो सुबह से आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा ही रहे हैं, अभी किस प्रकार की रौनक है, कहाँ पर मौजूद है वो स्थान भी बता दीजिए जरा।
5: देखिए पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे जगन्नाथ जी की कृपा हुई है नोएडा पे और मौसम बदल गया है। सुबह से कल से बहुत धूप थी, सूर्य देवता एकदम सर पर चमक रहे थे, बाहर निकलना खड़े होना मुश्किल था, लेकिन रथ का काम शुरू हुआ है उसके पहले ही आप देखिए मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, बादल आ चुके हैं, हालांकि बारिश शुरू नहीं हुई है लेकिन मौसम ऐसा कम से कम हो गया है कि आप बाहर आराम से खड़े हो सकते हैं। रथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि रथ पूरी तरह तैयार हो चुका है भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। कुछ ही देर में लगभग 3 बजे का समय दिया गया है जब ये यात्रा शुरू होगी, उसके पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रथ की तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है, सजावट पूरी हो चुकी है और रथ की भी बहुत खास बातें हैं। आपको बता दें कि ये रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है और एक लकड़ी भी

0: बहुत खास तरह की होती है, उसे मलेशिया शॉल बोलते हैं, जिस लकड़ी से इस रथ को तैयार किया जाता है। और पूरा रथ आप जो देख रहे हैं लगभग 16 फीट चौड़ा है, 18 फीट लंबा है, 22 फीट इसकी हाइट है। और टॉप पर जो आप कपड़े की सजावट देख रहे हैं, उस कपड़े को भी बकायदा जगन्नाथपुरी से मंगवाया गया है, उसी जगह से जहां पर रथ यात्रा आज जब शुरू होगी तो पूरा देश उस रथ यात्रा को निहारेगा, उसी जगह से इस पूरे कपड़े को ही मंगवाया गया है। साथ ही साथ हम आपको एक और खास चीज दिखाते हैं कि कैसे इस नोएडा की रथ यात्रा में आपको पुरी की रथ यात्रा का एक एक जो झलकियां हैं वो दिखाई पड़ेंगी। ये रास्ता आप देखिए, ये रास्ता सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी रथ को खींचने के लिए, इस रथ के लिए भी ये रास्ता बहुत मायने रखता है। लेकिन ये रास्ता भी नोएडा दिल्ली एनसीआर में बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि ये रास्ता भी जगन्नाथपुरी से स्पेशली बनकर आया है। उसकी अपनी एक कहानी है, अपना एक गणित है। कहते हैं कि लगभग 3 महीने पहले इस रास्ता को बनाने का ऑर्डर दिया जाता है और 6 से 7 कारीगर मिलकर लगातार इसको तैयार करते हैं। लगभग 20 फीट रास्ता आगे की तरफ होगा दो जगह से, और 20 फीट ही वो पीछे की तरफ भी लगा होगा। किस तरह से इस पूरे रथ को संभाला जाएगा जब वो चल रहा होगा, इसकी पूरी टेक्निक होती है। आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये एक तरह से इस रथ का ब्रेकर है। जैसे ही रथ को कहीं रोकना होगा तो इस ब्रेकर को नीचे गिरा दिया जाएगा और रथ रुक जाएगा। कैसे पूरी गणित के साथ इस रथ को तैयार किया गया है, और उसके साथ साथ रीति रिवाज, नियम, परंपरा, वो सब कुछ यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। जिन परंपराओं के साथ, जिन नियम के साथ, जिन रीति रिवाज के साथ पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। या तो तैयारी पूरी हो चुकी है, 3 बजे का वक्त है, 3 से 3:30 के बीच में यहाँ पर रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग आप यहां पर देख रहे हैं जो लगातार मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, रथ को निहारने के लिए। कई लोगों ने अभी से ही रथ की पूजा करनी शुरू कर दी है। कई लोग आते हैं जो रथ की पूजा करके यहां से आगे निकल जाते हैं। मंदिर समिति के भी कुछ लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तैयारी पूरी हो गई?
1: बिल्कुल पूरी हो गई, पूरी। जय जगन्नाथ। पूरी हो गई, पूरी हो गई,
0: पूरी हो गई। तो अभी कितने बजे यात्रा निकलेगी?
1: 3 से 3:30 के बीच में।
0: इसके पहले राजा जी कब आएंगे, पूजा कब होगी?
2: जी चलिए, ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनीष, और भी ज्यादा जानकारी दीजिएगा। एक बार कोलकाता का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनिर्बान कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिर्बान, रथ यात्रा को लेकर वहां पर कैसा माहौल है, कितने उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा।
3: जी, सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शकों को और आपको बहुत बहुत रथ यात्रा की शुभकामनाएं और जय जगन्नाथ। इस वक्त हम लोग है इस्कॉन की रथ यात्रा में, जहां पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आएंगे और इस रथ यात्रा की छेरा पौरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे। और सामने की तरफ छवि दिखाने को बोल देते हैं कि जैसे पुरी की रथ यात्रा होती है, 4 धामों में से 1 धाम पुरी, वहां पे जो जो नियम माना जाता है वही नियम माना जा रहा है। इस कोलकाता में भी हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ की भव्य जो मूर्ति है वो मूर्ति चढ़ा दी गई है, यानी कि पवंडी जो एक चीज होती है वो पवंडी हो चुकी है कोलकाता में, रथ में चढ़ा दी गई है। अब जो है कि इस्कॉन के सारे जितने भी लोग हैं और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, वो आएंगे और यहाँ पे छेरा पौरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे, और उसके बाद ये शुभ रथ यात्रा शुरू होगी। और इस यात्रा में शामिल होंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, यानी कि हम सामने ही देख सकते हैं ये जो रथ है वो नंदी घोष है, यानी कि जगन्नाथ देव की रथ है। और उसके साथ साथ इस वक्त पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ दोनों दर्प दोलन और तलत ध्वज, यानी कि बलभद्र जी और तथा सुभद्रा जी की जो रथ, वो रथ दिख रही है। लाखों हजारों लोगों की समागम यहाँ पे हुई है। हालांकि पुरी में लाखों लोगों की समागम होती है, लेकिन इस बार जो है कि कोलकाता में ही कम नहीं जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा बाद पास पास की राज्य है, और यहाँ से भी लोग जाते हैं पुरी में। और यहाँ जो लोग जा नहीं पाते हैं वो इस्कॉन की जो भव्य रथ यात्रा है उसकी मजा लेते हैं, वहां से भगवान के आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि भगवान अब जो है कि मंदिर से निकल के बाहर आ चुके हैं और कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होनी जा रही है शहर कोलकाता में।
2: बिल्कुल, चलिए अनिर्बान तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास, आपसे और बातचीत करेंगे। इसी बीच संजय जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय जी, 9 बजे के बुलेटिन में भी मैंने सुना आपको, मैं घर पे बैठी हुई यही बुलेटिन देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आता कि आपसे क्या सवाल पूछूं, लेकिन ये पहली बार है, जैसे आपने ही कहा था ना कि ये अपने आप में अनोखी परंपरा है कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और भक्तों के साथ मिलते हैं। ये अपने आप में अनूठी परंपरा हम सबको और आज की जनरेशंस को क्या संदेश देती है, किस तरह से ले हम इसको?
4: मेरा मानना है कि दर्शन देने के लिए नहीं, वो अपने भक्तों के दर्शन करने, भक्तों से मिलने आते हैं। जितनी आस्था भक्तों की भगवान में है, उतनी ही आस्था भगवान की भक्तों में है। भक्त दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं और भगवान भक्तों के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। और श्री मंदिर से बाहर आने की यह परंपरा, वेदों तक रथ बनाने की परंपरा, ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो इतिहास बताता है या प्रागैतिहास बताता है, वो ये बताता है कि ईसा पूर्व 1000 साल से भी पहले से रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत है। रिकॉर्ड ये बताते हैं, इतिहास ये बताता है कि पहले ये रथ नदी के पार, वहां एक नदी है पुरी में, उस नदी के पार बनते थे और ऐसे 7 तरह के लोग, 7 वर्ग के लोग इसमें रथ बनाने में अपना सहयोग करते थे, जिसमें चित्रकार अलग होते थे, लकड़ी का काम करने वाले अलग, नक्काशी करने वाले अलग, पहिए बनाने वाले अलग। तो चूंकि लकड़ी का ही सारा काम होता है, और इसमें एक खासियत यह भी है कि इस रथ यात्रा में चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी भूमिका रथ बनाने में, रथ चलाने में और रथ की देखभाल करने में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो चारों वर्णों के लोग होते हैं और उसमें 64 तरह के वर्ग थे जो अलग अलग काम संपन्न करते थे। ये अलग बात है कि इतिहास में 12 वर्गों के लोग लुप्त हो गए हैं, यानी उनकी सेवा नहीं है, लेकिन अभी भी कम से कम 57 वर्गों के लोग उसमें से अपनी अपनी सेवा देते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, प्रतिहारी अलग हैं, भोग बनाने वाले अलग हैं, भोग लगाने वाले अलग हैं, अलग अलग पानी भरने वाले अलग हैं, लकड़ी लाने वाले अलग हैं। तो जगन्नाथ जी की सेवा में ये अद्भुत सेवा है। और ऐसा ऐसा देव जो अपने आप में पूरी प्रकृति को बताता है, यानी जगन्नाथ जी हैं वो अग्नि तत्व की का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी शक्ति हैं सुभद्रा जी हैं उनकी बड़ी, उनकी बहन, वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बलराम जी हैं जो खेती के देवता माने जाते हैं, जो हलधर कहे जाते हैं, वो पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये सभी देवता ऐसा प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे कि शरीर को रथ माना गया है और अपने जगन्नाथ जी को यानी आत्मा को रथ का सारथी, और इससे लोग रथ के जरिए, अपने शरीर के जरिए परमात्मा से एकाकार होते हैं। ये रथ यात्रा की का पूरा दर्शन है, पूरा विधान है, जिससे कि लोग इसके जरिए, यानी जब छेरा पहरा होता है इसके लिए कि अगर आपको शरीर के रथ में जगन्नाथ जी को विराजमान करना है, अपने आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाना है, तो आपको सारे विकार साफ करने होंगे, सोने के झाड़ू से साफ करते हैं। और गजपति खुद वहां पर पालकी में बैठकर पहुंचते हैं, आते पालकी में जरूर हैं, लेकिन वो वहां सड़क पर उतरकर बड़दंड यानी महामार्ग है जहां पर जगन्नाथ जी का रथ चलता है, उसमें पहले वो झाड़ू लगाते हैं सोने के झाड़ू से, यानी ये कहते हैं कि माया से आप अपने विकारों को मुक्त कर सकते हैं, यानी माया भी आपके विकारों को मुक्त करने में, विकारों को साफ करने में सक्षम है। जरूरत है कि उसके लिए गजपति की तरह आपको उस झाड़ू को चलाना है। ये यात्रा अपने आप में बहुत सारे संदेश देती है, आप कितने भी आयामों से इस यात्रा को देख सकते हैं, क्योंकि जगत के नाथ रथ पर सवार होते हैं भक्तों से मिलने के लिए, और इसलिए भक्तों से मिलने आते हैं क्योंकि वहां एक समाधि है जो मुगल सैनिक और एक वहां की स्थानीय महिला, उनके प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों के का विवाह हुआ और दोनों से जो संतान हुई, वो संतान उसके अंदर, चूंकि जब वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े, उनकी मां ने कहा, जो हिंदू महिला थी, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी की आराधना करो तो तुम्हें इस ऐसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और वो जब भले चंगे हो गए, उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा में संस्कृत की बजाय ओडिया में पद लिखने शुरू किए, उनके भक्ति में वो नाचते थे, गाते थे, और चूंकि वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे लिहाजा उनको मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। भगवान के दर्शन के लिए वो वृंदावन आए, और वृंदावन से जब वो वापस पुरी आ रहे थे तो बड़ दंडों के पास पहुंचने पर उनका शरीर छूट गया और वहां उनकी समाधि बनी। लेकिन उसके बाद अगली रथ यात्रा जब शुरू हुई तो रथ अचानक उस समाधि के पास रुक गया, रथ मुड़ गया, और लोग कहते हैं कि उसके बाद से हर रथ यात्रा वहां उस अपने प्रिय भक्त कवि की समाधि पर थोड़ी देर को विश्राम लेती है, फिर रथ यात्रा आगे बढ़ती है। तो यानी कुल मिलाकर इससे समझ में आता है कि भगवान अपने भक्त से मिलने रथ पर सवार होकर आते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है।
2: चलिए संजय जी, जो आपने सोने की झाड़ू का जिक्र किया, मेरा वही सवाल राज मिश्रा जी से, क्योंकि राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी देखिए, कई परंपरा है यात्रा को शुरू करने से पहले। आज अहमदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने खुद यात्रा से पहले सोने की झाड़ू लगाई, और जो वहां के सीएम है अहमदाबाद में, उन्होंने रथ खींचने की परंपरा निभाई। तो ये परंपरा यात्रा से पहले कितनी महत्वपूर्ण होती है?
5: देखिए, एक बात सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, और जयंती का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम सब लोगों को स्क्रीन पर कुछ धूम धड़ाका और यहाँ वहां विस्फोट हो गया, उसने उस पर हमला कर दिया, उसने उस पर हमला कर दिया, इस न्यूज के बजाय एक सुंदर न्यूज सुनने को मिलती है जहां भगवान के दर्शन होते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, और उस पर मुझे आपने आमंत्रित किया है। उससे पहले संत श्री संजय जी, क्या नाम है, संजय जी ही नाम है ना, अभी बात कर रहे थे आपके
2: संजय जी स्टूडियो में,
5: संजय जी स्टूडियो में, तो बड़ा सुंदर सुनने को मिल रहा था, और मुझे लगता है जब संजय जी स्टूडियो में होते हैं तो फिर कुछ और बोलने को होता नहीं है। खैर, अब आते हैं आपके विषय पर, परंपरा पर। शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, और भगवान राम ने एक शब्द श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड के अंतर्गत कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके बाद श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुबीर ही भजे भजे जय संत। ये क्या परंपरा क्या है? अभी संजय जी बात कर रहे थे कि राजा आकर के झाड़ू लगाता है। आज अगर भारतीय गृह मंत्री झाड़ू लगा रहे हैं या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ परिस्थिति हो रही है, तो यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को आप बाकी चीजों से नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अहंकार से नीचे उतरना ही पड़ेगा। भगवान यहां से प्राप्ति का विषय नहीं है, भगवान हृदय से प्राप्ति का विषय है। तो जब तक मस्तिष्क से हृदय तक नहीं आओगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भागवत का सबसे पहली बार आयोजन हुआ तो बद्रिका आश्रम में आयोजन नहीं हुआ, वहां से नीचे उतर करके आए और हरिद्वार के अंतर्गत आश्रम भागवत का आयोजन हुआ। तो शास्त्रीय बात, अभी संजय जी शब्द को कह रहे थे कि भगवान बाहर निकल करके आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। एक बड़ा सुंदर चरित आता है भागवत के अंतर्गत, वहां पर विदुर जी जब विद्रानी से कहते हैं कि अब तो मैं महामंत्री नहीं रहा हूं, तो मैं वो विद्रानी कहती कि अब तो आप महामंत्री भी नहीं रहे हैं, भगवान द्वारिका से आ रहे हैं हस्तिनापुर, लेकिन आप कैसे दर्शन करेंगे? बोले मैं दर्शन कर पाऊं ना कर पाऊं ये कोई मतलब नहीं है, उसकी अगर एक दृष्टि मुझ पर पड़ गई ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो इस यात्रा का विषय है, जो संजय जी कह रहे थे कि भगवान स्वयं भक्तों के दर्शन करने जाते हैं और स्वयं भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, तो वास्तविकता में इस विषय के अंतर्गत सच्चाई है। और ये सत्य है कि आप जो हमारी परंपराएं बनी हैं, हमारे शास्त्र की परंपराएं जो बनी हैं, वो हमेशा इस प्रकार की बनी कि स्वच्छता सबसे पहली सीढ़ी है, और भगवान के दर पर अगर पहुंचता है तो चाहे वो राजा है और चाहे वो रंक है, वो एक ही, वो भगवान राम ने कहा था रामायण में कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब मेरे लिए प्रिय हैं और सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। तो अगर राजा आकर के झाड़ू लगाए, राजा को ही प्रजा को यह सीख देनी चाहिए भाई कि ब्रह्म के लिए मैं भी आपके बराबर ही हूं, मैं आपसे ऊपर नहीं हूं। तो उस परंपरा का जो पालन किया जाता है, मेरे दृष्टि से ये बहुत सुंदर परंपरा है। जी
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने इसकी व्याख्या की है। राज जी लौटती हूँ आपके पास फिलहाल, चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये हमारी महाकवरेज लगातार जारी है, आप देखते रहिए जेएनटी।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में दर्द रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ballgame.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: साथ पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ, दर्शन के लिए देशी और विदेशी श्रद्धालुओं का लगा तांता, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, राजकोट में कला और संस्कृति के रंगों के साथ धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। शहर शहर दिख रहा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने भेंट की 137 ग्राम शुद्ध सोने की बांसुरी, 20 लाख रुपए की। हिमाचल में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। महिला सुरक्षा के लिए बागपत डीएम की नई पहल, अलार्म डिवाइस से होगी सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला कार्मिकों को वितरित की डिवाइस।

0: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ के 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा काफी धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बिठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल भी शामिल।
1: बिल्कुल, देखिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट जाएंगे।

0: भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी आज सुबह जब अहमदाबाद की सड़कों पर निकली तो पूरा शहर उत्सव और उल्लास में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो अहमदाबाद की सड़कों पर आस्था और भक्ति का संसार उमड़ पड़ा हो। अहमदाबाद में पूरे रीति रिवाज और रस्मों की अदायगी के साथ भगवान जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच पहुँचे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी जहाँ जहाँ भक्तों के बीच पहुँची, भक्तों का जोश और उत्साह सातवें आसमान पर पहुँच गया। पारंपरिक परिधान में भक्त अपने आराध्य का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी भाव विभोर कर देने वाली है। जब स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकले हैं, एक एक तस्वीर अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के उत्सव की गवाही दे रही है। जहां भक्तों का जन समुद्र उमड़ रहा है, अहमदाबाद में ये भगवान श्री जगन्नाथ की 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा है।
1: रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पूरे रास्ते में जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की अगर आप लंबाई की भी बात करें तो 3 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है। पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है वो अखाड़े, फिर भजन मंडली और फिर आखिर में 100 टेबलो और उसके बाद फिर भगवान के रथ होते हैं 3। तो 3 किलोमीटर की जो है ये पूरी लंबी रथ यात्रा जो है पूरे रूट पे चलती है। तो लोग दर्शन के लिए निकलते हैं तो हाथी से शुरुआत होती है और आखिरी में जो है भगवान के रथ होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल। इसी तरह लगभग 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं कहीं पर भी।
0: ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नगर भ्रमण पे निकली तो परंपरा के मुताबिक गुजरात के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद रस्म अदा की। पाहिंद विधि में सोने की झाड़ू से रथ के सामने रास्ता साफ करने की रस्म निभाई जाती है। लिहाजा रस्म के मुताबिक सीएम रथ के आगे सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते नजर आए।
1: एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है विशेष प्रसाद भेजते हैं और जिस दिन रथ यात्रा निकलनी होती है उस दिन सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो परिवार के साथ मंगला आरती करने पहुंचते हैं। जब वो गृहमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री नहीं थे या गुजरात के भी गृहमंत्री नहीं थे तब से वो परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों नेताओं का पुराना नाता इस मंदिर के साथ रहा है और इसीलिए जो है दोनों नेता इस रथ यात्रा में इस तरह जो है शामिल होते हैं। खुद केंद्रीय गृहमंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री प्रसाद भेजकर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं।
0: अहमदाबाद की रथ यात्रा जमालपुर स्थित मंदिर से निकलकर सरसपुर पहुंचती है और शाम को वहीं से वापस मंदिर लौटती है। एक तरफ से यात्रा 16 किलोमीटर की होती है। रथ यात्रा रूट के दौरान 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, जिनमें अहमदाबाद पुलिस के साथ पैरामिलिट्री भी तैनात है। पूरे रूट में 100 से भी ज्यादा ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है।
1: देखिए भगवान जो है वो जमालपुर से निकल के सरसपुर जो उनका ननिहाल कहा जाता है वहाँ पे जो है वो रुकते हैं। दोपहर में भोजन वहाँ पे होता है, दोपहर का प्रसाद उनको वहाँ चढ़ाया जाता है और रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, जो रथ खींचने वाले जो खलासी हैं उनके साथ जो भी भक्त हैं, करीब 2 से 4 लाख भक्त जो हैं वहाँ पे भोजन लेते हैं सरसपुर में। तो वहाँ पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का विश्राम होता है और उसके बाद दोपहर में जो है वो रथ यात्रा मंदिर की तरफ लौटती है। तो कुल 16 किलोमीटर मंदिर से सरसपुर तक का, सरसपुर में विश्राम और उसके बाद वापस सरसपुर से मंदिर तक का कुल 32 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो जो है निकलती।
0: भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल है। और अब आस्था भक्ति के रंग में रंगे इस माहौल में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अपनी मंजिल की ओर चल रही है। नगर भ्रमण के बाद अहमदाबाद में आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रात करीब 8:30 बजे वापस मुख्य मंदिर में लौट आएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं, उनके पास भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको पुरी लिए चलते हैं, पुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर आस्था की तस्वीरें कैसी नजर आ रही है पुरी में? अजय नाथ अजय, आपको आवाज आ रही है? चलिए अजय का रुक करेंगे, कोलकाता का रुक कर लेते हैं। अनिर्बान कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिर्बान, जरा कोलकाता की तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दीजिए, कैसी रौनक इस वक्त वहां पर है और रथ यात्रा कहां तक पहुंची है?
3: जी देखिए, शहर कोलकाता में इस्कॉन की रथ निकलती है और इस वक्त जो है कि अपेक्षा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो आएंगे यहाँ पे और रथ यात्रा की छेरा पौरा होगा, यानी कि सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाई जाएगी और उसके बाद रथ निकाला जाएगा। सामने की तरफ तस्वीरें दिखा दे, मेरे कैमरा पर्सन तापस बैरी को कहूंगा कि इस वक्त जो है कि ये जो नंदी घोष रथ है, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ है, पुराणों में क्या कहा जाता है कि यही जो रथ है वो स्पेशल जो है कि काठों से बनाया जाता है और यही जो रथ है अपेक्षा में है कि और कुछ ही देर की अपेक्षा है जो इस्कॉन की जो मंदिर है उस इस्कॉन की मंदिर के सामने से ये रथ निकलेगी और अपनी मौसीमा के घर तक, यानी कि मौसीमा मंदिर तक, ये गुंडीचा मंदिर जहां पे बनाई गई है वहां तक ये रथ जाएगी। हालांकि पुरी की जो पुराणों में कथित जो जितने भी रस्में हैं वो रस्में यहाँ कोलकाता की इस्कॉन में भी मनाया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़े हिस्सों में लोग अपने भाग लेते हैं ये रथ यात्रा में, क्योंकि हम अभी भी हजारों लोगों की जो है कि भीड़ देख सकते हैं रस्तों में खड़े हैं कि कुछ देर में जैसे रथ निकलेगा, जैसे पहिए बहना शुरू करेंगे, बस वैसे ही जो है कि लोग आ जाएंगे रथ को खींचने के लिए। तो यही बात है कि इस वक्त नंदी घोष के साथ साथ द्वर्प द्वलन और तलध्वज, यानी कि भगवान श्री बलभद्र देव और सुभद्रा देवी,
2: एक बार नोएडा भी लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। नोएडा से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से आस्था की ब्यार वहां पर बह रही है ये दिखाइएगा और ये भी बताइएगा मनीष, अभी इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, वहां पर कितने श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं?
4: बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त है यहाँ से रथ यात्रा शुरू होने का, उसके पहले राजा जी को लाया जाता है, वो स्वागत करते हैं, तमाम चीजें होनी है, लेकिन उसके पहले महाप्रसाद का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, यानी कि एक तरह का भंडारा होता है, खास तरह का प्रसाद है जो कि आज के लिए तैयार किया जाता है, उसका जो स्वाद है, जो आशीर्वाद है, वो तमाम लोग आपको लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद से फिर राजा जी आएंगे और तमाम तरह की जो पूजा पाठ है वो शुरू हो जाएगी। 3 बजे का वक्त रखा गया है और सबसे अच्छी बात फिलहाल यही है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है रथ यात्रा का, मौसम में बहुत पॉजिटिव बदलाव देखे जा रहे हैं। धूप उमस का सामना लंबे टाइम से यहाँ पर लोग कर रहे थे, लेकिन अभी उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कहाँ से आया?
5: एक मूर्ति, सेक्टर 16B।
4: कितना, अब तो बहुत टाइम बहुत करीब आ गया रथ यात्रा का, कितना एक्साइटेड आप लोग हैं?
5: बिल्कुल, भगवान के लिए तो हम हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है।
2: बिल्कुल, चलिए अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये श्रद्धालुओं का भाव ही है कि यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से वो यहाँ खींचे चले आते हैं। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब हमने ब्रेक लिया ना तो संजय जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन संजय जी जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझे बताया वो यही कि भगवान की आंखें ना हमेशा खुली रहती हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति को जब हम देखते हैं, सुभद्रा जी को हम देखते हैं, बलभद्र जी को हम देखते हैं, तो उनके नेत्रों में ना पलके नहीं हैं, ये क्यों है ऐसा?
6: एक तो जगन्नाथ जी के हाथ हैं वो आधे बने हुए हैं और आंखों पे पलके नहीं हैं, नेत्र विस्फारित हैं, बिल्कुल ऐसे खुली हुई आंखें हैं और ऐसा लगता है एक मासूमियत, एक चंचलता उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती है, लेकिन वो गंभीर किस्म के भगवान है। इसमें इसलिए एक कथा आती है जिसमें कहते हैं कि जब द्वारका में भगवान रह रहे थे और उनके सारी रानियां थी, तो उस समय नारद जी आए और नारद जी ने रुक्मणी जी, रोहिणी जी और बाकी सभी रानियों को, सत्यभामा और रुक्मणी जी को ये कहा कि भगवान के गोपियों का जो की जो रास लीला थी उसके बारे में आप रोहिणी जी से पूछो। तो रोहिणी जी जो बलराम जी की माता हैं, उनसे पटरानियों ने सवाल किए कि माता जी आप हमें भगवान की रासलीला के बारे में बताओ, हमें पता नहीं है लेकिन हमने सुना बहुत है। और जब रोहिणी जी ने रासलीला का जिक्र किया, रास का जिक्र किया, तो उसी समय बलराम जी, सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ तीनों वहां कक्ष के बाहर थे। उन्होंने अंदर जो भी लीलाओं का वर्णन चल रहा था वो सुनकर ये ऐसे करुणा से विगलित हुए और उनके शरीर गलने लग गए आनंद के अतिरेक से। और जब वो शरीर आधे करीब गल चुके, उनकी पलकें, उनके हाथ सब गलने लग गए, और उस समय फिर नारद जी ने कहा कि आपकी इस दशा का जिम्मेदार मैं हूं, मैंने ही इन लोगों को बताया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, तुम्हारी वजह से हमने ब्रज की लीलाओं का श्रवण किया है। तो इस पर नारद जी ने कहा कि आप इसी रूप में दर्शन दें सारे लोगों को जिस रूप में मुझे दर्शन हुए हैं। इसलिए भगवान के हाथ पैर विगलित हो गए हैं उस आनंद और माधुर्य के, उसे देखकर आम दर्शक, आम श्रद्धालु वो भी ऐसे आनंद से विगलित होते हैं। भगवान की पलकें इसलिए नहीं है कि जगत के नाथ अगर नेत्र बंद कर लेंगे तो पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए 24 घंटे 12 महीने 36 दिन 8 याम भगवान की आंखें खुली रहती हैं और वो इसी रूप में दर्शन देते हैं और जग पर नियंत्रण रखते हैं।
2: चलिए ठीक है, संजय जी, राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो पूरी नहीं जा सकते, जो इस यात्रा में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो घर बैठे बैठे क्या करें कि जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए, और हम क्या करें?
7: आप लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग पूरा सुबह से शाम तक खुद तो दर्शन कर ही रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से जो समाज दर्शन कर रहा है, जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग पुण्य को प्राप्त ही कर रहे हैं। अगर मेरा छोटा सा आंसर हो ना, जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, भागवत का श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद से, इस प्रकार का एक श्लोक आता है कि दर्शन कर लेना कहीं से, श्रवण कर लेना, स्मरण कर लेने से भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो वहां जाकर के प्राप्त होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर मैं छोटा सा आंसर आपको दूं तो मैं कह दूंगा कि घर में जीएनटी लगा करके छोड़ दीजिए और आप समझ लीजिए कि आप जगन्नाथपुरी के अंदर ही हैं, क्योंकि आप हर दृश्य को देख रहे होंगे। शारीरिक रूप से बेशक आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन मानसिक रूप से क्योंकि आप वहां पर होंगे। और सत्य है कि शारीरिक रूप से पहुंचने से फल नहीं प्राप्त होता है, फल अगर प्राप्त होने का कोई विषय है तो मानसिक रूप से प्राप्त होता है। मैं पहले दोबारा उस चौपाई पर जाऊं जहां भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन, जस्ट मन भगवान को प्राप्त कर सकता है, शरीर कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर मैं, मेरी मेरी ये राय है कि जीएनटी घर में लाकर छोड़ दीजिए और जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते रहिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा।
2: बिल्कुल, फिजिकली अगर आप नहीं भी पहुंच पाते, आप मन के माध्यम से और सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे तमाम सहयोगियों का, मनीष, अनिर्बान और अजय, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में हो रही जगन्नाथ यात्रा पर शानदार सैंड आर्ट बनाया।

0: और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में दर्द रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
4: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लंच टाइम। देश भर में आस और भक्ति के रंग लगातार आपको सुबह से हम दिखा ही रहे हैं। शहर शहर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा उत्साह उल्लास के साथ लगातार निकाली जा रही है। दिल्ली से अहमदाबाद और जगन्नाथ नगरी पुरी तक भक्ति भाव का अद्भुत संगम आप सबको हम दिखा रहे हैं।
1: कहीं हजारों श्रद्धालु प्रभु का रथ खींच रहे हैं तो कहीं पर जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भव्य दिव्य और अलौकिक रथ यात्रा भारत की सनातन परंपरा था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संदेश दे रही है।
0: अब देखिए मौसम की दुश्वारियों के बीच में भी अनंत आस्था का यह सफर यूं ही जारी है। जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं जगन्नाथ के जगत के नाथ के दर्शन करने के लिए।
1: और ये तस्वीरें देखिए आप, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी यहाँ पर तस्वीर उकेरी है और अलग अलग तस्वीरें लगातार रथ यात्रा से पहले सामने आ रही हैं। जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों से भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर जुटे हुए हैं।
0: तो देखिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। पुरी में हो रही जगन्नाथ रथ यात्रा पर शानदार सैंड आर्ट उन्होंने तैयार किया है। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोक संस्कृति के रंग आपको नजर आएंगे। यात्रा के रंग उत्साह को बेहद अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इस कलाकृति के माध्यम से दर्शाया है।

0: साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
1: और चलिए, जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े हुए तमाम रंग जीएनटी पर आपको पूरा दिन दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: मंगला आरती के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ। दर्शन के लिए देशी और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। राजकोट में कला और संस्कृति के रंगों के साथ धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। शहर शहर दिख रहा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। पहाड़ों में सावन का आगाज, बद्रीनाथ धाम के आदि केदार सहित शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज। झारखंड के जिमनास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने रचा इतिहास, चोटिल होने के बावजूद ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिमनास्टिक चैंपियनशिप में जीता गोल्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: देश भर में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ओडिशा के पुरी में उत्सव का माहौल। पुरी में शाम 4 बजे से शुरू हो गई रथ यात्रा, सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती, पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह, बारिश के बीच देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति, ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। रथ यात्रा से पहले रथों का हुआ अनुष्ठान, पहांडी अनुष्ठान के साथ रथों तक ले जाए गए भगवान। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर करेंगे नगर भ्रमण, गाजे बाजे के साथ होगी यात्रा की अगुवाई। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर मंदिर से जाएंगे अपनी मौसी के घर गुंडीचा, रथ को खींचने के लिए उमड़ेगा आस्था का सैलाब। रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाएगी छेरा पहरा की रस्म, इसमें भगवान का रथ जिन रास्तों से गुजरता है उन्हें पुरी के महाराज सोने के झाड़ू से करते हैं शुभ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अब ऑनलाइन दान कर सकेंगे श्रद्धालु, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने डिजिटल हुंडी का उद्घाटन किया। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह, बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज, कृष्ण के वेश में किया नृत्य। पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। ओडिशा के पुरी बीच पर भी दिखी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वानगी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई मनमोहन आकृति। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स के साथ कई जगह पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एम्बुलेंस तैनात। 200 बेड वाला अस्थायी हॉस्पिटल भी तैयार। पुरी में राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गायक सोनू निगम से मुलाकात की। भगवान जगन्नाथ रथ उत्सव में शामिल हुए विदेशी भक्त, जमकर लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। पुरी में सीसीटीवी से हो रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। भीड़ मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं पुलिस प्रशासन। पुरी में 13,000 सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा। 10 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां भी शामिल, एनएसजी स्नाइपर्स भी तैनात। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक। 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती। अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम संघवी भी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से साफ किया रास्ता। विधि विधान से पूजन के बाद निकली रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार। दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु। भगवान की रथ यात्रा में शामिल है 18 हाथी, 101 ट्रक। कुल 16 किलोमीटर की यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कलाकारों ने बांधा समा। ढोल ताशे की मंगल ध्वनि से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। आस्था के साथ भक्ति में झूमे भक्त। दोपहर 1 बजे सरसपुर पहुंचेगी रथ यात्रा। रात 8 बजे फिर से मंदिर में करेंगे प्रस्थान। अहमदाबाद रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कंट्रोल रूम में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। रथ यात्रा रूट पर तैनात किए गए 30,000 पुलिस के जवान, 100 से ज्यादा ड्रोन से निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की 149वीं रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष प्रसाद भेजा। गुजरात के सीएम थे तब से भेज रहे हैं प्रसाद। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भेजे गए प्रसाद में आम, जामुन, ककड़ी, मौसमी फल, मूंग और मेवे शामिल हैं। गुजरात के राजकोट में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। राजकोट की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। रथ खींचने को आतुर दिखे श्रद्धालु। राजकोट की रथ यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में दिखे कलाकार, जमकर किया नृत्य। We'll be right back. आनंद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की धूम देखने को मिली। स्कूली बच्चों ने निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ उत्सव को लेकर बच्चों में दिखा खासा उत्साह, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की वेशभूषा में नजर आए बच्चे, जमकर लगाए जयकारे। नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ उत्सव की रौनक, भव्य यात्रा निकाली गई। रथ उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, सुबह से ही मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में हुई दिव्य मंगला आरती, पुजारियों ने विधि विधान से उतारी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की आरती। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। प्रयागराज में जगन्नाथ रथ उत्सव पर श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी, विधि विधान से पूजा पाठ किया। काशी में भगवान जगन्नाथ की डोली यात्रा उत्सव की रौनक, डमरू और ध्वज लेकर शामिल हुए श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज से 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू। 300 साल पुराना रथ यात्रा मेला त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर देशवासियों को बधाई दी, लिखा महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से हमारे देश और देशवासियों की सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभकामनाएं दी, लिखा श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अमित शाह ने देशवासियों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं दी, लिखा जय जगन्नाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी, लिखा सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता का वास हो यही प्रार्थना है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

0: पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से मुलाकात की, शंकराचार्य का आशीर्वाद दिया। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने से निर्मित बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी कीमत। सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में दर्द रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां पर जय जगन्नाथ की धूम है। हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां अब से चंद घंटों के बाद शाम को निकलेगी। आपको बता दें रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। भगवान रथ पर विराजमान हो चुके हैं। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है, सनातन का पर्व माना जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन भव्य रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें शाम 4 बजे ये यात्रा शुरू होने जा रही है, इससे पहले विधि विधान जारी है। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर सवार होंगे, जबकि भगवान बलभद्र ताल ध्वज पर और उनकी बहन सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होंगे। देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, यहां पर लौटेंगे। इसके बाद भगवान 2 दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे। रथ यात्रा कुल 9 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होने वाला है, जब भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाने वाले हैं। अभी अनुष्ठान जारी है, पूरा दिन आज अनुष्ठान जारी रहने वाला है और तादाद देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। रथ यात्रा 4 बजे से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें 3 भव्य रथ तैयार किए गए हैं। ये विशाल लकड़ी के रथ होते हैं जिन्हें विशाल रूप से तैयार किया जाता है, भव्य तरीके से सजाया जाता है और यहाँ 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है।

0: तो आज दिन भर हम आपको जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी तमाम तस्वीरें जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: मंगला आरती के साथ पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ। दर्शन के लिए देशी और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। राजकोट में कला और संस्कृति के रंगों के साथ धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा। शहर दिख रहा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव। आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। पहाड़ों में सावन का आगाज, बद्रीनाथ धाम के आदि केदार सहित शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज। झारखंड के जिमनास्ट पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने रचा इतिहास। चोटिल होने के बावजूद ऑल इंडिया ओपन नेशनल जिमनास्टिक चैंपियनशिप में जीता गोल्ड।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
5: आज के दिन तो हमारे पूरे देश में भक्ति आस्था और उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज तो है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, जहां वो अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों में सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस यात्रा में शामिल होना या फिर भगवान के दर्शन करना ही आपके जीवन में बहुत सारा सुख लेकर आता है। तो आज तो इस पवित्र मौके पर हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अच्छी और बड़ी खबर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस पावन सफर की हेडलाइंस के साथ।
6: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, सूरज और ईशा के रिश्तों में बहेंगे आंसू। शुरू होगा कंपटीशन अनुपमा वर्सेस प्रेम का। मन्नत की कोशिशों पर भड़केगा अभिमन्यु यानी विक्रांत।

0: संगम की माँ मारेगी संगम को तमाचे। बनेगी विक्रांत महिमा की जोड़ी, नए शो में आएंगे साथ साथ नजर।
1: कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू समन है।
0: राघव जुएल के जबरा फैंस, दिखेगा राघव के डांस का टशन। और पति अनाड़ी के निशांत यानी कि अर्जुन सिंह शेखावत संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

जिंदगी की इस यात्रा में हंसना और मुस्कुराना भी बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज हम इस पावन मौके पर हमारी ईशा से, जो कभी कभी मुस्कुराना भूल जाती हैं। अब वो अलग बात है कि कभी कभी वो फंस जाती हैं ऐसी सिचुएशंस में जो लेकर आती हैं उनके माथे पर शिकन। तो क्या कुछ हो रहा है सूरज और ईशा की इस कहानी में, आज चलिए पता कर आते हैं। लेट्स चेक इट आउट।

भाई बहन का प्यारा सा बंधन। ब्लूटूथ और मीका के लिए परेशान होते सूरज और ईशा। टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में इन

वहीं दूसरी ओर ताई माँ भी इमोशनल हो रही हैं। ऐसे में ईशा पहुंच गई है उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि वो खाना जो नहीं खा रहे। ऐसे में ना सिर्फ ईशा उन्हें समझाती है बल्कि अपने हाथों से उन्हें खाना भी खिलाती है, और ऐसे में ताई माँ भी ईशा को अपने हाथों से खाना खिला रही है। वैसे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा और सूरज दोनों को ही एक ही समय में लग जाता है ठसा, जिसके चलते दोनों ही बेचैन हो जाते हैं।

0: सूरज यही चाहता है कि काव्या के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और वो अकेले जीना आसान नहीं होगा, तो इसलिए कोई लड़का ढूंढ के उसकी अगर शादी करवा देंगे तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। तो सूरज का यही टारगेट है एंड कहीं ना कहीं वो दोनों लड़के जो आए थे चले गए क्योंकि वो रिश्ता हो नहीं पाया, तो शायद से वो अपने मन में बहुत सारे सवाल लेकर खड़ी है, सोच रही है। तो सूरज जाता है, बोलता है कि क्योंकि घर में सब लोग खाना पीना खाए नहीं है क्योंकि ऐसा सब हो गया है, तमाशा हो गया है बहुत बड़ा। तो सूरज जाता है काव्या के पास और वो यही पूछता है कि सब ठीक है ना, तो वो कुछ बोलती नहीं है, बोलती है हाँ ठीक हूँ, एंड खाना खाने के लिए पूछता है तो खाने के लिए मना करती है। तो सूरज वहीं पे उसे बताता है कि तेरा भाई है, तेरी जिंदगी में बहुत जल्द खुशियाँ भर देगा, ये वादा है मेरा। फिर वहाँ पे खाना खिलाने जाता है, फिर वो बोलती है पहले आप खाइए, फिर ये एक बाइट लेता है और उसमें तीखी मिर्ची रहती है तो तीखा लग जाता है इसे बहुत ज़्यादा, और ये वहाँ से भागता है और किचन में पहुँचता है। ईशा जी भी एक तरफ खाना खाते रहते हैं, उन्हें भी तीखी लग जाती है सब्ज़ी, एंड वो भी शक्कर के डब्बे पर हाथ डालती हैं और सूरज भी शक्कर के डब्बे पर हाथ डालता है और दोनों में तूतू मैमें होता है एंड शक्कर गिर जाती है। तो ईशा जी वही कहती हैं कि मतलब तुम्हारी ये प्रॉब्लम ही है, मतलब ना कोई भी चीज़ ढंग से नहीं करते, पूरा शक्कर गिरा दिए, ये कर दिए। तो दोनों का क्यूट बैंटर है
1: भाई। अब तो सूरज और ईशा के घर में बहस हमेशा छिड़ी रहती है और इसी बहस के चलते घर के बच्चों मिहिका और ब्लूटूथ ने फैसला किया है घर छोड़कर जाने का। ऐसे में दोनों ने मिलकर अपने पापा के लिए लेटर लिख दिया। बस फिर क्या, जैसे ही ये बात पूरन को पता चली तो पूरन ने अपनी बेचैनी दिखा दी और सच बताया। ऐसे में सूरज और ईशा दोनों परेशान हो रहे हैं कि आखिर मिहिका और ब्लूटूथ गए तो गए कहाँ।

0: बच्चे कहाँ गए? कोई कुछ बताएगा मुझे? कोई कोई बताएगा?
1: बंटी, बच्चों को कुछ पता चला?
2: नहीं सर, अभी तक नहीं पता।
1: शहर का हर बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पूरा शहर छान मार, लेकिन किसी भी हाल में मुझे बच्चों की जानकारी चाहिए, समझा?
0: सूरज, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना, तो तू होगा शहर का बहुत बड़ा दादा भाई, और तुम होगी बहुत बड़ी अफसर। दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। क्या मेरी बात?
3: फैमिली का भी चल रहा है कि फैमिली में की प्रॉब्लम क्या है, लाइक ब्लूटूथ और मिहिका, ये दोनों आई थिंक लापता हैं, घर से गायब हो चुके हैं। एक चिट्ठी लिख कर गए थे कि आप दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, तो हम भगवान जी को जाके मनाएंगे, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स झगड़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ लेटर में लिखे रहते हैं। एंड पूरी फैमिली फिर पैनिक हो जाती है उन दोनों को ढूंढने के लिए, दैट्स ऑल। सूरज ईशा जो हैं, ये दोनों सूरज ईशा ही हैं, पहले वाले घर में पति पत्नी ही हैं, फैमिली के लिए फैमिली मेंबर ही हैं। लेकिन जब सूरज के सामने आईपीएस ईशा सिंह आएंगी, तो सूरज खुद दादा भाई बनकर खड़ा रहेगा, ये पहले भी बोल चुका है। तो अभी दोनों सूरज और ईशा बनकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अपने पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं।
4: अब देखना होगा मिहिका और ब्लूटूथ को ढूंढने के लिए क्या सूरज और ईशा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान

0: जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हमें हर सफर में विश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। और अनुपमा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, जब भी वो करती हैं वो किसी चैलेंज को पार, वैसे ही हो जाता है एक नई सफर की शुरुआत। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।
1: Let's not go.
2: अनुपमा एंड गैंग का डांस दर्शन, सास और दामाद की जंग, अनुपमा वर्सेस प्रेम, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में शुरू हो चुकी है शेफ्स की जंग। एक तरफ अनुपमा है तो दूसरी तरफ प्रेम है। लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि बिहाइंड द सीन नजारे, जहां अनुपमा और उसकी लेडीज गैंग बन गई है मास्टर शेफ और बना रही है ये फन रील। भाई बात करें सीरियल की तो यहाँ पर ये कंपटीशन शुरू हो चुका है, जहाँ पर अनुपमा एक तरफ है तो दूसरी तरफ है उसके दामाद जी प्रेम, और इन दोनों को ही ये कंपटीशन जीतना है। लेकिन इसके लिए इन्हें एक दूसरे से जंग लड़नी होगी खाना बनाने की।
3: इंडिया देखेगा सास और दामाद के झगड़ा, यानी कि सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग। तालियां। सुप्रीम, आप जैसे टैलेंटेड और यंग शेफ इस कंपटीशन में क्या प्रूव करने आए हैं?
4: मैं यहाँ प्रूव करने नहीं, जीतने आया।
3: तो आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे?
4: उम्मीद कमजोर को होती है, ताकतवर को यकीन होता है, और मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा।
3: और आप अपने ही दामाद को चुनौती दे रही है, कैसा लग रहा है?
5: मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये माँ अपनी ही बेटी और अपने ही दामाद के सामने कॉम्पिटिशन में खड़ी होगी। लेकिन अगर कान्हा जी ने हमें आमने सामने खड़ा किया है, और अगर मेरे बच्चे यही चाहते हैं तो यही सही। अगर ये यहां पर जीतने आए हैं तो मैं भी यहां पर जीतने ही आई हूं, इस कॉम्पिटिशन को जीतकर। मैं अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहती हूँ।
2: तो भाई ऐसे में इन शेफ्स को मिल चुका है इनका पहला टास्क। लेकिन यहाँ पर भी प्रेम की तानेबाजी जारी है, वो कर रहा है अनुपमा और उसकी टीम को डिमोरलाइज करने की कोशिश। लेकिन अनुपमा वो हार नहीं मानेगी, चाहे सामने कोई भी टास्क हो, वो हर टास्क बखूबी करने वाली है।
6: अनुपमा जी, अगर किंजल के साथ प्रेरणा जाए तो, क्योंकि कैफे की ग्रोसरी शॉपिंग तो सारी वही करती है।
5: हाँ ठीक है, तू ईशानी मैं और सर हम लोग चारों यहाँ पर रहकर प्लानिंग करेंगे, तुम दोनों सारा सामान ले आना। हाँ
7: माँ आप नहीं जा सकती, आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होगा। श्रुति जी हाँ? आप राई के साथ जाइए, एक एक चीज लेकर आना, मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कोई गलती मत करना। ऑल राइट, आप लोगों की गलती की वजह से मैं हार नहीं सकता।
3: ओके सो टाइम्स अप, सो कैप्टन्स अब अपना फैसला दिखाएं, जो दो मेंबर्स पेंट्री में जाने वाले हैं उन्हें आगे भेजिए। अब हमारे जजेस चिट निकालकर टीम्स को अपनी डिशेस के बारे में बताएंगे। डिश हिंदुस्तानी भी हो सकती है या फिरंगी भी, मगर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। टीम्स डिश का नाम सुनने के बाद आप अपने कैप्टन से मसाले या सामग्री के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाएंगे। कैप्टन्स अपने डिशेस की तैयारी में लगेंगे और यहां पर खड़े मेंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें पेंट्री में से क्या सामान लाना है। जजेस प्लीज डिश अनाउंस कीजिए।
8: टीम अनुज कैफे, आप बना रहे हैं लहसुनी पनीर मखनी और लच्छा पराठा।
9: राही तुम्हें काम करना, तुम पनीर उठा लेना और मैं वो रेडीमेड पराठा होता ना वो उठा लूंगी।
10: सुप प्रेम को पराठे खुद बनाने होंगे, आप पिक नहीं कर सकती है।
9: तो मैं काम करती हूँ, मैं पनीर उठा लूंगी। ठीक है तुम देख लेना उसके अलावा और जो इंग्रेडिएंट्स है वो ले लेना, चलेगा? ओके
8: टीम लव यू जिंदगी, आप बना रहे हैं रिसोटो आई फंगी।
5: रिसोटो तो खबर छे आई फंगा एक सूच है।
6: रिसोटो का मतलब मशरूम वाला रिसोटो आपने बहुत बार बनाया होगा।
5: मैंने अमेरिका में जो कंपटीशन किया था उसमें रिसोटो वगैरह सब सीखा था सर, पर बनाया
10: इट्स ओके। मुझे एग्जैक्टली पता है कि रिसोटो में क्या क्या डालेगा। चावल अलग होते हैं लेकिन हर चीज से काम चल जाएगा।
1: हमारी इसको मुझे बता देना ठीक है, बाकी की सब्जी और मशरूम मैं ले आऊं।
10: हां दूध लाना पड़ेगा।
1: दूध ओके एंड हार्ड चीज।
10: हार्ड चीज
1: ओके।
7: खिचड़ी बनाने वालों से रिसोटो नहीं बनेगा।
8: अनुपमा जी
5: जी
8: आपने कभी रिसोटो बनाया भी है?
5: जी रिसोटो
8: आपको तो इस डिश का नाम भी लेना नहीं आ रहा, बनाओगी कैसे?
5: सॉरी
11: मनप्रीत जी, खानसामे का तलफुज नहीं तजुर्बा काम आता है। नाम तो शायद हम भी नहीं ले पाएंगे लेकिन कौन सा हमें इटालियन में गजल गाना है और कौन सा अनुपमा जी को।
12: वेरी ट्रू सर।
11: भाई खुदा ने हुनर बख्शा है तो ये जायका पहचान कर अभी भी कमाल कर सकती हैं।
5: जी उस्ताद जी।
12: प्रेम सुना है कि आप इंटरनेशनल डिशेस के चैंप हो, फ्यूजन कुजीन आपकी स्पेशलिटी है ना, तो ये इंडियन डिश बना लोगे ब्रो?
13: लच्छा पराठा खाना जितना सिंपल है बनाना उतना ही मुश्किल।
14: ऑफ कोर्स पराठा हो या पास्ता
7: हर डिश की नॉलेज होना जरूरी है, डिश बनानी भी आनी चाहिए और नाम लेना भी।
2: लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब प्रेम की टीम चीटिंग पर उतर आएगी। अब देखना होगा कि अनुपमा अपने इस पहले टास्क में जीत हासिल कर पाती है या नहीं।
10: चीज क्या चीज?
5: अरे मैंने उठाया था चीज प्रेरणा लेकिन श्रुति ने मुझसे छीन लिया।
10: माय गॉड, हम बिना चीज के रिसोर्ट कैसे बनाएंगे? चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल,

0: एकदम थासु।
1: थैंक यू।
0: प्रेपरेशन कैसे भी हो बट प्रेजेंटेशन बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है, बिल्कुल अप टू द मार्क।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि एकता और समानता का भी प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं आज भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें अपने दर्शन देखते हैं। इसी पॉजिटिव खबर के साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगला सेगमेंट, जहां संभाल कर रखी है हमने आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी। कैसे? ऐसे।
2: टीम भाई तेरा स्टार है पहुंचे ठाकुर विद्या मंदिर कॉलेज। दिखा राघव का डांस दर्शन।

राघव जुएल जल्द नजर आने वाले हैं उनकी आने वाली नई फिल्म भाई तेरा स्टार है में, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे संजय कपूर, निहारिका एनएम, बरखा, विकल्प, निक्की। और इस खास मौके पर ये सभी पहुंच गए हैं ठाकुर विद्या मंदिर कॉलेज करने अपनी फिल्म का प्रमोशन।

तैयब जब डांस परफॉर्मेंस हो और राघव स्टेज पर ना आए अपने डांस का जलवा दिखाने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो वो भी पहुंच गए और उन्होंने किया अपना फेमस डांस।

सुबह इतना ही नहीं, आज तो राघव को सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। देखिए कैसे सभी उनका मुखौटा लगाकर पहुंच गए स्टेज पर उन्हें करने इम्प्रेस।

0: तो आइए देखते हैं टीम भाई तेरा स्टार है का क्या कहना है, क्योंकि वो अपनी फिल्म के लिए हैं काफी एक्साइटेड।
1: कैसे हैं दोस्तों? वाह यार, जब मैं कॉलेज था तब मैं कॉलेज नहीं गया, अभी कॉलेज विजिट्स करने पड़ रहे हैं। मतलब हाउ आर यू गाइस? अरे मेरे मास्क कौन, अरे मास्क दिखाओ ऊपर यार। थैंक गॉड इस मास्क से मेरी बियर्ड है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
2: भाई आई वॉन्टेड टू आस्क यू, इफ यू गेट अ चांस टू रीलिव योर कॉलेज, तो आप क्या करते अगर आप वापस कॉलेज का चांस मिलता आपको एज अ स्टूडेंट रिलीव करने का, तो आपको क्या करना चाहिए?
1: तो यार मैं कॉलेज की जैसी पढ़ाई खत्म होती है, उस पढ़ाई खत्म करती मैं भाई तेरा स्टार है की टिकट लेके पिक्चर देखने जाता।
3: थैंक यू सो मच, I love it. Even the far away one with this picture. Thank you so much. All this love, if you can come show. Theaters may be on 30th July. Silence in the classroom.
1: Principal. Principal sir nahi hai.
3: Yeah. Ma'am.
1: अपने घर वाले को मिल जाओ।
3: गाइस गाना आज रिलीज हुआ है, गाना सुना किसी ने?
4: A massive difference, massive difference. Guys, I've done comedy. I've been an actor for 30 years. Yeah. I'm old. but when this narration came to me, मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है मैंडी, forget the character, the whole script, every character is crazy. But in 30 years, this I think is the maddest, the loudest, the craziest character I've played with an amazing, amazing co-star, Sanjay. And of course, to be in a film with someone I used to fangirl, Niharika. I love her content. And then as I kept reading the script and I kept knowing who's who, I mean, I know who's who here. Who doesn't know Raghav? So, exactly. So, I kind of manifested Raghav because I'm a very, very good friend of a very, very good friend, Geeta Ma. So, when I got this comedy film, my first thing was, because Geeta and I have always discussed how sweet this bacha is, all heart, struggled to get where he has on his own.
1: I can see you're on the same path. Nothing is impossible. Every dream comes true if you really go for it. So never, never, never give up. Naruto, देखा किसने Naruto? So never give up. All right? Yes.
0: भाई ऐसे में सभी ने राघव के ऑटोग्राफ्स लिए और आज का दिन रहा काफी रॉकिंग और जबरदस्त रहा इनकी फिल्म का प्रमोशन। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा पूरे देश में भक्ति और उत्साह का माहौल लेकर आती है, और यहाँ तो है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का माहौल, क्योंकि लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगला सेगमेंट जहाँ पर है एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
0: विक्रांत और महिमा की जोड़ी
6: तो पे फंसी है, खुद को दी कर रही हवा।
0: नया शो नया अंदाज,
6: पागल सी ख्वाहिश है, खुशियों की मिली है बजा।
0: बालिका वधू के बाद फिर साथ साथ दिखेंगे विक्रांत और महिमा।
6: सौ बातें करता
7: ये बुद्धू सामान है।
8: जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए।
9: नेटफ्लिक्स पर आने वाला है नया शो जिसका नाम है मुसाफिर कैफे, और ऐसे में बीती शाम हुआ इसका लॉन्च, जिसमें नजर आए विक्रांत मैसी, महिमा चौधरी और साथ है वेदिका। पर ये है लव का त्रिकोण, जहां पर प्यार में है कई उलझने, कई मुश्किलें, जिन्हें ये तीनों मिलकर सुलझाते हैं। और आज इस खास ट्रेलर लॉन्च पर तीनों साथ साथ नजर आए हैं। वैसे आपको बता दें कि विक्रांत और महिमा टीवी सीरियल बालिका वधू में साथ साथ नजर आ चुके हैं, जहां विक्रांत श्याम मदन सिंह का किरदार निभाते थे और महिमा गौरी सिंह का। और अब फिर एक बार ये इस शो में लौट रहे हैं साथ साथ मुसाफिर कैफे में, जिसमें इन दोनों की जोड़ी देखने को मिल रही है। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इनके शो, इनके किरदार के बारे में कई सारी बातें।
10: उम्मीद है कि आप सबको फीलिंग्स होगी जब आप देखोगे हमारी शो।
11: आई थिंक मुझे नॉट जस्ट प्रीति से बट पूरे शो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई, एंड माई फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन वॉज आई वॉन्ट टू डू दिस, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से लव स्टोरी करनी थी। एंड आई होप कि आपको हमारा शो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगे, बट पहला रिएक्शन वॉज दिस इज ब्यूटिफुल एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एट एनी कॉस्ट।
12: Yeah, yes. I think same.
11: Producer sir.
12: I had the same feeling. और जैसे मैंने अंदर भी कहा कि बहुत कम ऐसी scripts होती हैं जो you know जो दिल को इस हद तक छू जाती हैं। आप scripts पढ़ते हैं, आए दिन आपके पास scripts आती हैं, but बहुत कम ऐसी कहानियाँ होती हैं जो जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपना खुद का अंश दिखता है, उस जीवन का अंश दिखता है जिसे आपने खुद जिया हो। तो बहुत ही इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट आई हैव रेड इन द रीसेंट टाइम्स। एंड इतने अच्छे लोग जुड़े इस शो के साथ, इतने अच्छे एक्टर्स जुड़े, वेदिका, महिमा, आदिल हुसैन जी। महिमा और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, हमने बालिका वधू में 16 साल पहले काम किया था। तो या आई मीन जस्ट यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो मेड मी वांट टू डू द शो। आई थिंक हम सबकी लाइफ से जब आप भी ये शो देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कहीं ना कहीं अपना अंश दिखेगा इसमें। बहुत ही रिलेटेबल कहानी है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि हम सब ने कहीं ना कहीं प्यार किया है, पाया भी है, खोया भी है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें हम सब के साथ घटी हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ, हम सब कहीं ना कहीं अपनी छवि ज़रूर देखेंगे इस कहानी में। एक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट है इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आदिल साहब भी हैं, सादिया सिद्दीकी जी भी हैं, और भी बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि इतनी अच्छी कहानी लिखी है पन्नों पर, उसको पूरी ईमानदारी से और सही तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड यू नो एज अ को प्रोड्यूसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई हेडेक वॉज टेकन केयर ऑफ बाई शरण्या एंड अनुज बाई टेरेबली टाइनी टेल्स। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि मेरे ऊपर अभिनय की जिम्मेदारी थी। और इतने अच्छे एक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि इनके साथ अगर कैमरे के सामने रहना है तो यू रियली हैव टू पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अदरवाइज यू नो बोथ दीज लेडीज स्पेशली दे आर टेरिफिक टेरिफिक एक्टर्स।
10: दिल बहुत खुश हुआ है ये शो शूट करते दौरान, ऑनेस्टली जैसे विक्रांत कह रहे थे कि इट्स सो रिलेटेबल, हर किसी ने प्यार पाया, हर किसी ने प्यार खोया, एंड आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ दैट। और हमने बहुत प्यार से बनाई है सबने, एज अस एक्टर्स, द डायरेक्टर, द शो रनर, हम सब ने बहुत ही हमारे अंदर से जो भी था सब दे दिया इस शो को। तो आई रियली होप यू ऑल अप्रिशिएट दैट।
12: बोलिए।
11: आई ऑल्सो फील कि टैलेंटेड लोग तो मिल ही जाते हैं, बट अच्छे लोगों का एक साथ कोलैबोरेट करना मैजिक क्रिएट करता है। एंड आई थिंक व्हाट मेक्स दिस शो इवन मोर स्पेशल कि हमने वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड व्हेन यू हैव सच ग्रेट राइटिंग, मुझे लगता है कि हमारा काम एज एक्टर्स और आसान हो जाता है। एंड बहुत रिलेटेबल था, नॉट ओनली मेरा खुद के कैरेक्टर के साथ रिलेट करना, बट मैंने चंदर के कैरेक्टर के साथ या सुधा के कैरेक्टर के साथ भी रिलेट किया। एंड आई थिंक ये रिलेटेबल के साथ साथ बहुत ही यूनिवर्सल कहानी है, तो एट एवरी पॉइंट हम सब ने ये फील किया होगा, इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल मेक यू फॉल इन लव विद लव, दैट्स फॉर श्योर।
9: वहीं दूसरी तरफ महिमा ने बताया कि टीवी और ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस उनका कैसा है।
11: आई थिंक स्पीकिंग ऑफ सपने सुहाने, तब से तो मेरी शुरुआत हुई थी आज से ऑलमोस्ट 13 साल पहले, एंड आई एम वेरी लकी कि जो जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली अंतिम के बाद, फिर चाहे वो शो टाइम हो या दूसरी फिल्म हो और आज ये, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम करूं, और मुझे हमेशा से एक ऐसी लव स्टोरी करनी थी. सो आई ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड वर्क ऑन ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट्स. आई नो ये बहुत क्लीशे आंसर है, बट दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज ट्राइड. एंड इवन दो इट्स बिन सो लॉन्ग, आई स्टिल लुक एट इट एज अ न्यू स्टार्टिंग, एज अ न्यू बिगिनिंग. एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल दैट यू नो, फिर चाहे वो टेलीविजन हो, OTT हो या फिल्म हो, I've been grateful to get the offers that I got.
13: चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता.
9: तो आप सब भी हो जाइए तैयार देखने के लिए मुसाफिर कैफे, यानी इस तिकड़ी की ये अनोखी लव स्टोरी.
14: किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके ना होने का.
9: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
5: मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर लेकर चल रहे हैं अर्जुन सिंह शेखावत, जो हैं पति अनाड़ी के निशांत. आज हमारी टीम ने की है इनसे खास मुलाकात. तो कैसे हैं ये ऑफ स्क्रीन, कैसा है इनका घर, किस तरह रखते हैं ये अपने आप को सुपर फिट, आइए इनसे भी ले लेते हैं कुछ वर्कआउट और फिटनेस टिप्स. गेट सेट गो.

0: मिले अर्जुन सिंह शेखावत से, जो एक राजस्थानी छोरे हैं। अपनी फैमिली के साथ देखिए कैसे झूमकर डांस करते हैं। यह है टीवी के फैमिली मैन। लेकिन पर्दे पर ये बनते हैं सीरियल पति अलाड़ी के निशान, लेकिन रियल लाइफ में ये है एक आदर्श पति, नन्हे से बेटे के पापा और अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखने वाला एक आदर्श बेटा। पेशे से तो उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल जिम में बहा रहे हैं पसीना और कैमरे के सामने बन जाते हैं पति अलाड़ी में निशांत, जो लाला के जीवन में कभी फूल तो कभी कांटे बरसाता है। लेकिन रियल लाइफ में कैसे हैं अर्जुन सिंह शेखावत, कौन है उनकी जीवन संगिनी, क्या है उनकी लाइफ की कहानी, कैसा है उनका घर, ये जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां बिता रहा है अभिनेता अर्जुन सिंह शेखावत के साथ पूरा दिन। राजस्थान का ये लड़का मुंबई में अपने सपनों को पूरा कर रहा है। तो कैसी होती है एक कलाकार की जिंदगी माया नगरी मुंबई में, ये जानने के लिए सास बहू और बेटियां सुबह सुबह मिलने पहुंचा अर्जुन सिंह शेखावत उर्फ सीरियल पति अलाड़ी के निशान से।
1: आज आप निशांत को छोड़ के ऑडियंस अर्जुन को जानेगी, सो एज एन एक्टर हटा के एज अ पर्सन हाउ आई एम, अर्जुन सिंह शेखावत कैसा है वो आज मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हमारे जिम से, बिकॉज काम में कंसिस्टेंसी हो ना हो लेकिन फिजिक में आपके हेल्थ वाइज होनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। सो कुछ चीज़ें स्किप हो जाए चलता है, लेकिन जिम आपका ये सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए। सो इसी से हम शुरुआत करते हैं।
0: सुबह सुबह अर्जुन जिम तो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले गौ माता को वो प्रसाद अर्पण करते हैं। पर रियल लाइफ में बड़े ही संस्कारी है।
1: मेरे जिम के सामने ही गाय माता विराजमान है, तो हम उन्हें चारों लड्डू खिलाएंगे।

नमः। गौ माता को उन्होंने प्रसाद खिलाया और इसके बाद पहुंचे अपनी जिम में। भाई एक अभिनेता को फिट रहना जरूरी है और अर्जुन है फिटनेस फ्री, तो चलिए देखते हैं कि कैसी होती है अर्जुन की फिटनेस वाली मॉर्निंग।

0: सो आज मेरा चेस्ट प्लस बाइसेप डे है. सो फर्स्टली हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो फॉर चेस्ट एंड बाइसेप. एंड मेरा ये मानना है कि अगर जिम में किसी को टाइम नहीं मिलता है उतना वर्कआउट करने के लिए, सो जस्ट यू कैन डू थ्री थिंग्स. फर्स्टली यू कैन स्टार्ट विथ पुशअप, उसके बाद चिनअप्स और तीन सेट पुलअप्स के कर लिए, दैट्स इट, आपका फुल वर्कआउट हो जाएगा. एंड फर्स्टली मैं अपना स्टार्ट करता हूँ वार्म अप साइकिलिंग से, बिकॉज इसमें आपके मोस्टली सारे मसल्स का वार्म अप हो ही जाता है, अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी सब का. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस साइकिलिंग एक्सरसाइज.
1: अर्जुन सिंह शेखावत के फिटनेस रूटीन में सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना जरूरी होता है, इसलिए वो साइकिलिंग कर रहे हैं. भाई साइकिलिंग एक सदियों पुरानी फिटनेस की टेक्निक है और जिम में सबसे ज्यादा वार्म अप के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो देखिए अर्जुन ने कुछ इस तरह किक स्टार्ट की अपनी फिटनेस की शुरुआत इस साइकिलिंग के साथ.

सो आफ्टर दिस साइकिलिंग और पुशअप्स अब हम थोड़ा सा लिफ्टिंग की ओर बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद हमारी बॉडी कितनी लिफ्ट कर सकते हैं उतना कैलिबर हमें होना चाहिए. सो पुलअप्स से और थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे वार्मअप को. उसके बाद चेस्ट एंड लास्टली बाइसेप मसल में हम जाएंगे. सो व्हाट आई डू इज़ कि ना मैं 60% ट्रेन करता हूँ चेस्ट को, 40% आई विल गो फॉर दिस बाइसेप मसल. सो अकॉर्डिंगली विल डू दिस वर्कआउट. और हाँ, वर्कआउट के बीच में हमेशा प्लीज़ मेक श्योर कि आप पानी हो सके उतना पिए. मिनिमम 1 लीटर पानी में पीता हूँ हमेशा, तो आपको भी वो ध्यान रखना चाहिए. अगर प्यास लगे तो ज़बरदस्ती नहीं पीना है पानी.

0: अर्जुन अपने एक्सरसाइज के बीच में खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं। उसके बाद उन्होंने अलग अलग टाइप की वर्कआउट की और जिम में अच्छा खासा टाइम बिताकर अब वो तरोताजा है अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ।
1: सो हमारा वर्कआउट हो चुका है कम्प्लीट और हम चलते हैं हमारे घर की ओर, मिलते हैं मेरे घर वालों से और जानते हैं मेरे आगे के रूटीन के बारे में।
0: जिम में पसीना बहाने के बाद अर्जुन सिंह शेखावत पीते हैं जूस। जी हाँ, इतना पसीना बहाने के बाद ये जूस ही आपको करता है तरोताजा।

सो वर्कआउट के बाद आजकल मुंबई में बारिश फिर से गायब हो गई है, तो खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सो एक मौसमी जूस पीना बनता है इस बात पे, सो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं।

0: भाई अर्जुन है बिल्कुल देसी और देखिए देसी अंदाज में कैसे खुद को एक अनोखा देसी सदियों पुराना प्रोटीन शेक यानी जूस पिला रहे हैं जो फ्रेश है और इफेक्टिव भी।
1: सो गाइज आजकल मुंबई में जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश फिर से गायब हो गई है और आफ्टर जिम सेशन खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम मौसम्बी का जूस पी रहे हैं।

अब हम सवार हो जाते हैं अर्जुन के साथ उनकी गाड़ी में और निकल पड़ते हैं उनके घर की ओर। अर्जुन वैसे तो रहने वाले राजस्थान नागौर के हैं, लेकिन पले बड़े गुजरात में हैं। गुजरात से ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन एक्टर बनने के लिए वो कई सालों से मुंबई में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ढेर सारे टीवी शोज में काम किया है, जैसे पंड्या स्टोर वगैरह वगैरह, लेकिन अब पति नाड़ी में ये रोल उनको बिजी रख रहा है। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए उन्हें सेट पर नहीं जाना है। सीधा चलते हैं अर्जुन के घर पर और मिलते हैं उनकी फैमिली से।

0: सो हम हमारे घर पहुंच चुके हैं और घर में इस वक्त मेरे पापा, मम्मी, मेरी वाइफ और एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। सो मैं बेल बजाऊंगा, देखते हैं कौन दरवाज़ा खोलता सबसे पहले। आई एम गेसिंग कि मेरे पापा या मेरी मॉम गेट खोलेगी। लेट्स सी, पापा खोल रहे हैं शायद। ओके, सो प्लीज कम टू माई होम।
1: अर्जुन मुंबई में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं, लेकिन आजकल राजस्थान से उनके मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो मिलते हैं उनके मम्मी पापा से।
0: ये है मेरा घर, ये है मेरी मम्मी, मेरे पिताजी। सो रिसेंटली आई परचेस्ड दिस होम और मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उनको मुंबई उतनी मतलब पसंद नहीं आती है फॉर सम दिस ट्रैफिक रीजन एंड ऑल, बट अब क्योंकि घर पे एक छोटा सा सरप्राइज आ चुका है तो यहाँ आना उनकी मजबूरी बन गया है।
2: लड़का है और बहुत ही मेहनत है, कहने का मतलब। अर्जुन के सीरियल सभी देखते हैं, हम दोनों ही देखते हैं।
0: वैसे मैं सच्चाई बता दूं, पापा थोड़ा सा फिल्टर करके बोल रहे हैं, मेरी माँ मेरा एक एपिसोड भी मिस नहीं करती है, रिपीट में देखती है, लेकिन पापा के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। उनको मेरे कुछ शो पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बट ऑफकोर्स दिस पति अनाड़ी उनको बहुत पसंद है, चाहे वो लाला हो या निशांत हो, ही लाइक एवरी कैरेक्टर ऑफ द शो। और हाँ,
3: उनका आया था चंद्रशेखर आजाद, वो तो मुझे बहुत पसंद था, सबसे ज्यादा।
0: सो मैंने एक शो किया था फॉर स्टार भारत, चंद्रशेखर आजाद, जिसमें मैं उनका गुरु बना था आजाद का, और वो किरदार पता नहीं क्यों आजादी के पहले की कहानी थी और मेरे मॉम डैड दोनों को ही बहुत पसंद आया था, मेरे गांव में सबने बहुत पसंद किया था। सो दैट वाज दैट, मतलब इनका वन ऑफ फेवरेट शो है मेरा। हमारा मानना है मेरा, मेरे पेरेंट्स का, हम सभी का, कि आप चाहे कहीं भी रहो लेकिन आपका जो ट्रेडिशन है उसे नहीं भूलना चाहिए। मैं भी उसके लिमिट में ही अपने काम करता हूं और इनका भी पहनावा देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा। और ये आज के एपिसोड के लिए बिल्कुल नहीं पहना है, ये हमेशा मेरी मॉम यही कपड़े,
3: इसको कोई जानते नहीं जानते, मुझे जानते हैं सब जानते हैं, राजस्थान के है ये।
0: पहनावे का इतना फर्क तो पड़ता है,
3: पहनावा देख कर जान जाते कि ये राजस्थान से।
1: वैसे अर्जुन है ठेठ राजस्थानी और देखिए अपनी मम्मी के साथ कैसे राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने रूट्स को नहीं भूलते और अपने स्टेट के रंग में और अपने कल्चर को हमेशा जिंदा रखते हैं।
0: सो मेरी वाइफ अभी एक सरप्राइज रेडी कर रही है आप सबके लिए, और सरप्राइज जो हमारा सो रहा है इस वक्त, तो उस बीच ही मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मिलता हूँ आप लोगों से दोबारा।
1: अर्जुन नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए और आते ही उन्होंने किया एक हैप्पी डांस जो उन्हें दिन भर की ताजगी देगा।

0: इस हैप्पी डांस के बाद बारी है उनकी फैमिली से मिलने की, यानी उनकी जीवन संगिनी जो उनके हर स्ट्रगल में उनके साथ रही है।
1: यह है मेरी जीवन संगिनी मेरी वाइफ संजना, और 3 सालों से हम साथ में हैं, 3.5 साल से। और इन्होंने ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने तो हर वक्त मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह, जहाँ जहाँ मैं अटका लाइफ में वहाँ इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मुझसे थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो थोड़ा सा बेनिफिट मुझे होता रहता है इनका, एक्टिंग की भी टिप्स देती है, और कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार बात जेन्युइनली सही है वहाँ मैं उस चीज़ को अप्लाई भी करता हूँ। सो क्या कहना चाहोगी मेरे बारे में, थोड़ी सी तारीफ कर दो
2: सो ही इज़ वेरी हम्बल एंड काइंड। मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ एट टाइम्स, अब क्या करें, मतलब हमने बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं, बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आई मस्ट से, और फॉर लाइक आई फील ही इज़ अ ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ही इज़ परफेक्ट, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब हाइज लोज सब चीज़ें हो, बट ही इज़ लाइक अरे हो जाएगा, चिल करो, सब हो जाएगा। सो मुझे लगता है मेरी लाइफ में जब से ये आए हैं तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ठहराव महसूस किया है हर चीज़ में, छोटे से छोटे बड़ी से बड़ी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल।
1: मुझे भी यू नो जब मैं सिंगल था तो मेरी भी यही कामना थी ईश्वर से कि ऐसी बीवी मिले जो हमेशा, मेरी फील्ड ऐसी है ना कि बहुत ही अनसर्टन फील्ड है गाइस, तो सपोर्टिव हो, ये तो मतलब सोने पे सुहागा निकली। सो मैं ग्रेटफुल टू गॉड कि मतलब वाकई में मैं ना मतलब बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, समझने वाले, मतलब मेरे पापा में तो क्या बताऊँ, बिना बोले मुझे समझते हैं, हर वक्त मुझे अंडरस्टूड करते हैं, और वैसे ही मुझे वाइफ मिली।
0: अब मिलते हैं अर्जुन से शिक्षावाद के नन्हे मुन्ने से। जी हाँ, अर्जुन अपनी पत्नी और नन्हे से बेटे के साथ मुंबई में रहते हैं, और मिलते हैं अर्जुन की इस हैप्पी फैमिली से और उनके इस क्यूट से नन्हे से बेबी से।
1: अद्वैत सिंह शेखावत, ये हमारा प्लांट किया हुआ बच्चा। सो गाइज, मैं तो कई टाइम से कैमरा फेस कर रहा हूँ, आपको देखता हूँ टीवी वगैरह पे। हमारा जो सरप्राइज है वो आज पहली बार लॉन्च होने जा रहा है टीवी पे। सो हियर वी गो, अद्वैत सिंह शेखावत, ये है मेरा बेटा अद्वैत।
2: आपका डेब्यू है आज।
1: अभी ये समझ रहा है कि ये कौन लोग आए हैं।

पर्दे पर अर्जुन सिंह शेखावत कुछ भी किरदार निभाए लेकिन रियल लाइफ में वो है फैमिली मैन और देखिए अपने पेरेंट्स अपने नन्हे मुन्ने और अपनी पत्नी के साथ कैसे फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और हाँ, ये फैमिली देखिए एक साथ डांस भी करती है।

0: चाहे कितना ही हेक्टिक शेड्यूल हो, 15 घंटे शूट चल जाए, 18 घंटे चल जाए, लेकिन जब घर पे आता हूँ ना, इसको देखता हूँ, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। मतलब भले ही सो रहा होता है उस वक्त, हमेशा तो मैं सुबह निकलता हूँ शूट पे तभी सो रहा होता है, जब पहुँचता हूँ तभी सो रहा होता है। लेकिन इसको देखना ही ना, मतलब सारा आपका जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ रिलीफ हो जाता है। सो
1: एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इज अ पर्सन, मैं इतने सालों से साथ रही हूँ, मैंने देखा है कभी भी जिम मिस नहीं करते, चाहे ना बाढ़ भी आ जाए तो ये तैर के पहुंच जाएंगे जिम। बट जब से ये हुआ है तो ये मुझे कॉल करते हैं, मुझे अद्वित जगह है, मतलब हाँ अभी जगह है, अभी सोने वाला है, तो ये अपना जिम स्किप कर लेते हैं इसके लिए।
0: यार अब थोड़ी बहुत तो मेरी भी क्या बोलते हैं कमजोरियां हैं,
1: लाइक 15 मिनट्स के लिए भी तो मतलब ये मिलना पसंद करते हैं।
0: हाँ गाइज, जैसे ही मतलब मेरा पैकअप होता है तो फर्स्टली आई गो टू माय जिम। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है कि मैं पूछता हूँ कि पैकअप हो गया है, जग रहा है, तो मैं सीधा घर पहुँचता हूँ, नहीं जग रहा होता तो फिर ऑफकोर्स मैं जिम करके घर आता हूँ।
1: So finally इसका आज डेब्यू हो गया है
0: एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मेरे लिए तो ऑफकोर्स खुशी है ही, लेकिन मुझसे ज्यादा जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, उनके लिए बहुत खुशी, उनके लिए एक ना मतलब नो ही इज़ अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आई मस्ट से, तो उनके लिए एक ना मतलब चार्जअप वाला काम करता है। कभी थोड़े से भी मतलब क्या बोलते हैं वो हेल्थ वाइज कुछ है या वो है, इसको देखते हैं फटाक से चार्ज हो जाते हैं, सब ओके लगता है इनको।
2: अब लेते हैं अर्जुन सिंह शेखावत के घर का एक टूर और देखते हैं कि उन्होंने अपने मुंबई वाले घर को कैसे सजाया है।
0: मैं आपको अपने घर का एक स्मॉल हाउस टूर देता हूँ। सो आई रिसेंटली परचेज्ड दिस होम। सो स्टार्ट करते हैं मेरे ये वन ऑफ फेवरेट कॉर्नर से, जो कि मेरी स्मॉल बट इनफ लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। मुझे दोस्तों किताबें पढ़ने का बहुत बहुत बहुत शौक है, और जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि किताबें जितनी पढ़ोगे उतनी आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, उतना ही आपको हेल्प होगी आपकी एक्टिंग में। सो आई विल शो यू फ्यू ऑफ माय फेवरेट बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ देखिए, ये रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो ये थोड़ी स्पिरिचुअल किताबें हैं कुछ कुछ, जो कि मैंने सारी पढ़ ली है इसमें से मोस्ट ऑफ। उसके बाद जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या जो भी एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये मस्ट किताबें हैं जो कि सबके पास होनी ही चाहिए। एन एक्टर प्रिपेयर्स, स्टैनिस्लावस्की की, और ये बिल्डिंग अ कैरेक्टर। सो ये दो किताबें मस्ट हैं अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। एंड नाउ विल मूव ऑन टू दिस अदर बुक्स। सो यहाँ पे इंग्लिश में जो किताबें हैं मेरे पास, वो सारी नॉन फिक्शन वाली हैं, सेल्फ हेल्प वाली, जिसमें मेरी फेवरेट मैं आपको कुछ दो तीन के नाम दूं तो ऑफकोर्स दिस द सीक्रेट, हर किसी को हर कोई जानता है इस बुक के बारे में। इकिगाई, द सीक्रेट जैपनीज वे ऑफ लिविंग हैप्पी लाइफ। उसके बाद दिस थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन की किताब है ये। लाइफ में आपको कैसे रखनी है कंसिस्टेंसी, ग्रोथ पे आप किस तरीके से फोकस कर सकते हो सो दैट आप बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ो, इसके ऊपर है। दिस एटमिक हैबिट्स बहुत ही फेमस बुक है। एवरी डे यू नीड टू ग्रो 1%, 100 दिन में आप ग्रो कर जाओगे 100%, बेस्ट किताब। या हिंदी पे आते हैं जो कि काफ़ी फिक्शनल बुक्स हैं, और मेरी फेवरेट उसमें से ये देखिए, आजकल बहुत चल रही है, दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट लेखक है और हमेशा रहेंगे। उनसे मिलना चाह रहा था, बहुत ही दिली ख्वाहिश थी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद प्रेमचंद जी की तो कोई भी आप किताब उठा लीजिए, उनकी स्टोरीज़ में कफन है, गोदान है, पूस की रात है, मेरी बहुत फेवरेट हैं, उनके भी कुछ किताब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद काशीनाथ सिंह, जो कि मेरे वन ऑफ फेवरेट राइटर्स में से एक हैं, उनकी किताब है, उनकी पोएम्स की किताब है। उसके बाद गुनाहों का देवता, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, ये मैं, हाँ अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट बुक आजकल है। इतनी इतनी प्यारी बातें कही गई है इस किताब में, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ अमृता जी का, जो कि उन्होंने इस किताब में लिखा है। वो कहती है कि ये जो जिंदगी की जंग है ना, इसको पार करने के लिए आपको मर्द का सहारा चाहिए ही चाहिए। दूसरी ही ओर वो कहती है कि ये जो औरत और पुरुष का जो मिलन है, शादी वगैरह की जो प्रथाएं हैं, ये बस एक समाज की चाल है ताकि आप तय तरीके से चल सको।
2: खास बात है कि अर्जुन के घर में ढेर सारी हिंदी साहित्य की किताबें हैं और हिंदी साहित्य पढ़ना उनका बहुत शौक है, उन्हें काफी नॉलेज है और उनके पास ढेर सारी हिंदी साहित्य की किताबें हैं। अब जरा देखते हैं उनके घर की बाकी सजावट कैसी है।
0: ये मेरी और मेरी वाइफ की पिक्चर, जब हम लोग लद्दाख घूमने गए थे, सो खारदुंगला पास की ये फोटो है, 17,000 की फीट की हाइट पर है ये, सो दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद ये पेरिस, जो कि मेरी वाइफ की वन ऑफ फेवरेट डेस्टिनेशन होगी इन फ्यूचर के लिए, बिकॉज शी वांट मी टू अगेन प्रपोज हर एट दिस पॉइंट एफिल टावर के वहाँ पे, सो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ये चीज़ भी मुमकिन हो जाएगी। और उसके बाद तो अंदर और भी कुछ किताबें वगैरह हैं। बेडरूम में चलते हैं, वहाँ मेरी वाइफ और एक सरप्राइज रेडी है आपके लिए। ये हमारा किचन का एरिया है इधर, ये यहीं पे मैं पूजा वगैरह करते हैं हम, और मेरी मम्मी, मेरी वाइफ बढ़िया मेरी डाइट वगैरह सब यहीं पे तैयार करती है। सो अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो सेटल होना बाकी है, बिकॉज रिसेंटली वी मूव्ड हियर, सो एज ऑफ नाउ तो यही मेरा किचन है प्यारा सा। और बेडरूम में चलते हैं, सो दिस इज़ माय पेरेंट्स बेडरूम, बहुत ही प्यारा सा व्यू, सुकून, एकदम शांति वाला कोना मैंने उनके लिए चुना। ये मेरे पापा मम्मी की तस्वीर, आई थिंक लास्ट ईयर दीपावली की फ़ोटो है ये, मेरे होम टाउन की तस्वीर है, तब हम लोग सब साथ में थे।
2: अर्जुन सिंह शेखावत की आज छुट्टी है, उन्हें शूटिंग पर नहीं जाना है और वो पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताते हैं, फिर चाहते नन्हे मुन्ना बेटा हो, अपनी पत्नी हो या फिर अपने माता पिता के साथ। भाई राइट, पर्दे के अपने किरदार के उस पर उनकी रियल लाइफ बहुत अलग है और अर्जुन सिंह शेखावत की रियल लाइफ के खास पर हमने दिखाया आज सास बहू और बेटिया में इस खास डे आउट में।
0: सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब भी मेरा शूट नहीं होता है, मुझे ऑफ मिलता है, तो हम इसी तरह सब लोग साथ में मिलके बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट तो हमारे पास फुल है ही बोर होने का बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। यही आजकल तो फिलहाल चल रहा है, जब भी छुट्टी होती है तो आई ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माय फैमिली ओनली।
2: तो ये थे अर्जुन सिंह शेखावत, जिन्हें आप देखते हैं सीरियल पति अनाड़ी में एज निशांत, एक इंजीनियर, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पिता और एक आदर्श पति। पर रियल लाइफ में ये हैं उनके अलग अलग रूप और पर्दे में अलग अलग किरदार वो ढेर सारे सीरियल्स में निभा चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ किरदार आज हमने देखा सिर्फ हमारे शो सास बहू और बेटिया में।
0: मैंने अपने एक्टिंग की शुरुआत 2016 में की थी, मेरा पहला शो था नागार्जुन, उसके बाद मैंने कई सारे बेहतरीन टीवी शोज का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, तारा फ्रॉम सतारा, निमकी मुखिया, निमके विधायक, नाटी पिंगी की लंबी लव स्टोरी, चंद्रशेखर आज़ाद, वाओ क्या बढ़िया शो, पांड्या स्टोर में मेरा किरदार सबको बहुत पसंद आया, दैट वॉज अ बिट ऑफ अ शेडी रोल बट किरदार वाओ था। हाल फिलहाल में आप मुझे निशांत के रोल में तो देख ही रहे हैं पति अनाड़ी में, और बस इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिए, हमारे शो को देखते रहिए।
2: तो उम्मीद है अभिनेता अर्जुन सिंह शेखावत के घर के एक खास पल आपको इस कलाकार के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता के गया होगा, और यही कोशिश होती है हमेशा सास बहू और बेटिया में कि वो कलाकारों की असली अनकट और रियल दुनिया दिखा सके। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। यानी ये यात्रा हमें परिवार की अहमियत, प्रेम और अपनापन ये भी सिखाती है। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर। पहले यहाँ तो कहानी में आया है एक नया ड्रामा, फिर से आ रही है एक नई सिचुएशन यानी एक नया ट्विस्ट। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगी अपनी बात को, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इस अगली कहानी की ओर।
1: संगम की पिटाई, फूटा संगम की माँ का गुस्सा, रिश्तों से छूटा नाता,
2: कुछ बदल से जाएंगे।
1: संगम की तड़प से परेशान हुआ कृष्णा,
2: थोड़ा ठहर जा।
1: कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में जैसे ही संगम को पता चला कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, वैसे ही वो पहुंच गई है अस्पताल में उनसे मुलाकात करने। लेकिन उसकी मुलाकात पापा से नहीं बल्कि उसकी माँ से हो गई, जिसका गुस्सा एक ही पल में अपनी ही बेटी पर फूट पड़ा और वो ये भूल गई कि वो अस्पताल है और अस्पताल में ही वो अपनी बेटी की करने लगी पिटाई। बेचारी संगम अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त कर रही है, उसे तो बस अपने पापा से मिलना है। तभी तो देखिए कैसे मार खाकर भी वो अपनी माँ से विनती कर रही है कि एक पल के लिए उसे पापा से मिलने दिया जाए। और वहीं दूर खड़ा कृष्णा सिर्फ देख रहा है, क्योंकि चाहकर भी वो माँ बेटी के रिश्ते में आना नहीं चाहता। भाई संगम तो कोशिश कर रही है अपनी माँ को समझाने की, लेकिन संगम की माँ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो अपनी बहुरानी को आदेश दे दिया कि वो संगम को यहाँ से जाने के लिए कह दे। बेचारी संगम सिर्फ अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रही है और बार बार कभी भाभी से गुजारिश कर रही है तो कभी माँ से, लेकिन माँ अपने हाथ को रोक नहीं पा रही और बार बार संगम के गालों पर तमाचा जड़ दे रही है।
3: तो मुझे ऐसे पता चला, उस टाइम मैं बरेली के बच्चनों के घर थी, एक ही दिन हुआ था मुझे वहाँ, और मुझे मैंने कृष्णा को बोला कि मुझे मेरी भाभी को कॉल करना है, मुझे जानना है कि घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम भाग दौड़ कर रहे थे। और फिर पुलिस स्टेशन में जो पूरा कांड होता है उसके बाद मैंने कहा मुझे भाभी को कॉल करना ही पड़ेगा, अब तो यही एक उपाय है जानने का। तो मैं भाभी को कॉल करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं। फिर वो बताती है मुझे कि पापा को हार्ट अटैक आया और मैं वहीं गिर टूट पड़ती हूँ। और फिर मैं कृष्णा को बोलती हूँ

0: कि मुझे पापा से मिलने दीजिए, एक बार देखने दीजिए, पर वो मना कर देती हैं। तो फिर वो मुझे मार रही हैं, इधर उधर गिरा रही हैं और धक्का मार रही हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा एक ऐसा है कि बेटी भाग गई और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो यही सब हो रहा है मेरे साथ।
1: फिलहाल तो संगम को उसकी माँ ने उसके पापा से मिलने नहीं दिया, लेकिन संगम ने हार नहीं मानी और देखिए कैसे मौका पाते ही वो वार्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वार्ड के अंदर से उसका भाई आ गया, जो संगम पर बरसने लगा।
2: भैया ये सब आपकी गलती है,
3: तुम्हारी गलती है।
2: अगर आप हमें तब समझ जाते, हमारी बात तब सुनने होते, तो हमें कभी भागना ही नहीं पड़ता, पर ये सब कभी नहीं होता।
3: तो जाओ जाओ उसी ड्राइवर के साथ। तो
0: अभी तो नहीं, क्योंकि लिटरली मेरी जो मॉम है वो यही बोल रही है कि वो उसको पॉइंट करके कि अभी भी यहाँ पे है। तो फिर मैं उनको यही कन्विंस करने की कोशिश करी कि हमें बस छोड़ने आया है यहाँ और कुछ नहीं है, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। और फिर अभी आज हमने वो शूट करा नहीं है, फिर उसके बाद कृष्णा और मेरी एक पूरी डिस्कशन होती है, मैं उसको अपने कंगन वंगन दूंगी वहीं, तब हम भीग जाते हैं और फिर मैं भीग के वापस आती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि अरे एक बार पापा से मिल लूँ और फिर मैं किस तरह आईसीयू पहुंचूंगी। अभी इसके बाद वही शूट होने वाला है आई थिंक, और फिर पता नहीं क्या होगा। पापा की जब शक्ल देखूंगी या फिर देखने देंगे भी या वो नहीं, अभी वो स्क्रिप्ट मुझे पढ़नी है। पर हाँ, बहुत इंटेंस चल रहा है आज का, बहुत पिटाई हुई है, मुंह पे लगा है, पूरी बॉडी पे लगा है, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग था और भीगे हुए हैं सब, तो इंटेंस। और मुंबई में वैसे भी बारिश हो रही है तो उसके ऊपर से और भिगा दिया है।
1: अब परिवार वालों को तो गुस्सा आ ही रहा है, लेकिन संगम बार बार विनती कर रही है। ऐसे में गुस्से में आकर संगम का भाई उसे वार्ड के अंदर ले गया पापा से मिलवाने के लिए, लेकिन फिर संगम के पापा ने उसे मिलने से मना कर दिया, जिसके चलते संगम के भाई ने संगम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो तो शुक्र है कि कृष्णा ने उसे बचा लिया गिरने से।
3: ड्राइवर भी यही है। अच्छा है, जाओ इसी साथ जियो अपनी जिंदगी, समझे तुम? सुना है पापा ने क्या कहा, तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए मर चुकी हो, जाओ इसे।
1: बेचारी संगम, एक फैसले ने उसके सारे रिश्ते नाते बदल दिए हैं और दौर उसके सारे रिश्ते उससे छूट भी गए हैं। अब देखना होगा कि कैसे कृष्णा संगम का साथ देगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हर प्रार्थना में छुपी होती है एक नई उम्मीद, तो भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आज देखते हैं कि यहाँ क्या होने वाली है मन की मन्नत पूरी। क्या आएगी इनकी जिंदगी में कोई गुड न्यूज, या फिर से आएगा एक नया ट्विस्ट जो इनके सामने लेकर आएगा एक नई सिचुएशन या फिर एक नया चैलेंज। वेल, जो भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर।

0: मेहनत की कोशिशें।
1: पहली दफा जो होने
0: टूटा विक्रांत का गुस्सा,
1: पहले हुआ ना कभी।
0: मान्यता की जिद,
1: महसूस दिल ने जो भी किया है लफ्जों में कह दूं अभी।
2: मेरा मतलब है अब हमने मेजबानी को स्केट पर निकाला है, अब उन्हें वापस बुलाएंगे तो पता है ठीक ना लगता है।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में अभिमन्यु ने मान्यता और अपनी शादी के लिए केटरर बदल दिया है, और ऐसे में केटरर अब मान्यता को खुश करने के लिए बलगम चॉकलेट बनाने की बात कहता है, जिसे सुनकर मान्यता हैरान है क्योंकि वो डिश का नाम प्रॉपर ले जो नहीं पा रहा, और अभिमन्यु उसकी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो तो मान्यता को समझा भी रहा है।
2: ठंड रख, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है।
3: एक एक मिनट ना, तुम नहीं काम करो, पहले एक सैंपल केक बना के दिखाओ, ठीक है?
2: जी मैडम। हाँ ये भी सही है, सेट है।

0: सुनो सुन, एक बलगम चॉकलेट केक तैयार कर सैंपल के लिए, ठीक है? जल्दी कर, जल्दी करना। हाँ
1: अरे मजाक कर,
0: हो गया मैडम
2: बनाएगा कैसे?
0: ओके जी
2: तुम्हें दिखा।

यहाँ मान्यता केटर से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो बेल्जियम चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। तो वहाँ विक्रांत अचानक मन्नत के ख्यालों में डूब गया है, क्योंकि वहाँ पर उसे मन्नत दिखाई दे रही है जो विक्रांत पर हंस रही है।

0: बलगम केक हेलो चिप चॉकलेट केक और बलगम केक
1: वो ना सिर्फ जोक है और
2: तू तू
1: जो जो बात की थी मैंने और तुमने बात समझ नहीं आई
0: सुनी पर हाँ समझ नहीं आया क्योंकि आपने वजह नहीं दी वजह नहीं
3: भाई अभिमन्यु को तो ख्यालों में भी मन्नत परेशान कर रही है और सिर्फ वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया क्योंकि वजह तो अभिमन्यु भी नहीं दे सकता। ऐसे में मन्नत ने अपनी दिल की बात फिर से अभिमन्यु के सामने रख दी जिसे सुनकर अभिमन्यु बौखला गया और उसकी बौखलाहट देख कर सभी लोग हैरान हो रहे हैं।
0: और एक मान के लिए कि आप मेरा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसीलिए कर रहे हैं मेरी आपकी वजह से नहीं मेरी वजह से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है वो एहसास जो आपको सुखचैन छीन रहा है वो एहसास जो आपको कमजोर बना रहा है ना
4: बस बस बस बस यार बस कर यार
0: तुम बस बनाना शुरू करो और हाँ ये सेंटर है ना मुझे ये वाला पीस
4: चाहिए
1: बिस्किट का पहाड़ नहीं
4: है।

0: हाँ, केक का ऑर्डर दिया है उसने, केक का ऑर्डर जो दिया है, पहले तो उसको वो नाम लेना नहीं आता था जो नया केटर आया है, उसके बाद फिर जब वो लेकर भी आता है तो उसमें पता नहीं कहाँ से छिपकली आ जाती है और वो मान्यता उससे परेशान हो जाती है, तो इसका बड़ा ड्रामा है जो आपको देखेंगे तो आपको मजा आएगा।
1: भाई अभिमन्यु को तो हैरानी खुद पर ही होने लगी है क्योंकि आज तक उसने वो डिश खाई नहीं है और उसे उस डिश का नाम प्रॉपर तरीके से पता है और घर वाले भी ये सुनकर हैरान है। खैर अभिमन्यु ने इस बात को भले ही नकार दिया हो लेकिन अब उसे भी कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि जो मन्नत कह रही थी वो सच है।
2: यार क्यों नहीं सोचा? मैं कहता हूं, सिंपल शादी करते हैं।
1: वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू तो कर दी है लेकिन अब उसने बना लिया है नया प्लान। वो चाहता है कि शादी धूमधाम से ना होकर सीधे साधे अंदाज में हो, वो भी गुरुद्वारे में। बस फिर क्या, ये बात सुनकर मान्यता का गुस्सा भड़क गया।
3: हमने तो प्लान किया था कि हम धूमधाम से शादी करने वाले हैं ना।
2: मैं ऐसा चाहता
3: हूँ। हाँ? तुम ही ऐसा चाहते थे और मैं हर रोज तुम्हें याद दिलाने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन तुम याद ही नहीं करना चाहते क्योंकि क्योंकि तुम याद क्यों करोगे, तुम्हें प्यार थोड़ी ना है मुझसे। अंकल शांत हो जाओ। क्या कैसे शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाऊं? सब कुछ मेरी शादी में ही हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है शादी में। अब इसे सिंपल शादी चाहिए क्योंकि इसे कुछ याद नहीं है, ये सब कुछ भूल गया है। और इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद इसे कुछ याद आएगा? क्या पता शादी के बाद मुझे भूल जाए? मुझे कौन हो तुम?
2: कितना काम पहुंच गई तू? वापस आ इधर आ। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी शादी में ना कोई ड्रामा ना हो। ये सच है, यही है सच। तू ही सोच, मैंने उसके मुंह पे उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया, अब बता। अब उसके पास जाएंगे कहेंगे क्या कहेंगे? आ जाइए जी, वापस आ जाइए। अरे बात समझ ली ना, ड्रामा हो जाएगा। और तुझे कैसा, एक बात बताओ, अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया क्या आप वापस आओगे? आप मना करोगे ना?
3: आई डोंट केयर। मुझे मेरी शादी में सब कुछ बेस्ट चाहिए और मन्नत ही बेस्ट।
0: होता ये है कि अभिमन्यु को लगता है कि ये खाना उतना अच्छा नहीं है या फिर उसे फ्लैशेस जो आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए वो मन्नत के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है तो वो किसी और को बुलाता है। तो जो वो बुला के आता है तो आपने तमाशा तो देखा ही होगा कि क्या हुआ है। तो बस फिर मैं ही डिसाइड करती हूँ, जिसे शक है कि मन्नत और अभिमन्यु का कुछ है तो मुझे ही लगता है कि अरे यार मेरी सिस्टर की हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं ही मना करती हूँ उसको कि ठीक है हम उसको फिर से बुला लेते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है।
1: अब मान्यता का गुस्सा धीरे धीरे चढ़ने लगा है और तो और उसके आंसू भी निकलने लगे। ऐसे में सम्राज्ञी समझ गई कि उसे पैनिक अटैक आ जाएगा, इसीलिए सम्राज्ञी ने न सिर्फ अपनी बहन को समझाया बल्कि झटपट मान्यता को कॉल भी लगा दिया।
3: कैसे अभिमन्यु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता है आपको उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया? अरे उसका एक फ्रेंड है, उसे ना पैसों की जरूरत थी तो बस उसी की हेल्प करने के लिए उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया। हाँ देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या आप हमारे इवेंट में केटरिंग करेंगी? मैं मानती हूँ कि बहुत कम टाइम है लेकिन मेरी मान्यता ना वो जिद पे अड़ गई है। उसका कहना है कि अगर कोई केटरिंग करेगा मेरी शादी में तो सिर्फ और सिर्फ मन्नत जी करेंगे।
1: अब सम्राज्ञी ने मन्नत को मना लिया है और मन्नत ने वापस इनकी शादी में केटरिंग करने का फैसला ले लिया है और ऐसे में वो खुश भी हो रही है और रोनी पापा के गले लगकर इमोशनल भी हो रही है क्योंकि अब जल्द ही वो रोनी को उसके बेटे से मिलवाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: एंटरटेनमेंट की दुनिया भी जीवन की यात्रा की तरह हमारे लिए नए नए सरप्राइजेस लेकर आती है। अब कुछ खबरें लेकर आती हैं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट करती हैं शॉक, तो कुछ लेकर आती हैं सरप्राइजेस या फिर शॉक्स। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं जेनिफर विंगेट की। भाई दोबारा जेनिफर शादी के बंधन में बंधने जा रही है विलियम के साथ और ऐसे में हो रही है इनकी शादी की रस्में। और बीती शाम हुई हल्दी सेरेमनी आपको बता दें कि विलियम और जेनिफर आज यानी कि 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
6: आज आपकी जोड़ी का अल्टीमेट टेस्ट होगा।
5: लॉकअप सीजन 2 में चल रहा है ढेर सारा धमाल और ऐसे में अब कंटेस्टेंट्स को दिया जाएगा नया टास्क और टास्क में सबके असली चेहरे सामने आने वाले हैं।
7: नो नो शिट यू कैन नॉट पुश मी।
8: आई डिड पुश यू।
7: आई यू कैन नॉट पुश मी।
8: आई डिड पुश यू।
9: यस तू मेरी क्यों मार रहा है?
8: या नो यू कांट डू दिस। यू कांट डू दिस। नीरज
9: ओए
10: सुन देवांगी लव्स यू मैन। तूने शरांगी अगर आ दिया इतना ब्लाइंड हो गया तू।
11: Dheeraj did that twice, na? Sophie is more important. I didn't know that. Maybe that is why I'm this happy.
10: The way you were kicking Shivangi and my things away, everyone was in shock. This is blindness, not Dheeraj.
5: भाई बात अगर लॉकअप की हो रही है तो ऐसे में नजर आई राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर जो लॉकअप के बारे में बातें कर रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है।
12: मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करती हूँ और वो बहुत मजे कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है उनको।
13: आप ज्वाइन करोगे वाइल्ड कार्ड?
12: राम की मर्जी नहीं वाइल्ड कार्ड नहीं।
13: राम राम
12: बच्चों को देखेगा।
14: और मुझे बताया क्यों नहीं?
5: नजर डाल लीजिए तुमसे तुम तक के इस नए प्रोमो पर जहां आर्या को माफ कर अनु वापस आ गई है अपने घर।
15: अनु मान गई झंडे तुझे स्ट्रेस नहीं कोई जरूरत नहीं है।
16: काश ऐसा होता आर्या तेरे अतीत के पन्ने जो हमने इतने सालों तक बंद करके रखे थे इस किस्से के बाद अनु के सामने सब खुल गए। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे अतीत के पन्ने राजनंदनी तक पहुँच जाए।
5: पर झंडे को अब भी है चिंता।
17: तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हसीना जुल्फों वाली से गंजी चुड़ैल कैसे बनते हैं।
18: सबसे पहले मेरा पूरा ज्वेलरी वाला स्वैग छीन लिया गया है। मेरे बालों को फ्लैट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इनकी इमरजेंसी मीटिंग चालू हो गई।
19: ये तो ऊपर करना ही पड़ेगा ना
17: आपको। वाओ व्हाट इज दिस द फैशन इंडस्ट्री इज गोइंग वाइल्ड। ओ सॉरी गंदी बातें नहीं करते पर ये मुझे फ्लाइट का प्यूब बैग लग रहा है।
18: कहा था ना रूपाली दीदी बात किए बिना नहीं रह सकती और सूर्या दादा अपनी बॉडी दिखाए बिना। बाय द वे मुझे टकला करने के लिए एक स्पेशल हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया गया है।
5: सिमरन भद्रूप का हुआ मेकओवर देख लीजिए सिमरन बन गई है गंजी चुड़ैल।
18: अब ये कैप मेरे सर पे चढ़ाया जा रहा है और बस यहीं से ऑक्सीजन लग्जरी बन गई। मैं चुड़ैल बनने से पहले ही शहीद होने वाली थी।
5: एक नए प्रोजेक्ट के लिए देख लीजिए इनका मेकओवर वाला ये वीडियो।
18: फ्यू बेटर अब मुझे चिपकाया जा रहा है। इतना गम तो मुझे मेरे एक्स ने भी नहीं दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग नाउ पुटिंग इट बैक ऑन माय हेड और अब एक्सेस पार्ट को कट किया जा रहा है। हेलो दैट्स माय ईयर डोंट कट माय ईयर डोंट कट माय ईयर। अब इसे स्टिक करने के लिए CH3COCH3 यूज किया। सम लास्ट टच अप्स एंड गंजी चुड़ैल इज रेडी। इतनी खुश तो मैं लंबे बालों में भी नहीं थी। आई लव इट।
20: और पतला कर दो घुमा घुमा के यूं यूं। हाँ यूं
21: मेरे बाल ठीक कर दो यार।
22: जब गांव का छोरा काट के टोरा
23: अच्छा उंगली से करते हैं।
5: देख लीजिए लाफ्टर शेफ का नया प्रोमो जहाँ फिर एक बार छिड़ गई है नई जंग और हो रही है मस्ती।
24: देशमुख फैमिली का हर एक मेंबर हमारा सस्पेक्ट है और इस केस पे लास्ट कॉल मेरा ही होगा। भूलो मत मैं तुम्हारी बॉस हूँ।
25: मैं हूँ तुम्हारी नई बॉस।
5: सीरियल जगधारी में हो गई है नई एंट्री। एक्ट्रेस मिशी दास बनकर आई हैं जानवी गांगुली यानी कि जगधात्री की सौतन। अब देखना होगा इनके आने के बाद सीरियल में क्या ट्विस्ट आता है।
24: रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी टीम सेम प्रेमिस पे मौजूद थी। फिर मूसा को मारने तुम अकेली क्यों गई थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये केस तुम्हारे लिए प्रोफेशनल कम और पर्सनल ज्यादा है।

0: की शाम हुई सक्सेस पार्टी फिल्म मैं वापस आऊंगा की, जिसमें नजर आए कई सितारे जैसे कि इम्तियाज अली। ईदा अली, रमेश तुरानी, वेदांग रैना, दिव्या दत्ता, बॉबी देओल, ईशान खट्टर, सानिया मल्होत्रा, जैकी भगनानी और कई और सितारे जो इस सक्सेस पार्टी में हुए शामिल।
1: मैं खुद वहाँ जाऊँगी और पता करूँगी कि राजेश क्यों है।
2: मैं भूमिका, मिस्टर राजबुंदेला की वाइफ।
0: आया है लक्ष्मी निवास का नया प्रोमो, जहाँ भूमिका की दीवानगी में राज करने जा रहा है सुसाइड।
3: राज को लगा जिससे वो प्यार करता है वो उसे दूर जा रहा है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है।
4: लक्ष्मी, ये लो मेरे जीवन भर की जमा पूंजी, मेरा पीएफ।
0: तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी और श्रीनिवास के सामने आ गया है सच।
5: 6 महीने हो गए बैंक से लोन लिए हुए, कल तक 10 लाख जमा हो जाने चाहिए।
4: ये गलत कर रही हो तुम लक्ष्मी।
6: मुझे जो अपने बच्चों के लिए सही लग रहा है वो कर रही हूँ।
7: निकाल दिया स्कूल से बच्चियों को, 3 महीने से स्कूल फीस भरी नहीं ना, हमने क्या करूं मैं।
6: ये लो और इनका एडमिशन फिर से करवा ले अभी।
8: नाक्षी दी का आइडिया ना जादू जबरदस्त रहा है, मुझे लगता है कि एक्टिंग ना थोड़ी और करनी पड़ेगी।
6: बार बार वही गलती करती हूँ, अपने बच्चों के झूठ को सच समझ लेती हूँ। अब और बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं। जो माँ तुम्हें लाड़ प्यार दे सकती है वही माँ तुम्हारे कान पकड़ कर उन्हें सही रास्ता भी दिखा सकती है।
9: बापी गांगुली,
10: हमारे दादा यही सही जाएगा जेखने दाड़िए दादा गोटा दुनिया के देखी छिलो बांगलीरा लौटते जाने।
9: अच्छा बापी, हमारे दादा कने बोली।
0: जल्द आने वाला है बिग बॉस बांग्ला, जिसे होस्ट करेंगे सौरभ गांगुली। देख लीजिए इसकी पहली झलक।
11: তার প্রতিটা লড়াই আজও অনুপ্রাণিত করে হাজার হাজার মানুষকে, তাই তিনি আমাদের দাদা। সেই দাদাই এবার আসছে নতুন ফর্মে, আসল খেলা এবার শুরু।
12: আজ পতা চলা সুকুন কিসে কেতে হ্যায়।
0: मन अति सुंदर का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर होगा प्यार का इजहार।
13: साथ होने को ही सुकून कहते हैं।
12: तुम मेरा वो सुकून हो रहते हो।
14: आई लव यू।
15: आपका फैसला एकदम सही है। मैं सपने में भी ना सोच सकती थी देवी हुकुम कि आप हमारे रास्ते में कांटे बिछा देंगी।
0: सीरियल वसुधा में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। सामने आया है नया प्रोमो, जहां पर चंद्रिका के षड्यंत्रों के कारण वसुधा और देव घर छोड़कर जाने का फैसला लेंगे।
16: अंदर चलते।
15: अंदर क्यों जाना है देव सर, जाना ही तो बाहर जाएंगे ना। हम दोनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।
0: बीती शाम हुआ एक खास इवेंट, जिसमें हेमा मालिनी खास मेहमान बनकर पहुंची, और देखिए कैसे वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्रिब्यूट दिया लेट श्री धर्मेंद्र जी को।

0: कोई नहीं करेगा।
1: अरे मेरे को अगर डांस का पता होता तो मैं वहां नहीं बैठा होता। तुमको पता है जी, बताइए जजिस कौन जीता। बच्चों का कहना है कि कौन जीता, बॉयज या गर्ल्स।
2: पागल है क्या, इसमें जीत हार क्या है। मतलब
3: इस यात्रा में भी टीवी सीरियल्स की कहानियों की तरह हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया इंतजार कर ही रहा होता है। कहीं होता है खुशियों का आगमन तो कहीं होता है मुश्किलों का सामना। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट जो बदल रहे हैं इन कहानियों का मोड़, लेकर आ रहे हैं इनमें एंटरटेनमेंट का मसाला। लेट्स ट्विस्ट।
4: मिस्टर एंड मिसेस परशुराम,
5: यू जस्ट रन, भागो।
6: बड़ा 6000
7: स्टारप्लस के सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में जैसे ही शीतल को शालिनी की मेहंदी में ये पता चला कि यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर्स भेस बदल कर आए हुए हैं, वैसे ही उसने यहाँ से भागना ही समझदारी समझा। और ऐसे में शिव और गौतम को पता चल गया। बस फिर क्या, गौतम ने शीतल का पीछा किया और शिव ने वहाँ मौजूद गुंडों की पिटाई करनी शुरू कर दी, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ।

0: पर शीतल तो यहाँ से भाग निकली, बाकी औरों को भी भगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो बदमाश है वो पकड़े गए हैं।
1: बेटा मामा कहाँ है?
2: वो मम्मा के हाथों में मेहंदी लगी है ना, इसलिए वो अंदर है, कोई काम नहीं कर रही है।
0: वहीं दूसरी ओर विक्की भी अपनी जान बचाकर पहुंच गया है शालिनी के घर। ऐसे में विक्की को शक ना हो, जरा देखिए कैसे शालिनी होने वाले पति का आओ भगत कर रही है, स्वागत कर रही है। इतना ही नहीं, उसके सामने तो वो अपने नखरे भी दिखा रही है। और विक्की इन सब से अनजान है कि शालिनी ये झूठा नाटक कर रही है।
3: कैसे बनाती, वहाँ से तो भाग के हम यहाँ आ गए, मैं बहुत डर गई थी। और वैसे भी मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है ना, मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ?
1: करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने। एक काम करते हैं कि हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए।
3: नहीं, बाहर का खाना नहीं खाना, घर पे ही खाएंगे।
1: घर घर पे मतलब?
3: अरे आप है ना, थोड़ा चूल्हा जला लीजिए।
1: क्या क्या मैं
3: हाँ, सब्जी वगैरह काट लीजिए।
1: क्या?
2: मुझे गोभी की सब्जी पसंद है और मुझे पनीर पसंद है।
1: तो इसमें मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूं इसमें?
3: आप बना दो ना।
0: शालिनी ना सिर्फ विक्की को सबक सिखा रही है, बल्कि जल्द ही वो अपने घर वालों के सामने शिव के जिंदा होने का खुलासा भी करेगी।
4: अगर विक्की इस घर में घुसा तो आज मैं आग लगा दूंगी।
3: वो दरवाजे पर खड़े हैं, आ जाइए।

0: रिश्ता क्या कहलाता है?
1: जिसमें मेरी दादी सा का बना हुआ हलवा था।
2: की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार दादी सा की मेहनत रंग लाई और देखिए कैसे उनके हाथों का बना हुआ हलवा खाकर अरमान के आंसू बह गए। और तो और अरमान ने न सिर्फ अपनी दादी सा को माफ किया बल्कि उन्हें अपने सीने से लगा लिया।
3: हमें अपने किए पे शर्मिंदा है बेटा।
4: आज तो भगवान जगन्नाथ से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। बस इसी शुभकामना के साथ अब लेते हैं आपसे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
1: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: जी खबर
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच टीआईटी भोपाल जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
6: मंगला आरती के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ भक्तों में दिखा भारी उत्साह कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति शाम 4 बजे निकलेगी रथ यात्रा उदयपुर में चांदी की रथ पर सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टर्स ने की भगवान की सेहत की जांच शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा दिल्ली और नोएडा में भी तैयारी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जुलाई में से अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम
6: देश भर में निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में उत्सव का माहौल पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा सुबह से जारी विधि विधान जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति ओडिशा के सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक रथ यात्रा से पहले रथों की हुई अनुष्ठान पहांडी अनुष्ठान के साथ रथों तक ले जाए गए भगवान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर करेंगे नगर भ्रमण काजे बाजे के साथ होगी यात्रा की अगुवाई भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर मंदिर से जाएंगे अपनी मौसी के घर गुंडीचा रथ को खींचने के लिए उमड़ेगा आस्था का सैलाब रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाएगी छेरा पैरे की रस्म इसमें भगवान का रथ जिन रास्तों से गुजरता है उन्हीं पुरी के महाराज सोने के झाड़ू से करते हैं शुद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अब ऑनलाइन दान कर सकेंगे श्रद्धालु मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने डिजिटल हुंडी का उद्घाटन किया पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया नृत्य पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज कृष्ण के वेश में किया नृत्य पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर का किया दौरा। उड़ीसा के पुरी बीच पर भी दिखी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वानगी, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई मनमोहन आकृति। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स के साथ कई जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एम्बुलेंस तैनात, 200 बेड वाला अस्थायी अस्पताल भी तैयार। पुरी में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गायक सोनू निगम से मुलाकात की। भगवान जगन्नाथ रथ उत्सव में शामिल हुए विदेशी भक्त, जमकर लगाए जय जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम। पुरी में सीसीटीवी से ही हो रही है चप्पे चप्पे की निगरानी, भीड़ मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है पुलिस प्रशासन। पुरी में 13,000 सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मोर्चा, 10 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां भी शामिल, एनएसजी स्नाइपर्स की भी तैनाती। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक, 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती, अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम संघवी भी हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से साफ किया रास्ता, विधि विधान से पूजा के बाद निकली रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर सवार, दिव्य दर्शन के लिए लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु। भगवान की रथ यात्रा में शामिल हैं 18 हाथी, 101 ट्रक, कुल 16 किलोमीटर की यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। अहमदाबाद की रथ यात्रा में कलाकारों ने बांधा समा, ढोल ताशे की मंगल ध्वनि से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालु, आस्था के साथ भक्ति में झूमे भक्त। दोपहर 1 बजे सरसपुर पहुंचेगी रथ यात्रा, रात 8 बजे फिर मंदिर में करेगी प्रस्थान। अहमदाबाद रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कंट्रोल रूम में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। रथ यात्रा रूट पर तैनात किए गए 30,000 पुलिस जवान, 100 से ज्यादा ड्रोन से निगरानी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 149वीं रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के लिए विशेष प्रसाद भेजा, गुजरात के सीएम थे तब से भेज रहे हैं प्रसाद। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार भेजे गए प्रसाद में आम, जामुन, ककड़ी, मौसमी फल, मूंग और मेवे शामिल हैं। गुजरात के राजकोट में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। राजकोट की सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, रथ खींचने को आतुर दिखे श्रद्धालु। राजकोट की रथ यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में दिखे कलाकार, जमकर किया नृत्य। आनंद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में धूम देखने को मिली, स्कूली बच्चों ने निकाला भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ उत्सव को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह, बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के वेशभूषा में नजर आए बच्चे, जमकर लगाए जयकारे। नोएडा के जगन्नाथ मंदिर में भी रथ उत्सव की रौनक, भव्य निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में हुई दिव्य मंगला आरती, पुजारियों ने विधि विधान से उतारी भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की आरती। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। प्रयागराज में जगन्नाथ रथ उत्सव पर श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी, विधि विधान से किया पूजा पाठ। काशी में भगवान जगन्नाथ की डोली यात्रा उत्सव की रौनक, डमरू और ध्वज लेकर शामिल हुए श्रद्धालु। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज से 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू, 300 साल पुराना रथ यात्रा मेला त्योहारों की शुरुआत का है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: After multiple assassination attempts, they can't even get...
3: They're reliable.
4: Always when I need them.
1: To live sports action.
5: One-hand jam by LeBron on the break.
6: That's another three, Steph Curry.
1: And your favorite music.
7: Well, the dawn begins to crack.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
15: गुड न्यूज टुडे स्टूडियो है डेंगू से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
17: मंगला आरती के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। शाम 4 बजे निकलेगी रथ यात्रा।
18: समस्त अमंगल दूर करें।
17: उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टर्स ने की भगवान की सेहत की जांच।
19: टीम आकर के दल
17: शहर शहर दिख रही

0: हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं। नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का स्थान, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही संसार निरंतर गतिमान रहता है। सूर्य की हर गति या विराम का सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है, और ऐसी ही एक स्थिति है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कर्क संक्रांति शुरू होने वाली है। तो आइए जानते हैं सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश का क्या होगा प्रभाव।

0: सूर्य देव बदल रहे हैं अपनी राशि। कर्क राशि में सूर्य देव करेंगे गोचर। जानिए क्या होगा आपके जीवन पर असर। सूर्य देव का शुरू होने जा रहा है दक्षिणायन चक्र। कर्क संक्रांति से ही सूर्य देव दक्षिणायन हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सूर्य देव की दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू हो चुकी है। यह देवताओं की रात्रि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य देव हर माह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार होने वाली है सूर्य की कर्क संक्रांति। 6 माह तक सूर्य देव रहेंगे दक्षिणायन। इसके बाद मकर संक्रांति पर सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं। इस काल में सूर्य देव की उपासना परम फलकारी मानी गई है। माना जाता है कि संसार को अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले भगवान सूर्य के तेज से ही संसार प्रकाशित है। और संसार ही क्या, ये ब्रह्मांड भी सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ग्रहों की दशाओं के मुताबिक सूर्य की कर्क संक्रांति पर कुछ विशेष उपाय और उपासना से बुरे प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है सूर्य की संक्रांति और इस संक्रांति पर सूर्य उपासना से कैसे हो सकता है आपका कल्याण।
1: सूर्य अभी बुध की राशि मिथुन में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को दिन में 10:50 के बाद चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश होगा। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है।
0: क्या है संक्रांति? सूर्य का किसी विशेष राशि पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर महीने राशि का परिवर्तन करता है, इसलिए साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कर्क संक्रांति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है और कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ राशि वालों को सावधान रहना होगा। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन का आधार है सूर्य देव, इसलिए इनसे जुड़ा हर परिवर्तन हम सभी के जीवन को प्रभावित करता ही है।
1: चंद्रमा की राशि जल तत्व की राशि है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, राज्य के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आंखों के कारक ग्रह हैं, आत्म शक्ति के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तपस्या सरकारी नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं।
0: ज्योतिष के जान

0: कार भी मानते हैं कि सूर्य के अलग अलग राशियों में प्रवेश करने का प्रभाव भी अलग होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ भी होता है और अनिष्टकारी भी। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाला है, यानी शुरू होने वाली कर्क संक्रांति, यानी सूर्य जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं वो उस राशि की संक्रांति होती है। चलिए जानते हैं कि क्या होती है सूर्य की कर्क संक्रांति।
1: सूर्य का चंद्रमा की राशि में प्रवेश करना निश्चित तौर पर सूर्य के प्रभाव में थोड़ी सी कमी आने लगेगी, और यहीं से एक और परिवर्तन देखने को मिलता है कि सूर्यदेव अपने दक्षिणायन की यात्रा आरंभ कर देते हैं। सूर्य की दो तरह की यात्राएं महत्वपूर्ण हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब सूर्यदेव शनि की पहली राशि मकर में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण की यात्रा पर होते हैं। जब ये कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन की यात्रा आरंभ करते हैं।
0: क्या है कर्क संक्रांति? सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तब कर्क संक्रांति होती है, और जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, वातावरण में अंधकार बढ़ता चला जाता है। इस बार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को होगी। इस समय में पूजा उपासना और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है। कर्क संक्रांति के दिन दान करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। मान्यता है कि सूर्य जब भी अपनी राशि बदलते हैं तो इंसानी जिंदगी पर इससे गहरा असर पड़ता है।
1: ऐसे में चंद्रमा की राशि में जब एक इनका गोचर होगा तो इनके मूल स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देगा। दूसरी बात, जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति वो अपनी उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। गुरु के साथ सूर्य के होने से गुरु आदित्य नामक योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और सूर्य का जो योग होता है, सरकारी तंत्र के लिए, सरकारी लाभ के लिए, नौकरी के लिए, पिता के लिए, आत्मा के मजबूती के लिए बड़ा ही शुभकारक माना जाता है।
0: सूर्य की कर्क राशि का प्रभाव। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है। सूर्य और गुरु पंचम भाव में विद्यमान है। इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं। इसमें जल से आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। विश्व में युद्ध की स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस समय लोगों को स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य की कर्क संक्रांति में भले ही मांगलिक काम नहीं होंगे, लेकिन पूजा, उपासना, ध्यान और भगवान की भक्ति निरंतर जारी रहेंगी। सूर्य को सारे संसार की आत्मा माना जाता है। सूर्य ही जीवन है, क्योंकि सूर्य की कृपा से ही दुनिया से अंधकार दूर होता है। इसलिए ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में सूर्य का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम आपको बताएंगे सूर्य नारायण की कैसे पाएं कृपा और सूर्य को अर्घ देने के लाभ क्या हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और इसलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। इस संक्रांति में पूजा ध्यान से कहते हैं विशेष शक्ति मिलती है।

0: सूर्य से जीवन है तो सूर्य से ही ऊर्जा और शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड का ज्योतिपुंज है। भगवान भास्कर की महिमा अद्भुत और चमत्कारी है, इसीलिए सनातन धर्म में सूर्य को साक्षात देव माना गया है। जिनकी उपासना तन और मन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। माना जाता है कि सूर्य की उपासना से तेजस्वी जीवन का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही तरक्की और सम्मान भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। ज्योतिषी बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उसकी कुंडली का सूर्य बलि हो जाता है, उसे संसार में यश, उन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
1: सही तरीके से पिता के सबका सम्मान किया जाए, साथ ही अपने से बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, अपनी आत्मा को मजबूत किया जाए, सूर्य को नियमित तौर पर जल दिया जाए, साथ ही साथ आंखों का ख्याल रखा जाए। इससे सूर्य जो है अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्य देव की उपासना मात्र एक अर्घ देकर भी हो सकती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार संभव है, लेकिन सूर्य को अर्घ देने की विधि और नियम भी हैं। गौर से समझिए।
1: सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जैसे ही सूर्य का उदय हो, पहली किरण दिखाई दे, उसी समय सूर्य के सम्मुख होकर के तांबे के पात्र से जल दें, और जल देते समय ध्यान रहे कि जो जल लोटा लें वैसे पकड़े और वो अपने मस्तक से ऊपर रखें। इससे क्या होगा कि जब हम जल गिराएंगे तो उससे छन करके सूर्य की रश्मियां शरीर को प्राप्त होंगी, चेहरे को प्राप्त होंगी, तो चेहरे में मजबूती आएगी, सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।
0: सूर्य को अर्घ देने की विधि और नियम अर्घ नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ है। माना जाता है कि सूर्य को दिया गया अर्घ आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। ज्योतिष में विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष तरह के सूर्य को अर्घ देने की बातें कही जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग कामनाओं के लिए कैसे दें सूर्य को अर्घ। विशेष उद्देश्यों के लिए कैसे दें अर्घ। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाकर अर्घ दें। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रंगोली या लाल चंदन मिलाकर अर्घ दें। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर अर्घ दें। इंटरव्यू में सफलता के लिए जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर अर्घ दें। बाधा के निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सादा जल अर्पित करें।
1: सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं या सूर्योग्य ब्राह्मणों से पाठ करवा सकते हैं। इससे सूर्य का तेज बढ़ेगा, रश्मियों में कमी आएगी, तो शरीर को भी रश्मियां कम प्राप्त होंगी, ऊर्जा कम प्राप्त होंगी। इसलिए हमें जल देना है, उनके सामने कुछ देर तक खड़े रहना चाहिए, बैठना चाहिए और सूर्य की रश्मियों में हमें टहलना चाहिए सूर्योदय के समय। इससे हमारा शरीर मजबूत होगा, आत्मा का विकास होगा।
0: ज्योतिषी कहते हैं अलग अलग पदार्थों का प्रयोग आप सूर्य को जल देते समय करेंगे तो निश्चित ही उत्तम परिणाम मिलेंगे। लेकिन किसी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है आप भगवान भास्कर को जल देने की स्थिति में ही ना हो, तब क्या करें? जब सूर्य को अर्घ न दे सकें, कम से कम दिन में कुछ देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। एक तांबे का छल्ला या कड़ा धारण करें तो निसंकोच और पूर्ण श्रद्धा से सूर्य देव का ध्यान कीजिए। उन्हें जल अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान सूर्य आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे। आगे हम आपको कर्क संक्रांति पर किए जाने वाले उपाय बताएंगे।
2: कहते हैं सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान।

0: माना जाता है कि सूर्य की उपासना का विधान सृष्टि के आरंभ से ही रहा है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि श्री राम भी सूर्य की उपासना करते थे। दानवीर कर्ण को भी सूर्य का पुजारी बताया गया है। माना जाता है कि कर्क संक्रांति पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन सूर्य देव के दिव्य प्रकाश में इतनी शक्ति है कि इसके आगे कोई भी अंधकार ठहर नहीं सकता। इसलिए तमस बढ़ाने वाली कर्क संक्रांति में सूर्य उपासना और ध्यान से हो सकता है आपका कल्याण।
1: पवित्र सरोवर में स्नान करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है, तांबे के पात्र में लाल रूड़ी लाल चंदन डाल करके सूर्य के मंत्रों का जप करना है। सूर्य के मंत्रों में ओम शह आदित्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्त्रोत का आदि का पाठ करना है तो जीवन की तीव्रता, जीवन में ऊर्जा, जीवन में तेज, जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इस प्रकार सूर्य देव को प्रसन्न करके जीवन को सुखमय बनाना होगा।
0: सूर्य देव को नौ ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य को संसार चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप कुछ खास उपायों पर ध्यान दें और सूर्य नारायण की विधिवत पूजा उपासना करें तो अपने जीवन से बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ खास और बेहद अचूक उपाय। कर्क संक्रांति पर महा उपाय, प्रातःकाल सूर्य की उपासना करें, सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्यनाय नमः। निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें, पीपल या बरगद का पौधा लगाएं, तांबे का एक कड़ा या छल्ला धारण करें।
1: तो सूर्य का गोचर होगा कर्क राशि में, कर्क चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल का दान कर सकते हैं, सफेद वस्तुओं का वस्त्र का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, सफेद चंदन भगवान शिव को लगा सकते हैं, साथ में गेहूं का दान कर सकते हैं। ये दान किसको करना है? जो लोग जरूरतमंद हैं उनको दान करना है।
0: धर्म ग्रंथ के जानकार और संत बताते हैं कि पूजा उपासना में इतनी शक्ति होती है कि तमाम कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अब देर न कीजिए और इन उपायों को अपना कर अपना जीवन खुशहाल बना लीजिए, ताकि सूर्य नारायण की कृपा से आपको मिल सके उत्तम सेहत के साथ ही ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
5: का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या यह विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या यह वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
2: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ की 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है जिससे शुद्धि की जाती है। यात्रा मार्ग की शुद्धि होती है और रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल होते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई और इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें, रात को तकरीबन 8 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट जाएंगे। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आस्था भक्ति के भाव में लीन लोग दिखाई दे रहे हैं इस रथ यात्रा के, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार भगवान जगन्नाथ के भक्त साल भर करते हैं और बस कुछ घंटों की देरी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। रथ यात्रा से जुड़ी रस्में निभाई जा रही हैं। भगवान का श्रृंगार हो रहा है। शाम 4 बजे रथ यात्रा शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने अपने रथों पर सवार होंगे और नगर भ्रमण पर निकलेंगे।

0: परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा जब सदियों की यात्रा तय करते हैं, तब आस्था का ऐसा जनसमुद्र उमड़ता है। भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन है। भगवान बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों का श्रृंगार देखते ही बन रहा है। पूरी एक बार फिर उस रथ यात्रा का साक्षी बनने जा रही है, जिसकी कथाओं का सिरा पुराणों से भी गुजरता है।
1: जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथ को देखने के लिए भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है। पूरा विश्व आज इंतजार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे, भगवान आगे जाएंगे। रथ में बैठ करके रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे, जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर, उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे। और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं।
0: पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। भगवान का रथ 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद तैयार होता है। रथ के लिए लकड़ी को सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। जब तक रथ बन नहीं जाता, तब तक उसे बनाने वाले सात्विक तरीके से रहते हैं। आस्था की ये पूरी यात्रा समाज को एक सूत्र में पिरो देती है।
2: महाप्रभु को तेरे कर तैयार करना, हर साल रथ होना ना, एक किसी के नसीब में ही आता है। तो हमारे नसीब में हर साल हम उसी परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं, उनके सेवा के लिए साड़ी बनाया है, तो उनके सेवक के रूप में आज जीवन भर हमें रहना है और हर साल एक सेवा हमें प्रदान करना है। हमारे बाद हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी नौकरी करे या कोई भी व्यवसाय करे, लेकिन यहाँ सेवा करना जरूरी है। तो ये बाउंड है, आप करना, आपको ही करना है और कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं।
3: वाणी का विषय नहीं है कि इसको व्यक्त किया जा सकता है। जिसके अनेक पुण्यों का जो एक पुंज बना होगा, तो उन पुण्यों के पुंज के प्रभाव से इस रथ यात्रा महोत्सव में लोगों की भागीदारी होती है, आते हैं। निश्चित रूप से वो जीव सामान्य जीव नहीं है। जब हम यहाँ खड़े हैं और देवता हमें देखते होंगे, तो हम भी जगन्नाथ जी के स्वरूप में उनको दिखते हैं।
0: जिस जगन्नाथ मंदिर में भगवान विराजते हैं, वो मंदिर 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। आज भी मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन है और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो सदियों से कौतूहल का विषय रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान की धड़कनों को महसूस किया जा सकता है। यही नहीं, जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य तो ब्रह्म पदार्थ है, जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों में अलग बनाती है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
1: 48, 49, 50.
2: What you doing?
1: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ugh.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
1: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
2: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
3: Learn more at APGE.com.
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
6: हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: मंगला आरती के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ, भक्तों में दिखा भारी उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टर्स ने की भगवान की सेहत की जांच। शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा, दिल्ली और नोएडा में भी तैयारी। जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की होगी जांच। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। हिमाचल में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जुलाई में अब तक 12% सामान्य से अधिक बारिश।

जगन्नाथ रथ यात्रा 200 घंटों की महा कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आपको बता दें कि आज पूरा देश महाप्रभु के भव्य दिव्य दर्शन कर रहा है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ की जय घोष से गूंज उठा है। ये दिव्य धाम हर भक्त को भक्ति, सेवा और समर्पण का संदेश देता है। तो वहां की तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको अहमदाबाद भी लिए चलेंगे, जहां से आस्था और भक्ति की ऐसी ही भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ रथ को खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। तो दर्शन देने आए जगन्नाथ, पुरी से अहमदाबाद तक आस्था अपार, भक्तों के हाथ नारायण के रथ की डोर। तो पुरी जगन्नाथ समेत पूरे देश में आस्था का महोत्सव शुरू हो चुका है। इसकी रौनक जगह जगह से देखने को मिल भी रही है। जगन्नाथ धाम में आस्था उत्सव की बहार है। इंद्रदेव भी उत्सवी अमृत बरसा रहे हैं और भक्त खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने अपने भाव, अपने अपने जज्बात बयां कर रहे हैं। सुबह से भक्त यहां पर डटे हुए हैं। वही तस्वीर अगर गुजरात के अहमदाबाद की दिखाएं या फिर राजकोट की भी हो, पूरी धूमधाम के साथ यहां रथ यात्रा निकाली जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई शहरों में रथ यात्रा की रौनक देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर कोलकाता की बात की जाए तो वहां पूरे भक्तिभाव के साथ भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और इधर नोएडा और दिल्ली की भी बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ पूरे NCR में जगह जगह पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में भक्त रथ यात्रा महोत्सव उत्साह उमंग के साथ मना रहे हैं।

0: भगवान का अपूर्व मिलन का ये समय है। मैं अब पूरी श्री मंदिर के सामने खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान का ये मंदिर फूलों में कितना सजाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि तीनों रथ अब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तीनों भगवान रथ के ऊपर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं रथ के नीचे, रथ के ऊपर भक्तों का और पंडित लोग जो हैं उन लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश, सुबह से बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, फिर भी लोगों का मन में ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये भक्ति कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भगवान को देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त आए हैं वो भक्तों का मन में भगवान को लेकर के कितना श्रद्धा है। आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम पुरुषोत्तम है।
0: कहाँ से है?
1: हम कर्नाटक से है
0: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
1: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए हैं।
0: कब से आ रहे हैं?
1: हम दूसरा साल है मेरा।
2: मैं पूरी से मेरा घर पूरी मंदिर के पास है। भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दी है कि मुझे उनके धाम में रहने का मौका मिल रहा है, तो इट्स वेरी ब्लेस्ड।
3: मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए। हर साल आते हैं हम लोग।
0: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना? मतलब
3: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा। और मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था। इतने साल हो गया मेरे को, आज 29 साल हो गया, लेकिन इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था।
0: इन लोगों का मन में वही श्रद्धा, वही भाव है भगवान को रथ के ऊपर एक बार वही झलक देख लेंगे। वही एक ही झलक इन लोगों को एक साल तक खींच लेगा, फिर दूसरे साल, अगले साल फिर से देख भगवान को देखने के लिए वो मौका मिलेगा। तो वो मौका को हाथ से वो छूटने नहीं देते हैं, इसलिए भगवान के पास आके पूरा आज भारी मात्रा में लाखों तादाद में यहाँ जुट गए हैं। पूरी से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे।
4: तो तस्वीरें देख सकते हैं आप सीधा पुरी से, मेरे सहयोगी अजय हमें दिखा भी रहे थे तस्वीरें। तो वो शुभ घड़ी आ गई है जब भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ खींचेंगे। महाप्रभु गुंडिचा मंदिर की फेरी लगाने को सज धज कर तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि इस पल का भक्त भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो गुड न्यूज टुडे पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। 9 दिन तक लगातार रथ यात्रा महोत्सव चलेगा, जिसकी पल पल की जानकारी, पल पल की तस्वीरें गुड न्यूज टुडे 200 घंटे की महाकवरेज आपके लिए लेकर आया है। रथ यात्रा की उमंग सिर्फ पुरी में ही नहीं है बल्कि अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, हर जगह से तस्वीरें आ रही। देश के हर शहर में महाप्रभु के भक्त उत्सव मना रहे हैं, अपने आराध्य के दिव्य दर्शन करने के लिए जुटे हैं। तो रथ यात्रा के रंग भी आपको दिखाएंगे, इसकी महिमा के बारे में भी बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। सबसे पहले तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा मौजूद है। स्वागत है संजय जी आपका। स्वामी अतेंद्रनंद गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा से। पंडित डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी भी हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े थे, और आपको बता दें कि ऑथर भी हैं और उड़िया स्कॉलर भी हैं, और साथ ही साथ भविष्य मालिका पुराण 40 साल से अध्ययन कर रहे हैं। पंडित श्रीपति आचार्य हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद है सीधा भुवनेश्वर से। लेकिन आप लोगों के पास आऊं मैं सीधा, एक बार चलूंगी मेरे दो सहयोगी अजय पुरी से, और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त मनीष चौरसिया नोएडा से मौजूद है। मनीष, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पुरी की रौनक, पुरी के रंग तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पुरी से बहुत दूर और जहां हम बैठे हैं वही उसी जगह पर दिल्ली एनसीआर में भी इसके रंग दिख रहे हैं। आप खास तौर पर नोएडा में मौजूद हैं, यहां किस तरह की रौनक है, कैसे इस उत्सव को मनाया जा रहा है?
5: दिव्य और भव्य माहौल यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ उस रस्ते के घेरे के अंदर हूँ। कुछ ही देर में यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी। सामने आप देख रहे हैं कि रथ पर किस तरह से कुछ लोग सवार हैं, जो कि पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, और इस पूजा के बाद यहाँ से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये बिल्कुल नोएडा का सेक्टर 121 का जगन्नाथ मंदिर है, और यहाँ भी पिछले कुछ सालों से यहाँ की रथ यात्रा बहुत चर्चा में रही है। रथ जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से जगन्नाथपुरी में जिस तरह से पूजा होती है, जिस तरह से यात्रा निकलती है, उसी के थीम पर यहाँ भी रथ को तैयार किया गया है। यहाँ तक कि रथ में ऐसी बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं जो कि सीधे जगन्नाथ से, पुरी से मंगवाई गई है। आपको बता दें कि इस रथ के टॉप पर जो आप ये आप इसका श्रृंगार देख रहे हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं, वो कपड़ा भी जगन्नाथपुरी से मंगवाया गया है और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर आप देखते हैं जो जगन्नाथपुरी में होती है वो सब कुछ यहाँ पर फॉलो की जाएगी। जिन रस्म रिवाज के साथ, जिन नियमों के साथ रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है, उन्हीं नियम कानून, उन्हीं रीति रिवाज के साथ यहाँ भी यात्रा निकाली जाएगी। इंतजार सब कुछ ही देरों का है, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि रस्सी लंबी कर दी गई है। उस रस्सी के दोनों तरफ जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं। आज ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आए, फिर भगवान श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए निकले हैं। तस्वीरें बेहद विहंगम है, दूर तक ये लाइन पहुंच चुकी है। हालांकि ये रथ यात्रा बहुत छोटी है, महज 2 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन उस पूरे 2 किलोमीटर के रास्ते में आपको दूर तक इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो इससे जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर ढोल ताशे वाले हैं वो भी पहुंच चुके हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि रथ से बस पंडित जी एक बार थम्स अप कर दें तो इनका कार्यक्रम भी शुरू हो जाए। तैयारियां अब लगभग पूरी हो गई हैं, कई लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका?
6: शशि गुप्ता।
5: कहाँ से हैं आप?
6: नोएडा एक्सप्रेस 22, सेक्टर 22।
5: नोएडा से ही है?
6: यस।
5: तो रथ यात्रा को लेकर कितना आप तैयारी कर रहे थे?
6: बहुत खुशी है हमें, रथ यात्रा में निकल रही है, वो 71 सेक्टर जाएगी और बहुत आनंद ले रहे हैं सब लोग, सभी आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है।
4: बिल्कुल
7: हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, हम भी 1 सेक्टर 122 से आए हैं।
4: बिल्कुल मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सीधा पुरी लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय, दिखाइए वहां की तस्वीरें। ये तस्वीरें हम आपको सीधा वहीं से दिखा रहे हैं। अजय जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले चलिए शुरुआत करेंगे। संजय जी, ये जो तस्वीरें हैं ये भव्य है, हम अगर कहें कि ये उत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव ना होकर इससे बढ़कर सांस्कृतिक उत्सव है। देखिए किस तरीके से लोग इस पल को जीते हैं, इंतजार करते हैं, दूर दूर से, देश यानी विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं।
8: रथ यात्रा में शामिल होना एक तरह से टाइम मशीन में बैठने जैसा है। जैसे आप वहां पहुंचते हैं बड़ दंडों पे, जो महामार्ग है जिस पर जगन्नाथ जी का रथ चलता है, तो वो परंपरा लगभग ईसा पूर्व 1000 साल से भी पहले जाती है। आज तक वही परंपरा फॉलो हो रही है, उसी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, उसी श्रद्धा से, उसी उत्साह से, उसी उमंग से उसका पालन किया जा रहा है जो सदियों पहले जब यात्रा शुरू हुई थी। जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों का, इनके विग्रहों का निर्माण हुआ तो राजा इंद्रद्युम्न का शासन था, और ये कथा सारे लोगों को पता होगी कि कैसे विश्वकर्मा ने वहां पर एक बूढ़े कलाकार का, शिल्पी का वेश बनाया और उन्होंने कहा कि जो दारू समुद्र में बहती हुई जो लकड़ी आई है दिव्य, उससे वो भगवान जगन्नाथ की के विग्रह बनाना चाहते हैं और वो हूबहू वैसा ही बनाएंगे जैसा राजा को स्वप्न में दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं ये बना ना लूं तब तक मेरे कक्ष का द्वार ना खोला जाए। महारानी को लगा कि बहुत दिन हो गए, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, तो क्या है, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूर्तियां बन गई, नहीं बनी, क्या हुआ नहीं हुआ उनके मन में। उन्होंने द्वार खोल दिया और आधी बनी हुई मूर्तियां वहां दिखाई पड़ी। राजा और रानी बहुत ही क्षोभ में आ गए और उनको लगा कि अब ये क्या होगा, अब तो वहां से कलाकार गायब हो गया है। आकाशवाणी हुई कि हम इसी रूप में सबको दर्शन देना चाहते हैं और यही हमारा सबसे प्रिय रूप है। ये वही रूप है जो रूप रोहिणी जी जब भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को उनके रास लीलाओं की रसीली कथाएं सुना रही थी, उस समय भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा जी, वो जो महा आनंद से विगलित हो रहे थे, वैसी ही मूर्तियां थी, जिनके पलके नहीं थी, आंखें विस्फारित थी, शरीर आधा गल चुका था। तो ऐसी मूर्तियां जो आनंद में विगलित, जिसको कहते हैं भाव विभोर होना, तो आप अभी भी मूर्तियों को जब देखेंगे, श्री विग्रहों को, तो वो वैसे भाव विभोर अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने अगर पलके इसलिए नहीं है कि उन्होंने आंखें मीच ली तो जगत में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो जगत की एक एक सांस के नियंता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना ऐसा है जैसे टाइम मशीन में बैठ जाना और बिल्कुल 3500-4500 साल पहले पहुंच जाना, तो ये अपने आप में दिव्य अनुभव है, अद्भुत अनुभव है। और यही अनुभव लेने के लिए लाखों लोग वहां बड़ा दंडो पे, यानी श्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में इकट्ठा हो।
4: बिल्कुल स्वामी यतनगिरी महाराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। संजय जी की बात को ही आगे बढ़ाती हूं। स्वामी जी, यहां पर जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में जो भाव होता है वो लगता है कि शायद जीवन अपने प्रभु को सामने देख रहे हैं, उनको लगता है कि वो जो कनेक्शन है वो यहीं पर आकर जुड़ता है। आज भी उसी भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं?
9: सभी दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ और गुड न्यूज टुडे को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज चैनल है जो बहुत सकारात्मक और थोड़ा मन को प्रसन्न कर देने वाली जो समाचार हैं, घटनाएं हैं, उनको रखता है। भगवान जगन्नाथ ये जगत के नाथ हैं और भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए असंख्य ऐसे प्रसंग हैं जो ये बताते हैं कि भगवान वहाँ कोई मूर्ति के रूप में या प्रतिमा के रूप में या केवल भावना के रूप में नहीं रहते, वो वहाँ प्रत्यक्ष रहते हैं। और अनेक ऐसी लोगों के जीवन में घटनाएं घटी हैं भगवान जगन्नाथ की, जो चमत्कार जिसको कहते हैं, साक्षात चमत्कार वह रहे हैं। और वर्ष भर जो चार हमारे मुख्य धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका, उसमें भी जगन्नाथ का बड़ा विशेष स्थान है, क्योंकि जगन्नाथ एक ऐसा स्थान है कि जगन्नाथ का भात और
8: जगत पसारे
9: सारा संसार जो हाथ पसारे हाथ तो कहा जाता है। और यहाँ भगवान स्वयं बाहर आते हैं, बाकी जगह भी भगवान की इस तरह की यात्राएं आती हैं, लेकिन भगवान का कोई ना कोई प्रतिनिधि आता है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं आते हैं, ये बड़ी बात है। और उसी का दर्शन करने, जो अभी बात हो रही थी कि भगवान दर्शन देने आते हैं कि भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने आते हैं,
10: बिल्कुल,
9: क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मोहि संत अति प्यारे, मैं भक्तन के पीछे पीछे जाऊं, तो भगवान अपने भक्तों से ही सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं। और ये जो उत्सव है ये भगवान की प्रसन्नता का उत्सव है। भक्तों को तो प्रसन्नता हो ही रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भक्तों से भी कई गुना अधिक भगवान के उस उत्सव से प्रसन्न,
10: क्योंकि वो अपने भक्तों से मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी स्वामी जी। डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, 4 बजे का वक्त था। मैं चाहूंगी कि आप जरा इन रिचुअल्स को, क्योंकि तस्वीरें, अगर आप सीधी तस्वीरें, क्योंकि गुड न्यूज टुडे दिखा ही रहा है वहां से, पूरी में इस वक्त तमाम रिचुअल्स की शुरुआत हो चुकी है, अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बताते चले, अगर लोग इस यात्रा को समझना चाहते हैं तो इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, इन तस्वीरों को थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमें एक्सप्लेन करें, बताएं कि किस तरीके से रथ यात्रा शुरुआत होती है, आगे बढ़ती है।
11: जय जगन्नाथ। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाहाभीरि नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभोर ब्रह्मा सुरर्पते गणेशा चित्तपदो जगन्नाथ स्वाहामी नयन पथ गामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। आज सारा ब्रह्मांड जगन्नाथमय है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जगन्नाथ देवादि देव रसरास रसिकेन्द्र मौली महाप्रभु नाथों का नाथ जगन्नाथ, सारा ब्रह्मांड में देवता, चतुर्दश ब्रह्मांड में सभी पवित्र तत्व से आज उड़ीसा के पवित्र पावन जगन्नाथ क्षेत्र चतुर्वर्ग और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के जो यात्रा, जो मोक्ष यात्रा, जिसको पतित पावन यात्रा कहते हैं, जिसको घोष यात्रा कहते हैं, जिसी को रथ यात्रा भी कहते हैं, इसी समय जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य सेवक ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज रथ पर आरूढ़ है और रथ मार्जना कार्य में वो अभी नियोजित है, क्योंकि जगन्नाथ के चलंती प्रतिमा ठाकुर राजा श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज, जो इंद्रदिम्न महाराज के दायित्व के हिसाब से ये परंपरा जगन्नाथ संस्कृति का है। पहले शंकराचार्य आते हैं रथ पर, उसका बाद ठाकुर राजा आते हैं, और ठाकुर राजा रथ मार्जना करते हैं। मार्जना करने के बाद फिर रथ के नीति विधि के साथ फिर रथ यात्रा अनुष्ठित होता है। अभी तीनों रथ पर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विद्यमान है। आज के दिन बड़ा पवित्र दिन है, क्यों न एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य श्री जगन्नाथ क्षेत्र को रथ यात्रा के समय पर आए थे, और उससे पहले आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान का अंश अवतार थे। पर जब जगन्नाथ जी को उन्होंने रथ पर आरूढ़ होके देखे, तब उन्होंने जगन्नाथ अष्टक में कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मदा भीर नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपते गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ, आप मेरे आंखों के पथ है, आपके बिना मेरा उद्धार नहीं है। और हे स्वामी, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र को आप जाएंगे आपका हाथ उठ जाएगा और सब जगन्नाथ जी को समर्पण में आ जाते हैं, क्योंकि ये मर्त्य वैकुंठ है। आज मर्त्य वैकुंठ पर इंद्रदेव मंद मंद बारिश करते हैं, क्योंकि हर समय हर साल रथ यात्रा में बारिश होता है और सारे देवताओं का आगमन होता है, थोड़े थोड़े बारिश होता है, बहुत संख्या में भीड़ भाड़ होता है। ये परंपरा जगन्नाथ संस्कृति का, और आज जगन्नाथ क्षेत्र सारा ब्रह्मांड में हर देश में हर राज्य में रथ यात्रा अनुष्ठित हो रहा है। ये एक पवित्र दिन है, और अभी ठाकुर राजा जगन्नाथ महाप्रभु के रथ पर मार्जना कार्य, जिसको छेरा पहरा कहते हैं, सुवर्ण झाड़ू में रथ यात्रा के पहले राजाधिराज जो सबसे हिंदू सनातन धर्म के मुख्य राजा अभी भी है जगन्नाथ क्षेत्र में, जो ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज, परम पूज्य दिव्य सिंह महाराज, अभी जगन्नाथ के कार्य में रथ पर आरूढ़ है और कार्य चल रहा है। सेवक लोग अभी दंडायमान है और रथ प्रस्तुत है जाने के लिए। पर रथ के नीति नियम के अनुसार ठाकुर राजा के मार्जना के बाद फिर जगन्नाथ जी के छोटा नीति नियम पूजा है, उसके बाद फिर रथ पर घोड़ा जोचा जाएगा, फिर रथ पर रस्सी लगा जाइए, सब नियम है, क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ पर जो रस्सी लगता है।
10: हाँ, मैं लौटती हूँ सर आपके पास, लौटती हूँ मिश्रा जी आपके पास। पंडित श्रीपति आचार्य जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम परंपराओं से आप बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि तीनों रथ वहां पर सज चुके हैं और अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता ही रहे थे कि क्या क्या नियम रहते हैं इसके, किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती है।
12: जय जगन्नाथ। विश्व के सारे दर्शकों को भगवान श्री जगन्नाथ की तरफ से आप सबको स्वागत करते हैं। ये रथ यात्रा में हम लोग का, जो कि सारा विश्व का भगवान जगत के नाथ, जो कि सारे विश्व का नियंता, जो कि एक वैज्ञानिक भी है, वो भी शास्त्रों के शास्त्रों है, वो एक तंत्र का अधिपति भी है, वो एक जैसे मिराकल भगवान बोला जाता है। वो भगवान जी का हम देखेंगे तो वो मंदिर जहाँ का हर चीज चमत्कार ही चमत्कार होता है, जो कि समुद्र पतन से 200 फीट ऊपर भी वहां पे जो तीन आपका कुआं है, साल भर भी उसमें पानी है, जो कि गंगा, जमुना और सरस्वती, वहां पे एक पेड़ है जो वटवृक्ष बोला जाता है, वो हजार साल से है, वो वहां से कहाँ से वो पानी आता है वो भी पता नहीं। वहां का हर चीज, जैसे कि आपका वो फ्लैट भी बोलेंगे, वो भी आपका सब हर टाइम तो पवन के अपोजिट में होते हैं, वहां पे आपका रोसोसाल भी आपको पता है। इसे देखा जाए तो ये भगवान जी का हर चीज, हर महिमा, हर मोमेंट भी स्पेशल होता है। वहां पे कभी भी टाइमिंग का कोई चीज नहीं है, जो बोले थे अभी वहां से कि वो टाइम मशीन में पहुंच जाना जैसा, कि वहां पे पहुंच जाना भी वैसा ही है। तो आज जो हो रहा है, मैं आज की एक उड़िया के हिसाब से, एक ज्योतिर्विद के हिसाब से मैं भी यहाँ पे बोलूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वो महाभारत में बोले थे अर्जुन जी को कि मैं ही हूँ ग्रह रूपी जनार्दन, तो सारे ग्रहों का अधिपति तो मैं ही हूँ, तू एक बार भरोसा तो करके देख। तू ऐसे ही एक चीज को लेकर लिंक करते हैं, जैसे कि ये जगन्नाथ मंदिर का आज वो रथ यात्रा हो रहा है, तो जो भी भरोसा करेंगे भगवान के ऊपर, वो भगवान आज दर्शन देने आए हैं नहीं, भगवान सारे दर्शकों को देखने के लिए आए हैं। भावों के भगवान होते हैं, सारे भक्तों का भगवान होते हैं। जब भक्त सोचता है कि भगवान को देखने के लिए तो भगवान पहुंच जाते हैं, इसका पूरा ऐतिह्य है, हम लोग के पास प्रमाण भी है। जब भगवान जी को दही खाना था वो पहुंच गए थे वो भक्त के घर में जिसका नाम था मानिक। जब भगवान जी को पान खाना था वो पहुंच गए थे भक्त के घर में, वो थे हम लोग का जोगे बाप। और भगवान एक भी ऐसा हुआ था इतिहास में कि बलराम दास करके एक बहुत बड़े भक्त थे जिसके पास वो एक बाली का वो एक छोटा सा रथ बनाए थे, वहां पे भी चले गए थे। अरे इसे देखा जाए तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का भक्त के साथ जुड़े रहना बहुत ऐतिह्य है नट पुराण। तो वहां पे एक देखा जाए तो भगवान श्री शंकराचार्य जब ये रथ यात्रा का शुरू करवाए थे जो हजार साल से चल रहा है, तो भगवान ने साल में एक बार ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की तिथि दैट इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी द स्पेशल डे जो कि हम लोग का तिथि के हिसाब से संस्कृत के हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से विज्ञान के हिसाब से एक स्वतंत्र दिन होता है। उसी दिन भगवान ने दर्शन देने आए है सारे भक्तों को और सर्व भक्तों को भी देखने के लिए आए है। सारे भक्तों को भी वही टिप्स दूंगा आज एस्ट्रोलॉजर कि मोक्ष पाना है तो सारे विश्व का यही एक भगवान है, यही एक दांड है, यही एक वरदान है, यही एक भूमि है जहाँ पे आप पहुंच जाएंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। वो कुंडली है या ना हो, आपका कोई जन्म का डिटेल्स हो या ना हो, आज एस्ट्रोलॉजर में बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पहुंच जाइए आपका भाग्य।
10: और उससे भी बड़ी बात पंडित जी आपने बहुत सही बात कही है, उससे भी बड़ी बात भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव सबसे जरूरी होता है। तो 200 घंटे की महा कवरेज है, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पुरी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या परंपराएं से जुड़ी हुई हैं, किस तरह के रिचुअल्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन रथ यात्रा केवल पुरी में नहीं है, चाहे वो अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, दिल्ली एनसीआर हो, हर जगह पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो

0: नैनों से हृदय तक का रास्ता है वो बड़ा दंड है, वो महामार्ग है जिस पर जगन्नाथ जी का कि कृपा का रथ चलता है। और तभी ये कहा गया कि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, यानी बलभद्र सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी को हमारा नमस्कार है। और जैसा कि अक्षय तृतीया से रथ बनने की शुरुआत होती है, ये लगभग 3,500 साल से भी पुरानी परंपरा है। हर चीज बनने की तिथि तय है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रथ यात्रा आ गई और काम अधूरा रह गया या किसी को ये लगा कि ये काम नहीं हुआ, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है कि 300 से ज़्यादा लकड़ी के टुकड़े लगते हैं जिसमें नीम की लकड़ियों का ये रथ बनाया जाता है। हर साल नया रथ बनाया जाता है। 7 वर्ग के शिल्पी इसमें काम करते हैं और वो शिल्पी हैं हर बार नए नहीं होते, वो शिल्पी पुश्तों से परंपरा से खानदानी यही काम करते हैं। सिर्फ यही काम नहीं करते हैं, बहुत सारे इसमें डॉक्टर इंजीनियर और तरह तरह के प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो छुट्टियां लेकर रथ बनाने के काम में आते हैं क्योंकि उनके पुश्तों से ये काम है और ये जगन्नाथ जी की सेवा है। अक्षय तृतीया से जो लकड़ी के लॉग्स हैं बड़े बड़े टुकड़े वो वहां आ जाते हैं, फिर उनके शिल्पकार अलग हैं, नक्काशी करने वाले अलग हैं, चित्रकार अलग हैं, कपड़े का काम करने वाले अलग हैं, बाकी फूल की सजावट करने वाले अलग हैं, सबके काम बटे में और सबको ये पता है कि मेरा काम क्या है। ये रथ जब रथ यात्रा के एक दिन पहले यानी पूरे 2 महीने लगते हैं, ये भी तय है कि किस रथ की ऊंचाई कितनी होगी। जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम नंदी घोष है, और जो भगवान बलभद्र जी का रथ है उसका नाम तालत ध्वज है, और जो भगवान भगवती सुभद्रा जी का रथ है उसका नाम दर्प दलन है। और इन रथों के घोड़ों के नाम हैं, रथों में घोड़ों के लगाम जो लगती है रस्सी उनके नाम हैं, उनके सारथियों के नाम हैं और तमाम चीज़ों के नाम हैं। पूरे रथ में कहीं कोई कील का इस्तेमाल नहीं, कहीं कोई तार का इस्तेमाल नहीं, धातु का कोई काम नहीं, जो भी काम है वो लकड़ी और कपड़े का है। और ये भी तय है कि रथों की ऊंचाई भगवान जगन्नाथ जी के रथ में जिसका नाम नंदी घोष है उसमें 16 पहिए होते हैं, उसकी ऊंचाई लगभग 62 फीट होती है, 62 से 63 फीट। और जो भगवान बलभद्र जी का रथ है वो उनसे थोड़ा छोटा होता है, उसमें 14 पहिए होते हैं जिसका नाम तालत ध्वज है और उसकी ऊंचाई लगभग 60 फुट होती है। हाँ। और सबसे नीचा रथ होता है वो उनकी लाडली बहन सुभद्रा जी का है जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट से 58 फीट होती है और उसका भी नाम है।
1: मैं चाहूंगी जरा इन दृश्यों को भी आप एक्सप्लेन करते चलिए, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, ये कौन सी परंपरा है जो निभाई जा रही है।
0: ये सबसे पहले ये गजपति आ रहे हैं और गजपति पुरी के नरेश होते हैं, राजा होते हैं, और सबसे पहला ये होता है कि जैसे ही बड़ा दंडों पे महामार्ग पे भगवान तीनों भगवानों के रथ आकर लगते हैं तो उस पे सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन को स्थापित किया जाता है, वहां से वो आते हैं। तो इसको पहंडी यात्रा बोलते हैं, पहंडी मतलब शुभ यात्रा चलने की शुरुआत। और उसके बाद सबसे आगे आगे भगवान बलभद्र जी का, उनके बाद चक्रराज सुदर्शन के बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी को लाया जाता है, बीच में देवी सुभद्रा जी होती हैं और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। तो जैसा कि सारे लोगों को पता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को महास्नान होता है, मंगल स्नान होता है, और 108 औषधि युक्त सुगंधित पदार्थों के और दिव्य पदार्थों से उनका स्नान होता है, 108 कलशों से। और वो स्नान होने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी को बुखार आता है, ज्वर आता है और वो 15 दिन ज्वर में रहते हैं, आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहते हैं। भगवान का जो भोग है वो भी आम इंसानों की तरह औषधियों का काढ़ा और फलों का रस उसका भोग लगता, ना कि 56 भोग, क्योंकि वो हजम नहीं होते ना। तो इसलिए फिर 15 दिन बाद जब वो स्वास्थ्य लाभ होता है उनका, तो उसके बाद फिर वो अपनी मौसी के यहाँ, जैसे बाकी हम बच्चे भी गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाते हैं तो ये अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। और वो मौसी के यहाँ जाना एक तरह का उत्सव है जिसमें भगवान भक्त न केवल भगवान से मिल सकते हैं, भगवान भी आतुर होते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। और फिर वो यात्रा शुरू होती है, तो जो पहंडी यात्रा है उसके बाद छेरा पहरा होती है, छेरा पहरा में नरेश आते हैं, और चूंकि पुरी के राजा हैं और पूरे 3 लोक के राजा के लिए वो रास्ता मार्ग प्रशस्त करते हैं, साफ करते हैं, तो सोने का झाड़ू उनके हाथ में होता है। जब महाराजा इंद्रद्युम्न का राज था, जब पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई, तो उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने खुद अपने हाथों से वो

0: झाड़ू लगाई थी और आज तक वो परंपरा चल रही है। हम देख सकते हैं कि पुरी के नरेश गजपति वहां पर पहुंचे हैं, पालकी में सवार होकर आते हैं, उस समय की वैसी ही वेशभूषा में आते हैं और वो भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर झाड़ू लगाते हैं, उसको छेड़ा पहुड़ा बोलते हैं और उसके बाद फिर आगे पूजा के बाद महाप्रसाद लगता है और उसके बाद वो जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उन सीढ़ियों को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है और रथ यात्रा शुरू होती है। यानी जगन्नाथ जी का ये आदेश होता है कि बस अब आगे चला जाए, रथ को आगे बढ़ाया जाए।
1: बिल्कुल डॉक्टर काशीनाथ जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से परंपराएं जुड़ी हैं और 3000 साल पुरानी परंपरा को आज तक ठीक उसी तरीके से निभाया भी जा रहा है। अभी अगर मैं आपको कहूं कि 4 बजे का वक्त था जब यात्रा की शुरुआत हुई, 4:45 वक्त होने को आया है इस वक्त वहां पर, क्योंकि तस्वीरें सीधी हम वहीं से दिखा रहे हैं, क्या कुछ अभी यहां पर चल रहा है अगर आप एक्सप्लेन कर पाए।
2: जय जगन्नाथ। पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जगन्नाथ जी के जो रथ निर्माण होता है वो खसी वृक्ष के लकड़ी में होता है, नीम में नहीं होता है। जगन्नाथ जी का जो विग्रह होता है वो नीम के वृक्ष में होता है। और ये जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का जो विचार हम करते हैं, ये स्कंद पुराण और कई जगन्नाथ संस्कृति के शास्त्र के अनुसार ये रथ यात्रा 3500 साल का विचार को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है इंद्रदिम्नो नामे राजा सत्य युगे भविष्यति। ये जो विचारधारा, भगवान विष्णु एक दिन जिस समय सत्ययुग का निर्माण नहीं हुआ था, युग चक्र शुरू नहीं हुआ था, यानी आज से कई लाखों कल्प से पहले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा हो रहा था, उसी समय राजा इंद्रदिम्न भी थे और उसके बाद भी कई राजा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ये क्षेत्र अविनाशी क्षेत्र, ये क्षेत्र वैकुंठ है। ये यात्रा का जो इतिहास, इतिहासकारों की विचारधारा में नहीं शास्त्रों की विचारधारा में अगर हम लेते हैं, शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है, जब युग निर्माण हुआ, जब वराह कल्प में भगवान विष्णु नारायण उसी समय ये जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए थे और उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को बताए थे, ब्रह्मदेव सत्ययुग में राजा इंद्रदिम्न नाम के एक मेरे विष्णु भक्त आएंगे और उन्होंने मेरा मंदिर का निर्माण करेंगे और आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो जाएंगे बुलाने के लिए और आप उसी समय आके मेरा सारा कार्य को संपन्न करना। ये जगन्नाथ जी का परंपरा है, तो कोई लाखों इन्फिनिटी ईयर वी कैन काउंट, इसका हम विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा है दक्षिण सददो स्थिरे सत्व देश प्रतिष्ठितम, दक्षिण सिंधु तटवर्ती क्षेत्र सत्व देश, जहां को वैकुंठ हम कहते हैं जिसको, वो क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र है। और सबसे बड़ा परंपरा जगन्नाथ क्षेत्र की जो रथ यात्रा होता है, इसमें सिर्फ मानव लोग भाग नहीं लेते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को इंद्रदेव आते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी आते हैं और सबका नियम है, शास्त्र में लिखा है सभी देवी देवता इंद्रदेव शंकर भगवान रथ के पीछे चलेंगे, आगे चलेगा भगवान का रथ, ये शास्त्रीय विधि है। और एक शास्त्र में जो लिखा है जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा में जो भीड़ होता है, लोग जो आते हैं, ये एक स्वतंत्र तत्व है। ये तत्व कहता है जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे तब तक जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को कोई जा नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि वैकुंठ को बुलाना, और ये यात्रा मोक्ष यात्रा है, ये यात्रा पतित पावन यात्रा है, ये यात्रा संसार की सर्व धर्म को उद्धार करने के लिए प्रभु ये यात्रा करते हैं और ये यात्रा के माध्यम से दर्शन स्पर्श रथ चलन प्रसाद सेवन से जो पापी तापी गलत विचारधारा गलत कर्म जो भी मनुष्य का कलमुष है, हाँ। सारे कलमुष को हरण करने के लिए ये रथ यात्रा होता है, शास्त्र में लिखा है।
1: आप आगे बताइए, अगर मैं लौटती हूँ संजय जी, अब क्योंकि मोक्ष यात्रा कही है और हमने देखा है कि पहले जब मोक्ष यात्रा ही कहते हैं, एक तो सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, संजय जी ये भी एक्सप्लेन करिए और साथ ही साथ ये बताइए कि रस्सी कौन खींचता है इस रथ को, क्या कोई छू भी सकता है या नहीं छू सकता, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की एंट्री होती है, इसमें आम जनता की मैं बात कर रही हूँ।
0: इसमें आम जनता के लिए ही रथ यात्रा है, आम जनता जब रथ वहां पहुंच जाता है या यहाँ जब बड़े दंडों पे रथ आता है तो उस समय बहुत सारे लोग जिनको जाने की इजाजत होती है, जिनको पास मिला है, वो रथ पर जाते हैं और उस समय आप भगवान के सबसे नजदीक होते हैं, निकट होते हैं, आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उस समय कोई भी जा सकता है और जैसा कि परंपरा रही है कि जब भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं उस समय वहां के स्थानीय लोग जो भील और स्थानीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग भगवान की सेवा पूजा करते हैं। इसलिए भगवान को रथ यात्रा पर जब वो रथ पर सवार होते हैं तब उनको फल फूल का भोग लगाया जाता है और वो सारे लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं। इसके साथ ही
1: मोक्ष की यात्रा, इसको
0: ये मोक्ष की यात्रा इसलिए कहते हैं कि भगवान दक्षिण दिशा में उनकी मासी का घर है जिसको गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, तो मासी माँ मंदिर में वो जाते हैं अपनी मासी के यहाँ, 10 दिन तीनों भाई बहन वहां पर रहते हैं। और
1: जरा दर्शकों को बताते चले कि ये तस्वीरें आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, वहां पर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। संजय जी, ये नोएडा की ही तस्वीरें हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, और उसमें सबसे आगे आगे भगवान बलभद्र का रथ चलता है, बीच में देवी सुभद्रा रहती हैं, सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ रहते हैं और 10 दिन जब वहां रथ रहता है पीछे महालक्ष्मी जी को पता चलता है, भगवान विष्णु भगवान की प्रिया, उनको पता चलता है तीनों भाई बहन वहां चले गए हैं मासी के यहाँ, तो बहुत नाराज होती हैं, अरे मुझे बिना बताए हमारे घर में से। तो भगवती लक्ष्मी फिर वहां पर तीसरे दिन वो वहां जाती हैं मासी मंदिर में, वह अंदर नहीं जाती हैं लेकिन वो बाहर आकर रथ में कुछ नुकसान पहुंचाती है, तोड़ने की परंपरा रथ को, वो अपना क्रोध निकालती हैं। तो आज भी वहां के पुजारी महालक्ष्मी मंदिर के वहां जाते हैं श्री मंदिर के और वहां जाकर रथों को कुछ नुकसान पहुंचा के आते हैं और फिर यहां आते हैं। जब रथ यात्रा बहुड़ा यात्रा होती है 10 दिन बाद जब एकादशी को, तो वो सोना बेस में दर्शन होते हैं लेकिन भगवान की हवा खराब है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि देवी लक्ष्मी नाराज है।
1: बिल्कुल, चलिए एक बार ये सीधी पुरी की तस्वीर संजय जी, ये भी ये बताइए।
0: ये गजपति अपने पालकी में वापस जा रहे हैं, ऐसे पालकी में वो आते हैं और एक पूरे राजसी उसके साथ, और उसके बाद वो भगवान जगन्नाथ के रथ पर सवार होते हैं। सब पहले शंकराचार्य जी आते हैं, फिर वो गजपति आकर और सोने के झाड़ू से बहारो लगाते हैं जिसको छेरा पहरा बोलते हैं, और छेरा पहरा के बाद फिर गजपति वहां पर पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद गजपति जाते हैं और जब वो वहां से अपने महल की ओर वापस जाते हैं फिर रथ यात्रा शुरू हो जाती है,
1: की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल पंडित श्रीपति आचार्य जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, ये तस्वीरें भी मैं चाहूंगी आप हमें बताते चलिए कि इस वक्त वहां पर किस तरह के रिचुअल, क्या क्या परंपराएं वहां पर हो रही है अभी।
3: ये हम लोग का जो कि जगन्नाथ संस्कृति का हम देखेंगे तो हम जो कि राजा है जो गजपति है वो जगन्नाथ जी के जो कि हम लोग का उड़िया लैंग्वेज में भी चलंती प्रतिमा मीन्स हम गजपति महाराजा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के चलंती प्रतिमा है। तो भगवान ये गजपति महाराजा आएंगे कि तीनों रथों को पहले वो के चेहरा पहरा करेंगे उसके बाद भगवान ने निकलेंगे। यहाँ पे एक परंपरा को देखो कि जगन्नाथ जी ने दोनों भाई बहन को आगे रखे हैं और वो पीछे हैं। ये भी एक हम लोग को मैसेज जाता है, एक नैतिक शिक्षा भी मिलता है कि सारे एक सब परिवार में कि कैसे परिवार को जुड़े रखना है और कैसे भाई बहन को साथ में रखना है और इससे कि प्रोटेक्शन भी दे रहे भाई बहन को। तो यहाँ पे भी एक मैसेज जो भी अभी सब बोल रहे थे कि माँ लक्ष्मी जी ने वो मंदिर में रह गई है और उनको वो साथ में नहीं लाए है, तो यहाँ पे भी एक मैसेज आ रहा है कि जो साथ में जन्म लिए है जो कि भाई बहन है उन लोग के साथ रहना है, जो पहले शादी के बाद जो मिले हैं वो बाद में आते हैं। तो यहाँ पे भी एक रिचुअल्स है, एक रसगोला जो कि मीठा खाने का एक भी है, आप जो पूछ रहे थे वो पीछे रह गए कि जब माँ लक्ष्मी को मतलब मनाने के लिए जगन्नाथ जी लौटेंगे मंदिर तो उसी दिन वो भी मीठा खुआएंगे जो कि माँ लक्ष्मी जी को, वो एक रसगुल्ला होता है जो कि उड़ीसा का सबसे फेवरेट वो रसगुल्ला होगा, वही मीठा को वो माँ लक्ष्मी को खुआएंगे। और अभी ये जो रिचुअल्स जा रहे हैं कि गजपति महाराज जो कर रहे हैं तो ये है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी बलभद्र जी और माँ सुभद्रा तीनों ने वो गजपत जी का जब तक गजपत जी उनका रथों में जाके उनको आह्वान नहीं करते तब तक ये रथ यात्रा कभी शुरू नहीं हो सकता, ये रथ आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि भक्तों का अधीन भगवान होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज भी जाता है कि ये जितने सारे लाखों का लोग वहां पे खड़े हैं ये लोग भी जब तक नहीं पहुंचेंगे, जो साल में एक बार भी कभी सोच लिया कि मैं इस बार इस साल जगन्नाथ जी के रथ यात्रा देखने जाऊंगा, जब तक वो भक्त नहीं पहुंचा है तब तक ये रथ आगे भी नहीं जाएगा।
1: बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी एक बार क्योंकि ये पूरी की तस्वीरें हैं। सीधा मनीष चौरसिया का रुख कर लेते हैं क्योंकि नोएडा में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। मनीष, आपके पास आना चाहेंगे। मनीष, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी, दिखाइए तस्वीरें वहां की।
4: देखिए, रथ यात्रा शुरू होने वाली है, अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि समय 3:30 के आसपास का था, पर देरी हुई है, पूजा पाठ हो चुका है, इंतजार अब शायद किसी का किया जा रहा है और उसके बाद जल्द ही रथ यात्रा शुरू करने की बात कही जा रही है। लेकिन जितनी देरी, उस देरी का इन श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था पर कोई असर नहीं। अच्छी खासी गर्मी है, लोग पसीने से तरबतर हो चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आप परेशानी का एक भी भाव नहीं देखेंगे। लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोशिश हर कोई यही कर रहा है कि जब रथ आगे बढ़े तो उस रथ को खींचने वाले रस्से में उनका भी हाथ लग जाए, थोड़ी उनकी ताकत लग जाए, उनके हिस्से भगवान जगन्नाथ का थोड़ा सा ही सही लेकिन आशीर्वाद आ जाए। तमाम सारी इस भीड़ में आप बुजुर्ग देख रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और किसी के भी जोश में कोई कमी यहां पर नहीं हुई है। कब से आए आप लोग यहां पे?
5: हम आज ही आए थे, हमारा घर ही यहीं पे।
4: तो जगन्नाथ यात्रा के लिए कितना आप लोग उत्साहित थे?
5: बहुत ही ज्यादा। हम 6 महीने से बहुत ही इंतजार कर रहे थे इस दिन का।
1: बिल्कुल, साल भर लोग प्रतीक्षा करते हैं इस घड़ी का। संजय जी, वक्त की कमी, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे। देखिए, परंपराएं और रिचुअल्स तो तमाम पूरी से जुड़े हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, क्योंकि जैसे बता भी रहे थे डॉक्टर मिश्रा कि 350 साल पुरानी ये पूरी रथ यात्रा, और आप भी बता रहे हैं कैसी परंपराएं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये देश के अलग अलग कोने में, चाहे वो कोलकाता है, अहमदाबाद है, राजकोट की तस्वीरें, अब नोएडा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह पर इसकी शुरुआत हो गई।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भी तय होता है कि कौन से रथ में कपड़ा कौन से रंग का होगा, यानी शिखर कैसा होगा। तो लाल काला, लाल नीला या हरा, और लाल पीला, ये तीनों रथों के अलग अलग हैं। और अष्टछाप के कवियों ने बहुत सुंदर अपने भाव व्यक्त किए हैं। जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब सेवा कर रहे थे भगवान की, श्रीनाथ जी की, तो सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, जब रथ यात्रा का दिन आता था तो पद लिखते थे। उन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया है कि देखो देखो नैननी को सुख, रथ बैठे हरियाज, अग्रज अनुजा सहित श्याम घन सबय मनोरथ साज, हाटक कलसा ध्वजा पताका, छत्र चमर सिर ताज, तुरंत चाल चली चपल चलत है, देख पवन मन लाज। तो इस तरह से रथ यात्रा इतनी सुंदर है कि उसमें वो कह रहे हैं कि अपने अग्रज और अनुजा के साथ भगवान हरि आज रथ पर विराजे हैं, और इसकी सुंदरता शोभा देखते ही बनती है। तो ये जो परंपराएं हैं, ये वैसी ही परंपराएं, देखिए रथ इस तरह से भगवान को लेके आया जाता है, और जब भगवान को रथ यात्रा के लिए निकालते हैं तो उस समय उनको बहुत ताने मारते हैं पंडित पुजारी कि अब तो चलो, अब क्या श्री मंदिर में बैठे हो, अब चलो रथ यात्रा पे, और फिर उनको बहुत खींच खांच के हिलाते झुलाते वो लेकर आते हैं, और फिर रथ यात्रा पर ऐसा आनंद होता है कि जिसमें आप सोचिए कि जो भी देखने वाले, दर्शन करने वाले हैं, उन सारे लोगों को लगता है, यहां देखकर ऐसा लगता है कि सशरीर उपस्थित होकर अगर मानस को वहां लगा देना वो तो अद्भुत है, लेकिन अगर आप यहां बैठकर भी अपना चित्त वहां लगा रहे हैं तो ये मन चंगा तो कठौती में गंगा है। कई सारे लोग तो वहां सशरीर मौजूद हैं लेकिन उनका ध्यान लगा है कि किससे तकाजा लेना है, किसके पैसे उधार है, घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उनको फिर वो नहीं होता। आपको तन और मन दोनों को चित्त और वित्त और
1: समर्पित करना पड़ता है प्रभु के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। लेकिन आपको बताते चले कि गुड न्यूज टुडे पर 200 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक यहां हम ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ।
1: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
1: Smartless.
3: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
1: Marketplace.
4: Big three on the program today, or, you know, the big three of
1: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: आज पुरी की पवित्र धरती पर उत्सव का माहौल है। रथ यात्रा के बीच भक्तों का उत्साह भी देखने लायक है। ये केवल एक रथ यात्रा नहीं है बल्कि ऐसा दुर्लभ अवसर भी है जिसको लेकर मान्यता है कि भगवान अपने मंदिर से निकलकर जन जन के द्वार पहुंचते हैं। तो वहीं भक्तों के लिए भगवान का रथ और उसकी रस्सियां बहुत धार्मिक महत्व रखती हैं।
3: ये डोर नहीं साधारण, साक्षात नाग का रूप, छुए जो प्रभु की रस्सी को मिटे जन्म के कूप। लकड़ी के तीनों दिव्य रथ पूरी भव्यता के साथ सजकर तैयार हैं, और वो पवित्र रस्सियां भी जिनके सहारे लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को नगर भ्रमण कराएंगे। ये वही अवसर है जिसका इंतजार केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान का रथ खींचना सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए ही सही लेकिन रथ के इस रस्सी को थामने या छूने की इच्छा रखता है। इस तरह रथ खींचना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। ये रस्सी केवल मोटे नारियल रेशों से बनी साधारण डोर नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच जुड़ने वाले विश्वास का प्रतीक मानी जाती है।
4: बहुत अति सुंदर, हम लोग पहले आ गए दर्शन करने मगर अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है।
5: कितने बार देख चुके हैं रथ यात्रा पहले से?
4: रथ यात्रा फर्स्ट टाइम आए।
5: अच्छा,
4: फर्स्ट टाइम आए।
5: कैसा लग रहा है ये भीड़?
4: बहुत अति सुंदर
6: लग रहा है। हमको यहाँ आकर ऐसा लगा कि बहुत भगवान साक्षात यहाँ दर्शन दे रहे हैं।
3: जो रस्सी भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी है वो शंखचूड़ कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम के असुर ने भगवान के हरण का प्रयास किया था, बाद में उसे मोक्ष मिला और प्रभु की सेवा का वरदान प्राप्त हुआ। उसी स्मृति में भगवान के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ रखा गया। मान्यता है कि इस रस्सी का स्पर्श शुभ फल देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसी तरह दूसरे यानी भगवान बलभद्र के रथ से जुड़ी रस्सी का भी महत्व है। मान्यता है कि वासुकी नाग ने अपने बड़े भाई शेषनाग से सेवा करने की इच्छा जताई थी, तब उन्हें भविष्य में भगवान बलभद्र की सेवा का अवसर मिलने का आशीर्वाद मिला, इसलिए बलभद्र के रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। तीसरे यानी देवी सुभद्रा के रथ से जुड़ी रस्सी भी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वर्ण चूड़ कहलाती है और संसार के मोह, कर्म और आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का संदेश देती है। श्रद्धालु इसे जीवन में सदगति और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक मानते हैं। रस्सियों के साथ रथ पर लगे घोड़े भी धार्मिक महत्व रखते हैं। सभी रथों पर चार चार प्रतीकात्मक घोड़े लगाए जाते हैं। जगन्नाथ के सफेद घोड़े सत्य, शांति, शुभता और ऊर्जा का संदेश देते हैं। बलभद्र के काले घोड़े समय, परिश्रम, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि देवी सुभद्रा के रथ की चार घोड़ियां नारी शक्ति, विजय, आनंद, मोक्ष और अडिग साहस का संदेश देती हैं। यानी इस यात्रा का हर हिस्सा केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश भी है। पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। यहाँ रथ आगे बढ़ते हैं तो साथ चलता है विश्वास। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे पीले और लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जिसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है, जिसे लाल और काले वस्त्रों से सजाया जाता है। इन तीन रथों की ऊंचाई, पहियों की संख्या और सजावट भी अलग अलग होती है। यही विविधता इस परंपरा को और भी अनूठा बनाती है। हर साल तीनों रथ नई लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इस निर्माण में परंपरा का पूरी तरह पालन किया जाता है। बिना किसी लोहे के ढांचे के विशेष विधि से विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि साल में एक बार भगवान और भक्त का निकट से मिलन होता है। इस यात्रा में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। शायद यही वजह है कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: मंगला आरती के साथ पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ। भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टरों ने की भगवान की सेहत की जांच। शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक। आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा। दिल्ली और नोएडा में भी तैयारी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष के ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। हिमाचल में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: जय जगन्नाथ। आस्था का उत्सव है और आज की चाय बहुत खास है क्योंकि हम तीनों के साथ साथ पंडित अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शुरुआत हो चुकी है जगन्नाथ रथ यात्रा की, लेकिन गुड न्यूज टुडे आपको 200 घंटे की महा कवरेज दिखा रहा है, यानी एक भी तस्वीर छूटने ना पाए इस बात का प्रॉमिस हम कर रहे हैं। तो रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ क्योंकि आपको घर बैठे दर्शन करवाएंगे इस यात्रा के। भक्ति का उत्सव है, पूरे देश में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का उल्लास है, हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। पुरी में मानो आस्था का समंदर उमड़ आया है, पूरी दुनिया से भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे हैं। आस्था और श्रद्धा के रंग ने पुरी को एक अद्भुत स्वरूप में उकेर दिया है। भगवान के दर्शन करने वाले भक्त मंत्रमुग्ध है, पूरे साल इन भक्तों को रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है और यही वो दिन है जब महाप्रभु स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों से मिलने पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल, आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय तिथि के पावन मौके पर होने वाली इस रथ यात्रा की महिमा अपरंपार है। इस रथ यात्रा में शामिल होना ही अत्यंत फलदायी माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है। अब भगवान का रथ बड़ा डंडा पर निकल चुका है। प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। पुरी में तो इस रथ यात्रा को 12वीं और 13वीं सदी से निकाले जाने की परंपरा रही है।
2: बिल्कुल, अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और 200 घंटे की महा कवरेज आपको बता दी जीएनटी पर हम आपको दिखा रहे हैं। वही रथ यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए ये मान्यता है कि इस दौरान महाप्रभु जगन्नाथ आम लोगों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। इस परंपरा को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराने के साथ ही निभाया जा रहा है। कई अनुष्ठानों को निभाते हुए शाम 4 बजे गुंडिचा मंदिर के लिए महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के रथों की 3 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो गई है। फिलहाल लाखों श्रद्धालु इन तीनों रथों को खींचकर या महज रथों को छूकर ही पुण्य कमाने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको लगातार जीएनटी के माध्यम से दिखा रहे हैं।
1: तो भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकल पड़े हैं अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर रौनक कई शहरों में नजर आ रही है। जहां पुरी के जगन्नाथ धाम में आस्था भक्ति उत्सव की छटा बिखरी हुई है, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और राजस्थान के उदयपुर की भी तस्वीरें सामने आई है। पूरे धूमधाम और भक्ति भाव के साथ रथ यात्रा यहाँ पर भी निकाली जा रही है।
0: यही नहीं, भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा का उत्साह देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में भी नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई शहरों में रथ यात्रा की रौनक देखने को मिल रही है। खासकर कोलकाता की अगर बात करें, पूरे भक्ति भाव के साथ आस्थावान महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही देश के कई और शहरों में श्रद्धालु महाप्रभु की रथ यात्रा महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं।

0: अरविंद शुक्ला जी लगातार आपको दिखा रहे हैं, अरविंद जी के पास चलते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, पहला सवाल आपसे यही है कि एक तो ये बताइए कि भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा, जो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसकी मान्यता क्या है और आध्यात्मिक पक्ष क्या कहता है?
1: जी जी, देखिए जगन्नाथ जो पुरी है, जगन्नाथ जो धाम है, ये चार धामों में से एक धाम है, जिसको कहते हैं कि सतयुग में तो आपका जो प्रथम धाम है वो बद्री विशाल है, बद्रीनाथ धाम। द्वापर का जो आपका धाम है वो द्वारिकाधीश है, और त्रेता का जो है रंगनाथ रामेश्वरम है, लेकिन कलयुग का जो चतुर्थ धाम है वह जगन्नाथ धाम है। और इनके विषय में कहते हैं जगन्नारायणोद्भवम, अर्थात जगन्नाथ को जगत का जो है नारायण कहा गया है, अर्थात इस कलयुग में यदि प्रधान कहा जाए तो प्रधान पूजा जो होती है वो जगन्नाथ जी की जो है विशेष है। अब ये देते क्या हैं, आध्यात्मिक इनकी मान्यता क्या है? देखिए कहते हैं कि आज के दिन जो उनके रथ को खींचता है, जो रस्सी को खींचता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, जो चार प्रकार के भय कहे गए हैं और जो पीड़ा कही गई है जन्म के समय, मृत्यु के समय, जन्म मृत्यु जरा और वृद्धावस्था की तरह समय जो पीड़ा होती है, वृद्धावस्था में जो व्यक्ति को कष्ट होते हैं, ये हर प्रकार के कष्टों से जो है एक तरह से कहें तो पूरी तरह से व्यक्ति मुक्त होता है। और क्या कहते हैं, स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा, और इनके यहाँ जा करके हर तरह से व्यक्ति को शुभता की प्राप्ति होती है, कहीं की भी किसी भी प्रकार से दुखों की स्थिति इसके जीवन में नहीं रह जाती है।
2: बिल्कुल अनंत जी, और जो तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आ रही हैं, इसे भी समझने की आपसे यहाँ पर कोशिश करेंगे हम, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन यानी आषाढ़ मास के दिन जो जगन्नाथ यात्रा है इसकी शुरुआत हो जाती है, सुबह से अनुष्ठान का जो दौर था वो जारी था और अब रथ यात्रा गुंडेचा मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रही है, क्या ये तस्वीरें हैं और सरल भाषा में हमें हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझाएं?
1: जी जी, देखिए यही क्षण होता है द्वितीया तिथि के दिन जो है ये अपने विग्रह यानी अपने जो है गर्भगृह से निकल करके ये अपने जो है मौसी के घर जाते हैं, गुलीचा जाते हैं। देखिए एक यही एक स्थान है जगन्नाथ धाम का जहाँ से प्रभु अपने गर्भगृह से निकल के बाहर जाते हैं, नहीं तो अन्य आप किसी भी जगह देखेंगे वहाँ पे गर्भगृह से भगवान नहीं निकलते हैं, वहाँ तो व्यक्ति जाकर के उनके यहाँ दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान निकल के भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यहाँ का विशेष मान्यता यही है कि आज द्वितीया के दिन भगवान निकलेंगे। ये तीन रथ जो आप विशेष देख रहे हैं, प्रथम रथ जो है भगवान बलभद्र का है, द्वितीय रथ उनकी बहन सुभद्रा का है, और तृतीय रथ भगवान स्वयं जो है कृष्ण यानी जगन्नाथ जी का है। और इन तीनों रथों की अपनी जो है विशेष महिमा है, और इन तीनों रथों में यदि किसी भी रथ को व्यक्ति ने हाथ लगा करके रस्सी से यदि खींचा तो उसको हर प्रकार से जीवन के जिसको कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का ताप है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, उस ताप और कष्ट से मुक्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। तो एक ये विशेषता है, और देखिए बड़ी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो वहाँ का राजा होगा, जो वहाँ का मुख्य मुखिया होगा, वो स्वर्ण की झाड़ू से वहाँ पे जो है सफाई करता है। तो यह एक संदेश होता है कि राजा हो या साधारण कोई व्यक्ति हो, भगवान के दरबार में भक्त सब जो है बराबर हैं। और उसके साथ साथ जब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करे और उनके जो है कुछ भी मंत्रों का आप यदि स्मरण करके और यह अपने में कामना करते हो कि हे प्रभु मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, यहीं से कामना करता हूँ मेरी भक्ति को आप स्वीकार करें, तो निश्चित रूप से उसको भी फल की पूर्णतः प्राप्ति होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आपको पुरी से भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी आपको बताते चलें कि रथ यात्रा हालांकि परंपराएं 350 साल से जुड़ी हुई है, बिल्कुल उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है, फिर चाहे वो अहमदाबाद हो, कोलकाता हो या फिर दिल्ली NCR, जहां आपको लिए चलेंगे सीधा नोएडा। मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, 3:30 बजे का वक्त था जब यात्रा की शुरुआत होनी थी, हालांकि तमाम रिचुअल्स यहां पर निभा लिए गए हैं, अभी की तस्वीरें आप हमें दिखाइए और बताते चलिए कि क्या चल रहा है यहां।
3: तो जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, प्रभु उस रथ में सवार है और सवार होकर अपने श्रद्धालुओं को लगातार दर्शन दे रहे हैं। हम इस वक्त रथ के पीछे वाले हिस्से में हैं और पीछे वाले हिस्से में इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है, पिछला हिस्सा रथ का, जिसे महिलाएं संभालती हैं, नारी शक्ति संभालती है, देश की बेटियां संभालती हैं, घर की माएं संभालती हैं। आप देख रहे हैं कि इन महिलाओं में, इन बेटियों में भी कितना क्रेज है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़ीसा के नहीं है, पुरी के नहीं है, कभी शायद जगन्नाथ मंदिर गए भी नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा है कि वो भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं और जानते हैं कि इस रथ यात्रा में उनकी जगह क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रथ यात्रा जब शुरू होती है तो रथ लगातार आगे बढ़ता जाता है, कई बार उसका डायरेक्शन दाएं बाएं होता है तो उस रथ को पीछे भी आना होता है, और जब रथ को पीछे आना होता है तो इन रस्सियों में जोर ये महिलाएं, ये बेटियां, ये लड़कियां लगाती हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, लगातार बीच बीच में रथ रुकता है और उसके बाद फिर से यात्रा शुरू होती है। तमाम लड़कियां, तमाम बच्चियां आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका?
4: अद्वैता।
3: कहाँ से हो आप?
4: वैसे तो बिहार से, पर यहाँ दिल्ली में बहुत टाइम से हूँ।
3: रथ यात्रा में कैसे? वो तो ना बिहार में होती है ना दिल्ली में।
4: तो क्या हुआ, मैं दिल्ली में हूँ, जब से ये मंदिर बन रहा था जगन्नाथ जी का तभी से यहाँ हूँ, तो उनके प्रति आस्था तो बहुत है। बिहार के हो कि कहीं के भी हो, जगन्नाथ जी तो पूरे जगत के जगन्नाथ हैं।
3: क्या बात है, जगत के नाथ है तो जगन्नाथ है। आप कब से तैयारी कर रही थी कि मुझे भी पीछे रहकर ये रस्सा पकड़ना है? बहुत मुश्किल काम होता है।
4: मैं तो सोच रही थी सबसे आगे रह के खींचूंगी, सब बीच में आ गए तो मैं भी पीछे होते
5: गई। भेज दिया, हम आ गए थे।
3: जगन्नाथ के उद्घोष के साथ लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। क्या नाम है आपका?
6: शालू।
3: कहाँ से हो आप?
6: मैं सुल्तानपुर यूपी। जय जगन्नाथ।
3: सुल्तानपुर यूपी से हो, रथ यात्रा में शामिल हो?
6: मैं यहाँ रहती हूँ और नोएडा में जॉब करती हूँ।
3: तो आज नौकरी पे नहीं गई? आज जॉब
6: नहीं, नहीं, क्योंकि जय जगन्नाथ, जय हिंदू राष्ट्र।
3: यूपी के सुल्तानपुर से है, नौकरी करती है नोएडा में, लेकिन आज सिर्फ इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वो नौकरी पर नहीं गई। और यही ऐसे ही श्रद्धालु हैं जो अपने भगवान का, अपने ईष्ट का दर्जा बहुत ऊंचा कर देते हैं, और शायद ऐसे ही श्रद्धालु, ऐसे ही भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ जी
0: दिखाते रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी, सवाल इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा हुआ आपसे पूछती हूँ। रथ की रस्सी को खींचना कहते हैं कि बहुत ही पुण्यदायी होता है अगर आप ये कर लेते हैं, आपके गृह दोष, पितृ दोष भी इससे नष्ट हो जाते हैं, कितना सत्य है ये?
1: नहीं, बिल्कुल सत्य है। देखिए, रथ की रस्सी वैसे ही है जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो आप जब वो जन्म लेते हैं तो उस रस्सी से उनको आप हिलाते हैं, पालने को हिलाते हैं, तो जो आपको फल भगवान के पालने के हिलाने का जो मिलता है, वही उससे कहीं ज़्यादा फल इसका मिलता है। रस्सी को पकड़ के जो खींचते हैं वह धन्य हो जाते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मरणपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। जो पुनः जन्म पुनः मरण की प्रक्रिया है, यदि बड़े भाव विभोर होकर के और पूरी भक्ति भाव के साथ उसने वहाँ पर 10 दिन 11 दिन की यह सेवा कर ली, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो रस्सी जो खींचता है वहाँ, किसी भी प्रकार से रथ में जो सहयोग करता है, आज के दिन उसको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। और जो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि रथ जिसमें जो है, रथ में बहुत सारी भीड़ है, रथ लोग खींच रहे हैं, रथ को कर रहे हैं, उस रथ की एक बड़ी एक खासियत चीज भी है कि पूरा रथ जो है नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, और उस रथ में कहीं भी जो है कील का प्रयोग नहीं होता है, वह पूरा रथ लकड़ी से बना होता है। और एक रथ नहीं, ये तीनों रथ है, और तीनों रथ में कहीं भी कील का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ यह कार्य किया जाता है। यह कार्य शुरू हो जाता है अक्षय तृतीया के दिन से बनाना, और अक्षय तृतीया के दिन से बनाने के इसको प्रारंभ करते हैं, और जब इनका समय आ जाता है उस टाइम तक इसको बड़े विधान के साथ बनाते हैं। यह भी फिक्स है कि भगवान जगन्नाथ जी के जो है कितने चक्र होंगे, उसमें कितने पहिए होंगे, यह भी फिक्स रहता है कि बलभद्र जी के कितने पहिए होंगे, और यह भी फिक्स रहता है कि भगवती सुभद्रा के जो है कितने पहिए होंगे और कितने उसमें जो है चक्र होंगे। तो ये सब सारी चीज,
0: जो रथों का कलर होता है उसके बारे में भी बताते चलिए, क्योंकि वो भी कहा जाता है कि वो भी फिक्स रहता है।
1: हाँ,
0: हर रथ का
1: जी जी
0: बिल्कुल, उसको आप बदल नहीं सकते हैं।
1: जी जी, जैसे आपका भगवान श्री कृष्ण का जो रथ रहता है उस रथ का नाम रहता है नंदी घोष, लाल और हरे रंग का रहता है। और जैसे आप जो है क्या नाम से भगवान जो कहें कि बलभद्र जी का, तो बलभद्र जी का जो रथ रहता है उस रथ का नाम रहता है तुंगज ध्वल या तालकोट, दो नामों से जाना जाता है। उनके रथ का जो रंग रहता है वह लाल और नीले कलर का रहता है। इसी प्रकार भगवती सुभद्रा के रथ का जो नाम है वह नाम जो है एक तरह से दर्प दल कहते हैं, तो दर्प दल नाम होने के कारण उसका भी रंग अपने आप में जो है हरा और नीले रंग का जो है लिए रहता है।
2: प्रतीतात्मक तौर पर घोड़े भी होते हैं इसमें, उसको भी लेकर कई विशेषताएं हैं अरविंद जी, अगर उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर समझा पाए तो।
1: नहीं, रस्सी जो खींचते हैं, रस्सी नहीं, घोड़ों का तो अलग होता है, इसमें मेन जो है रथ का महत्व है, तो रथ में पहियों का महत्व है, घोड़े का इतना इसमें महत्व नहीं है। महत्व है इसमें विशेष जो है आपके पहियों का, आपके चक्र का, आपकी उस लकड़ी का जिस लकड़ी से बनाया जाता है। और जो अभी नवजोत जी ने पूछा कि उसमें ध्वज किस किस रंग के होते हैं, वह रंग फिक्स होता है, तो मैंने बताया इसी रंग का ऐसा होता
0: है। शगुफ्ता, एक चीज और देखिए, अब आप इन तस्वीरों को अगर हम देखें और बताते भी चले, रथ यात्रा की शुरुआत 4 बजे, मैं स्पेसिफिकली यहां पुरी की बात कर रही हूं, 4 बजे का वक्त था जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखिए वहां पर ये केवल एक रथ यात्रा, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक तरीके से हमारा सांस्कृतिक उत्सव भी है। अगर आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से कलाकार वहां पर मौजूद हैं, ये प्रस्तुतियां कलाकार अपनी अपनी दे रहे हैं, यानी हमारी संस्कृति का भी उत्सव है। देश विदेश से, विदेशों से जब लोग यहां पर आते हैं और ये तस्वीरें जब विदेशों में भी दिखाई जाती हैं, खासतौर पर अगर हम कहें कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से 200 घंटे की मां कवरेज, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अपनी संस्कृति अपनी परंपरा के साथ जुड़ सके, केवल एक धार्मिक उत्सव ना होकर एक सांस्कृतिक उत्सव इसको कहें और एक कल्चरल फेस्टिवल इसलिए भी कि वो लोग, जैसे मैं जब भी हम लोग दुर्गा उत्सव करने के लिए जाते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव के लिए, तो लोग कहते हैं कि हम भले ही कहीं भी रहते हों लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान हम अपने घर जरूर आते हैं। यहां भी लोगों को इसीलिए साल भर इंतजार रहता है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग पहुंचते हैं।
7: नवजोत, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी जो है ना, जिनके भी हम बात कर रहे हैं, जेन जी हो गया, जेन अल्फा बीटा, इन लोगों को भी इस चीज के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ने की और अपनी वैल्यूज सिखाने की कोशिश की जा रही है, जिनको पता नहीं है। एक और चीज, ये तस्वीर जिसकी आपने बात की ना नवजोत, अब मैं इसको ले जाती हूँ महाकुंभ के ऊपर। अगर कुंभ की तस्वीरें आपको याद हैं, महाकुंभ के दौरान भी ऐसे ही सांस्कृतिक फेस्टिवल हमें नजर आया था, ऐसी ही तस्वीरें उस वक्त भी हमने देखी थी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर आए थे और देखने के लिए आए थे स्पेसिफिकली कि इंडिया में, भारत में क्या चलता है।
2: अब आप ये देखिए, मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है, लेकिन पिछले जितने भी सालों से मैं ये तस्वीरें देखती हूँ, यहाँ पर बैठे हुए इतना भावुक महसूस होता है। और आप देखिए इतनी भीड़ होती है, और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी वहां पर रथ को खींचते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि कहा जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर बुजुर्ग है या फिर छोटे बच्चों को वहां पर ना लाएं, लेकिन ये लोगों की आस्था ही है। जैसे आपने कहा ना, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, उस दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए। और इसी पे अरविंद जी से मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहती हूँ। अरविंद जी कहते हैं कि अगर हमें अपने भगवान से मिलना है, अपने आराध्य से मिलना है, तो हम मंदिर जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो सभी के भगवान है। वो स्वयं अपने रत्न जनित सिंहासन से, अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। ऐसे में अभी जो शगुफ्ता कह रही थी, जो नई पीढ़ी है, जो आजकल के नौजवान है, जेंजी है, क्या संदेश देता है ये जगन्नाथ रथ यात्रा?
1: जी अरविंद जी, देखिए ऐसा है कि जो आपने कहा बड़ा भावुकमयी प्रश्न कहा, ये बड़ा हृदय से, भावना से जुड़ा हुआ है। और एक कहते हैं कि भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मडनमयी, ना भगवान काष्ठ की मूर्ति, यानी काष्ठ की मूर्ति में ही उनका जो है विग्रह है, ना भगवान काष्ठ की मूर्ति में ही, और ना ही भगवान पत्थर की मूर्ति में, और ना ही भगवान स्वर्ण की मूर्ति में है। जो अभी आपने कहा कि भावनात्मक पोजीशन, जो आपने भी शब्द व्यक्त किए, वो बड़े ही भाव विभोर शब्द हैं। भक्त की भावना जितनी ज्यादा भगवान के प्रति भावुक है, भगवान उसी में जो है वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इसी चीज को कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आप क्या चढ़ा रहे हो, ये एक सेकंड है, यो मे भक्त्या आपकी भक्ति कैसी, आपका भाव कैसा है, आपके मेरी प्रति श्रद्धा कैसी है। तो यदि आप श्रद्धा से, निष्ठा से और भावना के साथ भगवान जगन्नाथ का याद कर रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रति आप आतुर हैं, तो यहाँ बैठे या विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं और भाव आपका विशेष है, तो वही फल प्राप्त हो रहा है जो इस टाइम पे पुरी में लोग उपस्थित हैं और रथ की सेवा में लगे हुए हैं।
0: वैसे भी अरविंद जी कहा तो ये भी जाता है ना कि जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक आप वहाँ आते हैं। मोक्ष यात्रा एक तरीके से इसको कहा जाता है क्योंकि दक्षिण की तरफ होती है और भगवान बुलाएं तभी आप जाते हैं। एक और बड़ी खास बात बताते चलें क्योंकि पुरी से तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि तब तक रथ यात्रा की शुरुआत नहीं होती, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक एक भी व्यक्ति, अगर किसी ने पूरे साल मन में इस बात को धारण कर लिया है कि वो जाना चाहता है, इस रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है, इसको देखना चाहता है, वो वहां पर उस धरती पर ना पहुंच जाए तब तक रथ के पहिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये मान्यताएं हैं। सरगम जिस तरीके से कह रही थी कि गई नहीं है लेकिन भावनाएं, भाव सबसे ज्यादा अहम होते हैं और भाव ही मैटर करते हैं। सरगम
2: बिल्कुल नवजोत, भाव अहम होते हैं और यही भाव जो है श्रद्धालुओं के चेहरे पे साफ नजर आ रहे हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी रथ यात्रा के लिए कुछ खास नियमों का पालन करते हैं, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। दूसरे भक्तों की तरह ही इन पुजारियों को भी पूरे साल रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इन पुजारियों के लिए खाने पीने के कुछ खास नियम का पालन अनिवार्य हो जाता है। देखिए क्या है ये नियम।
8: आप लोगों के लिए क्या स्पेशल ऐसे कुछ रहता है क्या आज रथ यात्रा के लिए? पंडित लोगों के लिए खाना पीना का ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है क्या?
9: ये देखिए हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते। अभी भगवान का जो खिचड़ी भोग अभी निकला हुआ है, अभी निकलने वाला है, उसी में से थोड़ा हम भी प्राप्त कर लेंगे, महाप्रसाद जिसको कहते हैं। और हम काल से लेकर घर में रखे हैं भगवान का काल जो निकला था महाप्रसाद, उसमें पानी डालकर, उसको अभड़ा पखाड़ कहा जाता है, पानी डालने से, नींबू डालने से उसका स्वाद बहुत होता है। और अभी जो तो भगवान अंदर में नहीं है, उनका पाक क्रिया रोसोशाला में जो बनता है वो खाद्य अभी 3 रोज तक नहीं मिलेगा। जब भगवान आड़प वेदी में जाएंगे, गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, तब यहाँ खाना बनेगा और भक्तों लोग को पाएंगे। तो उसी 3 रोज के लिए हम लोग को छेना, दूध और दूध में दूध का जो प्रोडक्ट है वो सब जो मिलता है उसको खाएंगे और भगवान का अभड़ा पखड़ खाएंगे।
7: चले वहां प्रभु जगन्नाथ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से। इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जहन में आया है अरविंद जी, सवाल आपसे ये है कि जरा भगवान जगन्नाथ की जिस मूर्ति का हम दीदार कर रहे हैं उसके बारे में भी व्याख्यान कर दीजिए जरा।
1: देखिए मूर्ति तो जो ये बनती हैं तीनों मूर्तियां ये कास्ट की होती हैं और कास्ट में भी किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो इसमें नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है। और हर 12 वर्ष में नवजोत जी जिसको कहते हैं कि मेन इनका जो है इसको जो प्राण स्वरूप कहते हैं वह परिवर्तित किया जाता है और उसकी अपनी एक बहुत ऊंची विधि है, बहुत अच्छे विधान के साथ, बड़े नियम के साथ परिवर्तित किया जाता है। जो विशेष खास वहाँ का पंडा होता है, पुजारी होता है, उसके भी आँखों में पट्टी बांध करके और फिर जा करके वह जो है उस काष्ठ की लकड़ी में उसको प्रविष्ट करता है। बाकायदे उसको अपने हाथों में महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसी विशेष शक्ति है जो इस हाथ में मेरे जो है एक तरह से कंपन कर रही है। और पूरे आपके उड़ीसा की बिजली काट दी जाती है, उसके बड़े वैसे विशिष्ट नियम होते हैं। इसके साथ साथ जो इस चीज को परिवर्तित करता है उसको 12 साल तक बहुत अच्छे से नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये जो आपने प्रश्न किया ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। यह लगभग मेरे ख्याल से पता होगा सभी को, यदि नहीं पता है तो इस चीज का जो है विशेष वहाँ पालन होता है। वहाँ की और जो है खासियत क्या है सागुप्ता जी, देखिए जो मंदिर बना हुआ जगन्नाथपुरी, वह मंदिर अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। उसमें अष्ट धातु का जो चक्र लगा हुआ है, आप पुरी के किसी भी कोने से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी तरफ ही इसकी दिशा है। दूसरी चीज उसकी और खासियत क्या है कि वहां पे जो गुंबद से बना हुआ मंदिर है, आप किसी भी दिन के समय देख लें उस मंदिर की परछाई कहीं भी नहीं दिखेगी। इसको वैज्ञानिक भी जो है बड़ा आश्चर्य मानते हैं।
0: और दूसरा मैं ध्वज के बारे में आगे आपसे जानूंगी लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बताते चले, पुरी की तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं क्योंकि आस्था का सैलाब एक तरीके से उमड़ा हुआ है। लाखों लाखों श्रद्धालु भक्त वहां पहुंचे हुए हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, एक झलक पाने के लिए भक्त किस तरीके से आतुर हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रथ यात्रा के शुभारंभ के साथ ही भक्तों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। जगन्नाथ में करोड़ों भक्त हम कह सकते हैं, अनंत आस्था। इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि यही है आस्था का सैलाब जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। बहरहाल भगवान की इस रथ यात्रा में शामिल होने वाला हर भक्त खुद को बहुत ही धन्य महसूस करता है।
8: आप देख सकते हैं रथ के नीचे, रथ के ऊपर भक्तों का और पंडित लोग जो हैं उन लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश, सुबह से बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, फिर भी लोगों का मन में ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये भक्ति कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भगवान को देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त आए हैं वो भक्तों का मन में भगवान को लेकर के कितना श्रद्धा है। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ रो रहा है, भक्त भगवान को अपना दुख, अपना मन में जो मांग है, जो दुख है वो भगवान को बोलते हैं, भगवान उनका दुख सुनेंगे, यही सोच करके हर कोई भक्त घर से आते हैं और भगवान से मिलते हैं। सालों में एक बार यहाँ बाहर खुद आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। जो भक्त नहीं आ पाते हैं, जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं, उन भक्तों को वो खुद दर्शन देते हैं आके। जी क्या नाम है आपका?
10: हमारा नाम पुरुषोत्तम है।
8: कहाँ से है?
10: हम कर्नाटक से है।
8: जी ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
10: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए है।
8: कब से आ रहे हैं?
10: हमारा दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
8: कितनी खुशी आपको लग रही है क्योंकि ये भारी बारिश हो रहा है, बारिश के अंदर आप भीग के भगवान को देखने के लिए आए हैं, ये सुबह से ही बारिश लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है?
10: बहुत बहुत खुश होना हो रहा है, क्यों बोले तो वो सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उतना खुश हो रहा है मेरे को।
11: कल से आया हूँ और सेवा कार्य में लगा हूँ।
8: अच्छा,
11: अभी भगवान जी का रथ यात्रा राज्य से चलेगा, हम भी जाएंगे।
8: क्या सेवा करते हैं आप?
11: मैं लोगों को जो भक्त के लिए सेवा कार्य में आया हूँ, हमारा ग्रुप।
8: खुशी लग रहा है भगवान के रथ यात्रा में लोगों का सेवा करना, कितनी खुशी होती है?
11: देखिए तो कितना लोग है, लाखों करोड़ों लोग है। जैसे ही भगवान धरती पे आए हैं ना, तो देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल से बारिश चला था, आज सुबह रुक गया था, अभी देखिए जगन्नाथ का प्रभु महाप्रभु का लीला देखिए।
8: ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहां से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग।
12: मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
8: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना? मतलब
12: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज ऐसा ही हुआ है मेरा, और मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था, इतने साल हो गया मेरे को, आज 29 साल हो गया, लेकिन इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था। मैं इतना ही बोलूँगा जो दूर से आते हैं, और प्रशासन का इतना अच्छा व्यवस्था है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरी के पूरी पुलिस और पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था टीम, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना विनम्रता सहित दर्शन किया हमने।
2: तो देखिए श्रद्धालुओं की आस्था ही है भगवान जगन्नाथ पर, उनकी अटूट आस्था है कि वो दूर दूर से यहाँ पे खींचे चले आते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे

0: भारती जीएनटी पर 200 घंटे की ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। पुरी के साथ ही देश के दूसरे बड़े शहरों से भी आपको रथ यात्रा की तस्वीरें हम दिखाएंगे, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त उत्सव मना रहे हैं। आपके आराध्य के दिव्य दर्शन आप फिलहाल जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। आपको दिखा दें कि पुरी ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में आज जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है।
1: तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां पर भव्य तस्वीरें आ रही हैं। अजय नाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, तस्वीरें दिखाइए सीधे वहां से, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि आपकी तमाम रिपोर्ट्स लगातार हम गुड न्यूज टुडे पर दिखा ही रहे हैं, अभी की ताजा तस्वीरें अजय।
2: देखिए, ये मैं पूरी मंदिर के पास हूँ, आपको मैं ताजा तस्वीर ये दिखा रहा हूँ। पहले प्रभु बलभद्र जी का ये रथ आगे जा चुका है, तीनों रथ में भगवान बैठ चुके हैं और भगवान बलभद्र बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई का रथ आगे जा चुका है। आप देख रहे हैं अब रथ धीरे धीरे धीरे धीरे बलभद्र जी का।
1: बिल्कुल अजय, चलिए लौटेंगे अजय आपके पास, ये सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लगातार रथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्रम क्या रहता है और किस तरीके से, अगर हम रथों की ऊंचाई की भी बात करें तो कितनी ऊंचाई होती है, और बड़ी बात यह है कि इस पूरी रथ यात्रा में जो प्रसाद है उसका भी, महाप्रसाद का भी अपना एक महत्व होता है।
3: जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, ऐसा है कि रथ की जो आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो रथ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा जो पहिए होते हैं वो होते हैं 16 पहिए, और ये होता है भगवान जगन्नाथ जी का, और इसके बाद होते हैं 12 पहिए, ये होता है बलभद्र जी का, और इसके बाद 14 पहिए बलभद्र जी का होता है, इसके बाद होता है 12 पहिए, वो आपकी जो है सुभद्रा जी के होते हैं। तो ये इनकी रथ की होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो रथ की होती है वो भगवान जो है जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण की होती है, उसके बाद बलभद्र जी की होती है, उसके बाद जो है उनकी बहन सुभद्रा जी की होती है। अब आपने बात पूछा है क्रम का, तो क्रम में देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो क्रम रहता है वो क्रम रहता है उनके भाई बलभद्र जी सबसे आगे रहते हैं, बीच में उनकी बहन रहती है और पीछे जो है जगन्नाथ जी रहते हैं, ये उनका क्रम होता है। अब बात आपने पूछा प्रसाद के विषय में, तो देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका जो महाप्रसाद होता है वो महाप्रसाद तो आपके जो है चावल का ही होता है, और कहते हैं कि अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भुक्त्वा देवो महेश्वरा प्रधान, जो अन्न की प्रधानता कही गई, यदि अन्न का प्रसाद कहीं लगता है तो जगन्नाथ में लगता है। ठीक, अब अन्न वहां पकता कैसे है, पहली बात तो शुद्ध जो है मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुम्हार उसको मिट्टी के बर्तनों को अच्छे से बहुत ही साफ सुथरी मिट्टी के बर्तन बनाता है, और वहाँ 7 जो मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं उसमें सबसे पहले जो प्रसाद पकता है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन का पकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ताप आप नीचे बर्तन में दे रहे हो, पक रहा है ऊपर के बर्तन में, एक ये। दूसरा मैं कहूँ तो भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथपुरी से बड़ी और कहीं की रसोई नहीं है, कभी भी वहाँ खाना कम नहीं हो सकता, और जब अंत पोजिशन आ जाता है यानी जब रात्रि का अंतिम समय आएगा तब वहाँ खाना बिल्कुल फेंकने के लिए बचेगा भी नहीं, ये एक बड़ी विशेष खासियत है। आप जब दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे तो बाहर जब आप रहेंगे सिंह द्वार पे तो समुद्र की आपको लहरों की जो आवाज़ है समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं आपको कोई भी समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसी प्रकार मैंने ध्वज को बताया था कि डेली वहाँ जो है उनका ध्वज बदला जाता है, और ध्वज की जो दिशा है मतलब जैसे जिस दिशा में हवा चल रही होगी ध्वज ठीक उसके विपरीत दिशा में जो है लहराता होगा। तो वहाँ की ये कुछ ऐसी विशेष खासियत हैं जिनके विषय में आज भी आश्चर्य होता है कि भगवान वहाँ पे वाकई में साक्षात जो है विराजमान है। अभी देखिए एक व्यक्ति वहाँ पे जो बता रहे थे और बताते बात करते करते रोने लगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी विशेष प्रांगण में पहुँचते हैं उस टाइम पे आपके भाव चेंज हो जाते हैं। हम आप जब जाते हैं मंदिर में और जैसी मंदिर की घंटी बजाते हैं वैसी हमारे आपके भाव चेंज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ दिव्य शक्ति विराजमान है, पूरे भाव भंगिमा आपकी जो है परिवर्तित हो जाती है। और हम जाते किसके लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमें उनका मुख मंडल उनके हाथ उनके पैर देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं, क्या करते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनका

0: अवलोकन अपने हृदय में कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम हृदय से भगवान से जो है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आंख बंद करके जो तस्वीर सामने होती है उस तस्वीर का अवलोकन अपने हम हृदय में कहते हैं। इसी को कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर में ईश्वर जो है विराजमान है। अब जो व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति भाव से भगवान को पूजता है उसको फल की प्राप्ति होती है, जो भाव से नहीं मानता है, जो भाव से नहीं पूजता है उसके लिए भगवान एक पत्थर हैं, नश्वर हैं, उसके लिए कहीं कुछ है ही नहीं। और जिसके भाव हैं आप देख रहे हैं उनकी आंखों से ऑटोमेटिक जो है अश्रु की धारा बह रही है।
1: ये तो यही आस्था जिसके बारे में आप लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि भगवान के प्रति जो सच्चा भाव है ना वो सबसे ऊपर है, वही सर्वोपरि है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है, तस्वीरें लगातार आपको जीएनटी पर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, लौटते हैं वापस।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ.

0: जय जगन्नाथ। हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी, और ये कवरेज है 200 घंटे की। अगले 9 दिनों तक रथ यात्रा महोत्सव चलेगा और हर पल की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपको पुरी से भी दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से भी दिखा रहे हैं, नोएडा से भी दिखा रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा केवल पुरी में ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों में भी है। कोलकाता की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जय जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गुड न्यूज टुडे 200 घंटे की महा कवरेज आपको दिखा रहा है। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम सीधा चलेंगे। रिदम हमारी सहयोगी जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। रिदम दिखाइए वहां की यात्रा के रंग।
1: जहाँ पर जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये यात्रा पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीन रथ यहाँ पे एक साथ निकल रहे हैं। पूरी में जिस तरीके से निकलते हैं बिल्कुल उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ के साथ में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ भी यहाँ पे साथ में चल रहे हैं और पूरा लवाजमा जो है वो बहुत ही शाही, बहुत ही ग्रैंड है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ के भक्त ही नहीं पर साथ में राजस्थानी कलाकार, बैंड बाजा, ढोल नगाड़ा सब एक साथ है। हर कोई भगवान जगन्नाथ के जयकारे समय पे लगा रहा है और हर किसी की आंखों में वो भक्ति भाव हमें नजर आ रहा है। मैं दिखाऊंगी कुछ कालबेली और कठपुतली नृत्य जो चल रहे हैं। जिस तरीके से भगवान जगन्नाथ का ये भ्रमण शुरू किया गया है वो बहुत ही ज्यादा भव्य है। ये कुछ ढोल नगाड़ों के साथ में जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। किस तरीके से हर एक चेहरे पे खुशी है, भक्ति भाव है और बहुत खूबसूरती के साथ में पूरे शाही लवाजमे को जयपुर के जलेब चौक से, गोविंद देव जी मंदिर के जलेब चौक से अभी इस समय पे निकाला जा रहा है, जिसके बाद में ये जो भ्रमण है ये यहाँ से शुरू होते हुए हवा महल, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और उसके बाद में ब्रजनिधि मंदिर जाएगा। जगन्नाथ पुरी की तर्ज पे पूरी तरीके से इस तरीके से निकाला जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ ये लवाजमा लोगों से नहीं है पर इसमें अलग अलग नृत्य हो रहे हैं। इस बार यहाँ पे भरतनाट्यम जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हो रही है, उसकी प्रस्तुति हो रही है, साथ में ओडिसी नृत्य की जो प्रस्तुति है वो इस रथ यात्रा में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में तलवारबाजी और कई सारी ऐसी प्रस्तुतियां हैं जो यहाँ पे नजर आएंगी। हमें यहाँ पे जो बंगाल का, जो उड़ीसा का कल्चर है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से शंख की धुन के साथ में ये जो यात्रा है ये निकाली जा रही है। जिस समय की तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये जलेब चौक का जो रास्ता है यहाँ से ये रथ यात्रा अभी निकली है और पूरे ओल्ड सिटी का, जयपुर की चार दीवारी का ये रथ यात्रा जो है वो अभी भ्रमण करेगी। बहुत ही उत्साह जो है वो सभी के चेहरों पर दिख जा रहा है। क्या भक्ति भाव है?
2: हाँ जी, बहुत आनंद आ रही है। आज श्री जगन्नाथ प्रभु जी का रथ यात्रा है, हम लोग बहुत खुश है। बस जगन्नाथ जी का ये कृपा हो हर साल हम आ पाए, ऐसे कर पाए, बहुत आनंद, बहुत आनंद। जय
1: कारे है ये आप देख सकते हैं कितनी खुशी से, कितने भक्ति भाव से लगाए जा रहे हैं। खास बात ये है कि तीनों जो रथ है वो इस बार आए हैं, हर बार एक रथ होता है, 12-12 फीट के तीनों रथ इस बार शामिल है जिसकी इस यात्रा।
0: रिदम दिखाते रहिएगा आप तस्वीरें, लौटती हूँ आपके पास। अरविंद जी आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि भगवान जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है, इनके नेत्रों के बारे में किसी ने सवाल पूछा है कि कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं, भगवान कभी निद्रा में नहीं जाते, अगर भगवान नेत्र बंद कर लेंगे तो दुनिया में अंधकार छा जाएगा, ये कहाँ तक सत्य है?
3: जी ये सत्य है। कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान विष्णु के ही एक अवतार भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण के ही अंशज हैं। तो ये कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात्, इस संसार को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए वो अवलोकन करते रहते हैं कि कहीं किसी भी जगह किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कोई कष्ट ना पहुंचे। यदि किसी प्राणी ने मुझे याद किया है तो मुझे उस प्राणी के प्रति जो है सदैव यह तत्परता रहे कि हाँ वो मुझे याद कर रहा है, इस कष्ट में है, इस परेशानी में है, तो उसकी वह परेशानी मैं दूर करूं। और इसी उसमें कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चम। जगन्नाथ भगवान के विषय में कहा गया कि जैसे जिस कामना से जिस भाव से भक्त उनका चिंतन करता है, निश्चित रूप से भक्त को उसी भाव से उसी कामना से वह संतुष्ट करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जगन्नाथपुरी जो स्थान है वह अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, धामों में से एक विशेष धाम है और कलयुग का विशेष ही वह धाम है। इसीलिए कहा जाता है उनके विषय में कि वैकुंठा पुरुष प्राण प्राण दो प्रणव पृथु। और क्या कहते हैं कि उनके विषय में कि अशोक स्तारणस्तार सूर सौरी जनेश्वरा। जो हर तरह के आपके जीवन का शोक, आपके जीवन का कष्ट, आपके जीवन की विपदा को नष्ट कर दे, वही जगन्नाथपुरी भगवान है।
4: वही जगन्नाथपुरी भगवान है। और अभी मैं एक भक्त को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि भले ही हम भगवान को नहीं देख पा रहे, भीड़ बहुत है, लेकिन भगवान हमें जरूर देख पा रहे हैं और यही कारण है कि हर्षोल्लास भक्तों के चेहरों पे नजर आ रहा है। तो महा कवरेज जीएनटी पर लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होगा।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ आज सुबह से ही हो चुका है, रथ प्रस्थान भी कर चुका है गुंडेचा मंदिर में, और लगातार अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए। अरविंद जी, छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, तमाम रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है जगन्नाथ मंदिर, जगत के भगवान है, महाप्रभु है, क्या ये कहना सही होगा कि विज्ञान माथा टेक देता है? जो तमाम चीजें आपने बताई, ध्वज की दिशा हवा से विपरीत बहती है, मंदिर के अंदर आवाज नहीं आती है समुद्र की, ये तमाम चीजें क्या बताती हैं कि डिवाइन प्रेजेंस है और विज्ञान के पास कई सवालों के जवाब नहीं है?
1: देखिए, यही बताती है हमारी जो है, जिसको कहें कि धार्मिक संस्कृति या सनातन धर्म, कि विज्ञान आज का है लेकिन ये सनातन से है, ये आदिकाल से है। इसीलिए देखिए, उस मंदिर की कहीं कोई परछाई नहीं दिन में दिखती है, भयंकर धूप में कोई परछाई नहीं दिखेगी, ध्वजा विपरीत उसमें जो है लहरा रहा है, उसके किसी भी जगह गुंबज में किसी भी प्रकार का कोई आप ऐसी स्थिति नहीं देख सकते हो कि कहीं से कोई परछाई दिख जाए। डेली जो ध्वजा को लगाने वाला पुजारी हो, किसी भी बगैर उसके सहारा से ऊपर चढ़ता है और ध्वजा को लगा के नीचे आता है, और कभी भी किसी भी पोजीशन पे वहाँ की रसोई का जो है भोजन कम नहीं होता है, और कभी भी किसी भी स्थिति में वहाँ की रसोई का भोजन फेंका नहीं जाता है। तो यहाँ विज्ञान अपने आप में जो है मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि मुझसे ऊपर कोई सनातन धर्म है, मुझसे ऊपर कोई औरा है।
2: चलिए अरविंद जी, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, और आपको बताते चले कि हमारी ये महा कवरेज भी लगातार जारी है। जैसा हमने आपको बताया है कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और उत्सव की शुरुआत अगर पूरी में हुई है, पूरे देश में हुई है, तो इसका मतलब ये है कि गुड न्यूज टुडे आपको हर जगह की तस्वीर भी दिखाएगा। भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में बहुत अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है।
3: और देखिए, माना इसके साथ ये जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जगत के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो अपने धामों की यात्रा पर निकलते हैं।

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रोसा घर, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई, जो न केवल अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है बल्कि इस रसोई से जुड़े रहस्यों का जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। एक ऐसी रसोई जहां हर दिन महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए भोग तैयार होता है। इस रसोई में सैकड़ों पारंपरिक रसोइये और उनके सहयोगी पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं, जिसकी बदौलत यही प्रसाद हजारों श्रद्धालुओं तक महाप्रसाद बनकर पहुंचता है। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। सुखिला प्रसाद, ये सूखा प्रसाद होता है जिसे श्रद्धालु लंबे समय तक रख सकते हैं और अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा है शकुंडी प्रसाद, ये पका हुआ भोजन होता है जिसे मंदिर के आनंद बाजार में मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता है। जितना खास रसोई में तैयार किया प्रसाद होता है, उसे बनाने की विधि उससे भी ज्यादा खास है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आज भी भोजन गैस या बिजली पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आग में पकाया जाता है।

रसोई में परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है, जहां लकड़ी की आंच पर कई बर्तन एक साथ चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आस्था और परंपरा के अनुसार सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और फिर इसके बाद नीचे का बर्तन। ये नजारा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है, जिसमें एक के ऊपर एक साथ मिट्टी के सात घड़े रखे जाते हैं। इस विधि में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के बर्तनों को कुड़ुआ कहा जाता है। ये बर्तन कुम्हारों की ओर से विशेष रूप से मंदिर के लिए बनाए जाते हैं। प्रसाद पकाने के लिए केवल सूखी लकड़ियों का ही उपयोग होता है। आंच को बहुत तेज नहीं किया जाता, बल्कि एक नियंत्रित तापमान पर भाप को ऊपर भेजा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, जबकि सामान्य तौर पर नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होता है। एक बार भोजन पकने के बाद इन बर्तनों को तोड़ दिया जाता है। शुद्धता को ध्यान में रखते हुए इन बर्तनों को दोबारा रसोई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वही एक और खास मान्यता जगन्नाथ स्वामी के इस दरबार से जुड़ी है। कहते हैं यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या चाहे जितनी हो, महाप्रभु की कृपा से सभी को प्रसाद मिल जाता है। यही विश्वास इस रसोई को दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनाता है। रथ यात्रा के दौरान जब लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं, तब इसी विशाल रसोई की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर भी सदियों पुरानी व्यवस्था, अनुशासन और सेवा भाव के साथ महाप्रभु का भोग और श्रद्धालुओं का महाप्रसाद बिना रुके चलता रहता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ के लिए महाभोग का प्रसाद तैयार करने और पहला भोग लगाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पुरी में मान्यता है कि महाभोग का महाप्रसाद खुद देवी लक्ष्मी तैयार करती है। मान्यता है कि पहले ये प्रसाद सिर्फ भगवान विष्णु के लिए था। देवऋषि नारद ने देवी लक्ष्मी से आग्रह कर महाभोग पाया, लेकिन शर्त थी कि इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। स्वाद चखते ही नारद आनंद में डूब गए और कैलाश पहुंच गए, जहां भगवान शिव ने भी प्रसाद पा लिया। लेकिन जब माँ पार्वती की बारी आई तो प्रसाद खत्म हो चुका था। तब उन्होंने कहा, ये दिव्य प्रसाद सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि तभी भगवान जगन्नाथ ने वचन दिया कि अब से महाभोग पहले देवी लक्ष्मी को अर्पित होगा और फिर यही प्रसाद पूरी दुनिया के लिए महाप्रसाद बनेगा। जहां स्वाद से पहले सेवा है, जहां भोजन से पहले भक्ति है और जहां हर कोर में आस्था का एहसास मिलता है और रसोई की कहानी लोगों में जिज्ञासा के साथ साथ रोमांच भी बढ़ाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की ये रसोई सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई ही रही, बल्कि सनातन परंपरा, सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
1: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.

0: सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: मंगला आरती के साथ पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ, भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ, जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टरों ने की भगवान की सेहत की जांच।

0: शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा, दिल्ली और नोएडा में भी तैयारी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष के ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। हिमाचल में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जुलाई में अब तक 12% सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। जय जगन्नाथ। गुड न्यूज टुडे पर जगन्नाथ यात्रा की हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। जगन्नाथपुरी में अनंत आस्था की यात्रा शुरू हो चुकी है और जो नाथ के दर पर सारा जगत झुकता है, आज वो नाथ मंदिर से निकलकर अपने जगत को देखने के लिए पधारे हैं। भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर की ओर निकल पड़े हैं। पुरी से इस पावन यात्रा की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं श्रीगुप्ता, स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज टुडे में और जीएनटी स्पेशल में। महीना देखिए आषाढ़ का है, लेकिन पुरी में कल रात से ही आस्था का सावन बरस रहा है। वहीं जमीन पर आस्था का समुद्र हिलोरे ले रहा है। अब से लगभग एक घंटे पहले शाम 5 बजे के आसपास जगन्नाथ यात्रा की शुभ शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बने गुंडिचा मंदिर तक के यात्रा रूट पर इस समय लाखों की तादाद में भक्त मौजूद हैं। सभी रथों को भक्त रस्सियों के जरिए खींच रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिंह द्वार से ही यात्रा की शुरुआत हुई। पाहंडी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान किए गए। तेज बारिश के चलते भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया। इस रस्म में मंदिर के गर्भगृह से रथों तक देवताओं को लाने की विशेष प्रक्रिया होती है। पाहंडी शब्द संस्कृत के पादाभिक्रमण से आया है। इसका अर्थ होता है कदम दर कदम आगे बढ़ना। भगवान जगन्नाथ बहुत धीमी और झूलती हुई गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उन्हें लाते हुए नहीं लाए, बल्कि धीरे धीरे रथ पर लाया गया। पुरे के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से तीनों रथों के आगे उन्होंने झाड़ू लगाया और यात्रा की यहां पर शुभ शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।
0: चलिए, हमारे साथ इस वक्त अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, आचार्य अरविंद शुक्ला, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और तश्मीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि लगातार श्री गुप्ता हम कह ही रहे हैं कि रथ यात्रा भले ही पुरी में है, परंपराएं तमाम वहां से जुड़ी हैं, लेकिन रथ यात्रा आज की तारीख में पूरे देश में निकाली जा रही है। दूर नहीं जाते, नोएडा में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है और वहां से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, हर जगह से। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको जयपुर की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, संजय शर्मा आपसे शुरुआत करेंगे। 4 बजे जब हम लोग बैठे हुए थे तो शुरुआत हो चुकी थी, रथों को खींचने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। 3 किलोमीटर का यह सफर है, कौन कौन से पड़ाव रहते हैं, क्या क्या परंपराएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं?
2: इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जय जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि आप हमारी नेत्रों के जरिए हमारे हृदय तक की यात्रा करें। और रथ यात्रा भले पुरी में चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक रथ यात्रा हम सभी के अंदर चल रही है। यह शरीर रथ है, मन उसका सारथी है और आत्मा हमारी उस पर पीछे बैठी हुई यात्री है। ये रथ यात्रा है जो आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर चलती है और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर के जो अहंकार है उसको सोने के झाड़ू से साफ करें। हमारे जो चित्त का दर्पण है उसके धूल को साफ करें ताकि हमें उसमें परमात्मा की छवि दिखाई पड़े। और जहां तक आपने पूछा है कि पड़ाव क्या क्या है, तो सबसे अहम पड़ाव इसमें होता है जिसके लिए कि हम कहते हैं कि भगवान तो भक्त से, भक्त तो भगवान से मिलने को आतुर होते हैं, लेकिन ये रथ यात्रा ऐसा मांगलिक अवसर है जब भगवान भक्तों से मिलने को आतुर होते हैं। यह आतुरता कैसे पता चलती है? क्योंकि जब रथ यात्रा वहां श्री मंदिर से शुरू होती है और बड़दंडो, जिसको महामार्ग कहते हैं, जिस पर भगवान का रथ चलता है, सबसे आगे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है तालध्वज, और उसके पीछे भगवती सुभद्रा का, जो इनकी बहन है, उनका रथ चलता है दर्प दलन, और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष चलता है। और इसके साथ ही एक जगह रथ यात्रा रुकती है थोड़ी देर को ही सही। एक मुस्लिम भक्त कवि साल बेग नाम के थे, मुगलों के समय में उन्होंने, उनकी माँ हिंदू थी, पिता सैनिक थे और वो मुस्लिम थे, उनके ये बालक हुआ जिसका नाम साल बेग रखा गया। साल बेग चूंकि अपनी माँ ने उनको, उनकी परवरिश की, चूंकि पिता तो लाम पर रहते थे लड़ाई में, तो एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, माँ ने उनको सलाह दी कि जगन्नाथ जी का ध्यान करो, उनकी उपासना करो, तुम्हारी असाध्य बीमारी ठीक होगी। बीमारी ठीक हो गई और उसके बाद से साल बेग जी ने उड़िया में भगवान की प्रार्थना के, भगवान की लीला के पद लिखने शुरू किए और वो बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, इसलिए उनके मन में बहुत क्लेश चलता था कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो वो वृंदावन तक आए, जब उनको किसी ने सलाह दी वृंदावन जाके दर्शन करो, वृंदावन से वो वापस जगन्नाथ जी की सेवा में जा रहे थे, बड़े दंडों तक पहुंच चुके थे और वहां उनका शरीर छूट गया, यानी शरीर उनका देहांत हुआ। वहां उनके लोगों ने उनकी मान्यता के मुताबिक समाधि बनाई। इसके साथ उसके उसी साल जब रथ यात्रा निकली तो भगवान का रथ अचानक उस समाधि के पास रुका, रथ थोड़ा मुड़ा और लोग समझ गए कि भगवान अपने भक्त को मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको दर्शन देना चाहते हैं। और तब से आज तक ये परंपरा है कि उस सालबेग जी की समाधि के पास रथ रुकता है थोड़ी देर को सही, और उसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर अगर रथ यात्रा शाम रात होने तक अगर वो गुंडीचा मंदिर पहुंच गई तो फिर मंदिर में उनका शयन होता है, और अगर रथ बीच में ही रह गया तो भगवान रथों पर ही विराजमान होते हैं, अगले दिन सुबह फिर रहता तब फिर से शुरू होती है और फिर गुंडीचा मंदिर तक जाती है।
0: चलिए हम तस्वीरें तो शगुफ्ता दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए संजय जी ने जो इस वक्त बताया कि किस तरीके से अगर आपके मन में भक्ति है, अगर आपके मन में आस्था है तो भगवान जरूर आपको दर्शन देंगे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त वहां पहुंचे हैं, लाखों की तादाद में भक्त वहां पर हैं। खबर वहां से कुछ ऐसी भी आ रही है कि रस्सी को छूने के लिए या दर्शन करने के लिए लोग आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर। तो हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से बस यही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य के साथ काम लीजिए, क्योंकि आप अगर वहां उस धरती पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। और भक्तगण की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच लगातार हम आपको अपील यही करेंगे कि संयम के साथ आप इस यात्रा में शामिल होइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल, चलिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अजय नाथ हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त यात्रा कहाँ पर पहुंची है, बताइए जरा।
3: इस वक्त बलभद्र जी का जो रथ है वो आगे जा रहा है, लेकिन जगन्नाथ और देवी सुभद्रा है वो रथ अभी तक शिव मंदिर के पास ही है, वो अब तक शिव मंदिर से गया नहीं है। हालांकि अब देवी सुभद्रा जी का रथ जाने के लिए पूरी तरह की तैयारी हो चुकी है। एक तरफ जय जगन्नाथ की ध्वनि आ रहा है, घंटा और मुर्दन बज रहा है, लोगों को मन में उत्साह जग रहा है। अब जाएगा सुभद्रा देवी की रथ और फिर अंत में जगन्नाथ जी का रथ जाएगा, और इसलिए हर तरह की तैयारी हो चुकी है। लोग अब उत्साह के साथ है, आगे आगे बड़े भाई का रथ चल चुका है, रथ जाके अब 300 से 400 मीटर दूर जा चुका है, श्री मंदिर से 300 से 400 मीटर दूर अब जा चुका है बलभद्र जी का रथ, और अब जाएगा देवी सुभद्रा जी का रथ। और इसलिए जो भक्त दूर दूर से थे, जो मंदिर से थोड़े दूर थे, वो अब मंदिर के नजदीक आ गए हैं, रथ के नजदीक जा रहे हैं। जो लोगों को बैरिकेड देके रखा गया था वो लोग आ रहे हैं, पर हैं रथ को थोड़ा नजदीक देखेंगे, रथ के ऊपर देवी सुभद्रा को नजदीक देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद अंत में जगन्नाथ जाएंगे नंदीघोष में, सबसे नजर ज्यादा जा रहा है नंदीघोष के ऊपर, और नंदीघोष रथ जितना टाइम बीतता जा रहा है, जितना टाइम आगे जा रहा है, लोगों का भीड़ उतना ज्यादा हो रहा है, लोगों का भीड़ मंदिर रथ के आसपास ज्यादा हो रहा है, ताकि इन लोगों के मन में, भक्तों के मन में एक भाव है कि हम जगन्नाथ को रथ के ऊपर अलग इस स्पष्ट बार देखने के लिए
0: चलिए अजय आप नजर बना रखिए। संजय जी, एक अरविंद जी आपके पास लौटती हूं, जरा एक सवाल संजय जी से। संजय जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भक्त साल भर इंतजार करते हैं, जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो एक झलक पाने के लिए भी वो आतुर होते हैं, लेकिन वही बात जब हम आपसे कर रहे थे कि बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि उनको पासेस मिलते हैं, वही लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल इसको लेकर वहां रहता है? और साथ ही साथ एक अपील हम अपने दर्शकों को करते चलें कि अगर आप पुरी की उस धरती पर उस जगह पर मौजूद हैं तो मान के चलिए कि प्रभु ने ही आपको बुलाया और आप प्रभु के दर्शन कर चुके हैं।
2: श्री धाम में पहुंचना ही अपने आप में बहुत पुण्यप्रद है। ऐसे में आवश्यक नहीं है कि आप उस रज्जू तक पहुंचे जो रथ को खींच रहे हैं लोग, आपका वहां पहुंचना ही बहुत काफी अद्भुत आपके जीवन में मांगलिक क्षण है। तो ऐसे में आप दर्शन करें, दूर से दर्शन करें और अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि जगन्नाथ आपसे मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकले हैं। तो लिहाजा इसके लिए आवश्यक है कि आप जहां भी होंगे जगन्नाथ जी का रथ आपको वो रथ से देख लेंगे, आपको ही देखने के लिए वो मंदिर से बाहर निकले हैं। जब वो अपने भक्त सालबेग से मिलने के लिए रुक सकते हैं तो आपसे मिलने के लिए भी रुके हैं, आप ऐसा भाव मन में कीजिए। तो इसलिए शारीरिक रूप से वहां तक पहुंचने की जद्दोजहद ना की जाए, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ है, लोग भावातिरेक में हैं। तो भावातिरेक में जब चैतन्य महाप्रभु को अपने शरीर की सुध नहीं रहती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुध नहीं रहती। आप वहीं पर खड़े होकर भाव से दर्शन करें, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो हमारी अपील यही है कि जो लोग जीएनटी पर दर्शन कर रहे हैं वो महसूस करें कि हम वहां पर समुद्र के किनारे, हम जगन्नाथ जी की पुरी में विराजमान हैं और उस महामार्ग पर हम भी मौजूद हैं उन भक्तों के बीच में जहां शंख घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, हरि बोल की धुन चल रही है और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा मानसिक रूप से आप इस रथ यात्रा में शामिल हो।
1: बिल्कुल, आप मानसिक रूप से इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, आप ये मानकर चलिए। और देखिए, आस्था का उत्सव लगातार जारी है, भक्ति का उत्साह हर तरफ दिखाई दे रहा है। पूरे देश में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का उल्लास है, हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही है। पूरी में मानो आस्था का समंदर उमड़ पड़ा हो, पूरी दुनिया से भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए पूरी पहुंचे हैं। आस्था और श्रद्धा के रंग ने पूरी को एक अद्भुत स्वरूप में उकेर दिया है। भगवान के दर्शन करने वाले भक्त मंत्रमुग्ध हैं। पूरे साल इन भक्तों को रथ का बेसब्री से इंतजार रहता है और यही वो दिन है जब महाप्रभु स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों से मिलने के लिए पहुंचते हैं। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय तिथि के पावन अवसर पर होने वाली इस रथ यात्रा की महिमा अपरंपार है। इस रथ यात्रा में शामिल होना ही अत्यंत फलदायी माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है। अब भगवान का रथ बड़ा डंडा पर निकल चुका है। प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है। पुरी में इस रथ यात्रा को 12वीं से 13वीं सदी से निकाले जाने की परंपरा है।
4: बिल्कुल, चलिए देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा चलते हैं, सीधे हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जो 4 बजे के आसपास आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आपकी तस्वीर में कितना अंतर हम देख पाएंगे, दिखाइए इस वक्त क्या तैयारियां हैं और रथ यात्रा कहां तक आगे बढ़ चली है।
5: अंतर सिर्फ इस बात का है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है, रथ यात्रा की दिव्यता भव्यता बढ़ चुकी है और जिस जगह पर इस रथ यात्रा को जाकर रुकना है, 2.5 किलोमीटर की दूरी थी महज, अब हमने देखा से हम 500 मीटर के आसपास हम रह गए हैं, लेकिन यात्रा अभी भी लगातार जारी है। तमाम दिशा निर्देश बार बार रथ से जो पुजारी है वो देते रहते हैं कि रथ को आगे करना है कि पीछे करना है, क्योंकि रास्ते से निकालने के लिए भी तमाम सारे चैलेंज होते हैं। कई जगह आपको इलेक्ट्रिक के वायर हैं, कई जगह रोड खराब है, उन सब बातों का ख्याल रखना होता है, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जो इस पूरी रथ यात्रा की दिव्यता और भव्यता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी, महिलाएं पुरुष बच्चे बुजुर्ग हर कोई इस रथ यात्रा में शामिल है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि बस वो एक बार इस रस्सी को पकड़कर कुछ दूर के लिए चल रहे वो भी अपना योगदान दे दे, क्योंकि आज हर कोई चाहता है। और बड़ी बात ये भी, मैंने इस भीड़ में बहुत सारे लोगों से बात की, ऐसे लोग जो कि नोएडा में रह रहे हैं लेकिन वो किसी और प्रदेश के हैं, मतलब वो उड़ीसा के नहीं है, वो जगन्नाथ के नहीं है, वो पुरी के नहीं है, वो या तो यूपी के हैं या तो नोएडा के लोकल हैं, वो भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि जब हमारे इलाके में हमें एक मौका मिल रहा है इस शुभ काम में हाथ बटाने का तो हम क्यों पीछे रह जाएं। लगातार जय जगन्नाथ का उद्घोष है, उद्घोष के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है और जहां इस रथ यात्रा को पहुंचना है वहां से अब महज हम 500 मीटर दूर रह गए हैं। रास्ते भर इस तरह से लोगों का उत्साह लगातार बना रहा है। कितनी दूर रह गए अभी हम मौसी के घर से?
6: अभी करीब करीब जो है 500-600 मीटर रह गए और करीब करीब 10 से 15 मिनट की रास्ता है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत क्या है, हमारी ट्रैफिक वाले से जिस रोड पे जाने के लिए हम लोग गैपू वाल था उस रोड अभी ट्रैफिक ही चलते हुए मना कर रहे हैं। अभी इसलिए थोड़ा सा आगे एक पुल है, पुल के ऊपर की जो नीला चक्र खोलना पड़ेगा उसके बाद जाके रख सकेंगे।
5: आप पिछली बार आप लोग उम्मीद किए थे कि लगभग 10,000 के आसपास लोग आए थे पिछली बार, इस बार कितने लोग लग रहे हैं?
6: इस बार कम से कम ना भी होता 15,000 से 20,000 आदमी जो है उपस्थित है इस टाइम।
5: 15,000 से 20,000 लोग यहाँ पर साथ चल रहे हैं। अब देखिए कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इस रथ यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, घर के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ। आप देखिए कि ये दो पीढ़ियां आपको इसमें दिखाई पड़ रहे होंगे, बच्ची है जिस उम्र की, महिला आपको दिखाई पड़ रही है, दादी नानी होंगी, लेकिन वो भी इस यात्रा में हिस्सा ले रही है। मतलब उम्र इस रथ यात्रा में कोई पैमाना नहीं है, और कोई अपनी उम्र को, उस उम्र की समस्याओं को, उस उम्र के पैमानों को दरकिनार करते हुए इस रथ यात्रा का हिस्सा बनाए। मैम क्या नाम है आपका?
7: मनीषा।
5: कहाँ से है आप?
7: दुबई से आए।
5: स्पेशली रथ यात्रा के
7: लिए?
5: तो आप पहली बार दुबई से आई या हर साल आ जाती हैं?
7: नहीं, इस फर्स्ट टाइम।
5: कैसा एक्सपीरियंस है आप?
7: वेरी नाइस। अपने इंडिया में पहली बार रथ यात्रा में आई हूँ मैं। मैं नवंबर में चारधाम यात्रा किया था, तो उससे इंस्पायर्ड होके मैं आई हूँ यहाँ।
0: चलिए मनीष, यही तो बुक सुनते हैं हमारे देश के तमाम उत्सवों की, कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। रिदम जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से, रिदम का रुख करते हुए। रिदम, आप भी दिखाइए जरा इस वक्त यात्रा के रंग किस तरह से आगे बढ़े हैं।
8: बिल्कुल अफजोद, बहुत ही खूबसूरत रंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छे कदमों के साथ, पावन कदमों के साथ ये यात्रा जो है ये आगे बढ़ती जा रही है। हर एक भक्त चाह रहा है कि वो इस रथ को आगे बढ़ाए, और यहाँ पर लगातार अलग अलग प्रस्तुतियाँ भी चल रही है। कृष्ण भावना जो है वो यहाँ पे कोई प्रस्तुत कर रहा है, कोई ओडिसी डांस यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ अलग अलग कलाकारों की, जहाँ तलवार अपने हाथ में लेके कुछ लड़कियाँ चल रही हैं, और साथ ही साथ में पीछे की तरफ अगर नज़र घुमाए तो ओडिसी डांस जो है वो करने वाली कुछ बच्चियाँ जो है वो यहाँ पे इस यात्रा का हिस्सा बनी हुई है। वो बीच बीच में अलग अलग फॉर्मेशंस वो इस यात्रा में ले रही है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यात्रा की बनी हुई है। मैम, कितने समय से आप तैयारियां करवा रही हैं इन बच्चियों को?
9: इट इज ऑलमोस्ट 15 डेज, एंड दे आर वेरी ईगर टू डू दिस, और यहाँ पर आकर के इनको बहुत एक्साइटेड है। इवन लास्ट टाइम भी आए थे।
8: क्या एज ग्रुप है?
9: इट्स अप टू एज ग्रुप 11 to 16, start from 6 to, yeah.
8: हमारे सामने एक 6 साल की बच्ची भी है जो बहुत ही इस समय पे बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और साथ ही में ये जो बच्चियां हैं ये 11 से 16 साल।
0: बिल्कुल रिदम, लौटेंगे और देखिए ये तस्वीरें जयपुर की, आप इससे पहले नोएडा की तस्वीरें, मनीष हमारे साथ मौजूद थे, आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की तस्वीरें, लेकिन सबसे अहम ये तस्वीरें जो सीधा पुरी से आ रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। भगवान के श्रृंगार का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है।
10: श्रृंगार उनका विशेष होता है, और श्रृंगार में उनका जो होता है पूरा नेचुरली होता है, और उसके विषय में कहते हैं कि जब उनका अच्छी तरह से षोडशोपचार से श्रृंगार और उनका पूजन जब करते हैं, तो कहते हैं कि रथांग पाणी रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधि, रथांग पाणी रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधा, अर्थात वह हर तरह के व्यक्ति के कष्ट को, हर तरह के व्यक्ति की विपदा को नष्ट करती है। क्या क्या? रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदा, अर्थात यदि कोई रोग से अतिशय पीड़ित है तो वह उससे जो है तो छुटकारा पा जाता है, दरिद्रता से पीड़ित है तो वह धनवान हो जाता है, यदि किसी बंधन से बंधा हुआ है किसी भी प्रकार का, यानी कोर्ट कचहरी आदि किसी भी तरह की उसकी यदि विपदा है तो उससे वह जो है मुक्त हो जाता है। और कहते भी हैं कि जगन नारायणोद्भवम, इस कलयुग में यदि कोई जगत के नारायण हैं तो वह भगवान जो है जगत नारायण हैं, और उनको जब व्यक्ति याद करता है, स्मरण करता है, तो कहते हैं आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मोदिनी पति। महर्षियों ने, ऋषियों ने इस चीज का व्याख्यान किया है कि जो हमारे चार धाम हैं उसमें जो कलयुग का प्रधान धाम होगा वह जगन्नाथपुरी का ही धाम होगा, और उस धाम के जो दर्शन मात्र पालेगा, उस धाम का जो स्मरण मात्र कर लेगा, उससे भी वह प्राणी अपने आप में धन्य हो जाएगा। अभी संजय जी यही बता रहे थे कि मान लीजिए शारीरिक रूप से आप वहां नहीं पहुंच पाए और उस स्थान पे नहीं है, तो कोई नहीं, आपके हर रोम रोम में, हर जो है श्वास में भगवान का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव के हर हर जीव के प्राणों में या हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश होता है। आप जब जाते हैं भगवान के प्रांगण में आपकी भाव भंगिमा चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर भगवान का वास है। इसलिए आप यहाँ से भी भगवान का स्मरण करें, निश्चित रूप से आपको जो है वही फल प्राप्त होगा जो वहाँ पुरी में व्यक्तियों को फल प्राप्त हो रहा है। और यदि भाव से आप भावुक नहीं है, भाव से भाव विभोर नहीं है, तो गर्भगृह में भी आप बैठ जाएंगे तब भी आपको वह फल प्राप्त नहीं होगा। और ये जगन्नाथ आपको देते क्या है? कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इनका स्मरण मात्र कर लेने से आप जो है जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मरणपि जननी जठरे शरणम, जो पुनः जन्म होता है पुनः मरण होता है, ये जन्म और मरण की जो गठरी आप लिए फिर रहे हो इससे आपको छुटकारा मिल जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और तभी इसके विषय में कहते हैं कि चतुर्मूर्तिस चतुर्बाहुस चतुर्व्यूहस चतुर्गति, आपको चारों प्रकार की चीजें प्राप्त हो जाती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक बार आप भाव विभोर होकर के उनकी भक्ति में डूबने का प्रयास करें और जब डूबते हैं तो वैकुंठ पुरुष प्राण प्राण दणवा पृथु, निश्चित रूप से आपकी जो है वैकुंठ के धाम की प्राप्ति होती है। वह साकेत हम आपको देते हैं और देते तब हैं जब आप उनके साथ भाव से जुड़ते हैं। तो आप जगन्नाथपुरी के प्रांगण में नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, जहां जिस जगह हैं वहां आप भाव से भगवान को याद करें, निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना को पूरी
0: होगी। बिल्कुल, आप जहां पर भी विराजमान हैं, जहां पर भी बैठे हैं, अगर आप जीएनटी की स्क्रीन को इस वक्त देख रहे हैं तो सच्चे भाव से अगर आप भगवान जगन्नाथ को याद करेंगे तो भगवान आपके साथ सीधे जुड़ जाएंगे। तस्वीरें आपको मंदिर परिसर के ही दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर कुछ अनुष्ठान चल रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल संजय जी आपसे पूछती हूं, इस वक्त ये प्रक्रिया अगर आप बता सकें जो अनुष्ठान इस वक्त चल रहे हैं।
2: ये अनुष्ठान चल रहे हैं, रथ अब आगे बढ़ने की तैयारी में है। चूंकि भगवान बलभद्र जी का रथ आगे बढ़ चुका है, देवी सुभद्रा जी का रथ बढ़ चुका है आगे, हमारे संवाददाता ने बताया, और अब जगन्नाथ जी वहां से निकलने वाले हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर हमारे भक्त कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने जो अपने अनुभव के अंदर के अनुभव हैं वो लिखे हैं। माधवदास एक कवि हुए हैं, भगवान के बड़े कवियों में से हैं। देखो देखो नैननी को सुख रथ बैठे हरियाज, अग्रज अनुजा सहित श्याम घन सबय मनोरथ साज, सुद आषाढ़ दौज शुभ दिन पुष्य नक्षत्र संजोग। आज आषाढ़ की द्वितीय तिथि है, पुष्य नक्षत्र बनमाला पीताम्बर राजत दीप बहु विधि भोग, गारी देत सबय मन भावत। भगवान को गालियां देते हैं प्रेम से वहां लोग कि बाहर निकलो अब चलो रथ यात्रा का समय हो गया। तो उन्होंने लिखा, गारी देत सबय मन भावत कीरति अगम अपार, माधोदास चरननी को सेवक जगन्नाथ श्रुतिसार। बोलो हरि बोल के साथ धुन के साथ जगन्नाथ की यात्रा आगे बढ़ रही है। हम दृश्यों में देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष आगे बढ़ रहा है, और जो मैंने बताया कि रथों के जो ऊपर शिखर बनाते हैं उन कपड़ों के रंग भी फिक्स हैं। हजारों साल से जब से रथ यात्रा चल रही है, लगभग 3,500 साल का तो लिखित प्रमाण मिलता है, उससे भी पहले से रथ यात्रा चल रही है। तो भगवान का रथ है वो लाल और पीले रंग का होता है जिसको नंदी घोष कहते हैं, और देवी सुभद्रा का रथ लाल और काले रंग का शिखर होता है उसे दर्प दलन कहते हैं, और जो भगवान बलभद्र जी का है जो बड़े भाई हैं भगवान के, उनका रथ नीले या हरे के साथ लाल का कॉम्बिनेशन होता है।
0: संजय जी रंग कैसे डिसाइड किए जाते हैं?
2: ये भगवान के जो वस्त्रों के रंग है ना उससे डिसाइड किए जाते हैं, और ये पुरानी परंपरा है जिसमें भगवान का वस्त्र या तो पीताम्बर है और जो इनका वस्त्र है बलभद्र जी का वो नीलांबर है, तो इसलिए दोनों को नीलांबर और पीतांबर कहते हैं। तो या तो नीला और हरा के साथ लाल का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन देवी सुभद्रा का रथ हमेशा लाल और काले का कॉम्बिनेशन होता है, और भगवान जगन्नाथ जी का लाल और पीले का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी ऊंचाइयां भी फिक्स है, लगभग 62 से 63 फुट की ऊंचाई भगवान जगन्नाथ जी के रथ की होती है, उससे लगभग 1-1.5 फीट नीचा बलभद्र जी का रथ होता है, और सुभद्रा जी चूंकि सबसे लाडली उनका रथ सबसे छोटा सबसे प्यारा होता है, तो दोनों भाई अपने बीच में सुभद्रा जी को लेकर मौसी के घर जाते हैं, यानी आगे उनकी रक्षा करते हैं बलभद्र जी, पीछे जगन्नाथ जी, बीच में उनकी बहन रहती है, और इस तरह से वो रथ यात्रा लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी मौसी के घर जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो चलिए रथ यात्रा और इससे जुड़ी बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है, आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो अभी का अपडेट है वो यही है कि 500 मीटर की दूरी फिलहाल तय कर ली गई है इस यात्रा, ये यात्रा जो है 500 मीटर की दूरी तक पहुंच चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौट

0: तो जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी बड़ी और महा कवरेज, 200 घंटे की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। और इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि तस्वीरें केवल पुरी से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से आ रही है, क्योंकि हर जगह पर रथ यात्रा दिखाई जा रही है। सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं, रिदम मेरी सहयोगी मौजूद है। रिदम, चले लौटेंगे रिदम के पास, लेकिन ये भव्य तस्वीरें अरविंद शुक्ला जी, ये तस्वीर देखिए, लाखों लाख बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त इस वक्त 6:30 हो रहा है, 4 बजे का वक्त, जब भगवान गर्भगृह से निकलकर यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे संजय जी भी बता रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि भगवान को रात रथ में ही बितानी पड़ती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी रथ जो है वो पहुंच जाते हैं। अभी क्या कहा जा सकता है, अगर इस रथ यात्रा को देखिए कितना वक्त और लगेगा, अभी केवल 500 मीटर की दूरी तय की है।
1: देखिए वक्त तो लगेगा, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, संख्या वहाँ व्यक्तियों की बहुत ज्यादा है, भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इस क्षण का जो वहाँ आनंदमय माहौल है, ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से नृत्य गान के साथ, भजन के साथ भगवान को लिए जा रहे हैं। और लगभग ऐसा कभी हो जाता होगा कि मान लीजिए मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रायः ये मंदिर तक पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मंदिर तक जो है पहुंचने की विशेषता जो है रहती है कि वो पहुंच ही जाते हैं। जो ये क्षण है, इस क्षण पे वो आनंद पूरा भक्त लेते हैं कि पूरी तरह से भजन के साथ, गायन के साथ भगवान को वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि जो नौदा भक्ति है, नौदा भक्ति में भजन का अपना जो है विशेष महत्व है। और प्रायः आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी का जो भी किसी प्रकार का यदि आप भजन सुनेंगे तो पूरे गान के साथ, पूरे ढोल नगाड़े के साथ उनका भजन होता है, उसी में भक्त पूरी तरह से डूब करके आनंदमयी होते हैं। तो ये वही क्षण है, ये वही पल है जिसके विषय में आप पूछ रही हैं। अभी थोड़ा ही 500 या 700 मीटर ही निकला हुआ।
0: ठीक है, अशोक गुप्ता, आपके सवाल से पहले मैं एक सवाल संजय जी से करना चाहूंगी। संजय जी, अगर मैं इन तस्वीरों को आपको डिस्क्राइब करने को बोलूं तो क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जब बात हुई थी, देखिए एक प्रोटोकॉल भी रहता है, क्योंकि हर रथ के आगे रस्सी रस्सी खींचने वाले लोगों के पास भी पासेस होते हैं, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं और जिस तरीके से संख्या, बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल भी तोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है, भक्त है, भक्तों की आस्था है, वहां पहुंचेंगे तो इच्छा रहेगी कि पास से प्रभु के दर्शन किए जाए।
2: जब आप अतिरेक में होते हैं ना, भावातिरेक में, तो कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता, टूट जाती हैं वो दीवारें जो मैं अक्सर बनाता हूं। तो ऐसी स्थिति होती है जब वहां, तो लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में उस हाथ के निशान है जिस दीवार पर हाथ का सहारा लेकर चैतन्य महाप्रभु ठाकुर जी के दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, और जहां वो सिर टिकाते थे उस जगह पे थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, वो जगह ऐसी है, और वो हाथ का निशान अभी तक बना हुआ है मंदिर में, श्री मंदिर में, तो लोग उनके दर्शन करते हैं। और जब आप अतिरेक में होते हैं तो आप भूल जाते हैं, जब भावातिरेक में जब श्री कृष्ण जाते हैं विदुर जी के यहाँ, तो भावातिरेक में विदुरानी को, उनकी पत्नी को समझ में नहीं आता कि भगवान को मैं क्या खिलाऊं, तो केला छीलकर उन्होंने साइड रख दिया और छिलका खिला दिया और भगवान प्रेम से खा रहे। जब वहां भगवान को नहीं पता चला, विदुर जी को पता नहीं चला, तो ऐसे में आप एक सामान्य भक्त की कल्पना कर सकते हैं कि उसको क्या पता चलेगा कि सामने क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अतिरेक में रहते हैं, भावातिरेक में रहते हैं, और इस दृश्य को देखने के बाद एक ही चीज जहन में आती है, वो ये है, अद्भुत, अकल्पनीय।

0: अविश्वसनीय दिव्य आनंदमय क्षण है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जीवन का इकलौता क्षण है जो न भूतो न भविष्यति हो सकता है उनके जीवन में। जो लोग विदेशों से आए हैं वो हो सकता है कि आगे वो ना आ पाए, इसलिए ऐसे में लोग अपने हृदय में इस याद को संजो कर रखना चाहते हैं कि दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
1: बहुत बढ़िया, चलिए संजय जी लौटते हूँ अगले प्रश्न के साथ।

0: जा रही है। इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा का उत्साह देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में भी नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई शहरों में रथ यात्रा की रौनक बनी हुई है। खासतौर पर कोलकाता में पूरे भक्तिभाव के साथ आस्थावान महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही देश के कई और कोनों और कई शहरों में श्रद्धालु महाप्रभु की रथ यात्रा महोत्सव का हिस्सा बने हैं।
1: चलिए संजय जी, आपके पास आते हुए, संजय जी ये ना रूल है, एक बेसिक रूल के रूठना मनाना तो जीवन का एक हिस्सा है। पत्नी अगर रूठ जाए और पति अगर ना मनाए तो ऐसा हो नहीं सकता, फिर वो रुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये कहानी इसी के साथ जोड़ती हूँ मैं। अब भगवान जगन्नाथ जी ने जो किया उसके बाद देवी लक्ष्मी जब गुस्सा हुई, वो बताइए क्यों हुई, क्यों रुष्ट हुई वो,
0: और उन्हें मनाया कैसे गया।
2: ये सदियों पुरानी परंपरा है और उसमें क्या भगवान क्या इंसान, सब एक ही लाइन में आते हैं। लोग कहते हैं जब शतरंज की बाजी उठती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं सारे मोहरे, तो वो स्थिति यहाँ भी है। ये सदियों पुरानी परंपरा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ उनका जीवन, मतलब उनका जो उनकी जो लीला है वो वैसी है जैसे आदमियों की लीला होती है। सुबह उनको दत्वन कराया जाता है, फिर उनको स्नान कराया जाता है, फिर उनको नाश्ता करते हैं वो, यानी जो सुबह का भोग है वो बाल भोग है। इसके बाद सारे भोग की परंपरा बहुत है। जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो कभी सोते नहीं और बहुत बार भोग लगते हैं उनके, अनगिनत बार भोग लगते हैं। और भोग का भी आप कहें तो उनकी रसोई अद्भुत है। दुनिया में ऐसी कोई रसोई नहीं होगी जिसमें इतना सारा खाना बनता है एक साथ, एक के ऊपर एक सात अटके लगाए जाते हैं और उसमें से हर एक अटका नीचे आग जलाई जाती है और सबसे पहले ऊपर के घड़े का भात पकता है और नीचे का भात सबसे आखिर में पकता है। ऐसे में तो आखिर के जो सबसे नीचे घड़ा है उसके चावल को जल जाना चाहिए, लेकिन सब एक समान पकते हैं। कैसे पकते हैं कोई नहीं जानता। तो जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में अपने भाई और बहन के साथ रवाना होते हैं, लक्ष्मी जी को जब यह बात पता चलती है तो लक्ष्मी जी बहुत रुष्ट होती हैं, बहुत गुस्सा होती हैं। और रथ यात्रा के दूसरे दिन या तीसरे दिन एक ऐसा समय आता है जब लक्ष्मी मंदिर के पुजारी वहां पहुंचते हैं लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में। कहते हैं कि लक्ष्मी को जब पता चला तो लक्ष्मी जी वहां पहुंची और उन्होंने गुस्से में आकर रथ तोड़ दिया। वो इतने गुस्से में थे कि अंदर वो भगवान मंदिर में है, मौसी मंदिर में, लेकिन वो गुंडीचा मंदिर के अंदर नहीं गई, रथ तोड़कर वापस आ गई। आज भी वो परंपरा निभाई जाती है और जब सारे लोग वहां पहुंचते हैं तो रात को वहां पर वो रथ तोड़कर आते हैं, प्रतीकात्मक रूप से कुछ नुकसान करते हैं और फिर आते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी को ये पता चलता है, सोना बेश में भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन अंदर आते समय उनकी हवा खराब रहती है कि लक्ष्मी क्रोधित हैं, लक्ष्मी नाराज हैं, तो ऐसे में उनको कैसे मनाया जाए। और जैसे ही जगन्नाथ जी को वापस श्री मंदिर की ओर लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को मंदिर के पास, लक्ष्मी मंदिर के पास रोका जाता है और फिर लक्ष्मी मंदिर के पुजारी भगवान को बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, ताने मारते हैं और लक्ष्मी जी की तरफ से वो बताते हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, हम आपसे बहुत गुस्सा हैं, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। और फिर जगन्नाथ जी की तरफ से रसगुल्ले की हांडी लक्ष्मी जी को दी जाती है कि प्रिय अब तो मान जाओ, रसगुल्ले खाओ और मधुर बन जाओ। और इसके बाद फिर लक्ष्मी जी मानती हैं, फिर भगवान अपने बड़े भैया और छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ श्री मंदिर में विराजमान होते हैं। फिर दिनचर्या वैसे ही चलती है, लक्ष्मी जी भी मान जाती हैं और भगवान के भी दिल को तसल्ली मिलती
1: है। चलिए हमारे बाकी सहयोगी ना रूठ जाए, जरा उनके पास भी चल लेते हैं। मनीष चौरसिया को भी मुझे रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। मनीष आपके पास आते हुए, मनीष इस वक्त कैसी रौनक है जरा दिखाइए।
3: रसगुल्ले पहुंचाए दीजिए, बहुत बेसब्री से हम भी कुछ मीठे का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद अभी हमारे हिस्से तक नहीं आया है। और मौसी के घर से हम महज अब मान लीजिए आप 400 मीटर के आसपास होंगे, लेकिन जैसे जैसे उस यात्रा का पड़ाव पास आ रहा है या जो श्रद्धालु है जो भक्त है उनका उत्साह उनका जोश और हाई होता जा रहा है। अब देखिए कि लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा ये कर चुके हैं, चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीष, चलिए लौटेंगे। मनीष आपके पास 700 मीटर की दूरी पर नोएडा में जो रथ यात्रा निकली है वो है, और साथ ही साथ अगर हम पुरी की रथ यात्रा की बात करें तो 500 से 600 मीटर की दूरी तय कर ली है। अरविंद शुक्ला जी, इन रथों की रस्सियों का भी बहुत विशेष महत्व है।
1: अरविंद जी
4: जी जी, देखिए रस्सियों का तो महत्व तो है ही, क्योंकि रस्सी के द्वारा ही रथ को खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि रथ को डायरेक्ट कोई खींच सकता है, रथ को डायरेक्ट हो सकता है, रस्सी के द्वारा ही खींचा जा रहा है। तो जो डोर है, जो रस्सी है, वह भी अपने आप में बहुत विशिष्ट है और बहुत उसका जो है महत्व है।

0: और उसके साथ साथ उस झाड़ू का भी बड़ा महत्व है, जो झाड़ू जो है रथ के आगे आगे लगाई जा रही है,
1: झाड़ू
0: हाँ स्वर्ण की झाड़ू है, और झाड़ू को लगाने वाला वहां का मेन नायक है, प्रधान है। तो उससे यह है कि हमारी जो भी जीवन की आने वाली विपदा है, परेशानी है, हमारे जीवन की जो भी दरिद्रता है, जिस तरह से झाड़ू हमारे घर की या हमारे जीवन की विपदा परेशानियों को साफ करेगी, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये विशेषता है। देखिए अभी का जो आप क्षण देख रहे हैं, भगवान की रथ की यात्रा निकालने और गुलीचा मंदिर मौसी के यहाँ से वापस आने के बीच का ये जो समय होता है, यही महाविशेष समय है, जो हर भक्त जो है भक्ति में डूब करके अपनी भक्ति भावना को आनंद से जो है भाव विभोर हो जाता है। बाकी जब वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ आके जब विराजमान हो जाते हैं, तो ये विशेष फिर उनके लिए रह जाता है जो वहां के पंडा पुजारी हैं। अभी का जो विशेष है, अभी का विशेष उन भक्तों के लिए है जो भक्त जो है भाव विभोर होके वहां दर्शन के लिए और रथ यात्रा की जो है रस्सी खींचने के लिए भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। तो ये दोनों क्षण अपने आप में विशेष पुण्यमयी है, और वही व्यक्ति जा पाते हैं जिनके किस्मत में भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इसके विषय में कहते भी हैं कि प्राप्त करता है, तो उसके विषय में खास कर कहा कि ये विश्वम विष्णुर वशटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद भावो भूत आत्मा भूत भावना। अर्थात उसने जो भूत में कर्म किसी प्रकार के बुरे कर रखे हैं या भविष्य में कोई उसकी किस्मत में बुरा कर्म लिखा हुआ था, वह सारी चीजों को भगवान विनाश करके और उसको मोक्ष की गति प्रदान करते हैं, उसको परम भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज शक्ति है क्या इस जीवन में, जो ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं वो भक्ति के दम पे ही ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, जो विष्णु पालन कर रहे हैं, भगवान विष्णु जो है भक्ति के ही बलबूते पे संसार का पालन कर रहे हैं, जो भगवान शिव संहार कर रहे हैं वो भी भक्ति के बलबूते पे संहार कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी जो चीज है वो भक्ति है, वो धर्म है, और जो व्यक्ति भक्ति में डूबा होता है भगवान उसको किसी भी प्रकार से कष्ट में नहीं आने देते हैं।
1: और बिल्कुल हमारे और आपके जीवन के कष्टों का निवारण करने के लिए जगत के नाथ पधार चुके हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महाकवर जीएनटी को लगातार जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा पर हमारी ये महाकवरेज जारी है। अनोखी है भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा और उतना ही अनोखा है उनका ये पावन धाम। अपने आप में अनोखा है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ पर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। लेकिन फिर जगन्नाथ धाम की स्थापना कैसे हुई और पुरी में कैसे शुरू हुई रथ यात्रा की ये परंपरा, चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी सतयुग की एक रात, जब उज्जैन के राजा इंद्रयुम को एक सपना आया था।

0: हे राजा इंद्रदेव, समुद्र के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होऊंगा।
1: ये कहानी है उनकी जिन्हें सारा संसार जगत का पालनहार बुलाता है। कहानी उनकी जिनके होने से संसार का ये भाग धरती का बैकुंठ कहलाने लगा। कथा उनकी जो स्वयं मधुरे हैं, पर जगत की हर रीत उन्हीं से पूरी होती है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी। और यहीं विराजते हैं सारे जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। ये बात है सतयुग की। उन दिनों आज के उज्जैन को अवंतिका या अवंती कहा जाता था। तब अवंती पर सूर्यवंश के राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एक संत ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक बेहद दिव्य रूप नील माधव स्वरूप के बारे में बताया। बताया जाता है कि भगवान नील माधव के दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माने जाते थे। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव का मंदिर खोजने में जुट गए। देश के चारों कोनों में उन्होंने लोग भेजे, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कहानी आगे बताती है कि वर्षों की प्रतीक्षा और आराधना के बाद आखिरकार एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनसे कहा कि वे सागर तट पर दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। एक रोज समुद्र की उफनती लहरों के साथ एक विशाल दिव्य लकड़ी का तना बहकर तट पर आ लगा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के पवित्र चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। राजा समझ गए यही दारु ब्रह्म है। बड़े सम्मान के साथ उस दिव्य तने को महल में लाया गया। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंचे और राजा ने उन्हें लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई बने विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और महल के एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बढ़ई ने जब बहुत दिनों तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो एक दिन रानी गुंडीचा ने कौतूहलवश कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता।
2: रानी ने परेशान होकर महारानी ने राजा जी को बोले कि हम दरवाजा खोल देंगे। तो इसी समय राजा जी ने बोले नहीं, वो कंडीशन किए हैं और हम क्यों खोलेंगे। तो रानी ने बोले देखिए, अगर वो गुजर जाएंगे कि कुछ हो जाएगा तो हमको पाप लगेगा, नरक का पाप लगेगा, तो हमको मन नहीं करे, हम खोल देंगे। जब दरवाजा खोल दिए तो देखिए, तो जो कारीगर जो थे महापुरुष को मूर्ति बनाने वाले, वो नहीं थे, लेकिन तीनों भगवान थे। तीनों भगवान ऐसे रूप पे थे आज जो रूप में आप देख रहे हैं। हाथ पांव सब था, लेकिन हाथ पांव नहीं था।
1: विचित्र दुविधा थी। राजा और रानी के सामने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह मौजूद थे, लेकिन वे पूर्ण नहीं थे। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, स्वरूप अधूरा। राजा इंद्रद्युम्न हताश हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और उन्हें इसी रूप में स्थापित कर दिया जाए।
2: तो राजा रानी ने चकित हो गए और महाप्रभु के पास में शरण में आ गए कि महाप्रभु कितना बड़ा भूल हमने कर दिया, दरवाजा खोल दिया, अब तो विघ्न रूप है, अभी तो पूजा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसी समय स्वप्नादेश हुआ महापुरुष जगन्नाथ जी की तरफ से कि नहीं नहीं, हम कलि युग में इसी रूप में पूजा पाएंगे। तो इसके बाद में महापुरुष जगन्नाथ वही इसी रूप में पूजा पा रहे हैं, हाथ पांव नहीं है, आँख के पलक नहीं है, लेकिन वो सबको काम कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ तो हला के सबका जो दुख है उसको ले रहे हैं, हरण कर रहे हैं, और कान नहीं है लेकिन सबका बात सुन के उनका भी सब कार्य सिद्ध कर रहे हैं।
1: फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और पूरे विधि विधान के साथ उन्हें श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है, लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। लेकिन भगवान की मूर्ति बदलने की ये प्रक्रिया बेहद रहस्यात्मक ढंग से निभाई जाती है। बताया जाता है कि जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। माना जाता है कि ये भगवान का हृदय है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। अनोखे हैं भगवान जगन्नाथ और उतनी ही अनूठी है उनके प्राकट्य की कहानी। भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके प्राकट्य का सबसे विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। भगवान जगन्नाथ की यही कहानी आगे चलकर रथ यात्रा से भी जुड़ती है। कहानी आगे बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थी। अब जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। भगवान के इसी वचन को निभाने के लिए रथ यात्रा का संकल्प लिया गया।

0: पुरी में शुरुआत हुई उस परंपरा की, जिसे आज भी बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया जाता है।
1: ये रथ यात्रा बहुत सालों से चल रहा है। ये स्वयं जगन्नाथ जी ने उनका निश्रुत जो बानी होता है वो गुंडीचा रानी को वो सत किए थे कि मैं 9 दिन ये यात्रा करूँगा। तो ये कीर्ति को रक्षा करने के लिए ये यात्रा हो रहा है 9 दिन का।
0: मान्यता है कि तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। चूंकि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था, इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर और उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। पुरी के मुख्य समारोह मार्ग बड़ा डंडा के एक छोर पर श्री जगन्नाथ मंदिर है, तो उसी सड़क के दूसरे छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पहुंचकर भगवान अपने भाई बहन के साथ विश्राम करते हैं और विशेष व्यंजनों का भोग लगाते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर के गर्भगृह से बाहर आकर बहुत करीब से सभी आम और खास भक्तों को दर्शन देते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसे आड़प महाप्रसाद कहते हैं।
2: ये कलयुग का एक ही मात्र भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथ में एक बार साल में एक बार बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ के ऊपर में वो बाहर आते हैं। तीनों रथ में जगन्नाथ जी आते हैं, बलदाव जी और माता सुभद्रा देवी रथ पे आते हैं। तो जाते हैं गुंडीचाबाड़ी जनकपुरी करके, जहाँ पर महापुरुष 9 दिन तक वहाँ उनका विशेष नीतिकांत है, वहाँ भी जैसा है, वहाँ भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सब व्यवस्था वहीं पर जैसा वहीं पर होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी गुंडीचा और भगवान जगन्नाथ के बीच वात्सल्य और प्रेम के इसी भाव के चलते गुंडीचा मंदिर को मासी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान को मासी माँ के मंदिर तक ले जाने वाली इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो हर साल भक्ति की इसी डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पुरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। पुरी की पवित्र भूमि पर जब ये रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
4: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना हुए, आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टरों ने की भगवान की सेहत की जांच। शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा। दिल्ली नोएडा में भी रथ यात्रा का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की होगी पहचान। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: आपके साथ आशा गुप्ता, साहिल देव। शाम के 7 बज चुके हैं और ये तस्वीरें तो सुबह से लगातार हम आपको जीएनटी के माध्यम से दिखाई रहे हैं। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की रौनक लगातार आगे बढ़ती जा रही है। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ, भगवान बलभद्र तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। पुरी में रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और सभी रथों को भक्त रस्सियों के जरिए खींच रहे हैं। बारिश के बीच शाम करीब 5:05 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज आगे बढ़ा। उससे पहले पाहिंदी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथ पर विराजमान किया गया। और देखिए, उसके बाद पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों के आगे झाड़ू लगाई। ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर बने गुंडिचा मंदिर तक जाती है। इस शुभ मौके पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और इस दौरान भगवान श्री मंदिर से प्रस्थान कर अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। आमतौर पर भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह तक जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा एक अनोखी ऐसी परंपरा है जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता ये भी है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, उनके लिए महाप्रभु खुद बाहर आकर दर्शन देते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। और देखिए, इसी दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर में 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा की धूम सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नजर आ रही है। कई जगहों पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्राएं पूरे उत्साह के साथ निकाली जा रही है और इन रथों को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रथ यात्राएं लगातार निकाली जा रही हैं। आप देख लीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों से सुबह से ये तस्वीरें आ रही हैं। उत्साह आपको नजर आएगा, उत्सव और महाउत्सव की ये तस्वीरें, जगन्नाथ रथ यात्रा की ये तस्वीरें देश के कोने कोने से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, जयपुर की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सबसे शानदार और अद्भुत तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आ रही हैं पुरी से, जहां पर भगवान के तीनों रथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी 500 मीटर की दूरी पर है भगवान जगन्नाथ का वो रथ गुंडिचा मंदिर में पहुंचने के लिए। संजय शर्मा मौजूद है और खास मेहमान अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूं क्योंकि बहुत सारी परंपराएं, मान्यताएं जिनका जिक्र हम लगातार इस दौरान, इस चर्चा के दौरान कर ही रहे हैं, ब्रह्म पदार्थ की क्या वही?
1: ब्रह्म पदार्थ ये कहते हैं जो कथा आती है और पुराणों में जिसका जिक्र है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया, इहलोक की लीला पूरी की और जब वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने लग गए तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार हो गया लेकिन उसके बाद एक पदार्थ ऐसा था जो अभी भी धड़क रहा था और वो पदार्थ बिल्कुल इंटैक्ट था। उस आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि मैं इसी के जरिए पूरे जगत को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूँ और वही ब्रह्म पदार्थ है जो इन देव प्रतिमाओं में यानी भगवान जगन्नाथ जी में, उसे हर बार जब नई मूर्तियां, नव कलेवर होता है तो उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर, पुरानी प्रतिमा से निकालकर नए विग्रह में स्थापित किया जाता है और यह माना जाता है कि अब भगवान जगन्नाथ जी इसमें विराजमान हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब दो आषाढ़ के आषाढ़, जब मलमास के रूप में होता, पुरुषोत्तम महीने के रूप में दो आषाढ़ आते हैं जिस साल, उस साल लगभग 12 या 13 साल में ऐसा संयोग आता है जब दो आषाढ़ मलमास के रूप में आते हैं, उसी साल नव कलेवर की रस्म होती है जिसमें नीम के ऐसे पेड़ जिनकी पहचान के लिए सारे नियम बनाए गए हैं कि वो तालाब सरोवर के किनारे, वाटर बॉडी के किनारे होना चाहिए, उसके नज़दीक सांप की बांबी होनी चाहिए, वहाँ चींटियों के बिल होने चाहिए और भी कई तरह के ऐसे शुभ चिन्ह हैं जिनसे उन पेड़ों की पहचान की जाती है। नीम के पेड़ होने चाहिए, भगवान जगन्नाथ जी के लिए जिस नीम के दारू की पहचान की जाती है उसका रंग सांवला होना चाहिए और जो भगवान बलभद्र जी और सुभद्रा देवी जी के लिए जो उनकी प्रति विग्रह बनाने के लिए जो नीम का इस्तेमाल होना चाहिए वो थोड़ा सफेदी लिए हुए होना चाहिए। ये सारे ऐसे शुभ चिन्ह हैं जिसके बाद उनकी पहचान करके वहां वो विग्रह बनाए जाते हैं और ब्रह्म पदार्थ को जिस दिन ट्रांसफर किया जाता है श्री मंदिर में तो उस समय एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की पहचान की जाती है, उनके हाथों में बड़े दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट उन्हें पता ना चले, और ये मान्यता है कि कोई अगर उसको सीधा छू ले तो उसको मतलब इतना पावर है उसके अंदर कि वो उसे संभाल नहीं पाएगा, और उसे फिर बहुत अंधेरे में आसपास के इलाकों की बिजली काट दी जाती है दीवों की रोशनी में। उस समय वो बिल्कुल गोपनीय ढंग से वो पुराने प्रतिमा के में से विग्रह में से निकालकर वो ब्रह्म पदार्थ नए विग्रह में शिफ्ट कर दिया जाता है, और बिल्कुल हूबहू वैसी ही प्रतिमा जो हजारों साल से बनी हुई है वैसी प्रतिमा अगले दिन से उनकी सेवा पूजा शुरू हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो वही ब्रह्म पदार्थ की प्राण प्रतिष्ठा होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान कृष्ण की जो पसलियां थी, जो उनका हृदय स्थल था, वो हृदय वैसे का वैसे ही रह गया था, वो हृदय ही है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और उसके बाद अगले दिन से वही प्रतिमा की पूजा होती है, और जो पुराने विग्रह होते हैं वही मंदिर परिसर में ही एक ऐसा स्थल है जहां पर उनको जमीन में उनको स्थान दिया जाता है, और उसके बाद फिर वहां पर फूल के पौधे और तुलसी दल और ये सारे उनके पौधे रहते हैं, और इस तरह से वो प्रतिमा का मतलब शिफ्टिंग ऑफ ब्रह्म पदार्थ वो आगे इस तरह से बढ़ता है, और सदियों से परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है नव कलेवर के रूप में।
0: बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ आपके पास, अरविंद जी आपके पास भी आती हूँ। इससे पहले हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय अजय, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त रौनक क्या है वो दिखाइए जरा और बताइए हमें।
2: देखिए आप बलभद्र जी और सुभद्रा जी का और सुभद्रा मैया का जो दो रथ है हाँ। वो दो रथ बहुत आगे चल रही है, और नंदीघोष जो रथ है भगवान जगन्नाथ जी का, नंदीघोष रथ है, नंदीघोष रथ अभी भी अटका हुआ है, अभी भी नंदीघोष रथ श्री मंदिर से निकला नहीं है। नंदीघोष रथ के ऊपर भगवान अभी भी विराजमान है, अभी भी रथ जहाँ पे था वहीं पे है, एक भी कदम आगे नहीं गया है। लोग आके भगवान को वहीं से देख रहे हैं, वही रथ के ऊपर भगवान को देख के लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन भक्तों का भीड़ अगर बात करें तो ये भीड़ ही बता रहा है कि लोग अभी भी आ रहे हैं देखने के लिए। लोगों का मन में है भगवान जितने देर तक यहाँ रहेंगे उतना सुविधा है, इतना लोगों को देखने के लिए चांसेस रहेगा, लोग देख पाएंगे। भगवान भक्तों को इंतजार किए हैं, तो भक्त ने आके देख नहीं पा रहे हैं, इस भीड़ में जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं, इन लोगों के लिए भगवान अभी भी मंदिर के पास खड़े हैं। अभी मंदिर से रथ आगे गया, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब रथ आगे गया, नंदीघोष रथ जो है अब एक कदम आगे गया, यानी रथ का कबर नंदीघोष रथ का जो खींचने का जो प्रोसेस अब शुरू हुआ। अब धीरे धीरे बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के पीछे पीछे ये भी जाएंगे। नंदीघोष रथ का जो रुका हुआ था नंदीघोष रथ, अब नंदीघोष रथ का चलना शुरू हो गई, नंदीघोष रथ को अब ले जाया जाएगा। जितने देर तक जा पाएगी सुविधा के हिसाब से, प्रशासन के नियमों के हिसाब से, जो रीति रिश्वा के हिसाब से जितने देर तक जा पाएगी, इतने देर तक वो विधि है जो रिश्वा से उतने देर तक जाके रथ रुकेगी। लेकिन अब तीनों रथ चल रहा है, हम बोल सकते हैं तीनों रथ अब चल रहा है। क्या पहले बलभद्र जी का और इसके पीछे सुभद्रा मैया का, और इसके पीछे अब चलना शुरू कर दिया है भगवान जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भीड़ कहीं पे ज्यादा है तो ये है नंदीघोष रथ के पास, क्योंकि नंदीघोष रथ में विराजमान है जगन्नाथ, और जगन्नाथ को लोग दूर दूर से जो आए थे तो इंतजार किए थे, वो आके अब रथ के पास भीड़ जमा रहे हैं, और लोगों को देखने के लिए भगवान भी इंतजार में है। भगवान अभी नहीं जा रहे हैं, भगवान एक कदम जाके रुक रहे हैं, फिर एक कदम जाके रुक रहे हैं, लोगों को देख के वो आगे जाएंगे। लोग बारिश में भीग के भगवान को देख रहे हैं, इसलिए भगवान भी कि मुझे देखने के लिए जो भक्त आए हैं इतने कष्ट करके, मैं भी यही मंदिर से आगे तो भीड़ बढ़ जाएगा, यही मंदिर से जितने हो पाएगा जितने भक्तों को यहीं से दर्शन देके आगे चल जाऊंगा।
0: बिल्कुल, अगर हम इन्हीं तस्वीरों को देखें तो संजय जी जैसा बता रहे थे कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि भगवान को रात रथ में ही बितानी पड़ी है, जैसा अजयनाथ वहां से बता रहे हैं 4 बजे का वक्त था, दोनों बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ तो आगे जा चुके हैं लेकिन भगवान के रथ ने अभी चलना शुरू किया है।
1: भगवान की मर्जी के आगे किसी भक्त की नहीं चलती, यहाँ तो भगवान अपनी ही चलाते हैं, उनकी जब तक इच्छा नहीं हो, उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो रथ कैसे हिलेगा। तो भगवान भी चाहते हैं कि भक्तों के बीच जितना समय वो गुजार सकें उतना गुजार सकें, और ज्यादा से ज्यादा अपने भक्तों से मिल सकें, तो इसलिए भगवान भी धीरे धीरे चलना चाहते हैं और जो पहंडी है यानी जो शुभ उनके पदाभिक्रमण है वो बिल्कुल धीरे धीरे आराम के साथ मस्ती के साथ हो रहा है। तो ये
0: बिल्कुल अरविंद जी आपके पास आते हुए जो ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे उसी के बारे में दोबारा बात करना चाहूंगी। सीढ़ियों के बारे में आपने जिक्र किया, जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियां 22 क्यों होती हैं, इसका अर्थ क्या है और धार्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो क्या मान्यता है इसकी?
3: जी जी ईशा गुप्ता जी, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने, क्योंकि सीढ़ियां ही होती जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं। एक एक सीढ़ी को चल करके या एक एक सीढ़ी को चढ़ करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। देखिए जो 22 सीढ़ियां हैं इनका इस प्रकार से है कि हमारे जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के हो गए, भूरलोक भूवरलोक स्वरलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ये ऊपर के हो गए। 7 लोक 14 भुवन, 14 ये हो गए, 8 जो है वैकुंठ होते हैं, तो 14 8 आपके जो है 22 हो गए। इन जब आप जो है 22 यमों को पार करते हैं तब आप परब्रह्म के पास जो है पहुंचते हैं। इसी प्रकार हमारे 18 पुराण हैं और 4 हमारे वेद हैं, 18 और 4 जब मिलाएंगे तो 22 बनेगा। तो जो व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है वह अपने 22 प्रकार के जो विकार होते हैं एक एक विकार को त्याग करता जाता है और अंत में वो जो है परब्रह्म परमात्मा के पास जब पहुंचता है तो पूरी तरह से उसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है और उनके दर्शन करके जो है वह परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पे एक चीज और विशेष ध्यान दी जाती है, जो नीचे से 3री नंबर की सीढ़ी है उसको यम की सीढ़ी कहते हैं और जब मंदिर से दर्शन करके लौटते हैं तो 3री नंबर सीढ़ी पे पैर नहीं रखते हैं। यदि आप पैर रखते हैं तो आपका जो किया गया पुण्य है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उस सीढ़ी को नमन करते हैं, यम के देवता आपकी जो किसी प्रकार की यदि त्रुटि रह गई है उस त्रुटि के उसमें जो है आपको क्षमा करते हैं और इस तरह से आप जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जगन्नाथ धाम की ये जो 22 सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों का अपने आप में जीवन में विशेष महत्व है, जैसा कि मैंने आपको एक एक करके बताया।
0: संजय जी जल्दी से, क्योंकि तीनों रथों पर बहुत से लोग विराजमान भी होते हैं, ये लोग कौन होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
1: ये मंदिर के पुजारी होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए हैं और ये जो पूजा है ये पुजारियों की ड्यूटी है वो बिल्कुल पुश्तैनी ढंग से चली आ रही है। 7 तरह के उसमें पुजारी होते हैं जिसमें 64 वर्ग थे भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए, 64 वर्गों में चारों वर्णों के लोग रहते हैं। ये बड़ी खासियत है कि रथ बनाने में भी चारों वर्णों के लोगों का की हिस्सेदारी होती है और जो पूजा होती है उसमें जिसके खाना बनाने की जिम्मेदारी है, लकड़ी लाने की जिम्मेदारी है वो अलग है और भोग की जिम्मेदारी अलग है, दरवाजे पर कौन प्रहरी रहेगा तो इसकी जिम्मेदारी अलग है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, पानी लाने वाले की अपनी जिम्मेदारी है, खाना बनाने वालों की अपनी जिम्मेदारी है जो भोग बनाते हैं। तो इस तरह से 64 तरह के लोग उसमें वर्गों के लोग शामिल थे। अब हालांकि 12 वर्ग तो समाप्त कर दिए गए हैं जो अब समय के हिसाब से उनकी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन अभी भी बाकी अन्य वर्गों के लोग हैं। और 7 जब रथ बनाया जाता है तो इसमें 7 तरह के कलाकार होते हैं जिसमें रंग के रंगकार अलग होते हैं, नक्काशी करने वाले अलग होते हैं, ठोकी करने वाले अलग होते हैं, रथों के टुकड़े काटने वाले अलग होते हैं, उनको जोड़ने वाले अलग होते हैं। तो इस तरह से 7 तरह के शिल्पी उसमें हिस्सा लेते हैं और रथ को 2 महीने में बनाया जाता है यानी अक्षय तृतीया के एक दिन पहले से रथ बनाने का काम शुरू होता है और पूर्ण होता है रथ यात्रा के एक दिन पहले।
0: संजय जी आप जब हमें जवाब देते हैं ना तो जवाब से ये प्रतीत होता है कि आप फिजिकली यहाँ हैं, मेंटली आप वहां पर हैं। सवाल यही है कि आप कभी आपको मौका मिला है वहां पर जाने का, इस यात्रा को कवर करने का, और तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं?
1: शगुप्ता आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं अब तक कभी जगन्नाथ रथ यात्रा में, सिर्फ दिल्ली की रथ यात्रा में शामिल हुआ हूँ लेकिन कभी मैं जगन्नाथ जी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वहां शामिल हूँ, वहां रहूं। तो अब देखते हैं कि प्रभु मेरी इस इच्छा को कब पूरा करते हैं। हर बार जब मैं देखता हूं तो मन में एक हूक सी उठती है कि वो दिन कब आएगा जब जगन्नाथ रथ यात्रा में मैं भी रथ की रस्सी हाथ में रखूंगा और उस बड़े दंड पे जगन्नाथ जी की यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ूंगा।
0: बिल्कुल संजय जी, कुछ अंदाजा कितने लोग इस वक्त यहाँ पर हो सकते हैं? हालांकि देखिए, पुरी से लेकर भुवनेश्वर तक की अगर बात करें तो पूरे एरिया में चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, इस बार तो सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी की गई है, डबल सुरक्षा है यहाँ पे।
1: मुझे लगता है कि जहां तक कैमरा नहीं पहुंचा है वहां भी भक्तों की भीड़ है, छतों पर, खिड़कियों में, जहां तक गोखन में, झरोखन में, जहां देखो वहां भक्तों की भीड़ है। तो कैमरे वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन श्रद्धालु वहां जरूर पहुंच गए हैं। कुछ लोग पेड़ों के ऊपर भी बैठे होंगे, कुछ इधर उधर भी होंगे जो कैमरों तक को दिखाई नहीं पड़ रहे, सीसीटीवी कैमरे तक को और ड्रोन तक को, लेकिन भक्त वहां तक मौजूद है क्योंकि हर के हृदय में रथ यात्रा चल रही है।
0: अरविंद जी, आप कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ का यहाँ जाने का?
3: नहीं, हाँ, मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन जिस टाइम पे रथ यात्रा होती उस टाइम पे तो नहीं हुआ। जगन्नाथपुरी में गया हूँ और ईश्वर कृपा से गर्भगृह के पास ही बैठ करके मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का वहाँ पे भाव विभोर होके पाठ किया, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि कभी आप ऐसी कृपा करें कि मुझ जो है एक कहें कि आप सेवक को आप अपने यहाँ इस क्षण में बुलाने की कृपा करें।
0: बिल्कुल।
3: तो मैं गया हूँ जगन्नाथपुरी और बाकायदे भगवान की कृपा से पूजन का जो है वहाँ अवसर प्राप्त हुआ।
0: बिल्कुल, देखिए अब पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत तो हो ही चुकी है। बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ भगवान दिव्य और भव्य रथ पर विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर की ओर रवाना हो गए हैं। इस मौके पर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त आपको हम बताते चलें कि आगे आगे बलभद्र जी और पीछे देवी सुभद्रा का रथ काफी आगे निकल चुका है। हालांकि भगवान जगन्नाथ का रथ अभी अभी वहां से, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, चलना वहां से शुरू हुआ है क्योंकि भगवान भक्तों को यहाँ पर दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं।

पुरी, आस्था और विश्वास की वो पावन नगरी जहां स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ विराजते हैं। और जब साल में एक बार स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो पूरी पुरी का हर कोना भक्ति में सराबोर हो जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, गूंजते जयघोष और आस्था का विराट स्वरूप इस दृश्य को भव्य और दिव्य बना देता है। रथ यात्रा की शुरुआत पहंडी परंपरा से होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह से विशेष विधि विधान के साथ बाहर लाया जाता है।

ढोल नगाड़ों, शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रोच्चार और जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच पूरी पूरी नगरी भक्ति रस में डूब जाती है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है छेरा पहरा। इस परंपरा में गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करते हैं। ये संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और आम इंसान सभी समान है। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और गरिमा के साथ निभाई जाती है। इसके बाद शुरू होता है वो पल जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है। हजारों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से तीनों विशाल रथों को खींचते हैं। भगवान बलभद्र का तल ध्वज, देवी सुभद्रा का दर्प दलन और भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ धीरे धीरे गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ता है। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: चुनाव आया, अखिलेश यादव को मंदिर की याद आई। बाकी बिहारी पहुंचे अखिलेश के तस्वीर पर विवाद क्यों? बाढ़ में बाघ की मदद करता हाथी। माचिस की डिब्बी में समाई रेशमी साड़ी। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: The game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना हुए। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टरों ने की भगवान की सेहत की जांच। शहर शहर दिख रही है रथ यात्रा की रौनक। आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा। दिल्ली और नोएडा में उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की जांच करेगी। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
6: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर,

0: मांग जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जाते समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की कसौटी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर जो है उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
0: 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और ये तस्वीर उसी दौरान की है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: ২০২৭ में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। इसका कारण जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा है। इसलिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और ये तस्वीर उसी दौरान की है। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव जी ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा बोलो बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और ये तस्वीर जो है उसी दौरान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल तस्वीर की जांच में तमाम कोशिशें की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई खबर जरूर होती, और देखिए ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जमकर खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर भी बांके बिहारी के दर्शन संबंधित कोई पोस्ट या तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि ये अगर हाल फिलहाल की वायरल तस्वीर है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर तस्वीर के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल तस्वीर की पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर 2022 में प्रकाशित एक खबर में मिली। इस खबर में बताया गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे।

0: उन्होंने सबसे पहले यहाँ द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण से मुलाकात की। इसके बाद वो ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद देर शाम लखनऊ लौट गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक और खबर मिली। 28 अगस्त 2022 की इस खबर में बताया गया कि दिल्ली से सैफई जाते हुए अखिलेश यादव वृंदावन में करीब 3 घंटे रुके थे। वहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अखिलेश यादव की 2022 की तस्वीर को हालिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बाके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा नहीं गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं तो कुछ दिल छू लेते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो है इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे इंसानियत और मदद की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी को बाढ़ में बह रहे बाघ को बचाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिली है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब भारत में आदमी जो खुद को सभ्य मानता है, जाति और धार्मिक नफरत की वजह से दूसरे इंसानों की जान ले रहा है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा सामने आया है जो दिखाता है कि इंसानों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा हमदर्दी होती है, उनके भीतर एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखिए। अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के तेज बहाव में एक बाघ फंस गया, तभी सुमात्रा का एक हाथी उसे बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ के इंसान भी इंसानियत का यूं ही परिचय देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाघ बाढ़ के तेज पानी में फंसा हुआ है, जबकि एक हाथी उसकी मदद करने के लिए पानी के बीच मजबूती से खड़ा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ हाथी की सूंड का सहारा लेते हुए छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें जो है वीडियो की असलियत पर थोड़ा शक हुआ। मसलन वीडियो में हाथी और टाइगर की मूवमेंट असामान्य सी नजर आती है, वहीं पर पानी और जानवरों को जो उनकी बनावट है वो प्राकृतिक नजर नहीं आती। इसके अलावा देखिए, बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वो इस तरह से पानी में फंसे नहीं रह सकते। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे जुड़ी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। यदि सुमात्रा में बाढ़ के दौरान हाथी के बाघ को बचाने जैसी असाधारण घटना हुई होती तो ये एक बड़ी खबर बनती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें देखने को क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉफ वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में बाघ और हाथी के मोमेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये वीडियो असली नहीं हो सकता। पानी के बहाव और लहरों में भी एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने AI डिटेक्शन टूल की मदद ली। सबसे पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। यहाँ 99.9% संभावना जताई गई कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को दूसरे AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट वीडियो AI से चेक किया गया। वीडियो को यहां अपलोड करके एनालिस करने पर इसके AI से होने की संभावना 68% आई। जांच के दौरान वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले गए, फिर इन्हें AI इमेज डिटेक्शन टूल वॉजिट AI की मदद से चेक किया गया। इसके नतीजे से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से तैयार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कई लोग आज भी अपने पुराने क्लासरूम, स्कूल की बेंच, ब्लैक बोर्ड और दोस्तों को याद करके भावुक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब कभी पुरानी दोस्तों के साथ स्कूल लौटने का मौका मिलता है तो हर कोई फिर से बचपन जी लेना चाहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुराने छात्र कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में कदम रखते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग अपने पुराने क्लासरूम में जाते हैं और उसी तरह अपनी पुरानी सीटों पर बैठ जाते हैं जैसे कभी स्कूल के दिनों में बैठा करते थे। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ाई का माहौल दोबारा बनाते हैं और बचपन के उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी क्लास में उनके पुराने मास्टर जी आते हैं। उन्हें देखते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कई लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत और भक्ति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी छोटी सी दुनिया में भगवान के लिए प्यार और आस्था किसी भी चीज से बढ़कर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से कोने में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। बच्चों ने मिट्टी से बनी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं को बड़े प्यार से एक जगह पर स्थापित किया है। आसपास कोई खास सजावट नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा किसी बड़े आयोजन से कम नहीं लगती। बच्चे हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आते हैं जिसमें धूप और अगरबत्ती जल रही होती है। वे पूरे मन से पूजा अर्चना में लगे हुए दिखाई देते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने अनोखे अंदाज में योगा करती नजर आ रही है और उनकी बेटी का रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
3: योगा करते
2: हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है, बेटी भी आराम कर रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह योगा के दौरान गहरी सांस लेती है, हाथों की एक्सरसाइज करती है और ताली बजाती हुई नजर आती है। उनके पास मौजूद लड़की ध्यान से उन्हें देख रही होती है लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह कुछ ही देर बाद अचानक महिला योगा करते करते कुत्तों की तरह भौं भौं की आवाजें निकालने लगती है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। ये देखकर उनकी बेटी एकदम हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बेटी मजाकिया अंदाज में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी ये क्या कर रही हो?
3: योगा करते हैं।
2: इस पर महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, योगा कर रही हूँ। महिला का यह अनोखा अंदाज और माँ बेटी की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है।
4: अब आसमान की ऊंचाई की तो कोई सीमा होती नहीं, तो एक नीली वर्दी छोड़ अपना ही दूसरी नीली वर्दी। इंडिगो में कईयों के रहनुमा कईयों के गुरु बने, ऐसे ही तो उनको 6 एम्बेसडर नहीं कहते। आज दिल्ली से देवगढ़ का सफर होगा यादगार क्योंकि आज ही इनका आखिरी दिन यहाँ।
2: इंडियन फोर्स और फिर इंडिगो के लिए बतौर पायलट काम करने वाले संदीप पुरी की आखिरी फ्लाइट के वीडियो ने इंटरनेट को भावुक कर दिया है। वो पायलट के रूप में पुरी की बेटी उनके लिए एक यादगार स्पीच देती है जिसके बाद फ्लाइट में बैठा हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है। इस पल को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि ये सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत का ट्रांसफर था। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
5: And especially all my loved ones, जितने मेरे फैमिली के लोग हैं, my wife is sitting here, मेरा बेटा भी मेरे साथ फ्लाई कर रहा है सौरभ पुरी एंड आशा पुरी इज माय डॉटर शी इज द फ्लाई।
2: 5.5 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में समा सकती है, सुनकर आपको भी इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। इन दिनों तेलंगाना के कलाकार की अनोखी कला चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्होंने 5.5 मीटर लंबी सिल्क साड़ी को मात्र एक माचिस की डिब्बी में समेट कर सबको हैरान कर दिया। इस कलाकार का नाम है नल्ला विजय कुमार, जो सिरसिल्ला के एक ऐसे बुनकर है जिन्होंने अपनी कला के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस कमाल कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इस दुर्लभ रेशमी साड़ी को नल्ला विजय कुमार ने श्री भ्राम रामबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष पोथु गुंटा रमेश नायडू और न्यासी बोर्ड की सदस्य कोडे कंथी वर्धनी की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में देवी भ्राम रामबा को भेंट किया है, जो अब श्री शैलम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये अनोखी घटना तब सामने आई जब एक महिला ने जोमैटो से कुछ रोटियां ऑर्डर की। जब डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा, तो महिला ने फोन पर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत गुजारिश की। महिला ने डिलीवरी बॉय से कहा कि वह मंदिर के पास बैठी 3 आवारा गायों को ये रोटियां खिला दे। महिला ने बताया कि वह हर दिन उन गायों के लिए 3 रोटियां अलग से बनाती है, लेकिन उस दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर थी। उसे चिंता थी कि उसकी वजह से जानवर भूखे ना रह जाए, इसलिए उसने जोमैटो से रोटियां ऑर्डर कर दी। महिला की ये बेजुबान जानवरों के प्रति ममता देखकर डिलीवरी बॉय दंग रह गया। उसका दिल इस कदर पिघला कि उसने महिला से ऑर्डर के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पोल डांस सीखने के चक्कर में एक अमेरिकी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका पूरा लिविंग रूम वाटर पार्क बन गया। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ह्यूस्टन की रहने वाली आशा गिलबर्ट अपने फ्लैट में टीवी पर एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर पोल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरे जोश में अपने स्टेप्स कर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। डांस करते करते पोल सीधे छत से उखड़ गया। खराब किस्मत तो देखिए, उखड़ने के बाद पोल सीधे छत पर लगे आग बुझाने वाली पानी के सिस्टम फायर स्प्रिंकलर से जा टकराया। फिर क्या था, पूरे लिविंग रूम में मानो बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और चारों तरफ पानी की बौछारें शुरू हो गई। स्प्रिंकलर टूटने से कुछ ही मिनटों में पूरा लिविंग रूम पानी से लबालब भर गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़। और
1: वांट टू हियर समथिंग फनी, चेक आउट जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो, योर डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स कॉमेडी। एंजॉय नॉनस्टॉप स्टैंड अप फ्रॉम योर फेवरेट कॉमिक्स, प्लस द वंस यू हैवंट डिस्कवर्ड येट। गेट योर डेली डोज ऑफ लाफ्टर ऑन जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो, नाउ ऑन ट्यून इन।
0: चिल्ला चिल्ली नहीं,
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले पधारे भगवान जगन्नाथ, रथ पर सवार जगत के पालनहार दे रहे हैं दर्शन। जगन्नाथ रथ यात्रा की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जब रथ पर सवार हुई आस्था तो शहर दर शहर महाप्रभु की हुई जय जयकार। साथ ही साथ IIT की रिसर्च में E20 का सच, IIT कानपुर की कसौटी पर इथेनॉल उतरा खरा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीजा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ पर सवार होकर निकलेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। जौनपुर में रथ यात्रा से पहले डॉक्टरों ने की भगवान की सेहत की जांच। शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक, आनंद में स्कूली बच्चों ने निकाली रथ यात्रा, दिल्ली और नोएडा में भी उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की होगी पहचान। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ करेंगे, जिसका आयोजन आज देश भर में किया जा रहा है। ओडिशा के पुरी में भी बड़ी भव्यता के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में महाप्रभु के भक्त शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान पुरी में जोरदार बारिश भी देखने को मिली, बावजूद इसके महाप्रभु के भक्तों में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं।

0: मंजीरो और मंत्रोच्चार से गूंज उठा है पुरी धाम। हर तरफ हो रही है महाप्रभु की जय जयकार। रथ यात्रा के लिए लगी है भक्तों की कतार। आस्था और भक्ति का ये ऐसा अद्भुत मंजर है जिसका साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में महाप्रभु के भक्त आज पुरी पहुंचे हैं। इनमें कोई परिवार संग आया है, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है और कोई सात समंदर पार से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए दौड़ा चला आया है। लगातार भारी बारिश के बीच इन भक्तों का पुरी धाम में पहुंचना महाप्रभु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को बयां कर रहा है।
1: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं, आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहां से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्तों लोगों का ये भीड़।
2: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
1: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
2: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
3: हम कर्नाटक से आए
1: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
3: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
1: कब से आ रहे हैं?
3: हमारा दूसरा साल है मेरा रथयात्र में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथयात्र को बोल के मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगला आरती हुई, उसके बाद भगवान की स्नान पूजा संपन्न हुई, फिर भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ, इसके बाद गोपाल वल्लभ भोग और सकाल धूप यानी राजभोग के रूप में भगवान को खिचड़ी भोग अर्पित किया गया और फिर वो विशेष पल आया जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बारी बारी से रथों पर विराजमान कराया गया। हालांकि इस साल बारिश के चलते भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया।
4: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया। और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया। और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
5: भगवान सानिध्य लाभ करती माँ भगवती।
0: तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर रवाना करने से पहले पुरी के महाराज गजपति दिव्य सिंह देव ने बारी बारी से तीनों रथों के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की। इसे छहरा पहरा कहा जाता है, जो इस रथ यात्रा के श्री गणेश होने का प्रतीक है। जैसे ही रथों के पहिए गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़े, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान यात्रा रूट पर खड़े भक्त भगवान की एक झलक पाकर खुशी से निहाल हो उठे। किसी ने हाथ जोड़कर महाप्रभु को प्रणाम किया, किसी ने दोनों हाथ उठाकर महाप्रभु से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा और कोई खुशी में झूमने ही लगा। महाप्रभु के इस महाउत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
6: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में उमड़ा है। पुरी साजनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पुरी की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शहर शहर निकाली गई इन रथ यात्राओं में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। अहमदाबाद में जहां गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ किया, वहीं कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी भी रथ यात्रा में शामिल हुए।
0: महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर ऐसा भव्य उत्सव आज शहर शहर देखने को मिला। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, हर जगह सजे धजे रथों पर सवार होकर जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले, सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आराम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की भक्ति में लीन नजर आया। जिसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई, जहां सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए।

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, जो कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा है।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इसी भव्यता के साथ आयोजित होती है, जो 16 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सरसपुर जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। यात्रा के पूरे रूट पर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने भक्ति भाव के साथ महाप्रभु का स्वागत किया।
2: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो है वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं। ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहाँ से सरसपुर तक। वहाँ पे जो है वो भगवान पहुँचते हैं अपने मामा के घर, वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: अहमदाबाद की तरह ही राजकोट शहर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आगे आगे बैंड बाजा और पीछे रथ खींचते भगवान जगन्नाथ के भक्त जैसे जैसे आगे बढ़े, सड़कों पर महाप्रभु के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया।
3: खास करके देखिए, देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े इनाने के 26 किलोमीटर की ये यात्रा अभी निकल चुकी है और ये जो परंपरागत और विधि विधान मुजब जो यात्राएं निकलती है उसमें से ओडिशा, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट का समावेश हो रहा है और कई यात्राएं निकल रही है। लेकिन विधि विधान मुजब जो कहा जाए कि 1 महीने का अगाव भगवान की जो तैयारी हो रही है, सभी विधि विधान मुजब सब प्रसंग हो रहे हैं। इसके बाद आज ये अवसर आ गया है आषाढ़ी बीज का कि भगवान खुद अपने यहाँ जलकर लोगों को दर्शन देने के लिए निकले हैं।
4: जय जगन्नाथ। ये यहाँ की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। पहले जो पूरी ओडिशा में निकलती थी वो रथ यात्रा अब राजकोट में भी आ रही है, तो हम लोग सारे बहुत लकी है कि ये जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे थे।
0: रथ यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति का कमोबेश ऐसा ही नजारा कोलकाता में भी देखने को मिला। वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और महाप्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई करने की परंपरा निभाई और रथ को यात्रा के लिए न सिर्फ रवाना किया बल्कि रथ भी खींचा।
5: हमारी हिस्टोरिकल रथ यात्रा है, कलकत्ता रथ यात्रा उत्सव, ये 71 साल हो गया है। बंगाल में जो ही मुख्यमंत्री रहता है वही यहाँ आता है।
0: उधर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में भी रथ यात्रा की रौनक देखते ही बनी। रथ यात्रा के दौरान कोई भक्ति में मग्न होकर झूमता नजर आया, कोई दोनों हाथ उठाकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाता दिखाई दिया और कोई भजनों के जरिए महाप्रभु की महिमा का गुणगान करता नजर आया।
6: ये 47 ईयर्स का इस्कान का जगन्नाथ रथ यात्रा है और साउथ इंडिया में फर्स्ट है ये, श्रील प्रभुपाद के तरफ से। तो जगन्नाथ बोले तो जगत की नाथ है, तो जगन्नाथ बोले तो हर जी इसके लिए क्या बोलते दुनिया के लिए जगन्नाथ है। तो इस्कान की तरफ से बहुत सारे जगन्नाथ रथ यात्रा हैदराबाद में खासियत लेके 80 के ऊपर है इस साल। तो ये बड़ी बड़ी टोटल ट्विन सिटीज और ट्विन स्टेट से देखे तो ये बड़ी रथ यात्रा है इस्कान की तरफ से।
0: शहर शहर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये भक्ति प्रेम समर्पण और मुक्ति का जीवन प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात उस खबर की जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में छाई हुई है। गाड़ी चलाने वाला हर व्यक्ति E20 से जुड़ा सच जानना चाहता है। इंजन, उसके पार्ट्स और माइलेज पर E20 पेट्रोल का कितना असर पड़ता है, ये जानने को हर कोई आतुर है। IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी ने E20 पेट्रोल से जुड़े हर भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। IIT कानपुर ने अपनी रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया है कि E20 पेट्रोल से न तो गाड़ियों के इंजन पर कोई बुरा असर पड़ता है और न ही माइलेज में कोई बड़ी गिरावट आती है। दरअसल IIT कानपुर की इंजन रिसर्च लैब में E20 पेट्रोल को लेकर कई स्टेजों में शोध किया गया, उसके बाद ही संस्थान की तरफ से E20 पेट्रोल का सच सामने रखा गया।

0: पिछले कुछ हफ्तों से हर तरफ E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया पर कुछ वाहन मालिकों और मैकेनिकों की तरफ से गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने के दावे की वजह से भ्रम फैला है। इंजन में खराबी, कम माइलेज और खराब परफॉर्मेंस के दावे के बीच IIT कानपुर ने इंजन पर E20 पेट्रोल के असर पर रिसर्च की है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ IIT कानपुर कैंपस में, उसी लैब में जहाँ पर ये पूरी स्टडी की गई है। आप विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो पूरी इस लैबोरेटरी में वो मशीन्स लगाई गई हैं, इंजन्स लगाए गए हैं जो एक प्रॉपर कार में यूज होते हैं, और सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें प्रयोग करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि फिलहाल E20 पेट्रोल से किसी भी तरीके से इंजन या उसके एवरेज पे फर्क नहीं करता। आप देखेंगे इस विजुअल्स में ये BS6 इंजन है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसी इंजन को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है ताकि इस पर E20 पेट्रोल डालकर इसके इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जा सके। सालों साल ये पूरी रिसर्च चली है जिसके बाद आखिरकार इस नतीजे पे IIT कानपुर जो है वो पहुंचा है।
0: IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी में BS6 मानकों वाले वाहनों के इंजन को E20 से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वाहनों के इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने वाले कूलेंट के अलावा इंजन ऑयल की भी मॉनिटरिंग की गई। BS6 वाहनों के इंजन में फ्यूल लेवल को भी मशीनों की मदद से लगातार नापा गया ताकि एवरेज में गिरावट के दावे को परखा जा सके। IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी में पता चला कि E20 पेट्रोल की तुलना में पारंपरिक पेट्रोल की वजह से पिस्टन पर ज्यादा कार्बन डिपॉजिट यानी कचरा दिखा।
1: मैं दिखाऊंगा आपको, ये कार का एक पार्ट है और
2: बोलते हैं ये पिस्टन है। यहाँ पे हम लोग इसमें कार्बन डिपॉजिट जो बोल रहे हैं लोग, कार्बन डिपॉजिट चेक करने के लिए ये गैसोलीन से निकले पिस्टन है। आप देख सकते हैं इस पे कितना कार्बन डिपॉजिट है।
1: बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोगों के मन में जो एक सवाल है वो अपनी गाड़ी में बता रहे हैं कार्बन जम रहा है। ये E20 पेट्रोल से इस्तेमाल हुआ इंजन है या नॉर्मल पेट्रोल?
2: नहीं, ये गैसोलीन वाला है, प्योर गैसोलीन वाला है।
1: उसके बाद भी इतना कार्बन?
2: हाँ, प्योर पेट्रोल में ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है क्योंकि उस फ्यूल की क्वालिटी ही ऐसी है कि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है।
1: आपका कहना है कि E20 में कम कार्बन जमा होता है, नॉर्मल पेट्रोल में ज्यादा कार्बन जमा?
2: जी बिल्कुल, E20 में फ्यूल में कम कार्बन जमता है एज कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल।
1: आपको इंजन का पार्ट है, कितने साल पुरानी
2: है? ये एक डेढ़ साल
1: पुरानी गाड़ी का ये इंजन है, इसमें नॉर्मल पेट्रोल डाला गया है और कभी भी इंजन का पार्ट है और E20 नहीं इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद भी आप यहाँ देखेंगे तो अच्छा खासा कार्बन यहाँ पर जमा है।
0: रिसर्च में फोर व्हीलर से जुड़े BS6 इंजन या उसके पार्ट्स खराब होने या जंग लगने जैसे दावे भी गलत साबित हुए।
1: इंजन पर जो दबाव है, लोग बता रहे हैं कि इंजन खराब हो रहा है, आप लोगों ने क्या इंजन के पार्ट्स भी मॉनिटर करे, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट आया?
2: जी बिल्कुल, हमारा इंजन, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो काफी टाइप के इंजन पे होते हैं। सिर्फ एक इंजन पे हम लोग ये कंक्लूजन नहीं कर सकते कि E20 से खराब हो रहा है इंजन। तो एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद में आपको मैंने उधर उस लैब में दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल के हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की है, पार्ट्स को काट के देखा है कि अगर कोई करोजन सिम्टम्स हैं उसमें, करोजन के कई ट्रेस मौजूद हैं, कई फ्यूल के कारण से नहीं है, तो ये सब हमने टेस्ट करके देखा है, उसके बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ।
1: ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पूरी बड़ी लैब में जो IIT कानपुर के कैंपस में है, सभी मशीनरीज मौजूद हैं ताकि सभी फैक्टर्स को जो बाहरी इस गाड़ियों में जो एप्लीकेबल होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बड़ा यंत्र, क्या बोलते हैं इसको?
2: ये ब्लोअर है, जैसे चलती हुई गाड़ी को सिमुलेट, हवा के दबाव को सिमुलेट करने के लिए ये मशीन इक्विपमेंट यूज होता है।
1: हवा का दबाव?
2: जी जी।
1: तो आप यहाँ देखेंगे कि गाड़ी जब चलती है तो बाहर से कितनी हवा आती है, कितना प्रेशर इंजन पे पड़ता है, कितने लोग बैठे होते हैं, कूलेंट कितना गर्म होता है, कितना ज़्यादा होता है, सभी फैक्टर्स को यहाँ पर अकाउंट में रखा गया और इसी लेबोरेटरी में सालों साल रिसर्च करके इस कंक्लूजन में पहुंचा गया कि फिलहाल E20 पेट्रोल से वो साइड इफेक्ट्स नहीं है कि जैसा कि क्लेम किया जा रहा है।
0: IIT कानपुर की टू व्हीलर टेस्टिंग फैसिलिटी में मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्पीड, लोड और राइडिंग पैटर्न पर चलाकर परखा गया। इस दौरान बाइक के इंजन और फ्यूल टैंक में कोई खराबी या जंग के निशान नहीं दिखे।
1: जो लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि उनके इंजन खराब हो जाते हैं, कहीं उसमें जंग लग जाती है, कहीं कार्बन लगता है, इसीलिए इंजन को, क्या यही रीजन है आप लोगों ने काटा भी है इस इंजन को?
2: जी जी, हमने जैसे करोजन जैसी समस्या अगर जो रिपोर्ट की जाती है अल्कोहल वाले फ्यूल्स में, तो हमने इसीलिए इसको काट के देखा है कि उसमें करोजन जैसी समस्या है 100% पेट्रोल में और बाकी मिथेनॉल इथेनॉल ब्लेंड्स में, कि उसमें करोजन जैसी समस्या। आप देखेंगे जैसे फ्यूल पंप का जो पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट, उससे फ्यूल मोटर खराब तो नहीं होती,
3: डिफरेंट डिफरेंट पिस्टन्स, जैसे हो गया स्पार्क प्लग, जो जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इथेनॉल के कॉन्टैक्ट में आते हैं,
1: सभी इंजन्स में इथेनॉल कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रखे। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से इंजन को जो है वो काट के उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है, जो टंकी है पानी की उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है। ये फ्यूल की, हाँ, जो यहाँ पे फ्यूल के जो आप देखेंगे पार्ट्स हैं यहाँ पे इंजन के, ये सब रखे गए हैं। तमाम इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं इन सभी को दिमाग में रखा गया है और यहाँ पे किसी तरीके से फिलहाल इंजन आपको कार्बन जो है वो जमा होता और नहीं दिख रहा।
0: 25 साल तक IIT कानपुर में वैकल्पिक ईंधन पर रिसर्च कर चुके रिसर्चर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल का कहना है कि पेट्रोल ग्रेड इथेनॉल में कोई समस्या नहीं है।
4: मुझे लगता है कि इसमें अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इथेनॉल जो है उसके अंदर कितना पानी है उस चीज पर डिपेंड करता है। इथेनॉल जो पेट्रोल ग्रेड में होना चाहिए वो 99.9% प्योरिटी का होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 0.01% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इथेनॉल जब आप फ्यूल में डालते हैं और जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 0.9% 0.8% हो जाता है, या किसी वजह से जो है जहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है वहां पर वाटर का इंग्रेस किसी वजह से हो जाता है।
0: E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। वाहन निर्माताओं के अलावा अब IIT कानपुर की तरफ से भी इस ईंधन को पूरी तरह से सुरक्षित होने का दावा किया गया है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn. Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो

बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं। बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह में बाधा पैदा करती है, और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों, जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है, और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है और शादी हुई तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो, विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो? रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें।

0: दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांधकर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते, उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें। बिल्कुल पवित्रता से, साफ सफाई से रहें। दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है। बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर 7वें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए। अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातः काल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका न्यूज पद पर। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होते हैं, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पद पर। सबसे पहले हेडलाइंस
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में दिखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक, आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा। दिल्ली और नोएडा में भी उत्सव। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्षीय ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। शुरू करते न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश भर में आस्था की महा उत्सव यात्रा की भी हो रही है।
4: देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे भक्ति भाव से निकाली गई। ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इस पावन अवसर पर धूमधाम से रथ यात्रा और झांकियां निकाली गई। अहमदाबाद, उज्जैन, दिल्ली, बेंगलुरु, रांची समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी रथ यात्रा की रौनक छाई रही। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सभी को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये पावन उत्सव हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस रथ यात्रा में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से आस्था के रंग में रंगे नजर आए। उत्तराखंड में सुहाने मौसम के बीच चार धाम की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। खिली हुई धूप के बीच, चल रही ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के साथ ही सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के दरबार में अब फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बारिश के चलते बीते कुछ दिन तक जहां 3 से 4 हजार श्रद्धालु हर दिन बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 6,500 से अधिक हो गई है। इन सब के बीच बद्रीनाथ धाम से करीब 9 किलोमीटर दूर पवित्र वसुधारा जलप्रपात भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि वसुधारा की पवित्र जलधारा केवल पुण्य आत्माओं को ही स्पर्श करती है, जबकि पाप करने वालों पर इसकी बूंदें नहीं गिरती। इस आस्था के चलते हर वर्ष हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के बाद ट्रैक पर माणा गांव से पैदल चलकर वसुधारा पहुंचते हैं। इन दिनों वसुधारा ट्रैक पर प्राकृतिक रूप से उगे रंग बिरंगे पफ बॉल मशरूम भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हरे भरे बुग्याल, हिमालय की मनोरम वादियां, ठंडी हवाएं और ट्रैक के किनारे दिखाई दे रहे ये दुर्लभ मशरूम यात्रा को और भी यादगार बना रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आस्था, भक्ति और विश्वास की ऐसी अनूठी मिसालें देखने को मिलती रहती हैं। इसी कड़ी में जयपुर से सांवलिया सेठ के इस दरबार पहुंचे एक श्रद्धालु परिवार ने यहां 137 ग्राम सोने से बनी बांसुरी भेंट की, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। श्री सांवलिया सेठ मंदिर देश के प्रमुख कृष्ण धामों में गिना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सांवले स्वरूप को समर्पित ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुमूल्य भेंट भी अर्पित करते हैं। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम स्थित श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में तेलंगाना के प्रसिद्ध हथकरघा शिल्पकार ने देवी भ्रमरांबा को एक अनोखी हाथों से बनाई रेशमी साड़ी भेंट की। चिनेता कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित नल्ला विजय कुमार की भेंट की गई इस साड़ी की विशेषता यह है कि इस 5.5 मीटर लंबी साड़ी को मोड़कर माचिस की डिब्बी में भी रखना संभव है। इस विशेष भेंट को स्वीकार करते हुए मंदिर प्रशासन ने विजय की अद्भुत कारीगरी और भारतीय हथकरघा परंपरा को संरक्षित रखने के उनके प्रयासों की सराहना की। विजय इससे पहले भी अपने लघु हथकरघा कलाकृतियों और माचिस के डिब्बी में समा जाने वाली साड़ी बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर के रजौरी की भैरव यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसे बहारो देव झांकी के रूप में भी जाना जाता है। रजौरी की इस ऐतिहासिक भैरव यात्रा को भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इस यात्रा को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रस्ताव रजौरी जिला प्रशासन ने तैयार कर संस्कृति मंत्रालय को भेजा था, जिसका उद्देश्य इस अनूठी परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और इसका संरक्षण सुनिश्चित करना था। रजौरी की बहारो देव झांकी यहाँ की सबसे विशिष्ट और अनोखी परंपराओं में से एक है, जो हर वर्ष होली के अवसर पर निकाली जाती है। इस झांकी में एक व्यक्ति के पूरे शरीर पर काला रंग लगाया जाता है और उसे पारंपरिक जुलूस के रूप में पूरे शहर में घुमाया जाता है। मान्यता के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले रजौरी में एक भीषण महामारी फैल गई थी। उस समय एक संत ने लोगों को बहारो देव की झांकी निकालने की सलाह दी थी। माना जाता है कि इसके बाद महामारी का प्रभाव कम हुआ था और तभी से ये परंपरा हर वर्ष निभाई जा रही है।
2: और अब बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी में आज बड़ी भव्यता के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में महाप्रभु के भक्त शामिल हुए। हालांकि रथ यात्रा के दौरान लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आस्था के इस सैलाब में कोई कमी नहीं आई। गुंडीचा मंदिर रवाना करने से पहले पुरी के महाराज गजपति दिव्य सिंह देव ने बारी बारी से तीनों रथों के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की। महाप्रभु के इस महा उत्सव में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी शामिल हुए, और जैसे ही रथों के पहिए गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़े, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा।

0: इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था। इतने साल हो गया मेरे को, आज 29 साल हो गया, लेकिन इतना पास से दर्शन कभी नहीं हुआ था।
1: ये बारिश तो कुछ भी नहीं है उनका सामने, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उनका सामने ये कुछ भी नहीं होती है।
2: I'm just want to say Jagannath ka, dear Lord Jagannath, please accept to serve for you.
3: I love you Jagannath ka. I am kind because I cannot see Lord Jagannath so far from me.
4: महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। जब विशाल रथ को लाखों हाथ एक साथ खींचते दिखाई दिए तो वो दृश्य अलौकिक और दिव्य प्रतीत हुआ। ये श्रद्धा का वो अद्भुत क्षण है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रही। रथ यात्रा के दौरान पुरी में रुक रुक कर बारिश जारी रही, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारी बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए मौजूद रहे।
5: मैं अब पूरी श्री मंदिर के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान का यह मंदिर फूलों में कितना सजाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि तीनों रथ अब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। तीनों भगवान रथ के ऊपर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं रथ के नीचे, रथ के ऊपर भक्तों का और पंडित लोग जो हैं उन लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश, सुबह से बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, फिर भी लोगों का मन में ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये भक्ति कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भगवान को देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त आए हैं वो भक्तों का मन में भगवान को लेकर के कितना श्रद्धा है। आप देख सकते हैं भक्त यहाँ रो रहा है, भक्त भगवान को अपना दुख, अपना मन में जो मांग है, जो दुख है वो भगवान को बोलते हैं, भगवान उनका दुख सुनेंगे, यही सोच करके हर कोई भक्त घर से आते हैं और भगवान से मिलते हैं। सालों में एक बार यहाँ बाहर खुद आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। जो भक्त नहीं आ पाते हैं, जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं, उन भक्तों को वो खुद दर्शन देते हैं आके। मैं, हमारे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका?
6: हमारा नाम पुरुषोत्तम है।
5: कहाँ से है?
6: हम कर्नाटक से है।
5: जी ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
6: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए हैं।
5: कब से आ रहे हैं?
6: हमारा दूसरा साल है मेरा रथयात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथयात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
5: कहाँ से हैं?
7: भद्रक से।
5: अच्छा, मतलब ये भगवान का ये रथ यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, आपके साथ कौन कौन है, कहाँ से, मतलब कितने दिन से यहाँ है?
7: नहीं, कल से आया हूँ और सेवा कार्य में लगा हूँ।
5: अच्छा,
7: अभी भगवान जी का रथ यात्रा, रथ जैसे चलेगा हम भी जाएंगे।
4: रथ यात्रा के पावन अवसर पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुँचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला।
8: आज भगवान सालों में जो एक बार आते हैं भक्तों लोग को उद्धार करने के लिए, दर्शन देने के लिए, आत्मा को परमात्मा सहित मिलाने के लिए, भगवान का ये जो हमको कृपा करने के लिए आज वो मंदिर छोड़कर आज रथारूढ़ होंगे, गुंडीचा माता जी का मंदिर को यात्रा करेंगे। ये भगवान का मानवीय लीला, ये जो मानवीय लीला चलता है हर साल एक बार, भगवान स्वयं चतुर्धामूर्ति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी रथारूढ़ होते हैं। ये भक्त लोग को कृपा करने के लिए ये समय में जो स्वर्ग से 33 कोटि देवता ये शून्य में विराजमान किए हैं भगवान का ये जो दिव्य लीला को दर्शन करने के लिए।
4: रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगला आरती के बाद भगवान की स्नान पूजा सम्पन्न हुई। इसके बाद भगवान का श्रृंगार और विशेष वेश धारण कराया गया। फिर गोपाल वल्लभ भोग और सकाल धूप यानी राजभोग के रूप में खिचड़ी भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भगवान को मंगला अर्पण कर रथारोहण की प्रक्रिया शुरू हुई।
9: सुबह से आज का दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जिसको बोला जाता है, तो इसी तिथि में भगवान रथारूढ़ होंगे जिसको रथ यात्रा कहा जाता है। तो रथ के ऊपर विराजमान करने से पहले भगवान का मंदिर के अंदर कुछ रिचुअल्स होता है। जैसे कि जब द्वार उन्मुक्त होता है, द्वार खोला जाता है, पहला काम होता है मंगल आरती। भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया। और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है।
4: रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही मंजीरों की गूंज श्रद्धालुओं में भक्ति और आस्था का संचार कर रही थी और भक्त बड़े ही भक्तिभाव के साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते नजर आए। बारिश के बावजूद लाखों भक्त बड़दांड में भगवान जगन्नाथ के आगमन की प्रतीक्षा करते नजर आए। जैसे ही भगवान बाहर आए, घंटों, मृदंग और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा।
10: ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहां से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़ आज से ही पता चल रहा है। जी क्या नाम है आपका?
0: जगन्नाथ स्वामी नैना पथगामी भगवत में अनिल नाम है हमारा।
10: कहाँ से हैं?
0: ओडिशा से।
10: कौन सा जिला आपका?
0: मेरा जिला केंद्रापड़ा है और मैं संबलपुर में रहता हूँ। मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए। हर साल आते हैं हम लोग।
10: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना? मतलब
0: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा, और मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है।
4: रथ यात्रा के पीछे कई कथाएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं, ताकि जो लोग मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच नहीं पाते वो भी प्रभु के दर्शन का लाभ उठा सकें। रथ की रस्सी को खींचना एक तरह से स्वयं को प्रभु के रथ का सारथी बनाने जैसा है। पुराणों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि जो भी श्रद्धालु रथ की रस्सी को छूता है या उसे खींचता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे साक्षात मोक्ष का द्वार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि रथ को खींचने वाला व्यक्ति सीधे प्रभु के चरणों में स्थान पाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही वजह है कि रस्सी को छूने या रथ को खींचने के लिए ही भक्तों में होड़ लगी रहती है। रथ यात्रा के दौरान और उससे पहले भगवान जगन्नाथ के स्वागत और उनकी आराधना में कई पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य रूप से ओडिसी और गोतीपुआ जैसे प्राचीन नृत्य मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। रथ यात्रा में आने वाला हर व्यक्ति भगवान की कृपा से यहाँ पहुँचता है, चाहे पुलिसकर्मी हो, कर्मचारी हो या सेवा में लगे दूसरे लोग, सभी को यह अवसर भगवान के आशीर्वाद से मिलता ही है। पुजारियों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बारिश कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये प्रभु का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि रथ यात्रा के दौरान बारिश होना कोई नई बात नहीं है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रबंधन टीमों की तैनाती की गई है, ताकि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। आज से भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 जुलाई तक चलेगी। सनातन धर्म में ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष और पवित्र महत्व माना जाता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 तैयार है। चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
4: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार है। ये मोदी कल पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन कल से जींद सोनीपत रूट पर दौड़ती नजर आएगी। इसके अलावा पीएम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का पुनर्विकास 125 करोड़ रुपए में हुआ है। पीएम यहां संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे और चंडीगढ़ में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 तैयार है, जिसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है और ये 18 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मिशन आगमन के तहत इसे लॉन्च किया जाएगा। ये एक चार चरणों वाला रॉकेट है जो 350 से 480 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। यूपी के बागपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की चेन अलार्म डिवाइस बांटे गए हैं। डीएम अस्पिता लाल ने यहां महिला सुरक्षा की ये नई पहल की है। खतरे की स्थिति में छोटा सा डिवाइस सक्रिय होते ही करीब 2 मिनट तक 50 मीटर दूर तक तेज आवाज से माहौल गुंजाएगा, जिसे आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच पाएंगे। जेब या पर्स में रखने वाली एक छोटी सी की चेन अब मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर में आज से एक नई पहल हुई है। मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी, पंडित सभी ने आज से बिना जेब के कुर्ता पैजामा धोती पहनना शुरू कर दिया है। किसी भी तरह के मंदिर के चढ़ावे या दान को लेकर कोई चोरी ना हो पाए, इसके लिए ये पहल हुई है। पॉकेटलेस कुर्ते देने की घोषणा कुछ दिन पहले ही मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने की थी और आज उन्होंने सभी पुजारी और कर्मचारियों को पॉकेटलेस कपड़े देकर ये भी चेक किया कि मंदिर में कोई भी कर्मचारी ऐसा तो नहीं जो इनको धारण नहीं किए हुए है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रशासन अपनी व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक बनाने जा रहा है। जल्द ही मंदिर में एक हाईटेक कैरेट मीटर मशीन स्थापित की जाएगी। इस मशीन की मदद से चढ़ावे में आने वाले सोने और चांदी के असली या नकली होने का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। साथ ही सुनारों की 3 सदस्यीय टीम पहले की तरह आभूषणों की जांच का काम जारी रखेगी, जिससे सुरक्षा का घेरा 2 गुना मजबूत हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में पहले से ही धातु चढ़ावे और दान राशि की त्रिस्तरीय जाँच और सुरक्षा की जाती है।
11: बात करते हैं देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की। पुरी की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। ओडिशा की पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और देश के दूसरे हिस्सों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस भव्य महोत्सव में पहुंचे। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंचकर पूजा पाठ किया। वहीं कोलकाता और बिहार के मुख्यमंत्री भी रथ यात्रा में शामिल हुए।

0: नाथों के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा ओडिशा के पुरी से लेकर देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ जय जगन्नाथ का जय घोष सुनाई दिया। हर जगह सजे धजे रथों पर सवार होकर जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले, सड़कों पर भक्ति और आस्था का सैलाब सा उमड़ आया। ये महाप्रभु जगन्नाथ की लीला है कि क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की भक्ति में लीन दिखाई दिया। ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। सुबह 7 बजे मंगला आरती और पूजा पाठ सम्पन्न होने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पूरे दिन ये रथ यात्रा चलती है। शाम रात 8 बजे भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों के रथ जो है वापस मंदिर आते हैं। तो ये पूरे दिन की रथ यात्रा में 16 किलोमीटर का रूट है यहाँ से सरसपुर और उसके बाद वापस 16 किलोमीटर, कुल 32 किलोमीटर की ये नगर यात्रा होती है, जिसमें ये एक दिन होता है कि भगवान खुद भक्तों के पास पहुँचते हैं और भक्तों के पास पहुँचकर दर्शन देते हैं। बाकी सारे दिनों में हमेशा भक्तों को मंदिर आना होता है। ये एक दिन है आषाढ़ी बीज का, जिस दिन आषाढ़ी तृतीया जो माना जाता है कि इसी दिन भगवान जो हैं वो दर्शन देने खुद मंदिर से बाहर निकलकर लोगों भक्तों के घर तक पहुंचते हैं।
0: अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इसी भव्यता के साथ आयोजित होती है, जो 16 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सरसपुर जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। यात्रा के पूरे रूट पर सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने भक्तिभाव के साथ महाप्रभु का स्वागत किया।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहाँ से सरसपुर तक। वहाँ पे जो है वो भगवान पहुँचते हैं अपने मामा के घर, वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं। रात 8 बजे तक ये रथ यात्रा चलती है। ये एक दिन होता है आषाढ़ी बीज का, जिस दिन भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर के बाहर। आमतौर पे भक्त को मंदिर आना होता है, पर ये एक दिन होता है कि जिस दिन भक्तों के घर जो है वो भगवान पहुंचते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में विशेष प्रसाद भेजकर अपनी बरसों पुरानी परंपरा को निभाया है। प्रधानमंत्री के भेजे गए इस विशेष प्रसाद में मूंग, जामुन, ककड़ी, आम और अखरोट के साथ साथ कई तरह के ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जगन्नाथ मंदिर के साथ नाता बहुत पुराना और अटूट माना जाता है।
1: प्रधानमंत्री की आस्था भी इस रथ यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने जो है वो एक विशेष प्रसाद भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री भी मंगला आरती में शामिल हुए थे और रथ यात्रा में पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त जो है रखा गया है। 30,000 पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय भी जो है इस रथ यात्रा में देखने को मिलता है। पूरे सद्भाव के माहौल के साथ रथ यात्रा अहमदाबाद के ये इलाकों से गुजरती है और कुल 16 किलोमीटर का ये रूट है, जिसपे भगवान बाहर निकलकर अपने भाई और बहन के साथ मिलकर भक्तों को दर्शन देते हैं।
0: अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा देश की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। हर वर्ष इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। राजकोट शहर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आगे आगे बैंड बाजा और पीछे रथ खींचते भगवान जगन्नाथ के भक्त। जैसे जैसे ये सब आगे बढ़े, सड़कों पर महाप्रभु के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया।
2: खास करके देखिए, देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े इनाने के 26 किलोमीटर की ये यात्रा अभी निकल चुकी है। और जो परंपरागत और विधि विधान मुजब जो यात्राएं निकलती है, उसमें से ओडिशा, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट का समावेश हो रहा है। और कई यात्राएं निकल रही है, लेकिन विधि विधान मुजब जो कहा जाए कि एक महीने का अगाव भगवान की जो तैयारी हो रही है, सभी विधि विधान मुजब सब प्रसंग हो रहे हैं। इसके बाद आज ये अवसर आ गया है आषाढ़ी बीज का, कि भगवान खुद अपने यहाँ जलकर लोगों को दर्शन देने के लिए निकले हैं।
3: ये यहाँ की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। पहले जो पूरी ओडिशा में निकलती थी वो रथ यात्रा अब राजकोट में भी आ रही है। तो हम लोग सारे बहुत लकी है कि ये जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे थे।
0: वहीं गुजरात के आनंद में अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्कूली बच्चे जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के वेश में सज धज कर बेहद सुंदर लग रहे थे और स्कूल के दूसरे छात्र वाद्य यंत्रों के माध्यम से माहौल को और भक्तिमय बना रहे थे। भगवान जगन्नाथ के लिए बच्चों की ये भक्ति देखने लायक है।
4: भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार आते हैं, वो त्यौहार की सभी उजवनी इधर हमारे उधर होती है, जिसमें छोटे बच्चों से ही उसके पात्र, यानी आज भगवान श्री भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा का सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में हो रहा है, उसके अंदर हमारे उधर भी बच्चे अपना खुद कैरेक्टर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी, भगवान बलराम जी, वही कैरेक्टर बन के आए, जिसकी वजह से उनको भी पता चले कि भगवान अपने समय में कैसी लीला करते थे, रथ यात्रा का सेलिब्रेशन किस लिए हो रहा है।
0: रथ यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति का कमोबेश ऐसा ही नजारा कोलकाता में भी नजर आया। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जगन्नाथ मंदिर गए और महाप्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई करने की परंपरा निभाई और रथ को यात्रा के लिए न सिर्फ रवाना किया बल्कि रथ भी खींचा। नोएडा में भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी भागीदारी दी। लेकिन इस रथ यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रस्सी से रथ को खींचा।
5: जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, प्रभु उस रथ में सवार हैं और सवार होकर अपने श्रद्धालुओं को लगातार दर्शन दे रहे हैं। हम इस वक्त रथ के पीछे वाले हिस्से में हैं और पीछे वाले हिस्से में इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है, पिछला हिस्सा रथ का, जिसे महिलाएं संभालती हैं, नारी शक्ति संभालती है, देश की बेटियां संभालती हैं, घर की माएं संभालती हैं। आप देख रहे हैं कि इन महिलाओं में, इन बेटियों में भी कितना क्रेज है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़ीसा के नहीं है, पुरी के नहीं है, कभी शायद जगन्नाथ मंदिर गए भी नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा है कि वो भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं।
0: उधर पटना में स्कॉन टेंपल से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। रथ पर विराजमान महाप्रभु के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ आया। विशेष पूजा, महाआरती और 108 व्यंजनों के महाभोग के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रथ खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। रथ के आगे आगे भक्त गीतों और कीर्तन की स्वर लहरियां गूंजती रहीं और पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के उद्घोष से माहौल को भक्तिमय बना दिया। शहर दर शहर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, समर्पण और मुक्ति का जीवंत प्रतीक भी मानी गई है। इसलिए इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में हर साल बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लेने।
0: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल के बीच कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स एक अंक की बढ़त के साथ 77,186 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 5 अंकों की गिरावट के साथ 24,072 पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,46,300 रुपए पर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। 16 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1500 रुपए गिरकर 2,24,500 रुपए पर पहुंच गई। वेस्ट एशिया में बढ़े तनाव के बीच 16 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में फिर गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 96.33 के स्तर पर बंद हुआ।
6: और न्यूज पद पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में दिखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। शहर शहर दिख रही रथ यात्रा की रौनक। आनंद में स्कूली बच्चों ने भी निकाली रथ यात्रा। दिल्ली और नोएडा में भी गजब का उत्साह। न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले हैं। एक अनोखे खेल की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं। लड़कियां मिलकर ये अनोखा गेम खेल रही हैं जिसमें दो लड़कियां लाइन में झुकी हुई लड़कियों को एक टी शर्ट पहना रही हैं। दो गुट इस खेल को खेल रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि इस गुट ने अपनी लाइन की आखिरी लड़की को भी टी शर्ट पहना दी है। गेम जल्दी से पूरा करके ये समूह अपनी जीत पर खुशी से चिल्लाने लगा। लोगों को ये अनोखा गेम खूब पसंद आ रहा है। कहते हैं कि रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूख देखी हो और पानी की कीमत वही जानता है जो प्यासा हो। तस्वीरों में एक नन्ही बच्ची को एक नन्हे बेजुबान बंदर के बच्चे को पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है और लोग इसको देख के काफी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होती अनोखी दोस्ती की भी ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें एक छोटे बच्चे और एक रेप्टाइल के बीच अनोखी फ्रेंडशिप नजर आ रही है। इस अनोखी दोस्ती ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चा किनारे बैठा है, पानी से एक रेप्टाइल निकल कर आता है, बच्चा उसे सहलाता है और वो भी बच्चे के स्पर्श को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। लोग अब इस दोस्ती की मिसालें दे रहे हैं, बच्चे की बहादुरी को भी सराहा रहे हैं। कहते हैं कि बहन का दर्जा माँ से कम नहीं होता और वो भी तब जब बहन माँ की तरह ही केयरिंग और प्यार देने वाली हो। ये तस्वीरें इसलिए वायरल हैं क्योंकि एक बहन इसी तरीके से अपने छोटे भाई का ख्याल रखती नजर आ रही है। तस्वीरों में एक बच्ची जो कि खुद भी बेहद छोटी सी है लेकिन स्कूल में अपने भाई को लंच ब्रेक में ऐसे खाना खिला रही मानो उसकी माँ हो। अब इस भावुक वीडियो को देखकर लोग अपनी बड़ी बहन को याद कर रहे हैं। उनको ये तस्वीरें बेहद पसंद आ रही हैं और इस तस्वीर पर लोग बेहद प्यार लुटा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, स्केटिंग रिंग में ये बच्ची अपने स्केटिंग टैलेंट का प्रदर्शन करती है। स्केट्स के साथ उसके मूव्स दर्शकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। हालांकि वो इस दौरान गिर भी जाती है लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि वो संभलती है और फिर स्केटिंग की उड़ान भरने लगती है। असली आर्टिस्ट ऐसा ही होता है जो पब्लिक को पता भी ना चलने दे और लोग यही समझे कि शायद ये उसके प्रदर्शन का ही हिस्सा हो। लोगों को न सिर्फ इसका टैलेंट पसंद आया बल्कि सब इसकी सूझबूझ और कुशलता की भी तारीफ कर रहे हैं। और न्यूज़ पथ के सफर में रुक करेंगे सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी मुंबई की। मुंबई का मशहूर जुहू बीच देश के सबसे पसंदीदा समुद्री किनारों में शुमार है, जहां हर रोज हजारों लोग रेतीली जमीन पर सैर के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों जुहू बीच का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। मुंबई के जुहू बीच पर इन दिनों समुद्र किनारे प्लास्टिक, लकड़ियां, घरेलू कचरा और मलबा बिखरा नजर आ रहा है। मुंबई के कचरा प्रबंधन देखने वाली बीएमसी का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड बारिश के बाद नालों के जरिए समुद्र में गया कचरा अब वापस किनारे पर आ रहा है। ऐसे में जुहू बीच पर लगातार सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में बीएमसी कर्मचारी कचरा हटाने में जुटे हैं। इसके बावजूद समुद्र में आने वाले हाई टाइड के साथ नया कचरा किनारे पर पहुंच रहा है, जिससे सफाई अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में ही करीब 1800 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। बीएमसी के

0: स्तर पर कचरा प्रबंधन मजबूत नहीं होगा तब तक हर मॉनसून के बाद ऐसी स्थिति ही दोहराई जाती रहेगी। जू बीच की ये तस्वीरें सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि उन सभी महानगरों के लिए चेतावनी है जहां पर भारी बारिश के दौरान नालों के जरिए बड़ी मात्रा में कचरा नदियों और समुद्र तक पहुंच जाता है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई में लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
1: जहां खड़े हैं वो मुंबई का जू बीच है, अक्सर जहां पर पर्यटक दिखाई देते हैं वो किसी नाले का स्वरूप ले चुका है। जुहू बीच पर आप देखेंगे कितना कचरा जो है वो मौजूद है और बीएमसी का कहना है कि लगभग 180 टन कचरा जो है वो हर रोज निकाला जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड की जिस जैसा ये जो दृश्य है ये जुहू बीच पर देखने के लिए मिल रहा है जहां पर जेसीबी यूज कर इस पूरे कचरे के ढेर को हटाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे एक तरफ पर्यटकों की भीड़ है जो लोग मुंबई घूमने आए हैं, दूसरी ओर ये कचरा जो है ये उठाया जा रहा है और उसके बाद भी आप समुद्री तट को अगर देखेंगे तो कई जो कचरा है वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। बीएमसी में लीडर ऑफ अपोजिशन किशोरी पेडनेकर जुहू पर आई, उनका कहना था कि पास के नालों से ये जो कचरा है ये समुद्र की तरफ आकर जुहू पर आ रहा है। जुहू में भी आप बीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी विजिट हुई है, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कचरों का ढेर जो है ये पूरी तरह से जुहू पर पड़ा हुआ है। बीएमसी के कर्मचारी दिन रात इस कचरे को यहाँ से निकालने की कोशिश में है, अगले दिन फिर से देखा जाता है कि नया कचरा जो है इस पूरे समुद्री तट पर जुहू बीच पर आ जाता है। तो अब क्या किसी नाले का कचरा आ रहा है या फिर बारिश के बाद एक तरह से ये पूरा कचरा यहाँ पर आया है, इससे पहले कभी इतना कचरा जुहू बीच पर देखा नहीं गया है। जहाँ सोशल मीडिया पर ये पूरा जो दृश्य है ये वायरल हो रहा है, लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, वहीं पर प्रशासन के लिए बीएमसी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, जुहू बीच को पहले जैसा फिर से साफ कैसे किया जाए।
2: मुंबई महानगर पालिका ये एशिया की सबसे बड़ी मुंबई पालिका है, तो जाहिर सी बात है अगर मुंबई महानगर पालिका में सत्ताधारी जो है वो नए है, अगर वो जहाँ पर पर्यटन आ रहे हैं और जा रहे हैं अगर वहाँ पे लोगों ने कचरा साफ सफाई किया तो बहुत अच्छी बात है, हम हमारी तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं। और भी बाकी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा देखने मिलता है कि अस्वच्छता नहीं है, कहीं कहीं कचरा कुंडी वहाँ से कचरा दो दो दिन पड़ा रहे थे, तो उसके ऊपर भी वो लोग प्रशासन ध्यान दे और बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। जहाँ जहाँ कम से कम पर्यटन आते और जाते हैं जो उनको शुल्क देते हैं तो उनको उनका फायदा मिलना चाहिए।
3: बीएमसी के द्वारा जो भी साफ सफाई हो रही है हमारे मुंबई कर्स के लिए, तो खास इसके साथ साथ पूरे विश्व के जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर उनके लिए भी काफी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही है।
4: लेकिन यहाँ पे स्पेशली जुहू बीच की बात हो रही है,
3: जुहू बीच हम यहाँ घूमने भी आ रहे हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर आने के साथ हमको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो आजू बाजू के जो दृश्य में देखने मिल रहे हैं वो काफी अच्छा और मनभावक है।
4: अच्छा, लेकिन जो भी से अच्छी खासी सफाई कचरों की गई है बीएमसी द्वारा, क्या कहेंगे इस पे?
3: ये तो एक बहुत अच्छा उनकी बीएमसी के द्वारा की गई एक पहल है और ये अभी नहीं हमेशा होना चाहिए, पब्लिक के द्वारा भी किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी मुंबई की शान ही बढ़ती है, मुंबई के लोग यहाँ और आना पसंद करेंगे, विश्व के लोग और आना यहाँ पसंद करेंगे।
0: प्रभास की फिल्म फौजी की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, इसी के साथ ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड पर।
5: पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म फौजी की रिलीज का मेकर्स ने ऐलान कर दिया है। मैथ्री मूवी मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की। पोस्टर में प्रभास युद्ध के मैदान में बारिश में भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में बंदूक है और शरीर खून से सना दिख रहा है। फिल्म फौजी के इस पोस्टर को शेयर करते हुए 3 दिसंबर को फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज होने की जानकारी दी गई है। हनु राघव पुडी निर्देशित इस फिल्म में प्रभास के साथ ही मानवी, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर भी हैं। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें शादी और कॉमेडी का तड़का नजर आ रहा है। ट्रेलर में हास्य, भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों का संतुलन देखने को मिल रहा है। आकाश आदित्य लामा के निर्देशन में बनी ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म में महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा और खुशाली कुमार अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा ओमकार कपूर, अगु स्टैनली और बीसी आंटी भी फिल्म दुल्हनिया ले आएगी के कलाकारों में शामिल है। फिल्म हैवान से अक्षय कुमार

0: और सैफ अली खान का फर्स्ट लुक आया सामने। मेकर्स ने फिल्म का कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया जिसमें दोनों एक्टर की पहली झलक देखने को मिली। दोनों ही एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अक्षय और सैफ दोनों 18 साल बाद बड़े पर्दे पर प्रियदर्शन के निर्देशन में फिल्म हैवान में साथ दिखेंगे। ये फिल्म 11 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में बमन ईरानी, सयामी खैर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फाइनली फिल्म की रिलीज डेट 23 जुलाई अनाउंस कर दी है। फिल्म में जननायकन विजय की शानदार फिल्मी सफर में एक अहम पड़ाव है क्योंकि ये बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म होगी। विजय ने 2024 में ही अनाउंस कर दिया था कि एच विनोद की जननायकन पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म होगी।
1: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और पर्यटन ही नहीं, यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी यही है। इसीलिए ऐसी जगहों पर साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता रहे। श्रीनगर की डल झील भी उन जगहों में शामिल है जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, लिहाजा यहां सफाई अभियान के जरिए झील का इकोसिस्टम बचाने की पहल की गई है।

0: कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के पहाड़, हरी भरी घाटियाँ, रंग बिरंगे फूलों के बाग, कल कल बहती नदियाँ और शांत झीलों के दीदार से एक अलग ही सुकून का एहसास होता है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। डल झील कश्मीर की सबसे मशहूर झीलों में से एक है, जो श्रीनगर की बड़ी पहचान है। कश्मीर के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल डल झील में पारंपरिक शिकारा की सवारी करते हुए यहाँ की वादियों का दीदार कर पर्यटक बेहद खुश होते हैं। इन दिनों भी बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीनगर का रुख कर रहे हैं और डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, हाउस बोट में ठहरने का आनंद लेते हैं। ये झील यहाँ के लोगों की आजीविका का भी अहम स्रोत है। इसके चलते प्रशासन के स्तर से लेकर यहाँ के निवासी और वॉलंटियर भी इस झील को साफ रखने की कोशिशों में जुटे नजर आते हैं। इस झील को बचाने के मकसद से कश्मीर कंसर्न नाम की एक एनजीओ की ओर से सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत वॉलंटियर झील से कचरा और तैरता हुआ मलबा हटाते नजर आए। वॉलंटियर पारंपरिक नाव का इस्तेमाल कर इस सफाई अभियान का हिस्सा बने।
1: हम लोग यहाँ इंटीरियर में जब आए, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक भी देखा, जो कि मैं हर टाइम देखती हूँ जब भी मैं ड्राइव्स करती हूँ। यहाँ पे तौसीफ सर ने एक चीज़ दिखाई जो मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार देखी, कि लोगों ने एक डंपिंग प्लेस बना के रखा है जहाँ पे गार्बेज जितना भी है उन लोगों ने वहाँ रखा है। और ये मैंने पहली बार नोटिस किया था, क्योंकि यहाँ पे जो LCMA की सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, या तो वो एक महीने में एक बार आते हैं या तो नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि LCMA जो है उनकी सर्विसेज बढ़े, सिर्फ इंटीरियर ऑफ द डल लेक में नहीं, हर एक हाउस बोट ओनर के पास। हमने इतने सारे मोहल्ले में, मतलब उन लोग की सराउंडिंग साफ की थी, हर एक घर को दो डस्टबिन दिए थे। अभी वहाँ पे सर्विसेज नहीं आ रही है तो वहाँ पे उनकी सराउंडिंग वापस खराब हो गई है।
2: यहाँ पे जो भी रोजगार है वो इसी डल के ऊपर है। अगर ये डल गंदा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई टूरिस्ट इसके अंदर जाएगा और स्पेशली इंटीरियर में जाएगा और वहाँ पे वो एंजॉय करेंगे ये सब या स्टे करेंगे। मगर यही है कि हमारा यही हर वक्त मोहिद्दीन भाई, मैं, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से मैसेज आगे जाए। ये डल हमारा है, डल को बचाने के लिए हमें हर एक बंदे को काम करना पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ एक सर्विस होना।
0: डल झील की साफ सफाई और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण की है। सरकारी संस्था के अलावा डल झील को स्वच्छ रखने में स्थानीय श्रीनगर नगर निगम और स्वयं सेवी संस्थाएं भी मदद करती हैं। इसी कड़ी में ये सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें यहाँ के निवासियों ने भी अपना योगदान दिया।
3: जितने भी मेरे बहन भाई इस एरिया से सुन रहे हैं, तो वो अपना माहौल ठीक कीजिएगा, ये हमारी अपील है।
4: जैसे CSR एक्टिविटीज होती हैं हमारी यहाँ पे कंपनी की, भारत पेट्रोलियम में भी हम करते हैं, तो उसी के पार्ट में हमने NGOs के साथ अभी आज के लिए करा था कि कोलैबोरेशन में, जो ऐसे क्लीनलीनेस ड्राइव है वो थोड़ा सफाई का करा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये सबका मेहनत लगेगा इसमें और काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि डैमेज काफ़ी हो चुका है, तो इसको धीरे धीरे ही अब रिवाइव हो पाएगा।
0: इस अभियान का मकसद डल झील के इकोसिस्टम को बचाना है, साथ ही ये पहल पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है।
5: हम बिल्कुल इंटीरियर ऑफ डल लेक में आए हैं, देखिए आगे वाला फेज तो हर कोई देखता है और हम चाहते हैं, देखिए टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, टूरिस्ट अगर गुलमर्ग सोनमर्ग ना भी जाए, ही कैन चूज आइदर ऑफ द टू, लेकिन डल लेक उसके विश लिस्ट में 100% होता ही होता है। हम यहाँ पे ब्लेम गेम करने नहीं आए, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने आए हैं। ये जो क्लीनेस ड्राइवर्स हैं पिछले 12-13 साल से हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, स्पेशली इन द इंटीरियर ऑफ द डल। अगर हम लोगों का सुने तो वो तो शिकवे गिले करते रहते हैं कि हर दिन सफाई नहीं होती है, हर दिन लोग नहीं आते, कुछ कहते हैं दो दिन से नहीं आए, चार दिन से नहीं आए, वो तो एक अलग सिनेरियो, एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, कश्मीर की कोई भी वाटर बॉडी बचाने का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को बचाना।
0: डल झील की सफाई को लेकर चलाए गए इस अभियान का विदेशी पर्यटक भी हिस्सा बने। डल झील को साफ रखना बेहद जरूरी है, इसके कई फायदे हैं। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय और झील पर निर्भर लोगों में बीमारियों का खतरा कम होता है, साथ ही जलीय जीवों के लिए स्वस्थ वातावरण भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: मैक्सिको सिटी में सैकड़ों जोकरों ने वर्जन ऑफ ग्वाडालूपे की पूजा के लिए पदयात्रा की। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
7: मैक्सिको सिटी में सैकड़ों जोकर्स ने वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपे की पूजा के लिए भव्य पदयात्रा निकाली। आशीर्वाद लेने से पहले सभी ने करतब और कॉमेडी का रंग भी जमाया। देश भर से आए जोकर्स तस्वीरें और वेदी लेकर बेसिलिका पहुंचे। हर साल क्लब की वर्षगांठ पर यहां ये अनोखी परंपरा निभाई जाती है। 1981 से चली आ रही इस परंपरा में जोकर्स पिछले साल के लिए धन्यवाद देने और नए साल के आशीर्वाद की कामना करते हैं। बेसिलिका के बाहर जुगलबंदी, करतब और कॉमेडी से माहौल खुशनुमा हो गया है। इसके बाद सभी कलाकारों ने चर्च में जाकर आशीर्वाद भी लिया। अब दृष्टिहीनों की मदद के लिए एआई की मदद ली जाएगी। चीन के हेबई प्रांत में स्मार्ट रोबोटिक गाइड डॉग का फील्ड ट्रायल शुरू हो गया है। ये रोबोटिक गाइड डॉग मल्टी मॉडल सेंसर और बड़े एआई मॉडल से लैस है। साथ ही ये रोबोट सीढ़ियों, पाइपलाइन, गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों जैसी रुकावटों की पहचान कर खुद से रास्ता बनाने में भी सक्षम है। इन रोबोटिक गाइड डॉग में ऊंचाई पर चढ़ने के अलावा सेहत की निगरानी करने, गिरने पर अलर्ट देने के साथ तेजी से चार्ज होने, वीडियो कॉल करने और चीजें खोजने जैसे फंक्शंस भी मौजूद हैं। नॉर्मल डॉग्स को लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो महंगे भी होते हैं। ऐसे में ये रोबोटिक विकल्प घर के अंदर साथी के साथ साथ बाहर रास्ता खोजने में भी मददगार हैं। चीन जल्द ही इन रोबोटिक गाइड डॉग को मार्केट में उतारने वाला है। दुनिया की सबसे रोमांचक रेस यानी सैन फर्मिन फेस्टिवल की बुल रन, जहां परंपरा का मेल रोमांच से होता है। स्पेन के पैम्पलोना शहर में बुल रन का ये सदियों पुराना रिवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहां की आखिरी बुल रन मंगलवार को पूरे जोश और रोमांच के साथ पूरी हो गई। बुल रन शुरू होने से पहले प्रतिभागी सैन फर्मिन की प्रतिमा के सामने जुटते हैं, नारे लगाते हैं और सुरक्षित दौड़ की कामना करते हैं। ये परंपरा हर साल इस आयोजन की शुरुआत का अहम हिस्सा होती है। एक पटाखे की आवाज और गेट खुलते ही तेज रफ्तार से बुल बाहर निकलते हैं और उनके साथ शुरू होती है ये रोमांचक रेस।
6: न्यूज पथ पर यहां रुकेंगे ब्रेक प्लाजा पर और ब्रेक के उस पार खेल की खबरों को दिखाने के लिए आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
9: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: आईसीसी की ताजा रैंकिंग में चमके ऑलराउंडर अक्षर पटेल, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का।
2: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उनके शानदार प्रदर्शन का असर अब आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भी दिखाई दिया है। नई वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी अक्षर पटेल टॉप 10 खिलाड़ियों में पहुंच गए हैं। खास बात ये कि इस लिस्ट में वो अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये उपलब्धि न केवल उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है बल्कि भारतीय टीम के लिए उनकी बढ़ती अहमियत को भी दर्शाती है। वहीं बल्लेबाज शुभमन गिल तीसरे स्थान की छलांग लगाकर 9वें नंबर से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टॉप 5 बल्लेबाजों की फेहरिस्त में मौजूद हैं। पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन की विश्व नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को सीधे सेटों में हरा दिया। इस जीत के साथ ही सिंधु ने महिला सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने संयमित और आक्रामक खेल दिखाते हुए सिर्फ 35 मिनट में हान यू के खिलाफ 21-16, 21-14 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही चीनी शटलर के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अब 8-1 का हो गया है। ये नतीजा इस सीजन में सिंधु के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। भारत के स्टार पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। अमन ने खिताबी मुकाबले में जॉर्जिया के बेटी डिंगाशिवली को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर करारी मात दी। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए अमन के अलावा दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक और विशाल कालीरामन ने 65 किलोग्राम वर्ग में अपना शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड को फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में हराकर अर्जेंटीना ने फाइनल में एंट्री ले ली। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने 2-1 से मात दी। जीत पर अर्जेंटीना के फैंस ने खूब जश्न मनाया। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है जबकि अब तक अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में 7वीं बार फाइनल में जगह बनाई है। अब वर्ल्ड कप के फाइनल में 19 जुलाई को रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में अर्जेंटीना के भिड़ंत स्पेन से होगी।
1: मेरे यानी नवजोत संधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: When it's too hot to go out, it's definitely too hot for your AC to go out. The Waterworks Heating and Cooling Pros are here to help. We offer fast repair and AC replacement for any cooling system when you need it. Plus, we're a premier Linux dealer and can install an energy-efficient system for a great price. Call the Waterworks at 614-232-2222 or visit us online at thewaterworks.com. The Waterworks. Better care. Better value. Better results.
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
7: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में दिखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रौनक। शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1, 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो गुंडिचा मंदिर की तरफ जा रही है। बारिश के बावजूद इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे पुरी और यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। आज सुबह मंदिर में यात्रा कैसे शुरू हुई और धार्मिक रस्मों को किस प्रकार से निभाया गया, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद और उदयपुर में निकली भव्य रथ यात्राओं की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद और उदयपुर में यात्रा वापस मंदिर में लौट आई है, लेकिन दिन भर यात्रा की कैसी धूम रही ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ से। देखिए, आज सुबह से विधि विधान और धार्मिक रस्मों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर रथ में विराजमान किया गया। हालांकि लगातार बारिश और भारी भीड़ की वजह से यात्रा आगे बढ़ने में विलंब थोड़ा हुआ और उसे रोकना भी पड़ा, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। अब रात आ चुकी है लेकिन भक्तों का भीड़ जैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़, भक्तों का ये समंदर आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। अब भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया का रथ यहाँ से निकल चुकी है लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ नंदीघोष रथ यहाँ रुकी हुई है। नंदीघोष रथ हल्का एक ही कदम दो कदम आगे जाके फिर रुक गई है। ऐसा लग रहा है कि भगवान रात तक इन लोगों को इंतजार किए हैं, उन भक्तों को इंतजार किए हैं जो भक्त दूर दूर से आए हैं और दिन भर ये बारिश में भीगे हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं, इतना भीड़ में जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देख के लग रहा है
1: भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनकी इच्छा होता है तभी रथ चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो अब बलदेव जी आगे गए, सुभद्रा महारानी भी गए बीच में, अब जगन्नाथ जी थोड़ा सा खिसके हैं, इनको इच्छा होता आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज यहीं स्टे करेंगे।
2: बहुत खुश हूँ मैं
0: भगवान के पास से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मन की भावनाएं जो है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार भगवान के दर्शन इतने नज़दीक से हुए, मेरे को बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं इनके साथ आया, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कराए।
0: और ये भीड़ और ये खुशी, ये भक्ति से पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का वो झलक देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए लोगों का मन में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है।
3: पुरी में यात्रा अभी जारी है, माना जा रहा है कि कल भगवान का रथ गुंडेचा मंदिर पहुंचेगा। हालांकि जयपुर में यात्रा शाम के बाद वापस मंदिर लौट आई लेकिन इससे पहले यात्रा के दौरान जयपुर की सड़कों पर भव्य दृश्य नजर आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़े। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, यही जयकारे हैं आज सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर से, जहाँ गोविंद देव जी मंदिर से भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये रथ यात्रा जयपुर के चार दीवारी में घूमती हुई ब्रजनिधि मंदिर तक पहुंची है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए हैं और उनकी भक्ति देखने को मिली है। सिर्फ एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से भक्ति देखने को मिली है। कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है तो कोई नाचता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस रथ यात्रा में भक्ति के अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जयकारों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 250 साल की परंपरा ये निभाई जा रही है जिसमें भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकल जा रही है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रथ की जगह तीन अलग अलग रथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रथ जो भगवान जगन्नाथ का है उनके साथ ही में दो अलग अलग रथ में उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा भी यहाँ पे विराजित हुई है। और हर दर्शनार्थी यहाँ पे समय पे यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुँचे और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। इसीलिए ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए।

तो ना सिर्फ पुरी बल्कि देश के कई शहरों में आज धूमधाम और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। देखिए, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, राजकोट, कोलकाता, धनबाद, पणजी और ऐसे कई इलाकों में रथ के साथ भक्ति का रेला देखने को मिला। पूरे देश में जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा देश आज गुंजायमान हुआ। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जबरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली आज। लेकिन पूरे दिन नजर टिकी रही पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर, जहां पर बारिश की बूंदों के बीच भी आस्था का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। पुरी की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास बहुत मजबूत है। आज सुबह से वैदिक परंपराओं, छेरा पहरा की अनूठी रस्म और लाखों भक्तों की सहभागिता ने रथ यात्रा को दिव्यता से पूरी तरीके से भर दिया। ये केवल भगवान की यात्रा नहीं है बल्कि सेवा, समानता, समर्पण और अटूट श्रद्धा का महापर्व है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। देखिए पुरी से हमारी खास रिपोर्ट।

0: हे जगन्नाथ चकानैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पुरी में आज कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है। आसमान से बरसते बादल और धरती पर श्रद्धा का सैलाब, रथ पर महाप्रभु विराजमान, रथ के साथ हजारों भक्त, सभी की बस एक ही चाह, बस एक बार रथ को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। भक्ति भावना, श्रद्धा, समर्पण, क्या नहीं है इस यात्रा में, जिसकी शुरुआत पूरे वैदिक विधि विधान के साथ हुई। सुबह मंगला आरती हुई, स्नान पूजा संपन्न हुई, विशेष श्रृंगार हुआ, फिर गोपाल वल्लभ भोग और राजभोग अर्पित किया गया। इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार था। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहंडी परंपरा के अनुसार मंदिर से बाहर लाकर रथों पर विराजमान हुए। तेज बारिश की वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और उन्हें झुलाते हुए भी लाया नहीं गया, बल्कि पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे रथ तक पहुंचाया गया।
1: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया, और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया, और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
0: इस महापर्व का सबसे भावुक नजारा तब दिखाई दिया जब पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की परंपरा निभाई। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों और यात्रा मार्ग की सफाई की, फिर चंदन मिला पवित्र जल छिड़का। ये परंपरा बताती है कि प्रभु के दरबार में किसी पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और हर व्यक्ति केवल भगवान का भक्त होता है। महाप्रभु के इस महा उत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश लगातार होती रही, लेकिन किसी ने कदम पीछे नहीं खींचे। कहा जाता है कि तय कर केवल एक झलक पानी की चाह लेकर यहाँ पहुँचा है।
3: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं, आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहां से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान

0: के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के ओर खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या पूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
1: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
0: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
1: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
2: हम कर्नाटक से आए
0: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
2: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
0: कब से आ रहे हैं?
2: हम आया, दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
3: मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को समानता, सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। यहाँ ना जाति का भेद दिखाई देता है, ना ऊंच नीच का, ना अमीरी गरीबी की दीवार, हर तरफ केवल भक्ति का रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में हर साल उमड़ता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पुरी ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता पूरे देश में नजर आई। अहमदाबाद में करीब 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गाजे बाजे, हाथी घोड़ों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह उदयपुर में रजत रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहमदाबाद हो उदयपुर, दोनों जगहों पर यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट।

0: आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीर पुरी के अलावा देश में कहीं और नहीं। दूर जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धा नजर आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े और झांकियों के साथ जब भगवान जगन्नाथ चले तब यात्रा मार्ग पर जैसे पूरा अहमदाबाद चला। मनमोहने वाली झांकियां, दिल जीतने वाले करतब, और ताकत दिखाते अखाड़े के पहलवान। रथ यात्रा के साथ गुजरात की ये संस्कृति अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्ति में होते हैं। ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है। उसके बाद
0: ये अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्ति में होते हैं। ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है। उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े और अखाड़ों के बाद
0: पुरी से तुलना करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा ज्यादा लंबी होती है। करीब 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है।

जहां राजा छेरा पहरा की रसम राजा निभाते हैं, वहीं अहमदाबाद में पहिंद विधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री झाड़ू से रथ बुहाने की परंपरा निभाते हैं। इस साल भी सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर तक जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। इस साल भी अहमदाबाद रथ यात्रा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस के अनगिनत आला अधिकारी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, पूरी यात्रा पर 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर में भी यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। भव्यता के मामले में पुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर का नंबर आता है। राजभोग आरती के बाद पहले जगदीश मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रथ में रथ यात्रा निकाली गई। शाम में 4 बजे भगवान के विग्रह को रजत रथ में सवार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक धारण करवाई गई। राज परिवार के सदस्य और विधायक विश्वराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: get The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में दिखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक। शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
13: ओडिशा के पुरी में उमड़ा आस्था का जनसमुद्र। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव। लाखों श्रद्धालु पहुंचे। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह। बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का जबरदस्त अंदाज कृष्ण के वेश में नजर आए। पुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। ओडिशा के पुरी के बीच पर भी देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वानगी, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई शानदार आकृति। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स के साथ कई जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एम्बुलेंस तैनात। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक जबरदस्त, 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह हुई मंगला आरती, अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम संघवी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से साफ किया रास्ता, विधि विधान के साथ पूजन के बाद निकली रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथों पर हुए सवार, दिव्य दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु। भगवान की रथ यात्रा में शामिल हैं 18 हाथी, 101 ट्रक, कुल 16 किलोमीटर की यात्रा में भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। पड़ोसी देश बांग्लादेश में

अयोध्या में भी जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन, श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई विशेष आरती। शहर के 10 से ज्यादा प्रमुख मंदिरों में गाजेबाजी के साथ धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्राएं। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर आज जीरो की नगरी उदयपुर में भी रथ यात्रा का आयोजन, शानदार नगर भ्रमण के लिए भगवान जगदीश जानेंगे अपने भक्तों का हाल। भगवान जगदीश की रथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां, भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक तैयार की। देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है उदयपुर शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जबकि दूसरे राजस्थान की सबसे बड़ी उदयपुर की रथ यात्रा। जौनपुर में देखा रथ यात्रा का जबरदस्त नजारा, डॉक्टर्स ने स्टेथोस्कोप लगाकर जांची भगवान की सेहत। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, 55वीं रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की आरती की। पारंपरिक का छेरा पहनरा अनुष्ठान हुआ संपन्न। आसनसोल में 103 साल पुरानी पीतल की रथ यात्रा आयोजित की गई। नई राजबाड़ी से पुरानी राजबाड़ी तक निकाली गई इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। इस मौके पर अग्निमित्रा पॉल और डॉक्टर अजय पोद्दार ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की रस्सी खींची। रथ पर उकेरे गए हैं रामायण महाभारत और श्री कृष्ण लीला के सुंदर दृश्य। दिल्ली के रोहिणी में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। देवघर में बालानंद आश्रम से सज धज कर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। गया में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ आयोजन किया गया, रथ यात्रा के आगे सफाई करते हुए नजर आए भक्त। अलवर में भी अनोखी जगन्नाथ यात्रा की परंपरा, यहां पर जानकी जी से होता है भगवान जगन्नाथ का विवाह। रांची में 335 सालों से आयोजित हो रही है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने खींचा पवित्र रथ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, 65 सालों से निभाई जा रही है परंपरा। नए और भव्य रथ में बैठकर सपरिवार निकले जगन्नाथ स्वामी, प्रदेश के साथ पूरे देश में खुशहाली की कामना लिए जगन्नाथ स्वामी दे रहे हैं दर्शन। जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ ढोल लगाड़ों की थाप पर भजन कीर्तन के बीच हुआ भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ। गोवा में भी देखा आस्था का अद्भुत नजारा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मिरामार में जगन्नाथ रथ यात्रा का हरी झंडी दिखाई। इस शुभ अवसर पर पारंपरिक अनुष्ठानों और रथ खींचने की रस्मों में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल। श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर में हुआ रथ यात्रा का शुभारंभ। रथ यात्रा के लिए अपने अलग अलग रथों पर विराजमान हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा। 175,000 से ज्यादा रत्नों से सुसज्जित जड़ाऊ मुकुट और आभूषण रहा रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण। धर्माद में भक्ति का सैलाब, हाइड्रोलिक रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ। आईटी के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है हाइड्रोलिक रथ। आज से खुल गए पवित्र फयूला नारायण मंदिर के कपाट। चमोली जनपद के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह मंदिर। अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, घने जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर जहां पर पुरुष पुजारी के साथ महिला पुजारी भी करती हैं भगवान नारायण की सेवा। मंदिर में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में नारायण, माता महालक्ष्मी, जय विजय और घंटा कर्ण, नंदा सुनंदा सहित अन्य देवी देवता मौजूद। सिक्किम में नामची राखी मेले की रौनक, प्रदेश के सबसे मशहूर परंपराओं में से एक। इस जश्न में राखी भूत को प्रतीकात्मक रूप से जलाने के पहले मशाल रैली के लिए इकट्ठा होते हैं सैकड़ों लोग। रथ यात्रा के दिन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोनार बांग्ला होगी इस बार की थीम। हरिद्वार के विश्व विख्यात मां मनसा देवी मंदिर में आज से शुरू हो गई एक नई पहल। आज से पॉकेट प्लस कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी। उज्जैन के

0: विश्वविख्यात मंदिरेरा श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की होगी जांच। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने से निर्मित बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। टिहरी में हर गांव का ये पैगाम, हर पेड़ मां के नाम के तहत लगाए गए हैं लाखों पौधे। अलग अलग सरकारी विभागों, पंचायतों, विद्यालयों और सामाजिक संगठनों ने जिले भर में चलाया पौधारोपण का अभियान। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रकृति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है जगदीश कुनियाल, 45 सालों में अपनी बंजर जमीन पर पौधे उगाकर बनाया हरा भरा जंगल। इटावा में बस रेहर बायपास मार्ग का निर्माण करने के कनेक्टिविटी अब बेहतर हो जाएगी, लोगों को आने जाने में होगी सहूलियत। हाईवे से संपर्क होने से ट्रैफिक में होगी बढ़ोतरी, लोगों को मिलेगा रोजगार का साधन। दिल्ली अब QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी सड़क की पूरी जानकारी, नो योर रोड प्रोजेक्ट। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, शामली और बिजनौर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2415 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग शुरू। गश्त के दौरान महिला पुलिस टीम छात्राओं को आत्मरक्षा और महिला कानून के बारे में जानकारी देंगी। मुंबई में मैन होल पर काम करने के दौरान लोगों की सुरक्षा बढ़ाने और रखरखाव पर मरम्मत करने के लिए कर्मचारियों को सुरक्षित सुनिश्चित किए। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1। 22 जुलाई को ASW वॉरशिप मालवन भारतीय नौसेना में होगा कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कॉप्स का दौरा करके ऑपरेशन तैयारियों को परखा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज को गोल्ड मेडल से नवाजा। कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार प्रधानमंत्री मोदी, कल दिखाएंगे हरी झंडी। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ में 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीजी एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास। प्रभास की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म फौजी का पोस्टर और रिलीज डेट हुई आउट, 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कार्तिक की नागजिला में हुई एक्टर रवि किशन की एंट्री। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही है समांथा रूथ प्रभु की हिट तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म माँ एंटी बंगारम। के ड्रामा के शौकीनों के लिए द ईस्ट पैलेस हो रही है रिलीज, चो सेम नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स पर कल से स्ट्रीम होगी, 23,000 लाइक्स जुड़ेंगे रेटिटे की सच्ची कहानी पर इंस्पायर है ये फिल्म। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर हुआ रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म देगी दस्तक। फिल्म पराग में श्री मुरली की एंट्री, फिल्म निर्माता ने पहली झलक की जारी। फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म रागनी 3 की हो गई शूटिंग शुरू, तमन्ना भाटिया नजर आएंगे। रणवीर कपूर की रामायण को CBFC से ग्रीन सिग्नल मिल गया, बिना किसी कट के पास हुए 2 महा ट्रेलर। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फिनाले में पहुंची 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु। मैच 35 मिनटों में हान को दी शिकस्त, 21-14, 21-26 से हराया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत की स्टार पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता गोल्ड। आईसीसी की वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंची अक्षर पटेल। बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टॉप 5। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस ने 55वें मिनट में किया पहला गोल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतिहास में 24 साल बाद भिड़े अर्जेंटीना और इंग्लैंड, अर्जेंटीना को मिली शानदार जीत। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है, अब तक वर्ल्ड कप में 7वीं बार फाइनल्स में बनाई है अपनी जगह। वर्ल्ड कप के फिनाले में स्पेन से भिड़ने जा रही है अर्जेंटीना। मेक्सिको सिटी में सैकड़ों जोकरों ने वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपी के पूजा के लिए भव्य पदयात्रा निकाली। देश भर से आए जोकर तस्वीरों और वेदी लेकर बेसिलिका पहुंचे। 1981 से चली आ रही है इस परंपरा में जोकर पिछले साल के लिए धन्यवाद देने और नए साल के आशीर्वाद की करते हैं काम। बेसिलिका के बाहर जुगलबंदी करतब और कॉमेडी से माहौल रहा गुलजार। 1979 में बने मैक्सिकन सर्कस क्लाउंस क्लब की याद में हर साल निकाली जाती है यात्रा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: खबरें तो आराम से।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाए, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हमारा दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चढ़ के चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान आपके चेहरे पर नजर आ रही है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे हैं।
5: लाइन में लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
7: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
13: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना, आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ, यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में दिखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र, रांची गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी और आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में मैं पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा का विषय है बृहस्पति। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी दे रहा है, आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो उससे बचने के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने हैं ताकि आपका विवाहित जीवन जो है वो अच्छे से चलता रहे। इसके बारे में तमाम जानकारियां पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही आपके तमाम सवाल भी पंडित जी लेंगे, उसके जवाब भी देंगे। और शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ।
2: जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
2: दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी है बृहस्पति के विवाह में क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन पहला प्रश्न ये बनता है कि बृहस्पति के विवाह में भूमिका क्या होती है, क्या बृहस्पति भी विवाह में दिक्कत या समस्याएं पंडित जी पैदा करता है, ऐसा है?
2: जी देखिए, आज हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से भी विवाह होने में दिक्कत आती है और विवाह में बाधा पैदा होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति विवाह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बृहस्पति विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं, बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है।
0: चलिए इसी विषय से जुड़े हुए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से हम आगे पूछेंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहली बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
2: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि बृहस्पति की पहली स्थिति वो कौन सी है जो आपके विवाह में बाधा या फिर समस्या पैदा कर सकती है, किस तरह से समझा जाए इसको?
2: देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह में बाधा पैदा करती है और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों, जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें? अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो, विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो, रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांध कर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है।
0: चलिए, और भी बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, महा उपाय के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगली 3 राशियों का हाल उससे पहले आपको बता देते हैं, कर्क, सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
2: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी आप सब दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि आपके पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल जो है वो लिख कर ईमेल के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किसका है पहला सवाल।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिजीत वर्मा जी ने प्रयागराज से हमें लिखा है। 30 अप्रैल 1975 का जन्म है। 3:40 AM अर्ली मॉर्निंग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी जीवन में उन्नति कब तक होगी, मेरी आर्थिक चिंताएं कब तक समाप्त होंगी, और मैं व्यवसाय करता हूं, स्टाफ की तरफ से हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, तो कब तक इसका निवारण हो पाएगा। अभिजीत, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी 1.5 साल तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें और व्यापार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी रखें। आपका जीवन 2028 के अप्रैल तक मुश्किलें दिखा रहा है, इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और जीवन में पूरी तरह से ऊंचाइयों पर अप्रैल 2029 के बाद पहुंच पाएंगे। विदेश से संबंधित अगर कोई काम करें, फॉरेन से संबंधित अगर कोई काम करें, तो उसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए, स्टाफ की समस्याओं को दूर करने के लिए एक पीला पुखराज बनवा करके पहनिए। लगभग 6-8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, बृहस्पति की पहली स्थिति कौन सी है उसके बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी बता दिया। अब बृहस्पति की पंडित जी दूसरी स्थिति कौन सी होती है जो विवाह में दिक्कतें पैदा कर सकती है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए।
0: अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते, उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें, बिल्कुल पवित्रता से साफ सफाई से रहें। दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ, और तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पहली और दूसरी स्थिति के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी, अब बृहस्पति की तीसरी स्थिति वो कौन सी होती है जिसकी वजह से आपके विवाह में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं, बाधा आती है, वो भी पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करें अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति है, विवाह में या वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है या विवाह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर सातवें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए, अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आपके सवालों की तरफ ही बढ़ते हुए अगले दर्शक का भी प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सी समस्या का निवारण पंडित जी करने जा रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न राहुल शॉ ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, 23 जुलाई 1993 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:28 चिंसुरा हुगली पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं कोलकाता में फ्लैट लेना चाहता हूं, कब तक ले पाऊंगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? राहुल आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह, महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है। सबसे पहले बता दूं साल 2027 में प्रॉपर्टी ले पाएंगे और जून 2027 के बाद प्रॉपर्टी ले सकेंगे, फ्लैट ले सकेंगे, ये संभावना बन रही है। जब भी आप फ्लैट लें सिर्फ इतना ध्यान रखें कि फ्लैट का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन का फ्लैट ले सकते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली आपकी पूरी तरह से मांगलिक है, हालांकि मंगल लक्ष्मी योग बना रहा है तो मंगल आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के लिए, जीवन में उन्नति के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और शिव जी की उपासना करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए बृहस्पति से जुड़े हुए तमाम सवाल और जवाब तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। पंडित जी एक और सवाल बताइए, सवाल मेरा ये है कि क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पुरुषों के लिए कम होता है, ऐसा है क्या?
0: जी देखिए, महिलाओं के विवाह होने से लेकर के विवाह चलने तक सारी जिम्मेदारी बृहस्पति की ही होती है और उसमें सारी भूमिका बृहस्पति ही निभाते हैं। उसमें सिर्फ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों के लिए वो भूमिका शुक्र निभाते हैं जो भूमिका महिलाओं के लिए बृहस्पति निभाएंगे। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है तो पुरुष के जीवन पर उसका प्रभाव दूसरी तरह पड़ेगा, और अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है तो सबसे पहले उसके विवाह और वैवाहिक जीवन पर समस्या आएगी और महिला के जीवन पर बृहस्पति के निगेटिव होने का प्रभाव दूसरा पड़ेगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 17 जुलाई को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी आपको बताएंगे कि आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: जन्मदिन 17 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या स्वास्थ्य खराब होने पर पलंग पर लेट कर भी मंत्र जप कर सकते हैं? लेट कर मंत्र जप करना उचित है? देखिए, विशेष स्थितियों में लेट कर भी मंत्र जप किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखिए कि जप करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।
1: अब पंडित जी आपको जानकारी देंगे 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का दान करेंगे। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनको मंगल और बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ये स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं इस शो से जुड़ी हुई। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में आपको ज्ञान देने की। तो पंडित जी ही आपको बताएंगे कि आज का खास उपाय, पंडित जी महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातः काल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आइए बात करेंगे अब महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसका आयोजन आज देश भर में किया गया। उड़ीसा के पुरी में भी बड़ी भव्यता के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में महाप्रभु के भक्त शामिल हुए। रथ यात्रा के दौरान पुरी में जोरदार बारिश देखने को मिली, बावजूद इसके महाप्रभु के भक्तों में जोश और उत्साह की कोई कमी देखने को नहीं मिली।

0: मंजीरो और मंत्रोच्चार से गूंज उठा है पुरी धाम। हर तरफ हो रही है महाप्रभु की जय जयकार। रथ यात्रा के लिए लगी है भक्तों की कतार। आस्था और भक्ति का ये ऐसा अद्भुत मंजर है जिसका साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में महाप्रभु के भक्त आज पुरी पहुंचे हैं। इनमें कोई परिवार संग आया है, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है और कोई सात समंदर पार से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए दौड़ा चला आया है। लगातार भारी बारिश के बीच इन भक्तों का पुरी धाम में पहुंचना महाप्रभु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को बयां कर रहा है।
1: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं, आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहां से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
2: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
1: मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
2: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
3: हम कर्नाटक से आए
1: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
3: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए हैं।
1: कब से आ रहे हैं?
3: हम दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: रथ यात्रा शुरू होने से पहले मंगला आरती हुई, उसके बाद भगवान की स्नान पूजा संपन्न हुई, फिर भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ, इसके बाद गोपाल वल्लभ भोग और सकाल धूप यानी राजभोग के रूप में भगवान को खिचड़ी भोग अर्पित किया गया, और फिर वो विशेष पल आया जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बारी बारी से रथों पर विराजमान कराया गया। हालांकि इस साल बारिश के चलते भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया।
4: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया, और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया, और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
5: भगवान करो।

0: ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଭଗବତୀ
1: तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर रवाना करने से पहले पुरी के महाराज गजपति दिव्य सिंह देव ने बारी बारी से तीनों रथों के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की। इसे छहरा पहरा कहा जाता है, जो इस रथ यात्रा के श्री गणेश होने का प्रतीक है। जैसे ही रथों के पहिए गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़े, पूरा पुरी धाम जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान यात्रा रूट पर खड़े भक्त भगवान की एक झलक पाकर खुशी से निहाल हो उठे। किसी ने हाथ जोड़कर महाप्रभु को प्रणाम किया, किसी ने दोनों हाथ उठाकर महाप्रभु से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा और कोई खुशी में झूमने ही लगा। महाप्रभु के इस महाउत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। इन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
1: धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में उमड़ा है। पुरी साजनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पुरी की तरह देश के दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शहर शहर निकाली गई इन रथ यात्राओं में आम लोग ही नहीं बल्कि बता दें आपको खास लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। अहमदाबाद में जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ किया, वहीं पर कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रथ यात्रा में शामिल हुए।
1: महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर ऐसा भव्य उत्सव आज शहर शहर देखने को मिला। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, हर जगह सजे धजे रथों पर सवार होकर जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले, सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या आराम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की भक्ति में लीन नजर आया। जिसकी एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई, जहां सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए।

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, जो कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा है।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इसी भव्यता के साथ आयोजित होती है, जो 16 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सरसपुर जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। यात्रा के पूरे रूट पर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने भक्ति भाव के साथ महाप्रभु का स्वागत किया।
2: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है, जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं। ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहाँ से सरसपुर तक। वहाँ पे जो है वो भगवान पहुँचते हैं अपने मामा के घर, वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: अहमदाबाद की तरह ही राजकोट शहर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आगे आगे बैंड बाजा और पीछे रथ खींचते भगवान जगन्नाथ के भक्त जैसे जैसे आगे बढ़े, सड़कों पर महाप्रभु के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया।
3: खास करके देखिए, देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े इनाने के 26 किलोमीटर की ये यात्रा अभी निकल चुकी है और जो परंपरागत और विधि विधान मुजब जो यात्राएं निकलती है उसमें से ओडिशा, अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट का समावेश हो रहा है और कई यात्राएं निकल रही है। लेकिन विधि विधान मुजब जो कहा जाए कि 1 महीने का अगाव भगवान की जो तैयारी हो रही है, सभी विधि विधान मुजब सब प्रसंग हो रहे हैं। इसके बाद आज ये अवसर आ गया है आषाढ़ी बीज का कि भगवान खुद अपने यहाँ चलकर लोगों को दर्शन देने के लिए निकले हैं।
4: जय जगन्नाथ। ये यहाँ की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। पहले जो पूरी ओडिशा में निकलती थी वो रथ यात्रा अब राजकोट में भी आ रही है, तो हम लोग सारे बहुत लकी है कि ये जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे थे।
0: रथ यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति का कमोबेश ऐसा ही नजारा कोलकाता में भी देखने को मिला। वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और महाप्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई करने की परंपरा निभाई और रथ को यात्रा के लिए न सिर्फ रवाना किया बल्कि रथ भी खींचा।
5: हमारी हिस्टोरिकल रथ यात्रा है, कलकत्ता रथ यात्रा उत्सव, ये 71 साल हो गया है। बंगाल में जो ही मुख्यमंत्री रहता है वही यहाँ आता है।
0: उधर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में भी रथ यात्रा की रौनक देखते ही बनी। रथ यात्रा के दौरान कोई भक्ति में मग्न होकर झूमता नजर आया, कोई दोनों हाथ उठाकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाता दिखाई दिया और कोई भजनों के जरिए महाप्रभु की महिमा का गुणगान करता नजर आया।
6: ये 47 ईयर्स का इस्कॉन का जगन्नाथ रथ यात्रा है और साउथ इंडिया में फर्स्ट है ये, श्रील प्रभुपाद के तरफ से। तो जगन्नाथ बोले तो जगत की नाथ है, तो जगन्नाथ बोले तो हर इसके लिए क्या बोलते दुनिया के लिए जगन्नाथ है। तो इस्कान के तरफ से बहुत सारे जगन्नाथ रथ यात्रा हैदराबाद में खासियत लेके 80 का ऊपर है इस साल। तो ये बड़ी बड़ी टोटल ट्विन सिटीज और ट्विन स्टेट से देखे तो ये बड़ी रथ यात्रा है इस्कान के तरफ से।
0: शहर शहर निकाली गई भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, समर्पण और मुक्ति का जीवन प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसमें बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में देखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक। शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो गुंडिचा मंदिर की तरफ जा रही है। बारिश के बावजूद इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे पुरी और यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। आज सुबह मंदिर में यात्रा कैसे शुरू हुई और धार्मिक रस्मों को किस प्रकार से निभाया गया, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद और उदयपुर में निकली भव्य रथ यात्राओं की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद और उदयपुर में यात्रा वापस मंदिर में लौट आई है, लेकिन दिन भर यात्रा की कैसी धूम रही ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ से। देखिए, आज सुबह से विधि विधान और धार्मिक रस्मों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर रथ में विराजमान किया गया। हालांकि लगातार बारिश और भारी भीड़ की वजह से यात्रा आगे बढ़ने में विलंब थोड़ा हुआ और उसे रोकना भी पड़ा, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अब रात आ चुकी है लेकिन भक्तों का भीड़ जैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़, भक्तों का ये समंदर आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। अब भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया का रथ यहाँ से निकल चुकी है लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ नंदीघोष रथ यहाँ रुकी हुई है। नंदीघोष रथ हल्का एक ही कदम दो कदम आगे जाके फिर रुक गई है। ऐसा लग रहा है कि भगवान रात तक इन लोगों को इंतजार किए हैं, उन भक्तों को इंतजार किए हैं जो भक्त दूर दूर से आए हैं और दिन भर ये बारिश में भीगे हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं। इतना भीड़ में जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देख के लग रहा है
1: भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनकी इच्छा होता है तभी रथ चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो अब बलदेव जी आगे गए, सुभद्रा महारानी भी गए बीच में, अब जगन्नाथ जी थोड़ा सा खिसके हैं, इनको इच्छा होता आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज यहीं स्टे करेंगे।
2: बहुत खुश हूँ मैं
0: भगवान के पास से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मन की भावनाएं जो है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार भगवान के दर्शन इतने नज़दीक से हुए, मेरे को बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं इनके साथ आया, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कराए।
0: और ये भीड़ और ये खुशी, ये भक्ति से पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का वो झलक देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए लोगों का मन में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है।
3: पुरी में यात्रा अभी जारी है, माना जा रहा है कि कल भगवान का रथ गुंडेचा मंदिर पहुंचेगा। हालांकि जयपुर में यात्रा शाम के बाद वापस मंदिर लौट आई लेकिन इससे पहले यात्रा के दौरान जयपुर की सड़कों पर भव्य दृश्य नजर आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़े। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

जगन्नाथ जय जगन्नाथ, यही जयकारे हैं आज जो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर से, जहाँ गोविंद देव जी मंदिर से भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये रथ यात्रा जयपुर के चार दीवारी में घूमती हुई ब्रजनिधि मंदिर तक पहुंची है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए हैं और उनकी भक्ति देखने को मिली है। सिर्फ एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से भक्ति देखने को मिली है। कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है तो कोई नाचता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस रथ यात्रा में भक्ति के अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जयकारों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 250 साल की परंपरा ये निभाई जा रही है जिसमें भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकल जा रही है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रथ की जगह तीन अलग अलग रथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रथ जो भगवान जगन्नाथ का है उनके साथ ही में दो अलग अलग रथ में उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा भी यहाँ पे विराजित हुई है। हर दर्शनार्थी यहाँ पे समय पे यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुँचे और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। इसीलिए ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए।

तो ना सिर्फ पुरी बल्कि देश के कई शहरों में आज धूमधाम और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। देखिए, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, राजकोट, कोलकाता, धनबाद, पणजी और ऐसे कई इलाकों में रथ के साथ भक्ति का रेला देखने को मिला। पूरे देश में जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा देश आज गुंजायमान हुआ। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जबरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली आज। लेकिन पूरे दिन नजर टिकी रही पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर, जहां पर बारिश की बूंदों के बीच भी आस्था का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। पुरी की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास बहुत मजबूत है। आज सुबह से वैदिक परंपराओं, छेरा पहरा की अनूठी रस्म और लाखों भक्तों की सहभागिता ने रथ यात्रा को दिव्यता से पूरी तरीके से भर दिया। ये केवल भगवान की यात्रा नहीं है बल्कि सेवा, समानता, समर्पण और अटूट श्रद्धा का महापर्व है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। देखिए पुरी से हमारी खास रिपोर्ट।

0: हे जगन्नाथ चकानैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पुरी में आज कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है। आसमान से बरसते बादल और धरती पर श्रद्धा का सैलाब, रथ पर महाप्रभु विराजमान, रथ के साथ हजारों भक्त, सभी की बस एक ही चाह, बस एक बार रथ को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। भक्ति भावना, श्रद्धा, समर्पण क्या नहीं है इस यात्रा में, जिसकी शुरुआत पूरे वैदिक विधि विधान के साथ हुई। सुबह मंगला आरती हुई, स्नान पूजा संपन्न हुई, विशेष श्रृंगार हुआ, फिर गोपाल वल्लभ भोग और राजभोग अर्पित किया गया। इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार था। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहंडी परंपरा के अनुसार मंदिर से बाहर लाकर रथों पर विराजमान हुए। तेज बारिश की वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और उन्हें झुलाते हुए भी लाया नहीं गया, बल्कि पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे रथ तक पहुंचाया गया।
1: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया, और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया, और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
0: इस महापर्व का सबसे भावुक नजारा तब दिखाई दिया जब पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की परंपरा निभाई। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों और यात्रा मार्ग की सफाई की, फिर चंदन मिला पवित्र जल छिड़का। ये परंपरा बताती है कि प्रभु के दरबार में किसी पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और हर व्यक्ति केवल भगवान का भक्त होता है। महाप्रभु के इस महा उत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज अजमेर किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश लगातार होती रही, लेकिन किसी ने कदम पीछे नहीं खींचे। कहा जाता है कि महाप्रभु जब तक अपने भक्तों को भरपूर दर्शन नहीं दे देते, तब तक उनका रथ भी आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करता। धार्मिक मान्यता भी कहती है कि रथ की रस्सी खींचना केवल सेवा नहीं, बल्कि पुण्य का अवसर माना गया है। विश्वास है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता है। इसी आस्था के कारण देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। कोई परिवार के साथ आया, कोई दोस्तों संग, तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर केवल एक झलक पाने की चाह लेकर यहां पहुंचा है।
3: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं। आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहाँ से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या पूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
4: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
3: क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
4: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
5: हम कर्नाटक से आए
3: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
5: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
3: कब से आ रहे हैं?
5: हम आए, दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को समानता, सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। यहाँ ना जाति का भेद दिखाई देता है, ना ऊंच नीच का, ना अमीरी गरीबी की दीवार, हर तरफ केवल भक्ति का रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में हर साल उमड़ता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: पुरी ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता पूरे देश में नजर आई। अहमदाबाद में करीब 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गाजे बाजे, हाथी घोड़ों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह उदयपुर में रजत रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहमदाबाद हो, उदयपुर, दोनों जगहों पर यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट।

0: आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीर पुरी के अलावा देश में कहीं और नहीं। दूर जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धा नजर आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े और झांकियों के साथ जब भगवान जगन्नाथ चले तब यात्रा मार्ग पर जैसे पूरा अहमदाबाद चला। मन मोहने वाली झांकियां, दिल जीतने वाले करतब, और ताकत दिखाते अखाड़े के पहलवान। रथ यात्रा के साथ गुजरात की ये संस्कृति अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहां मंदिर है भगवान का, वहां से सरसपुर तक वहां पे जो है वो भगवान पहुंचते हैं अपने मामा के घर, वहां पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहां से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: तुलना करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा ज्यादा लंबी होती है। करीब 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। पुरी में जहां राजा छेरा पहरा की रसम राजा निभाते हैं, वहीं अहमदाबाद में पहिन विधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री झाड़ू से रथ बुहाने की परंपरा निभाते हैं। इस साल भी सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर तक जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। इस साल भी अहमदाबाद रथ यात्रा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस के अनगिनत आला अधिकारी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, पूरी यात्रा पर 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर में भी यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। भव्यता के मामले में पुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर का नंबर आता है। राजभोग आरती के बाद पहले जगदीश मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रथ में रथ यात्रा निकाली गई। शाम में 4 बजे भगवान के विग्रह को रजत रथ में सवार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक धारण करवाई गई। राज परिवार के सदस्य और विधायक विश्वराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know, and new favorites waiting to be discovered. Just search music, or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाएं, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है। सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए हैं।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हाँ दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चल के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चलकर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चल के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान आपके चेहरे पर नजर आ रही है, कल रात से ही शायद आप लाइन में लगे हैं।
5: लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में देखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक। शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जाते समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की कसौटी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर जो है उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर उसी दौरान की है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: २०२७ में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। इसका कारण जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा है। इसलिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और ये तस्वीर उसी दौरान की है। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव जी ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा बोलो बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर जो है उसी दौरान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल तस्वीर की जांच में तमाम कोशिशें की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि देखिए अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई खबर जरूर होती और देखिए ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जमकर खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर भी बांके बिहारी के दर्शन संबंधित कोई पोस्ट या तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि ये अगर हाल फिलहाल की वायरल तस्वीर है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर तस्वीर के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल तस्वीर की पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर 2022 में प्रकाशित एक खबर में मिली। इस खबर में बताया गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले यहां द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण से मुलाकात की। इसके बाद वो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद देर शाम लखनऊ लौट गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक और खबर मिली। 28 अगस्त 2022 की इस खबर में बताया गया कि दिल्ली से सैफई जाते हुए अखिलेश यादव वृंदावन में करीब 3 घंटे रुके थे। वहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अखिलेश यादव की 2022 की तस्वीर को हालिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा नहीं गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं तो कुछ दिल छू लेते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो है इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे इंसानियत और मदद की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी को बाढ़ में बह रहे बाघ को बचाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिली है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब भारत में आदमी जो खुद को सभ्य मानता है जाति और धार्मिक नफरत की वजह से दूसरे इंसानों की जान ले रहा है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा सामने आया है जो दिखाता है कि इंसानों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा हमदर्दी होती है, उनके भीतर एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखिए। अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के तेज बहाव में एक बाघ फंस गया, तभी सुमात्रा का एक हाथी उसे बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहां के इंसान भी इंसानियत का यूं ही परिचय देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाघ बाढ़ के तेज पानी में फंसा हुआ है, जबकि एक हाथी उसकी मदद करने के लिए पानी के बीच मजबूती से खड़ा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ हाथी की सूंड का सहारा लेते हुए छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक

0: वीडियो के हर की फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें जो है वीडियो की असलियत पर थोड़ा शक हुआ। मसलन वीडियो में हाथी और टाइगर की मूवमेंट असामान्य सी नजर आती है, वहीं पर पानी और जानवरों को जो उनकी बनावट है वो प्राकृतिक नजर नहीं आती। इसके अलावा देखिए, बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वो इस तरह से पानी में फंसे नहीं रह सकते। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। यदि सुमात्रा में बाढ़ के दौरान हाथी के बाघ को बचाने जैसी असाधारण घटना हुई होती तो एक बड़ी खबर बनती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें देखने को क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉर्फ्ड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में बाघ और हाथी के मोमेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये वीडियो असली नहीं हो सकता। पानी के बहाव और लहरों में भी एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने AI डिटेक्शन टूल की मदद ली। सबसे पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। यहाँ 99.9% संभावना जताई गई कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को दूसरे AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट वीडियो AI से चेक किया गया। वीडियो को यहां अपलोड करके एनालिस करने पर इसके AI से होने की संभावना 68% आई। जांच के दौरान वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले गए, फिर इन्हें AI इमेज डिटेक्शन टूल वॉजिट AI की मदद से चेक किया गया। इसके नतीजे से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से तैयार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कई लोग आज भी अपने पुराने क्लासरूम, स्कूल की बेंच, ब्लैक बोर्ड और दोस्तों को याद करके भावुक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब कभी पुरानी दोस्तों के साथ स्कूल लौटने का मौका मिलता है तो हर कोई फिर से बचपन जी लेना चाहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुराने छात्र कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में कदम रखते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग अपने पुराने क्लासरूम में जाते हैं और उसी तरह अपनी पुरानी सीटों पर बैठ जाते हैं जैसे कभी स्कूल के दिनों में बैठा करते थे। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से हंसी

0: मजाक करते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ाई का माहौल दोबारा बनाते हैं और बचपन के उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी क्लास में उनके पुराने मास्टर जी आते हैं। उन्हें देखते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कई लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत और भक्ति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी छोटी सी दुनिया में भगवान के लिए प्यार और आस्था किसी भी चीज से बढ़कर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से कोने में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। बच्चों ने मिट्टी से बनी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं को बड़े प्यार से एक जगह पर स्थापित किया है। आसपास कोई खास सजावट नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा किसी बड़े आयोजन से कम नहीं लगती। बच्चे हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आते हैं, जिसमें धूप और अगरबत्ती जल रही होती है। वे पूरे मन से पूजा अर्चना में लगे हुए दिखाई देते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने अनोखे अंदाज में योगा करती नजर आ रही है और उनकी बेटी का रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: योगा करते
0: है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है, बेटी भी आराम कर रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह योगा के दौरान गहरी सांस लेती है, हाथों की एक्सरसाइज करती है और ताली बजाती हुई नजर आती है। उनके पास मौजूद लड़की ध्यान से उन्हें देख रही होती है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह कुछ ही देर बाद अचानक महिला योगा करते करते कुत्तों की तरह भौं भौं की आवाजें निकालने लगती है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। ये देखकर उनकी बेटी एकदम हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बेटी मजाकिया अंदाज में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी ये क्या कर रही हो?
1: योगा करते
0: है। इस पर महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, योगा कर रही हूँ। महिला का यह अनोखा अंदाज और माँ बेटी की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है।
2: अब आसमान की ऊंचाई की तो कोई सीमा होती नहीं, तो एक नीली वर्दी छोड़ अपना एक दूसरी नीली वर्दी। इंडिगो में कईयों के रहनुमा कईयों के गुरु बने, ऐसे ही तो उनको सिक्सी एम्बेसडर नहीं कहते। आज दिल्ली से देवगढ़ का सफर होगा यादगार, क्योंकि आज ही इनका आखिरी दिन यहाँ।
0: इंडियन फोर्स और फिर इंडिगो के लिए बतौर पायलट काम करने वाले संदीप पुरी की आखिरी फ्लाइट के वीडियो ने इंटरनेट को भावुक कर दिया है। वो पायलट के रूप में पुरी की बेटी उनके लिए एक यादगार स्पीच देती है, जिसके बाद फ्लाइट में बैठा हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है। इस पल को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि ये सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत का ट्रांसफर था। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
3: And especially all my loved ones, जितने मेरे फैमिली के लोग हैं, my wife is sitting here, मेरा बेटा भी वैसा फ्लाई कर रहा है सौरभ पुरी, and also please my daughter, she is
0: 5.5 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में समा सकती है। सुनकर आपको भी इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। इन दिनों तेलंगाना के कलाकार की अनोखी कला चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्होंने 5.5 मीटर लंबी सिल्क साड़ी को मात्र एक माचिस की डिब्बी में समेट कर सबको हैरान कर दिया। इस कलाकार का नाम है नल्ला विजय कुमार, जो सिरसिल्ला के एक ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस कमाल कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इस दुर्लभ रेशमी साड़ी को नल्ला विजय कुमार ने श्री भ्राम रामबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष पोथु गुंटा रमेश नायडू और न्यासी बोर्ड की सदस्य कोडे कंथी वर्धनी की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में देवी ब्रह्मरंभा को भेंट किया है, जो अब श्री शैलम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये अनोखी घटना तब सामने आई जब एक महिला ने जोमैटो से कुछ रोटियां ऑर्डर की। जब डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा, तो महिला ने फोन पर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत गुजारिश की। महिला ने डिलीवरी बॉय से कहा कि वह मंदिर के पास बैठी 3 आवारा गायों को ये रोटियां खिला दे। महिला ने बताया कि वह हर दिन उन गायों के लिए 3 रोटियां अलग से बनाती है, लेकिन उस दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर थी। उसे चिंता थी कि उसकी वजह से जानवर भूखे ना रह जाए, इसलिए उसने जोमैटो से रोटियां ऑर्डर कर दी। महिला की ये बेजुबान जानवरों के प्रति ममता देखकर डिलीवरी बॉय दंग रह गया। उसका दिल इस कदर पिघला कि उसने महिला से ऑर्डर के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पोल डांस सीखने के चक्कर में एक अमेरिकी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका पूरा लिविंग रूम वाटर पार्क बन गया। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ह्यूस्टन की रहने वाली आशा गिलबर्ट अपने फ्लैट में टीवी पर एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर पोल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरे जोश में अपने स्टेप्स कर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। डांस करते करते पोल सीधे छत से उखड़ गया। खराब किस्मत तो देखिए, उखड़ने के बाद पोल सीधे छत पर लगे आग बुझाने वाली पानी के सिस्टम फायर स्प्रिंकलर से जा टकराया। फिर क्या था, पूरे लिविंग रूम में मानो बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और चारों तरफ पानी की बौछारें शुरू हो गई। स्प्रिंकलर टूटने से कुछ ही मिनटों में पूरा लिविंग रूम पानी से लबालब भर गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाएं, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए हैं।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हाँ दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चढ़कर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान आपके चेहरे पर नजर आ रही है, कल रात से ही शायद आप लाइन में लगे हैं।
5: लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा, यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
8: जाती। The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
9: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना, आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ, यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु, जयपुर में देखे आस्था श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र, रांची गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो गुंडिचा मंदिर की तरफ जा रही है। बारिश के बावजूद इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे पुरी और यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। आज सुबह मंदिर में यात्रा कैसे शुरू हुई और धार्मिक रस्मों को किस प्रकार से निभाया गया, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद और उदयपुर में निकली भव्य रथ यात्राओं की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद और उदयपुर में यात्रा वापस मंदिर में लौट आई है, लेकिन दिन भर यात्रा की कैसी धूम रही ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ से। देखिए, आज सुबह से विधि विधान और धार्मिक रस्मों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर रथ में विराजमान किया गया। हालांकि लगातार बारिश और भारी भीड़ की वजह से यात्रा आगे बढ़ने में विलंब थोड़ा हुआ और उसे रोकना भी पड़ा, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब रात आ चुकी है लेकिन भक्तों का भीड़ जैसी की वैसी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़, भक्तों का ये समंदर आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। अब भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया का रथ यहाँ से निकल चुकी है लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ नंदीघोष रथ यहाँ रुकी हुई है। नंदीघोष रथ हल्का एक ही कदम दो कदम आगे जाके फिर रुक गई है। ऐसे लग रहा है कि भगवान रात तक इन लोगों को इंतजार किए हैं, उन भक्तों को इंतजार किए हैं जो भक्त दूर दूर से आए हैं और दिन भर ये बारिश में भीगे हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं, इतना भीड़ में जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देख के लग रहा है
1: भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनकी इच्छा होता है तभी रथ चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो अब बलदेव जी आगे गए, सुभद्रा महारानी भी गए बीच में, अब जगन्नाथ जी थोड़ा सा खिसके हैं, इनको इच्छा होता आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज यहीं स्टे करेंगे।
2: बहुत खुश हूँ मैं पास से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मन की भावनाएं जो है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार भगवान के दर्शन इतने नज़दीक से हुए, मेरे को बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं इनके साथ आया, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कराए।
0: और ये भीड़ और ये खुशी, ये भक्ति से पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का वो झलक देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए लोगों का मन में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है।
3: पुरी में यात्रा अभी जारी है, माना जा रहा है कि कल भगवान का रथ गुंडेचा मंदिर पहुंचेगा। हालांकि जयपुर में यात्रा शाम के बाद वापस मंदिर लौट आई लेकिन इससे पहले यात्रा के दौरान जयपुर की सड़कों पर भव्य दृश्य नजर आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़े। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

जगन्नाथ जय जगन्नाथ, यही जयकारे हैं आज जो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर से, जहाँ गोविंद देव जी मंदिर से भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये रथ यात्रा जयपुर के चार दीवारी में घूमती हुई ब्रजनिधि मंदिर तक पहुंची है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए हैं और उनकी भक्ति देखने को मिली है। सिर्फ एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से भक्ति देखने को मिली है। कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है तो कोई नाचता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस रथ यात्रा में भक्ति के अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जयकारों की जो आवाज वो सुनाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 250 साल की परंपरा ये निभाई जा रही है जिसमें भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकल जा रही है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रथ की जगह तीन अलग अलग रथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रथ जो भगवान जगन्नाथ का है उनके साथ ही में दो अलग अलग रथ में उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा भी यहाँ पे विराजित हुई है। हर दर्शनार्थी यहाँ पे समय पे यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुँचे और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। इसीलिए ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए।

तो ना सिर्फ पुरी बल्कि देश के कई शहरों में आज धूमधाम और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। देखिए, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, राजकोट, कोलकाता, धनबाद, पणजी और ऐसे कई इलाकों में रथ के साथ भक्ति का रेला देखने को मिला। पूरे देश में जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा देश आज गुंजायमान हुआ। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जबरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली आज। लेकिन पूरे दिन नजर टिकी रही पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर, जहां पर बारिश की बूंदों के बीच भी आस्था का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। पुरी की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास बहुत मजबूत है। आज सुबह से वैदिक परंपराओं, छेरा पहरा की अनूठी रस्म और लाखों भक्तों की सहभागिता ने रथ यात्रा को दिव्यता से पूरी तरीके से भर दिया। ये केवल भगवान की यात्रा नहीं है बल्कि सेवा, समानता, समर्पण और अटूट श्रद्धा का महापर्व है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। देखिए पुरी से हमारी खास रिपोर्ट।

0: हे जगन्नाथ चकानैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पुरी में आज कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है। आसमान से बरसते बादल और धरती पर श्रद्धा का सैलाब, रथ पर महाप्रभु विराजमान, रथ के साथ हजारों भक्त, सभी की बस एक ही चाह, बस एक बार रथ को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। भक्ति भावना, श्रद्धा, समर्पण, क्या नहीं है इस यात्रा में, जिसकी शुरुआत पूरे वैदिक विधि विधान के साथ हुई। सुबह मंगला आरती हुई, स्नान पूजा संपन्न हुई, विशेष श्रृंगार हुआ, फिर गोपाल वल्लभ भोग और राजभोग अर्पित किया गया। इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार था। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहंडी परंपरा के अनुसार मंदिर से बाहर लाकर रथों पर विराजमान हुए। तेज बारिश की वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और उन्हें झुलाते हुए भी लाया नहीं गया, बल्कि पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे रथ तक पहुँचाया गया।
1: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया। और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया। और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
0: इस महापर्व का सबसे भावुक नजारा तब दिखाई दिया जब पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की परंपरा निभाई। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों और यात्रा मार्ग की सफाई की, फिर चंदन मिला पवित्र जल छिड़का। ये परंपरा बताती है कि प्रभु के दरबार में किसी पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और हर व्यक्ति केवल भगवान का भक्त होता है। महाप्रभु के इस महा उत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज अजमेर किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश लगातार होती रही, लेकिन किसी ने कदम पीछे नहीं खींचे। कहा जाता है कि महाप्रभु जब तक अपने भक्तों को भरपूर दर्शन नहीं दे देते, तब तक उनका रथ भी आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करता। धार्मिक मान्यता भी कहती है कि रथ की रस्सी खींचना केवल सेवा नहीं, बल्कि पुण्य का अवसर माना गया है। विश्वास है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता है। इसी आस्था के कारण देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। कोई परिवार के साथ आया, कोई दोस्तों संग, तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर केवल एक झलक पाने की चाह लेकर यहां पहुंचा है।
3: जो कोई ओडिशा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं। आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहाँ से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के ओर खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
4: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
3: क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
4: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
5: हम कर्नाटक से आए
3: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
5: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
3: कब से आ रहे हैं?
5: हम आए, दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को समानता, सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। यहाँ ना जाति का भेद दिखाई देता है, ना ऊंच नीच का, ना अमीरी गरीबी की दीवार, हर तरफ केवल भक्ति का रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में हर साल उमड़ता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: पुरी ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता पूरे देश में नजर आई। अहमदाबाद में करीब 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गाजे बाजे, हाथी घोड़ों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह उदयपुर में रजत रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहमदाबाद हो, उदयपुर, दोनों जगहों पर यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट।

0: आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीर पुरी के अलावा देश में कहीं और नहीं। दूर जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धा नजर आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े और झांकियों के साथ जब भगवान जगन्नाथ चले तब यात्रा मार्ग पर जैसे पूरा अहमदाबाद चला। मनमोहने वाली झांकियां, दिल जीतने वाले करतब, और ताकत दिखाते अखाड़े के पहलवान। रथ यात्रा के साथ गुजरात की ये संस्कृति अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहाँ से सरसपुर तक वहाँ पे जो है वो भगवान पहुँचते हैं अपने मामा के घर, वहाँ पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहाँ से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: तुलना करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा ज्यादा लंबी होती है। करीब 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। पुरी में जहां राजा छेरा पहरा की रसम राजा निभाते हैं, वहीं अहमदाबाद में पहिंद विधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री झाड़ू से रथ बुहाने की परंपरा निभाते हैं। इस साल भी सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर तक जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। इस साल भी अहमदाबाद रथ यात्रा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस के अनगिनत आला अधिकारी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, पूरी यात्रा पर 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर में भी यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। भव्यता के मामले में पुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर का नंबर आता है। राजभोग आरती के बाद पहले जगदीश मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रथ में रथ यात्रा निकाली गई। शाम में 4 बजे भगवान के विग्रह को रजत रथ में सवार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक धारण करवाई गई। राज परिवार के सदस्य और विधायक विश्वराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाएं, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखे है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए हैं।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हाँ दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चल के जाना चाहते हैं, हाँ। तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चल कर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चल के जाए, हाँ। सब चीज का मजा ले,
2: काफी थकान कुदरत का चेहरे पर नजर आ रहा है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे हैं।
5: लाइन में लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ, यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में देखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जाते समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की कसौटी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर जो है उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
9: 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है, और इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर उसी दौरान की है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: ..2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। इसका कारण जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा है। इसलिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और ये तस्वीर उसी दौरान की है। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव जी ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा बोलो बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर जो है उसी दौरान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल तस्वीर की जांच में तमाम कोशिशें की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि देखिए अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई खबर जरूर होती और देखिए ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जमकर खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर भी बांके बिहारी के दर्शन संबंधित कोई पोस्ट या तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि ये अगर हाल फिलहाल की वायरल तस्वीर है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर तस्वीर के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
10: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल तस्वीर की पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर 2022 में प्रकाशित एक खबर में मिली। इस खबर में बताया गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले यहां द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण से मुलाकात की। इसके बाद वो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद देर शाम लखनऊ लौट गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक और खबर मिली। 28 अगस्त 2022 की इस खबर में बताया गया कि दिल्ली से सैफई जाते हुए अखिलेश यादव वृंदावन में करीब 3 घंटे रुके थे। वहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अखिलेश यादव की 2022 की तस्वीर को हालिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा नहीं गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं तो कुछ दिल छू लेते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो है इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे इंसानियत और मदद की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी को बाढ़ में बह रहे बाघ को बचाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिली है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब भारत में आदमी जो खुद को सभ्य मानता है, जाति और धार्मिक नफरत की वजह से दूसरे इंसानों की जान ले रहा है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा सामने आया है जो दिखाता है कि इंसानों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा हमदर्दी होती है, उनके भीतर एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखिए। अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के तेज बहाव में एक बाघ फंस गया, तभी सुमात्रा का एक हाथी उसे बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ के इंसान भी इंसानियत का यूं ही परिचय देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाघ बाढ़ के तेज पानी में फंसा हुआ है, जबकि एक हाथी उसकी मदद करने के लिए पानी के बीच मजबूती से खड़ा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ हाथी की सूंड का सहारा लेते हुए छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें जो है वीडियो की असलियत पर थोड़ा शक हुआ। मसलन वीडियो में हाथी और टाइगर की मूवमेंट असामान्य सी नजर आती है, वहीं पर पानी और जानवरों को जो उनकी बनावट है वो प्राकृतिक नजर नहीं आती। इसके अलावा देखिए, बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वो इस तरह से पानी में फंसे नहीं रह सकते। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। यदि सुमात्रा में बाढ़ के दौरान हाथी के बाघ को बचाने जैसी असाधारण घटना हुई होती तो ये एक बड़ी खबर बनती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें देखने को क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉर्फ्ड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही।

0: रहे वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में बाघ और हाथी के मोमेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये वीडियो असली नहीं हो सकता। पानी के बहाव और लहरों में भी एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने AI डिटेक्शन टूल की मदद ली। सबसे पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। यहाँ 99.9% संभावना जताई गई कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को दूसरे AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट वीडियो AI से चेक किया गया। वीडियो को यहां अपलोड करके एनालिस करने पर इसके AI से होने की संभावना 68% आई। जांच के दौरान वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले गए, फिर इन्हें AI इमेज डिटेक्शन टूल वॉजिट AI की मदद से चेक किया गया। इसके नतीजे से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से तैयार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or... You know, the big three of them.
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
2: Good news today is really good. It's in this case, the news is very hard. And it's
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कई लोग आज भी अपने पुराने क्लासरूम, स्कूल की बेंच, ब्लैक बोर्ड और दोस्तों को याद करके भावुक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब कभी पुरानी दोस्तों के साथ स्कूल लौटने का मौका मिलता है तो हर कोई फिर से बचपन जी लेना चाहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुराने छात्र कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में कदम रखते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग अपने पुराने क्लासरूम में जाते हैं और उसी तरह अपनी पुरानी सीटों पर बैठ जाते हैं जैसे कभी स्कूल के दिनों में बैठा करते थे। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ाई का माहौल दोबारा बनाते हैं और बचपन के उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी क्लास में उनके पुराने मास्टर जी आते हैं। उन्हें देखते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कई लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत और भक्ति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी छोटी सी दुनिया में भगवान के लिए प्यार और आस्था किसी भी चीज से बढ़कर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से कोने में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। बच्चों ने मिट्टी से बनी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं को बड़े प्यार से एक जगह पर स्थापित किया है। आसपास कोई खास सजावट नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा किसी बड़े आयोजन से कम नहीं लगती। बच्चे हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आते हैं जिसमें धूप और अगरबत्ती जल रही होती है। वे पूरे मन से पूजा अर्चना में लगे हुए दिखाई देते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल

0: रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने अनोखे अंदाज में योगा करती नजर आ रही है और उनकी बेटी का रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: योगा करते
0: हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है, बेटी भी आराम कर रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वे योगा के दौरान गहरी सांस लेती है, हाथों की एक्सरसाइज करती है और ताली बजाती हुई नजर आती है। उनके पास मौजूद लड़की ध्यान से उन्हें देख रही होती है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वे कुछ ही देर बाद अचानक महिला योगा करते करते कुत्तों की तरह भौं भौं की आवाजें निकालने लगती है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। ये देखकर उनकी बेटी एकदम हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बेटी मजाकिया अंदाज में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी ये क्या कर रही हो?
1: मम्मी,
2: हेलो,
1: आज क्या करते हैं?
2: योगा करते हैं।
0: इस पर महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, योगा कर रही हूँ। महिला का यह अनोखा अंदाज और माँ बेटी की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है।
3: अब आसमान की ऊंचाई की तो कोई सीमा होती नहीं, तो एक नीली वर्दी छोड़ अपना दूसरी नीली वर्दी। इंडिगो में कईयों के रहनुमा कईयों के गुरु बने, ऐसे ही तो उनको 60 एम्बेसडर नहीं कहते। आज दिल्ली से देवगढ़ का सफर होगा यादगार, क्योंकि आज ही इनका आखिरी दिन यहाँ।
0: इंडियन फोर्स और फिर इंडिगो के लिए बतौर पायलट काम करने वाले संदीप पुरी की आखिरी फ्लाइट के वीडियो ने इंटरनेट को भावुक कर दिया है। वो पायलट के रूप में पुरी की बेटी उनके लिए एक यादगार स्पीच देती है, जिसके बाद फ्लाइट में बैठा हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है। इस पल को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत का ट्रांसफर था। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
4: Especially all my loved ones, जितने मेरे फैमिली के लोग हैं, my wife is sitting here, मेरा बेटा भी मेरे साथ फ्लाई कर रहा है सौरभ पुरी, and also please my daughter, she is on the flight.
0: 5.5 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में समा सकती है। सुनकर आपको भी इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। इन दिनों तेलंगाना के कलाकार की अनोखी कला चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्होंने 5.5 मीटर लंबी सिल्क साड़ी को मात्र एक माचिस की डिब्बी में समेट कर सबको हैरान कर दिया। इस कलाकार का नाम है नल्ला विजय कुमार, जो सिरसिल्ला के एक ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस कमाल कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इस दुर्लभ रेशमी साड़ी को नल्ला विजय कुमार ने श्री भ्राम रामबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष पोथु गुंटा रमेश नायडू और न्यासी बोर्ड की सदस्य कोडे कंथी वर्धनी की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में देवी भ्राम रामबा को भेंट किया है, जो अब श्री शैलम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये अनोखी घटना तब सामने आई जब एक महिला ने जोमैटो से कुछ रोटियां ऑर्डर की। जब डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा, तो महिला ने फोन पर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत गुजारिश की। महिला ने डिलीवरी बॉय से कहा कि वह मंदिर के पास बैठी 3 आवारा गायों को ये रोटियां खिला दे। महिला ने बताया कि वह हर दिन उन गायों के लिए 3 रोटियां अलग से बनाती है, लेकिन उस दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर थी। उसे चिंता थी कि उसकी वजह से जानवर भूखे ना रह जाए, इसलिए उसने जोमैटो से रोटियां ऑर्डर कर दी। महिला की ये बेजुबान जानवरों के प्रति ममता देखकर डिलीवरी बॉय दंग रह गया। उसका दिल इस कदर पिघला कि उसने महिला से ऑर्डर के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पोल डांस सीखने के चक्कर में एक अमेरिकी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका पूरा लिविंग रूम वाटर पार्क बन गया। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ह्यूस्टन की रहने वाली आशा गिलबर्ट अपने फ्लैट में टीवी पर एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर पोल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरे जोश में अपने स्टेप्स कर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। डांस करते करते पोल सीधे छत से उखड़ गया। खराब किस्मत तो देखिए, उखड़ने के बाद पोल सीधे छत पर लगे आग बुझाने वाली पानी के सिस्टम फायर स्प्रिंकलर से जा टकराया। फिर क्या था, पूरे लिविंग रूम में मानो बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और चारों तरफ पानी की बौछारें शुरू हो गई। स्प्रिंकलर टूटने से कुछ ही मिनटों में पूरा लिविंग रूम पानी से लबालब भर गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाए, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हमें दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चलकर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान कुदरत का चेहरे पर नजर आ रहा है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे
5: हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं मंदिर की ओर हुए रवाना आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र, रांची गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो गुंडिचा मंदिर की तरफ जा रही है। बारिश के बावजूद इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे पुरी और यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। आज सुबह मंदिर में यात्रा कैसे शुरू हुई और धार्मिक रस्मों को किस प्रकार से निभाया गया, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद और उदयपुर में निकली भव्य रथ यात्राओं की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद और उदयपुर में यात्रा वापस मंदिर में लौट आई है, लेकिन दिन भर यात्रा की कैसी धूम रही ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ से। देखिए, आज सुबह से विधि विधान और धार्मिक रस्मों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर रथ में विराजमान किया गया। हालांकि लगातार बारिश और भारी भीड़ की वजह से यात्रा आगे बढ़ने में विलंब थोड़ा हुआ और उसे रोकना भी पड़ा, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब रात आ चुकी है लेकिन भक्तों का भीड़ जैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़, भक्तों का ये समंदर आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। अब भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया का रथ यहाँ से निकल चुकी है लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ नंदीघोष रथ यहाँ रुकी हुई है। नंदीघोष रथ हल्का एक ही कदम दो कदम आगे जाके फिर रुक गई है। ऐसा लग रहा है कि भगवान रात तक इन लोगों को इंतजार किए हैं, उन भक्तों को इंतजार किए हैं जो भक्त दूर दूर से आए हैं और दिन भर ये बारिश में भीगे हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं, इतना भीड़ में जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देख के लग रहा है
1: भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनकी इच्छा होता है तभी रथ चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो अब बलदेव जी आगे गए, सुभद्रा महारानी भी गए बीच में, अब जगन्नाथ जी थोड़ा सा खिसके हैं, इनको इच्छा होता आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज यहीं स्टे करेंगे।
2: बहुत खुश हूँ मैं पास से बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मन की भावनाएं जो है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार भगवान के दर्शन इतने नज़दीक से हुए, मेरे को बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं इनके साथ आया, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कराए।
0: और ये भीड़ और ये खुशी, ये भक्ति से पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का वो झलक देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए लोगों का मन में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है।
3: पुरी में यात्रा अभी जारी है, माना जा रहा है कि कल भगवान का रथ गुंडेचा मंदिर पहुंचेगा। हालांकि जयपुर में यात्रा शाम के बाद वापस मंदिर लौट आई लेकिन इससे पहले यात्रा के दौरान जयपुर की सड़कों पर भव्य दृश्य नजर आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़े। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, यही जयकारे हैं आज सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर से, जहाँ गोविंद देव जी मंदिर से भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये रथ यात्रा जयपुर के चार दीवारी में घूमती हुई ब्रजनिधि मंदिर तक पहुंची है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए हैं और उनकी भक्ति देखने को मिली है। सिर्फ एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से भक्ति देखने को मिली है। कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है तो कोई नाचता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस रथ यात्रा में भक्ति के अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जयकारों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 250 साल की परंपरा ये निभाई जा रही है जिसमें भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकल जा रही है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रथ की जगह तीन अलग अलग रथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रथ जो भगवान जगन्नाथ का है उनके साथ ही में दो अलग अलग रथ में उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा भी यहाँ पे विराजित हुई है। हर दर्शनार्थी यहाँ पे समय पे यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुँचे और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। इसीलिए ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए।

तो ना सिर्फ पुरी बल्कि देश के कई शहरों में आज धूमधाम और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। देखिए, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, राजकोट, कोलकाता, धनबाद, पणजी और ऐसे कई इलाकों में रथ के साथ भक्ति का रेला देखने को मिला। पूरे देश में जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा देश आज गुंजायमान हुआ। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जबरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली आज। लेकिन पूरे दिन नजर टिकी रही पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर, जहां पर बारिश की बूंदों के बीच भी आस्था का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। पुरी की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास बहुत मजबूत है। आज सुबह से वैदिक परंपराओं, छेरा पहरा की अनूठी रस्म और लाखों भक्तों की सहभागिता ने रथ यात्रा को दिव्यता से पूरी तरीके से भर दिया। ये केवल भगवान की यात्रा नहीं है बल्कि सेवा, समानता, समर्पण और अटूट श्रद्धा का महापर्व है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। देखिए पुरी से हमारी खास रिपोर्ट।

0: हे जगन्नाथ चका नैन लीला चल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पुरी में आज कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है। आसमान से बरसते बादल और धरती पर श्रद्धा का सैलाब, रथ पर महाप्रभु विराजमान, रथ के साथ हजारों भक्त, सभी की बस एक ही चाह, बस एक बार रथ को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। भक्ति भावना, श्रद्धा, समर्पण, क्या नहीं है इस यात्रा में, जिसकी शुरुआत पूरे वैदिक विधि विधान के साथ हुई। सुबह मंगला आरती हुई, स्नान पूजा संपन्न हुई, विशेष श्रृंगार हुआ, फिर गोपाल वल्लभ भोग और राजभोग अर्पित किया गया। इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार था। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहंडी परंपरा के अनुसार मंदिर से बाहर लाकर रथों पर विराजमान हुए। तेज बारिश की वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और उन्हें झुलाते हुए भी लाया नहीं गया, बल्कि पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे रथ तक पहुँचाया गया।
1: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया। और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया। और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
0: इस महापर्व का सबसे भावुक नजारा तब दिखाई दिया जब पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की परंपरा निभाई। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों और यात्रा मार्ग की सफाई की, फिर चंदन मिला पवित्र जल छिड़का। ये परंपरा बताती है कि प्रभु के दरबार में किसी पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और हर व्यक्ति केवल भगवान का भक्त होता है। महाप्रभु के इस महा उत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज अजमेर किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश लगातार होती रही लेकिन किसी ने कदम पीछे नहीं खींचे। कहा जाता है कि महाप्रभु जब तक अपने भक्तों को भरपूर दर्शन नहीं दे देते, तब तक उनका रथ भी आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करता। धार्मिक मान्यता भी कहती है कि रथ की रस्सी खींचना केवल सेवा नहीं बल्कि पुण्य का अवसर माना गया है। विश्वास है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता है। इसी आस्था के कारण देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु पुरी पहुँचे। कोई परिवार के साथ आया, कोई दोस्तों संग, तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर केवल एक झलक पाने की चाह लेकर यहां पहुंचा है।
3: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं। आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहाँ से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
4: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
3: क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
4: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
5: हम कर्नाटक से आए
3: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
5: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
3: कब से आ रहे हैं?
5: हम आए, दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को समानता, सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। यहाँ ना जाति का भेद दिखाई देता है, ना ऊंच नीच का, ना अमीरी गरीबी की दीवार, हर तरफ केवल भक्ति का रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में हर साल उमड़ता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: पुरी ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता पूरे देश में नजर आई। अहमदाबाद में करीब 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गाजे बाजे, हाथी घोड़ों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह उदयपुर में रजत रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहमदाबाद हो, उदयपुर, दोनों जगहों पर यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट।

0: आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीर पुरी के अलावा देश में कहीं और नहीं। दूर जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धा नजर आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े और झांकियों के साथ जब भगवान जगन्नाथ चले तब यात्रा मार्ग पर जैसे पूरा अहमदाबाद चला। मन मोहने वाली झांकियां, दिल जीतने वाले करतब, और ताकत दिखाते अखाड़े के पहलवान। रथ यात्रा के साथ गुजरात की ये संस्कृति अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहां मंदिर है भगवान का, वहां से सरसपुर तक वहां पे जो है वो भगवान पहुंचते हैं अपने मामा के घर, वहां पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहां से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: तुलना करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा ज्यादा लंबी होती है। करीब 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। पुरी में जहां राजा छेरा पहरा की रसम राजा निभाते हैं, वहीं अहमदाबाद में पहिंद विधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री झाड़ू से रथ बुहाने की परंपरा निभाते हैं। इस साल भी सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर तक जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। इस साल भी अहमदाबाद रथ यात्रा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस के अनगिनत आला अधिकारी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, पूरी यात्रा पर 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर में भी यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। भव्यता के मामले में पुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर का नंबर आता है। राजभोग आरती के बाद पहले जगदीश मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रथ में रथ यात्रा निकाली गई। शाम में 4 बजे भगवान के विग्रह को रजत रथ में सवार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक धारण करवाई गई। राज परिवार के सदस्य और विधायक विश्वराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाएं, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखे है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए हैं।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं, और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चढ़कर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान कुदरत का चेहरे पर नजर आ रहा है, कल रात से ही शायद आप लाइन में लगे हैं,
5: लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, भगवान को मिलने का है। तो
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं, और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
9: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना, आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ, यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु, जयपुर में देखे आस्था श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र, रांची गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जाते समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की कसौटी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर जो है उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
10: 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर उसी दौरान की है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
11: २०२७ में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। इसका कारण जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा है। इसलिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और ये तस्वीर उसी दौरान की है। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव जी ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा बोलो बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और ये तस्वीर जो है उसी दौरान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल तस्वीर की जांच में तमाम कोशिशें की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि देखिए अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई खबर जरूर होती और देखिए ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जमकर खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर भी बांके बिहारी के दर्शन संबंधित कोई पोस्ट या तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि ये अगर हाल फिलहाल की वायरल तस्वीर है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर तस्वीर के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
11: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल तस्वीर की पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर 2022 में प्रकाशित एक खबर में मिली। इस खबर में बताया गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले यहां द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण से मुलाकात की। इसके बाद वो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद देर शाम लखनऊ लौट गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक और खबर मिली। 28 अगस्त 2022 की इस खबर में बताया गया कि दिल्ली से सैफई जाते हुए अखिलेश यादव वृंदावन में करीब 3 घंटे रुके थे। वहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अखिलेश यादव की 2022 की तस्वीर को हालिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा नहीं गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: देखिए सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं तो कुछ दिल छू लेते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो है इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे इंसानियत और मदद की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी को बाढ़ में बह रहे बाघ को बचाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिली है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब भारत में आदमी जो खुद को सभ्य मानता है, जाति और धार्मिक नफरत की वजह से दूसरे इंसानों की जान ले रहा है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा सामने आया है जो दिखाता है कि इंसानों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा हमदर्दी होती है, उनके भीतर एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखिए। अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के तेज बहाव में एक बाघ फंस गया, तभी सुमात्रा का एक हाथी उसे बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ के इंसान भी इंसानियत का यूं ही परिचय देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाघ बाढ़ के तेज पानी में फंसा हुआ है, जबकि एक हाथी उसकी मदद करने के लिए पानी के बीच मजबूती से खड़ा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ हाथी की सूंड का सहारा लेते हुए छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें जो है वीडियो की असलियत पर थोड़ा शक हुआ। मसलन वीडियो में हाथी और टाइगर की मूवमेंट असामान्य सी नजर आती है, वहीं पर पानी और जानवरों को जो उनकी बनावट है वो प्राकृतिक नजर नहीं आती। इसके अलावा देखिए, बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वो इस तरह से पानी में फंसे नहीं रह सकते। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। यदि सुमात्रा में बाढ़ के दौरान हाथी के बाघ को बचाने जैसी असाधारण घटना हुई होती तो ये एक बड़ी खबर बनती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें देखने को क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा।

0: से पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। यहाँ 99.9% संभावना जताई गई कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को दूसरे AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट वीडियो AI से चेक किया गया। वीडियो को यहां अपलोड करके एनालिस करने पर इसके AI से होने की संभावना 68% आई। जांच के दौरान वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले गए, फिर इन्हें AI इमेज डिटेक्शन टूल वॉजिट AI की मदद से चेक किया गया। इसके नतीजे से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से तैयार किया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
1: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कई लोग आज भी अपने पुराने क्लासरूम, स्कूल की बेंच, ब्लैक बोर्ड और दोस्तों को याद करके भावुक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब कभी पुरानी दोस्तों के साथ स्कूल लौटने का मौका मिलता है तो हर कोई फिर से बचपन जी लेना चाहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुराने छात्र कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में कदम रखते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग अपने पुराने क्लासरूम में जाते हैं और उसी तरह अपनी पुरानी सीटों पर बैठ जाते हैं जैसे कभी स्कूल के दिनों में बैठा करते थे। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ाई का माहौल दोबारा बनाते हैं और बचपन के उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी क्लास में उनके पुराने मास्टर जी आते हैं। उन्हें देखते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कई लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत और भक्ति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी छोटी सी दुनिया में भगवान के लिए प्यार और आस्था किसी भी चीज से बढ़कर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से कोने में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। बच्चों ने मिट्टी से बनी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं को बड़े प्यार से एक जगह पर स्थापित किया है। आसपास कोई खास सजावट नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा किसी बड़े आयोजन से कम नहीं लगती। बच्चे हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आते हैं जिसमें धूप और अगरबत्ती जल रही होती है। वे पूरे मन से पूजा अर्चना में लगे हुए दिखाई देते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने अनोखे अंदाज में योगा करती नजर आ रही है और उनकी बेटी का रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
8: योगा करते
7: हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है, बेटी भी आराम कर रही है।

0: शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह योगा के दौरान गहरी सांस लेती है, हाथों की एक्सरसाइज करती है और ताली बजाती हुई नजर आती है। उनके पास मौजूद लड़की ध्यान से उन्हें देख रही होती है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह कुछ ही देर बाद अचानक महिला योगा करते करते कुत्तों की तरह भौं भौं की आवाजें निकालने लगती है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। ये देखकर उनकी बेटी एकदम हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बेटी मजाकिया अंदाज में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी ये क्या कर रही हो?
1: मम्मी,
2: योगा करते हैं।
0: इस पर महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, योगा कर रही हूँ। महिला का यह अनोखा अंदाज और माँ बेटी की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है।
3: अब आसमान की ऊंचाई की तो कोई सीमा होती नहीं, तो एक नीली वर्दी छोड़ अपना एक दूसरी नीली वर्दी। इंडिगो में कईयों के रहनुमा कईयों के गुरु बने, ऐसे ही तो उनको 60 एम्बेसडर नहीं कहते। आज दिल्ली से देवगढ़ का सफर होगा यादगार, क्योंकि आज है इनका आखिरी दिन यहाँ।
0: इंडियन फोर्स और फिर इंडिगो के लिए बतौर पायलट काम करने वाले संदीप पुरी की आखिरी फ्लाइट के वीडियो ने इंटरनेट को भावुक कर दिया है। वो पायलट के रूप में पुरी की बेटी उनके लिए एक यादगार स्पीच देती है, जिसके बाद फ्लाइट में बैठा हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है। इस पल को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत का ट्रांसफर था। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
4: Especially all my loved ones, जितने मेरे फैमिली के लोग हैं, my wife is sitting here, मेरा बेटा भी मेरे साथ फ्लाई कर रहा है सौरभ पुरी, and also please my daughter, she is on the plane.
0: 5.5 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में समा सकती है। सुनकर आपको भी इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। इन दिनों तेलंगाना के कलाकार की अनोखी कला चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्होंने 5.5 मीटर लंबी सिल्क साड़ी को मात्र एक माचिस की डिब्बी में समेट कर सबको हैरान कर दिया। इस कलाकार का नाम है नल्ला विजय कुमार, जो सिरसिल्ला के एक ऐसे बुनकर है जिन्होंने अपनी कला के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस कमाल कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इस दुर्लभ रेशमी साड़ी को नल्ला विजय कुमार ने श्री भ्राम रामबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष पोथु गुंटा रमेश नायडू और न्यासी बोर्ड की सदस्य कोडे कंथी वर्धनी की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में देवी भ्राम रामबा को भेंट किया है, जो अब श्री शैलम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये अनोखी घटना तब सामने आई जब एक महिला ने जोमैटो से कुछ रोटियां ऑर्डर की। जब डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा, तो महिला ने फोन पर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत गुजारिश की। महिला ने डिलीवरी बॉय से कहा कि वह मंदिर के पास बैठी 3 आवारा गायों को ये रोटियां खिला दे। महिला ने बताया कि वह हर दिन उन गायों के लिए 3 रोटियां अलग से बनाती है, लेकिन उस दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर थी। उसे चिंता थी कि उसकी वजह से जानवर भूखे ना रह जाए, इसलिए उसने जोमैटो से रोटियां ऑर्डर कर दी। महिला की ये बेजुबान जानवरों के प्रति ममता देखकर डिलीवरी बॉय दंग रह गया। उसका दिल इस कदर पिघला कि उसने महिला से ऑर्डर के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पोल डांस सीखने के चक्कर में एक अमेरिकी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका पूरा लिविंग रूम वाटर पार्क बन गया। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ह्यूस्टन की रहने वाली आशा गिलबर्ट अपने फ्लैट में टीवी पर एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर पोल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरे जोश में अपने स्टेप्स कर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। डांस करते करते पोल सीधे छत से उखड़ गया। खराब किस्मत तो देखिए, उखड़ने के बाद पोल सीधे छत पर लगे आग बुझाने वाली पानी के सिस्टम फायर स्प्रिंकलर से जा टकराया। फिर क्या था, पूरे लिविंग रूम में मानो बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और चारों तरफ पानी की बौछारें शुरू हो गई। स्प्रिंकलर टूटने से कुछ ही मिनटों में पूरा लिविंग रूम पानी से लबालब भर गया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: ये आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाए, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हमें दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं, और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चढ़कर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान कुदरत का चेहरे पर नजर आ रहा है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे हैं।
5: लाइन में लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है तो।
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं, और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ। यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में देखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक। शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जो गुंडिचा मंदिर की तरफ जा रही है। बारिश के बावजूद इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे पुरी और यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। आज सुबह मंदिर में यात्रा कैसे शुरू हुई और धार्मिक रस्मों को किस प्रकार से निभाया गया, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद और उदयपुर में निकली भव्य रथ यात्राओं की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। अहमदाबाद और उदयपुर में यात्रा वापस मंदिर में लौट आई है, लेकिन दिन भर यात्रा की कैसी धूम रही ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ से। देखिए, आज सुबह से विधि विधान और धार्मिक रस्मों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। प्रतिमाओं को मंदिर से लाकर रथ में विराजमान किया गया। हालांकि लगातार बारिश और भारी भीड़ की वजह से यात्रा आगे बढ़ने में विलंब थोड़ा हुआ और उसे रोकना भी पड़ा, लेकिन यात्रा को लेकर भक्तों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। देखिए जगन्नाथ मंदिर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब रात आ चुकी है लेकिन भक्तों का भीड़ जैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का ये भीड़, भक्तों का ये समंदर आप देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं। अब भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मैया का रथ यहाँ से निकल चुकी है लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ नंदिघोष रथ यहाँ रुकी हुई है। नंदिघोष रथ हल्का एक ही कदम दो कदम आगे जाके फिर रुक गई है। ऐसा लग रहा है कि भगवान रात तक इन लोगों को इंतजार किए हैं, उन भक्तों को इंतजार किए हैं जो भक्त दूर दूर से आए हैं और दिन भर ये बारिश में भीगे हैं और भगवान को देख नहीं पाते हैं, इतना भीड़ में जो भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देख के लग रहा है
1: भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनकी इच्छा होता है तभी रथ चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो अब बलदेव जी आगे गए, सुभद्रा महारानी भी गए बीच में, अब जगन्नाथ जी थोड़ा सा खिसके हैं, इनको इच्छा होता आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज यहीं स्टे करेंगे।
2: बहुत खुश हूँ मैं
0: भगवान के पास से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने मन की भावनाएं जो है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं पहली बार आया था, पहली बार भगवान के दर्शन इतने नज़दीक से हुए, मेरे को बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं इनके साथ आया, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन कराए।
0: और ये भीड़ और ये खुशी, ये भक्ति से पता चलता है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का वो झलक देखने के लिए, वो झलक पाने के लिए लोगों का मन में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है।
3: पुरी में यात्रा अभी जारी है, माना जा रहा है कि कल भगवान का रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचेगा। हालांकि जयपुर में यात्रा शाम के बाद वापस मंदिर लौट आई लेकिन इससे पहले यात्रा के दौरान जयपुर की सड़कों पर भव्य दृश्य नजर आया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में भक्त उमड़े। देखिए जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट।

जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, यही जयकारे हैं आज सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर से, जहाँ गोविंद देव जी मंदिर से भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये रथ यात्रा जयपुर के चार दीवारी में घूमती हुई ब्रजनिधि मंदिर तक पहुंची है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए हैं और उनकी भक्ति देखने को मिली है। सिर्फ एक ही तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से भक्ति देखने को मिली है। कोई भजन कीर्तन करता हुआ जा रहा है तो कोई नाचता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस रथ यात्रा में भक्ति के अलग अलग दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार जयकारों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, 250 साल की परंपरा ये निभाई जा रही है जिसमें भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकल जा रही है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रथ की जगह तीन अलग अलग रथ यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रथ जो भगवान जगन्नाथ का है उनके साथ ही में दो अलग अलग रथ में उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा भी यहाँ पे विराजित हुई है। और हर दर्शनार्थी यहाँ पे समय पे यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो भगवान जगन्नाथ के रथ तक पहुँचे और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाए। इसीलिए ये रथ यात्रा जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त नजर आए।

तो ना सिर्फ पुरी बल्कि देश के कई शहरों में आज धूमधाम और भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। देखिए, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, राजकोट, कोलकाता, धनबाद, पणजी और ऐसे कई इलाकों में रथ के साथ भक्ति का रेला देखने को मिला। पूरे देश में जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा देश आज गुंजायमान हुआ। इस यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री, मंत्री, राजनेता और तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में जबरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली आज। लेकिन पूरे दिन नजर टिकी रही पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर, जहां पर बारिश की बूंदों के बीच भी आस्था का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। पुरी की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास बहुत मजबूत है। आज सुबह से वैदिक परंपराओं, छेरा पहरा की अनूठी रस्म और लाखों भक्तों की सहभागिता ने रथ यात्रा को दिव्यता से पूरी तरीके से भर दिया। ये केवल भगवान की यात्रा नहीं है बल्कि सेवा, समानता, समर्पण और अटूट श्रद्धा का महापर्व है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। देखिए पुरी से हमारी खास रिपोर्ट।

0: हे जगन्नाथ चका नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। पुरी में आज कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है। आसमान से बरसते बादल और धरती पर श्रद्धा का सैलाब, रथ पर महाप्रभु विराजमान, रथ के साथ हजारों भक्त, सभी की बस एक ही चाह, बस एक बार रथ को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। भक्ति भावना, श्रद्धा, समर्पण, क्या नहीं है इस यात्रा में, जिसकी शुरुआत पूरे वैदिक विधि विधान के साथ हुई। सुबह मंगला आरती हुई, स्नान पूजा संपन्न हुई, विशेष श्रृंगार हुआ, फिर गोपाल वल्लभ भोग और राजभोग अर्पित किया गया। इसके बाद वो पल आया जिसका इंतजार था। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पहंडी परंपरा के अनुसार मंदिर से बाहर लाकर रथों पर विराजमान हुए। तेज बारिश की वजह से इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और उन्हें झुलाते हुए भी लाया नहीं गया, बल्कि पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे रथ तक पहुंचाया गया।
1: भगवान का मंगल आरती समापन हुआ सुबह 5:30 बजे। उसी के बाद मौलम हुआ। मौलम का मतलब जो पुराना पोशाक है, पहला दिन से जो परिधान किए हुए थे उसको निकाला गया, और उसी के बाद स्वतंत्र उपचार, स्नान से पूर्व जिस परिधान को पहनते हैं, जैसे गामछा हम पहनते हैं, ऐसे तड़प उत्तरीय वेश, उसी वेश में भगवान दर्शन दिए और भगवान का स्नान हुआ, जिसको अवकाश कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के भाषा में। भगवान पीतल का दर्पण में बिंब स्नान किए हैं। स्नान के बाद तुरंत भगवान का श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद फूलों का अलंकार, पुष्प अलंकार, ये सब पहनाया गया, और उसी के बाद भगवान का अभी खिचड़ी भोग चल रहा है। खिचड़ी भोग समापन होने का जो खबर मंदिर के अंदर से आता है, अभी रथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जो तीनों रथ अभी खड़ा है आप देखते हैं, वो प्रतिष्ठा कार्य स्तुत्रीय ब्राह्मण पुरोहित सेवक के द्वारा वो समाहित किया गया।
0: इस महापर्व का सबसे भावुक नजारा तब दिखाई दिया जब पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने छेरा पहरा की परंपरा निभाई। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले गजपति महाराज ने सोने की झाड़ू से तीनों रथों और यात्रा मार्ग की सफाई की, फिर चंदन मिला पवित्र जल छिड़का। ये परंपरा बताती है कि प्रभु के दरबार में किसी पद, प्रतिष्ठा या सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और हर व्यक्ति केवल भगवान का भक्त होता है। महाप्रभु के इस महाउत्सव में आम लोग ही नहीं, खास लोग भी शामिल हुए। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जाने माने गायक सोनू निगम भी रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया।
2: मेरे पीछे जो हो रहा है इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आंखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज, मुझे बहुत खुशी है। ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई यहाँ पे, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल में बहुत।
0: शाम 5:50 पर सबसे पहले भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ आगे बढ़ा। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने रस्सियां थाम ली और जयकारों के बीच रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। मुख्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडचा मंदिर तक जाने वाले पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारिश लगातार होती रही लेकिन किसी ने कदम पीछे नहीं खींचे। कहा जाता है कि महाप्रभु जब तक अपने भक्तों को भरपूर दर्शन नहीं दे देते, तब तक उनका रथ भी आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करता। धार्मिक मान्यता भी कहती है कि रथ की रस्सी खींचना केवल सेवा नहीं बल्कि पुण्य का अवसर माना गया है। विश्वास है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता है। इसी आस्था के कारण देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंचे। कोई परिवार के साथ आया, कोई दोस्तों संग, तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर केवल एक झलक पाने की चाह लेकर यहां पहुंचा है।
3: जो कोई उड़ीसा भद्रक से हैं, कोई कर्नाटका से हैं। आप देख सकते हैं रथ के ऊपर का ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाहर का भी विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं, बार बार पुलिस वहाँ से हटा रहा है, लेकिन भक्तों का मन में वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान के प्रति एक भी पल के लिए कम नहीं हो रहा है। बार बार भगवान के और खींच के आ जा रहे हैं ये भक्त लोग, भगवान को पास से देखने के लिए, भगवान को थोड़ा छूने के लिए, भगवान का ये सानिध्य लाभ करने के लिए। भक्तों और भगवान का महामिलन या अपूर्व मिलन का इस अवसर में शामिल होने के लिए भक्त लोगों का ये भीड़।
4: मैं संबलपुर में रहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ जगन्नाथ जी के लिए, हर साल आते हैं हम लोग।
3: क्या आप बोलना चाहेंगे इतना, मतलब
4: मैं तो इतना भावुक हूँ कि भगवान को देख के मेरा, मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और जैसा भक्त और भगवान का मिलन है आज, ऐसा ही हुआ है मेरा।
5: हम कर्नाटक से आए
3: जी। ये कर्नाटक से इतना दूर रथ यात्रा के लिए या कुछ और?
5: नहीं, रथ यात्रा के लिए आए।
3: कब से आ रहे हैं?
5: हम आया, दूसरा साल है मेरा रथ यात्रा में। मेरे को पहला साल आया था ना, मेरे को मन में बहुत बैठ गया, मेरा भगवान साक्षात मेरे को बहुत अंदर से मेरा भगवान मेरे को लगा है। उस तरफ से मैं हर साल, मैं कितना जिंदा रहता हूँ उतना मैं हर साल आता हूँ रथ यात्रा को बोल के, मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ।
0: मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल इसलिए मंदिर से बाहर आते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, प्रभु स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को समानता, सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। यहाँ ना जाति का भेद दिखाई देता है, ना ऊंच नीच का, ना अमीरी गरीबी की दीवार, हर तरफ केवल भक्ति का रंग नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि लाखों भक्त भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं और महाप्रभु का आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, भक्ति और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है, जिसके लिए ही आस्था का ये अनंत सैलाब पुरी में हर साल उमड़ता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: पुरी ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्यता पूरे देश में नजर आई। अहमदाबाद में करीब 16 किलोमीटर लंबी यात्रा गाजे बाजे, हाथी घोड़ों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसी तरह उदयपुर में रजत रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहमदाबाद हो उदयपुर, दोनों जगहों पर यात्रा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए रिपोर्ट।

0: आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीर पुरी के अलावा देश में कहीं और नहीं। दूर जहां तक नजर जाती है सिर्फ श्रद्धा नजर आती है। गाजे बाजे हाथी घोड़े और झांकियों के साथ जब भगवान जगन्नाथ चले तब यात्रा मार्ग पर जैसे पूरा अहमदाबाद चला। मनमोहने वाली झांकियां, दिल जीतने वाले करतब, और ताकत दिखाते अखाड़े के पहलवान। रथ यात्रा के साथ गुजरात की ये संस्कृति अभिव्यक्ति बेमिसाल है। अनगिनत गाड़ियों पर अद्भुत झांकियों को देखने सड़क किनारे हजारों लोग और इनके साथ आगे बढ़ते तीनों रथ।
1: भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा आज पूरे अहमदाबाद में रंग हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ निकली है। भगवान के रथ के आगे अखाड़े जो हैं वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा होती है जिसमें सबसे पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद ट्रक होते हैं, ट्रक में अलग अलग झांकियां की जाती है, 100 झांकियां होती है, उसके बाद भजन मंडलियां और अखाड़े, और अखाड़ों के बाद रथ। 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा, कुल 16 किलोमीटर का अंतर है अहमदाबाद से जमालपुर के जहाँ मंदिर है भगवान का, वहां से सरसपुर तक वहां पे जो है वो भगवान पहुंचते हैं अपने मामा के घर, वहां पे विश्राम करते हैं और उसके बाद वहां से दोपहर में अपने मंदिर के लिए वापस लौटते हैं।
0: से तुलना करें तो अहमदाबाद की रथ यात्रा ज्यादा लंबी होती है। करीब 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। पुरी में जहां राजा छेरा पहरा की रसम राजा निभाते हैं, वहीं अहमदाबाद में पहिंद विधि होती है जिसमें मुख्यमंत्री झाड़ू से रथ बुहाने की परंपरा निभाते हैं। इस साल भी सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करके यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह परिवार संग भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल

0: मंगला आरती और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले।
1: भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा जो है वो आज अहमदाबाद में निकल रही है और परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिन विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है।
0: भगवान जगन्नाथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद वापसी की यात्रा होती है, लेकिन अहमदाबाद में रथ यात्रा सरसपुर तक जाती है और शाम को वापस जमालपुर मंदिर लौट आती है। इस साल भी अहमदाबाद रथ यात्रा में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 30,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस के अनगिनत आला अधिकारी और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स, पूरी यात्रा पर 100 से ज्यादा ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर में भी यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। भव्यता के मामले में पुरी और अहमदाबाद के बाद उदयपुर का नंबर आता है। राजभोग आरती के बाद पहले जगदीश मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रथ में रथ यात्रा निकाली गई। शाम में 4 बजे भगवान के विग्रह को रजत रथ में सवार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ को खास शाही पोशाक धारण करवाई गई। राज परिवार के सदस्य और विधायक विश्वराज सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।

0: यह आस्था का समंदर बाबा बर्फानी के दरबार की ओर उमड़ा है। भक्ति भाव में डूबे हुए महादेव की अलख जगाए चल पड़ी है भक्तों की टोली। चाह बस एक कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, भाव से मन भीग जाए, शब्द कहीं खो जाएं, मन बस वहीं ठहर जाए। यही तो होता है जब भक्त का भगवान से सामना होता है। शब्द खो जाते हैं, मौन मुखर हो जाता है, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते, बस आंखें छलक पड़ती हैं। आंखें बंद करके अपने आराध्य को भीतर महसूस करना ठीक वैसा ही है जैसे थके मन को धीरे से किसी ने स्नेहिल स्पर्श से भर दिया हो। बाबा बर्फानी के दरबार में आए भक्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मानो जिंदगी की सारी उलझनों का भार अब उतार लो हमसे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे यात्रा मार्ग में गूंज रहा है। सफर में कठिनाइयां बहुत हैं, पर हौसले और उम्मीदों की डोर तो स्वयं महादेव ने थाम रखी है, सो चुनौतियों पर आस्था भारी है।
1: बाबा के दर्शनों को जा रहे हैं और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ तक आए।
2: तो इससे पहले भी आए हैं कि पहली दफा है?
1: पहली बार आए।
2: किस तरह का जज्बा और जोश है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जोश है कि हाँ दर्शन हो रहा है बाबा जी की।
3: अगर बर्फानी बाबा अपने आप शांत हो गए हैं तो उससे कोई हमारी आस्था में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता है? मैंने जैसे बताया कि हम अपनी ऊर्जा स्थल अपना यहाँ पर अपना आशीर्वाद भोले बाबा का लेने जा रहे हैं और उनका बर्फानी होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और ये हमारे दिल में हमारे मन में कोई भी उस ये बात को लेकर के कोई भी अलग विचार नहीं है।
4: हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पैदल चढ़ के जाना चाहते हैं, तो सोचा है कि अमरनाथ बाबा हमको इतनी हिम्मत दे और हम पैदल चढ़कर चले जाएं।
5: वो तो ऐसा है कि जल्दी से पैदल चढ़ के जाए, सब चीज का मजा ले।
2: काफी थकान आपके चेहरे पर नजर आ रही है, कल रात से ही शायद आप लाइनों में लगे हैं।
5: लाइन में लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को मिलने का है तो।
0: 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में अमरनाथ यात्रा ने दर्शन का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु अभी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: 3 जुलाई से शुरू हुई इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा के पहले 10 रोज में करीबन 3,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। यात्रियों की संख्या ने करीबन 4 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निराश करने वाली बात यह है कि बाबा बर्फानी जो है वो पवित्र गुफा में पहले ही हफ्ते जो है अंतर्धाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आस्था और जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। यानी यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी भी बचा है। इस बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इस धार्मिक यात्रा को नए मकाम पर पहुंचा दिया है। पहलगाम से आरिफ बलूच और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
9: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
10: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
9: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
10: Remember, around here, we use the F Word,
9: never the S Word.
8: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts, and on the S Word YouTube channel.
11: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
7: उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर की ओर हुए रवाना। आस्था के महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में चांदी के रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले महाप्रभु जगन्नाथ, यात्रा मार्ग पर भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। जयपुर में देखे आस्था, श्रद्धा और परंपरा के रंग। देश भर में दिखी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य रौनक, शहर शहर गलियों में उमड़ा जन समुद्र। रांची, गुवाहाटी और जालना में दिखा गजब का उत्साह। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन, दान में आए सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता की करेगी जांच। अंतरिक्ष ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
12: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां पर हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को लांघ जाती है, कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा यह होता है कि लोग बिना जाते समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच और अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की कसौटी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल तस्वीर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर जो है उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
12: 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण फिट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है, और इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और यह तस्वीर उसी दौरान की है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
13: ..2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। इसका कारण जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय भूमिका से जुड़ा है। इसलिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और ये तस्वीर उसी दौरान की है। एक फेसबुक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, अखिलेश यादव जी ने मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा बोलो बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
12: दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को एक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस तस्वीर को हालिया बताकर दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए और ये तस्वीर जो है उसी दौरान सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर की जा रही है। ऐसे में वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल तस्वीर की जांच में तमाम कोशिशें की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें दावे की पुष्टि करती हाल फिलहाल में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्योंकि देखिए अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई खबर जरूर होती और देखिए ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जमकर खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में यहां पर भी बांके बिहारी के दर्शन संबंधित कोई पोस्ट या तस्वीर हमको देखने को नहीं मिली। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई पर शक हुआ, लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि ये अगर हाल फिलहाल की वायरल तस्वीर है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर तस्वीर के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
13: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल तस्वीर की पड़ताल में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये तस्वीर 2022 में प्रकाशित एक खबर में मिली। इस खबर में बताया गया था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले यहां द ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण से मुलाकात की। इसके बाद वो ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गए। उसके बाद देर शाम लखनऊ लौट गए थे। सर्च के दौरान हमें एक और आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश एक और खबर मिली। 28 अगस्त 2022 की इस खबर में बताया गया कि दिल्ली से सैफई जाते हुए अखिलेश यादव वृंदावन में करीब 3 घंटे रुके थे। वहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए थे। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अखिलेश यादव की 2022 की तस्वीर को हालिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाल फिलहाल में बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा नहीं गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
12: देखिए सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हैरान कर देते हैं तो कुछ दिल छू लेते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो जो है इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। वीडियो देखने के बाद कई लोग इसे इंसानियत और मदद की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी को बाढ़ में बह रहे बाघ को बचाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिली है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे समय में जब भारत में आदमी जो खुद को सभ्य मानता है, जाति और धार्मिक नफरत की वजह से दूसरे इंसानों की जान ले रहा है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा सामने आया है जो दिखाता है कि इंसानों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा हमदर्दी होती है, उनके भीतर एक दूसरे की मदद करने की भावना होती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखिए। अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के तेज बहाव में एक बाघ फंस गया, तभी सुमात्रा का एक हाथी उसे बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहां के इंसान भी इंसानियत का यूं ही परिचय देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को इंडोनेशिया के सुमात्रा का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाघ बाढ़ के तेज पानी में फंसा हुआ है, जबकि एक हाथी उसकी मदद करने के लिए पानी के बीच मजबूती से खड़ा है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ हाथी की सूंड का सहारा लेते हुए छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हाथी बाघ को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे एक बाघ की जान एक हाथी ने बचाई। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर की फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलतियां देखने को मिली जिसमें हमें जो है वीडियो की असलियत पर थोड़ा शक हुआ। मसलन वीडियो में हाथी और टाइगर की मूवमेंट असामान्य सी नजर आती है, वहीं पर पानी और जानवरों को जो उनकी बनावट है वो प्राकृतिक नजर नहीं आती। इसके अलावा देखिए, बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और वो इस तरह से पानी में फंसे नहीं रह सकते। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें इससे जुड़ी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट भी देखने को नहीं मिली। यदि सुमात्रा में बाढ़ के दौरान हाथी के बाघ को बचाने जैसी असाधारण घटना हुई होती तो ये एक बड़ी खबर बनती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमें देखने को क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड मॉफ्ट वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो को इंटरनेट पर खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में बाघ और हाथी के मोमेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये वीडियो असली नहीं हो सकता। पानी के बहाव और लहरों में भी एक क्लैरिटी देखने को मिल रही है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने AI डिटेक्शन टूल की मदद ली। सबसे पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। यहाँ 99.9% संभावना जताई गई कि ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो को दूसरे AI डिटेक्शन टूल डिटेक्ट वीडियो AI से चेक किया गया। वीडियो को यहां अपलोड करके एनालिसिस करने पर इसके AI से होने की संभावना 68% आई। जांच के दौरान वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले गए, फिर इन्हें AI इमेज डिटेक्शन टूल वॉजिट AI की मदद से चेक किया गया। इसके नतीजे से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो असली नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से तैयार किया गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
3: बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कई लोग आज भी अपने पुराने क्लासरूम, स्कूल की बेंच, ब्लैक बोर्ड और दोस्तों को याद करके भावुक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब कभी पुरानी दोस्तों के साथ स्कूल लौटने का मौका मिलता है तो हर कोई फिर से बचपन जी लेना चाहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुराने छात्र कई साल बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में कदम रखते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। इसके बाद सभी लोग अपने पुराने क्लासरूम में जाते हैं और उसी तरह अपनी पुरानी सीटों पर बैठ जाते हैं जैसे कभी स्कूल के दिनों में बैठा करते थे। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ाई का माहौल दोबारा बनाते हैं और बचपन के उन खूबसूरत पलों को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी क्लास में उनके पुराने मास्टर जी आते हैं। उन्हें देखते ही कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कई लोग भावुक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी मासूमियत और भक्ति से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बच्चों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी छोटी सी दुनिया में भगवान के लिए प्यार और आस्था किसी भी चीज से बढ़कर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे अपने घर के बाहर बने एक छोटे से कोने में भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। बच्चों ने मिट्टी से बनी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं को बड़े प्यार से एक जगह पर स्थापित किया है। आसपास कोई खास सजावट नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा किसी बड़े आयोजन से कम नहीं लगती। बच्चे हाथों में पूजा की थाली लिए नजर आते हैं जिसमें धूप और अगरबत्ती जल रही होती है। वे पूरे मन से पूजा अर्चना में लगे हुए दिखाई देते हैं। बच्चे पूरे उत्साह से भगवान गणेश की पूजा करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। स्कूल के बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे तेज बारिश में खेल रहे हैं। सभी बिना छतरी के मैदान में भर चुके पानी में खुशी खुशी नाच रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने अनोखे अंदाज में योगा करती नजर आ रही है और उनकी बेटी का रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
4: योगा करती है।
3: वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है, बेटी भी आराम कर रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। वह योगा के दौरान गहरी सांस लेती है, हाथों की एक्सरसाइज करती है और ताली बजाती हुई नजर आती है। उनके पास मौजूद लड़की ध्यान से उन्हें देख रही होती है लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वह कुछ ही देर बाद अचानक महिला योगा करते करते कुत्तों की तरह भौं भौं की आवाजें निकालने लगती है। इतना ही नहीं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक होते हैं। ये देखकर उनकी बेटी एकदम हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। बेटी मजाकिया अंदाज में अपनी माँ से पूछती है, मम्मी ये क्या कर रही हो?
4: योगा करती है।
3: इस पर महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, योगा कर रही हूँ। महिला का यह अनोखा अंदाज और माँ बेटी की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है।
5: अब आसमान की ऊंचाई की तो कोई सीमा होती नहीं, तो एक नीली वर्दी छोड़ अपना दूसरी नीली वर्दी। इंडिगो में कईयों के रहनुमा कईयों के गुरु बने, ऐसे ही तो उनको सिक्सी एम्बेसडर नहीं कहते। आज दिल्ली से

0: लोगों का सफर होगा यादगार, क्योंकि आज ही इनका आखिरी दिन यहाँ।
1: इंडियन फोर्स और फिर इंडिगो के लिए बतौर पायलट काम करने वाले संदीप पुरी की आखिरी फ्लाइट के वीडियो ने इंटरनेट को भावुक कर दिया है। वो पायलट के रूप में पुरी की बेटी उनके लिए एक यादगार स्पीच देती है, जिसके बाद फ्लाइट में बैठा हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है। इस पल को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत का ट्रांसफर था। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
2: Especially all my loved ones, जितने मेरे फैमिली के लोग हैं, my wife is sitting here, मेरा बेटा भी मेरे साथ फ्लाई कर रहा है सौरभ पुरी, and also please my daughter, she is also flying.
1: 5.5 मीटर लंबी साड़ी एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में समा सकती है। सुनकर आपको भी इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। इन दिनों तेलंगाना के कलाकार की अनोखी कला चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्होंने 5.5 मीटर लंबी सिल्क साड़ी को मात्र एक माचिस की डिब्बी में समेट कर सबको हैरान कर दिया। इस कलाकार का नाम है नल्ला विजय कुमार, जो सिरसिल्ला के एक ऐसे बुनकर हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर शहर का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस कमाल कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए हैं। इस दुर्लभ रेशमी साड़ी को नल्ला विजय कुमार ने श्री भ्राम रामबा मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष पोथु गुंटा रमेश नायडू और न्यासी बोर्ड की सदस्य कोडे कंथी वर्धनी की उपस्थिति में प्रसिद्ध श्री शैलम मंदिर में देवी भ्राम रामबा को भेंट किया है, जो अब श्री शैलम मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये अनोखी घटना तब सामने आई जब एक महिला ने जोमैटो से कुछ रोटियां ऑर्डर की। जब डिलीवरी बॉय लोकेशन पर पहुंचा, तो महिला ने फोन पर एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत गुजारिश की। महिला ने डिलीवरी बॉय से कहा कि वह मंदिर के पास बैठी 3 आवारा गायों को ये रोटियां खिला दे। महिला ने बताया कि वह हर दिन उन गायों के लिए 3 रोटियां अलग से बनाती है, लेकिन उस दिन वह किसी जरूरी काम से बाहर थी। उसे चिंता थी कि उसकी वजह से जानवर भूखे ना रह जाए, इसलिए उसने जोमैटो से रोटियां ऑर्डर कर दी। महिला की ये बेजुबान जानवरों के प्रति ममता देखकर डिलीवरी बॉय दंग रह गया। उसका दिल इस कदर पिघला कि उसने महिला से ऑर्डर के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। पोल डांस सीखने के चक्कर में एक अमेरिकी महिला ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका पूरा लिविंग रूम वाटर पार्क बन गया। बताया जा रहा है कि टेक्सास के ह्यूस्टन की रहने वाली आशा गिलबर्ट अपने फ्लैट में टीवी पर एक वीडियो ट्यूटोरियल देखकर पोल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो पूरे जोश में अपने स्टेप्स कर रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। डांस करते करते पोल सीधे छत से उखड़ गया। खराब किस्मत तो देखिए, उखड़ने के बाद पोल सीधे छत पर लगे आग बुझाने वाली पानी के सिस्टम फायर स्प्रिंकलर से जा टकराया। फिर क्या था, पूरे लिविंग रूम में मानो बादलों ने अपना डेरा जमा लिया और चारों तरफ पानी की बौछारें शुरू हो गई। स्प्रिंकलर टूटने से कुछ ही मिनटों में पूरा लिविंग रूम पानी से लबालब भर गया।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: अमरनाथ यात्रा में रौनक बनी हुई है, श्रद्धालुओं की तादाद हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि यात्रा के समापन में करीब 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है।